ओम शांति। अमृत वेला हम सभी के लिए वरदान बन कर आता है, जबकि हमें रोज भगवान से बातें करने का स्वर्णिम अवसर मिलता है। हम इस समय की इंतजार करते हैं कि कल फिर बहुत जल्दी अमृत वेला आ जाए और हम अपने उस प्रियतम से सच्चे मन की बात कर लें, जिससे बात करने के लिए हम युगों से तरसते थे, जिससे बात करने के बाद परम आनंद और परम सुखों की अनुभूति होती है। तो आइए हम सभी अमृत वेले का संपूर्ण सुख प्राप्त करें। ये समय सोने का नहीं होता, जिन सोया तिन खोया। इस समय सोने से हमारी अवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि सवेरे यदि हम स्वयं को ईश्वरीय खुशी से भर लेते हैं, यदि स्वयं को ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न कर लेते हैं, तो सारा दिन हमारा सुंदर स्थिति में व्यतीत होता है। हमें ऐसा सोच लेना चाहिए कि सारा दिन हमें युद्ध क्षेत्र पर रहना है, सवेरे हमें अस्त्र शस्त्र और बारूद इकट्ठे कर लेने हैं, अपनी पूर्ण तैयारी कर लेनी है। अगर हम सवेरे तैयारी नहीं करेंगे तो युद्ध क्षेत्र पर हमारी हार संभव हो सकती है। इसलिए इस समय को हम उतना ही महत्व दें जितना बाबा ने इसको महत्व दिया है। इस समय की विशेष प्राप्ति ये है कि अमृत वेले के समय परम सद्गुरु के रूप में बाबा स्वयं हमें बहुत कुछ देता है, शक्तियाँ भी देता है, वरदान भी देता है, टचिंग भी कराता है, विशेष प्यार भी देता है। हम अपनी भूलों को उससे क्षमा करा सकते हैं, हम उससे कोई विशेष बात ले सकते हैं। जैसे मुझे विजयमाला में आना है, बाबा की इस पर स्टैंप लगवा सकते हैं, क्योंकि उस समय बाबा भोलानाथ बनकर बैठा होता है, हमारे लिए होता है। और अमृत वेले और सारे दिन में ये अंतर रहेगा कि अमृत वेले तो बाबा अपनी ओर से हमें देता है, और सारा दिन हमें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसे लेने के लिए, जो कहीं कहीं कठिन हो सकता है। सवेरे हमारा चित्त शांत भी होता है, बुद्धि की लाइन भी क्लियर रहती है, वातावरण में भी शीतलता छाई होती है। इसलिए सवेरे उठना, बाहर एकांत में भ्रमण करना, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और श्रेष्ठ विचार क्रिएट करने के लिए भी अति उत्तम है। इसे ही निद्राजीत अवस्था भी कहते हैं। निद्राजीत का ये अर्थ कदापि नहीं कि हम सोए नहीं, नींद पर संपूर्ण विजय हमारी हो जाए। नींद तो हमारी हेल्थ के लिए परम आवश्यक है। 6 घंटे की अच्छी नींद हमें सदा स्वस्थ रखने में, मन को भी तंदुरुस्त रखने में बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए अपनी नींद को तो बहुत काटना नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छी नींद आ जाए तो 5 घंटे भी काफ़ी होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सारा दिन हमारा कार्य कैसा है। तो हम सवेरे उठकर ईश्वरीय सुखों से स्वयं को भरपूर करने लगें और ऐसा रोज बाबा से मिलन करें कि आत्मा एक बार रोज सवेरे तृप्त हो जाए। ये तृप्त स्थिति हमें लंबे समय तक सुखों का अनुभव कराएगी। तो आइए आज हम सभी अभ्यास करेंगे। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप में हम चक्र लगाएंगे, बहुत सुंदर अपने स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे। देखें हमारे लेफ्ट साइड में हमारा फरिश्ता स्वरूप हमारा आह्वान कर रहा है, राइट साइड में हमारा देव स्वरूप हमें इशारा कर रहा है, मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ। अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा अपने इस देह से निकली और फरिश्ते स्वरूप में जाकर प्रवेश कर लिया, मैं बन गया फरिश्ता, बिल्कुल लाइट, आत्मा भी लाइट, देह भी लाइट,
का। कुछ देर इस फीलिंग में रहेंगे, फिर यहां से मैं आत्मा निकली, देव स्वरूप में प्रवेश कर लिया, मैं प्रत्यक्ष में रियल में देव स्वरूप में हूँ। सिर पर डबल ताज है, डिवाइन फेस है, कंचन काया है। फिर वहां से मैं आत्मा निकली वापिस ब्राह्मण शरीर में। ये ड्रिल हर घंटे में एक बार अवश्य करेंगे। ओम शांति।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। उत्कृष्टता अपना बखान खुद करती है। उत्कृष्टता हो तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं होती। जहां बखान करने की जरूरत पड़े वहां उत्कृष्टता आपको शायद ही मिले। जो ठीक है वह ठीक ही है और जो ठीक नहीं है वह ठीक ही नहीं है। फिर भी हमें विवरण देने की, स्पष्टीकरण देने की, सही ठहराने की, दलील देने की और औचित्य सिद्ध करने की प्रवृत्ति होती है। जरा ध्यान दें, यदि एक बार आप अपने मन को कुछ ऐसा करने की प्रवृत्ति में ढाल लेते हैं जो ठीक नहीं है तो आप आत्मविनाश वाला बटन दबा रहे हैं। जो मन उत्कृष्टता के अभाव को सही सिद्ध करना सीख लेता है वह समझौते पर उतर आना भी सीख जाता है। वह समझौते के साथ जीना सीख जाता है। यदि आपको 100 में से 88 अंक मिले हैं तो यह एक तथ्य है कि 12 अंकों की कमी रही है। आप कितना भी स्पष्टीकरण दें, कितने भी तर्क दे लें, आपके 12 अंक कम ही रहेंगे। मौखिक जमा खर्च उन 12 अंकों की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता। आप 88 को 100 के रूप में साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हालांकि आप खुद जानते हैं कि 88 केवल 88 ही होता है। कहावत है कि यदि कोई झूठ 1000 बार बोला जाए तो वह सच बन जाता है। हो सकता है कि दूसरों के लिए वह सच प्रतीत होने लगे, लेकिन आपको तो हमेशा यह सच पता ही रहेगा कि वह झूठ है। आप कब तक बिल्ली को शेर बताते रहेंगे? न तो आप इस तथ्य से मुंह मोड़ सकते हैं और न ये तथ्य आपसे मुंह मोड़ सकता है। दलीलें या स्पष्टीकरण किसी कमी की भरपाई कभी नहीं कर सकते।

सिंह चौहान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

यदि आपका लक्ष्य 40 लाख का था लेकिन आप 36 लाख तक ही पहुंच पाए हैं तो आप लक्ष्य से नीचे ही रहे हैं। यदि मुलाकात का निर्धारित समय 11 बजे था और आप 11:15 पर पहुंचे हैं तो इसका अर्थ है आप देर से आए हैं। हर संभव तरीके से हर बात के भरपूर विवरण, दलील और स्पष्टीकरण के बावजूद यह तथ्य अटल और अड़िग रहता है कि आपने लक्ष्य पूरा नहीं किया है और यह कि आपने समय की पाबंदी का सम्मान नहीं किया है। उत्कृष्टता के अभाव के लिए खुद को सांत्वना और तसल्ली दे देना अपने जीवन में आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इससे आप लक्ष्य को पाने में हर बार पिछड़ जाएंगे और वह क्षमता पा लेने में भी आप पिछड़ जाएंगे जो आप पा सकते हैं। उठो, जागो, जो ठीक नहीं है वह ठीक ही नहीं है। 6:01 का समय 6 बजे का समय नहीं हो सकता। सोमवार केवल सोमवार ही होता है। दोष रहित होना संभव है, उत्कृष्टता बनाए रखना संभव है और इसका शुभारंभ ऐसा स्वभाव बना लेने से होता है जिसमें आप सर्वोत्तम से कम किसी भी चीज से समझौता करने से साफ इनकार कर देते हैं। जीवन के साथ यह विचित्र बात है कि यदि सर्वोत्तम से कम किसी भी चीज से आप समझौता करने से इनकार कर देते हैं तो फिर आप उस सर्वोत्तम को हासिल कर ही लेते हैं। उत्कृष्टता के अभाव से आपको पीड़ा पहुंचनी चाहिए। जब आपको पीड़ा पहुंचेगी तब आप निर्देश देंगे। जब आप निर्देश देंगे तो आप सृजन करेंगे। सृजित हो जाएं, उत्कृष्टता का सृजन करें। आपका काम ही आपके बारे में बताए, आपको उसके बारे में बताने की जरूरत ना हो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर गलती एक सबक है, आत्म मंथन के माध्यम से उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

एक अधेड़ सज्जन शिकायत कर रहे थे, मैंने अपने माता पिता से कभी कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने मुझसे जो भी करने के लिए कहा मैंने वही किया। मैं अपने माता पिता का बहुत आदर करता था, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जब भी मैं उसे कुछ करने के लिए कहता हूँ तो मुझे उसके क्यों, क्या, कैसे और क्यों नहीं के जवाब देने पड़ते हैं। आजकल के बच्चे बड़ों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते, यह सच नहीं है। बात केवल इतनी ही है कि संबंधों का

स्वरूप बदल गया है। बीते वर्षों में संबंधों का आधार भावना हुआ करता था, आज संबंधों का आधार सूचना है। कुछ वर्ष पहले यदि कोई बॉस अपनी टीम के किसी सदस्य से कोई कार्य करने के लिए कहता था तो उस सदस्य का त्वरित उत्तर हुआ करता था, समझिए हो गया। आज टीम का सदस्य उस काम को करने से पहले पूछता है, यह क्यों किया जाना चाहिए, किस लिए किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आज टीम का सदस्य बॉस का आदर नहीं करता, बल्कि बात बस इतनी सी है कि वह पूरी जानकारी हासिल कर लेना चाहता है। इस अर्थ में संबंधों में बिना सवाल किए हुकुम बजाने वाली बात अब नहीं रह गई है। हालांकि संबंधों की गुणवत्ता में किसी तरह की कमी नहीं आई है, आज की बुद्धि तो बस यह पूछती है, या तो अपना यह निर्णय लेने के बारे में मुझे पूरी जानकारी दो, या मुझे वह सारी सूचना दो जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि मुझे यह कार्य करना चाहिए। हो सकता है कि अपने पिता के इशारे भर से आप उन्हें पानी लाकर दें, लेकिन हो सकता है कि वही काम करने से पहले आपका बेटा दो चार प्रश्न करे। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह कि वह भी आपके लिए पानी ले आएगा, बशर्ते उसे इस बारे में पूरी बात बता दें। इस अर्थ में बालक और माता पिता के बीच के संबंधों में कोई कमी नहीं आई है, केवल संबंधों का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है।

उठो जागो अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का। ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का। ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है। किस्मत

0: ओए रुक रुक, कुछ सुनाई नहीं देती? वो ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

पिताजी जब फोन पर माँ को बताते थे कि लंच पर आज उनके साथ 3 लोग और आएंगे, तो माँ केवल ठीक है कह दिया करती थी। अब यदि यही बात अपनी पत्नी को बतानी पड़े तो वह पूछेगी, कौन कौन आएगा, कब आ रहे हैं, उनकी पसंद क्या है, कब तक रुकेंगे। लेकिन फिर भी वह उनके लिए खाना जरूर बनाएगी। इस अर्थ में वैवाहिक संबंधों में निष्ठा में कमी नहीं आई है। बात इतनी सी है कि संबंधों का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। संबंधों का आधार भावना से हटकर सूचना पर आ गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी समर्पण की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन आया हो ऐसा नहीं लगता है। जो परिवर्तन आया है वह है बिना कोई प्रश्न उठाए समर्पण कर देने का स्थान अब पर्याप्त प्रश्नोत्तर के बाद होने वाले समर्पण ने ले लिया है। तो क्या अर्जुन और इस स्थिति में कोई अंतर है? संबंधों की गुणवत्ता में कोई गिरावट नहीं आई है। हाँ, उसमें संप्रेषण और सूचना की मांग जरूर बढ़ गई है। सूचना का आदान प्रदान और संप्रेषण अब संबंधों की जीवन रेखा बन गए हैं। विवरण अब जरूरी हो गए हैं और स्पष्टीकरण अनिवार्य। यह परिवर्तन न तो बेहतर है और न बदतर, यह तो बस एक नया परिदृश्य है। इस परिवर्तनशील संसार में ऐसा परिवर्तन तो प्रत्याशित ही होना चाहिए। अब केवल करो कह देना पर्याप्त नहीं रह गया है। पर्याप्त विवरण व स्पष्टीकरण दें और फिर कहें करो, और वह कर दिया जाएगा। विश्वास संबंधों का आधार होता है, लेकिन अब विश्वास बस यूं ही नहीं कर लिया जाता। सूचना विश्वास का आधार बन गई है और इसलिए संबंधों का भी। लेकिन यह बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि सभी संबंध सिर्फ सतह पर ही रहते हैं। भीतर गहराई में आप हमेशा अकेले ही होते हैं। भले ही हजारों लोग आपके चारों ओर हों, फिर भी अपने एक अंश में आप हमेशा अकेले होते हैं। आप इस संसार में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। मुक्ति यह जानने से आती है कि अस्तित्व का अकेलापन ही आपका सच्चा स्वरूप है। इस अंतराल से संबंध जोड़ें तो आप आश्रय बन जाएंगे अथवा खुद आश्रित हो जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे सुप्रभात में, रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और यह कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों को अगर हम सही समय पर समझ लें और उसके अनुसार अगर हम अपने जीवन शैली में वो परिवर्तन ले आए तो स्वस्थ रहना संभव है। कई बार हम ये समझ लेते हैं कि स्वस्थ रहना तो असंभव सी बात है, कोई ना कोई प्रकार की व्याधि या बीमारी आती ही रहेगी, ऐसा कई लोग मानते हैं। मगर कुछ चीजें जो हम खुद अपनी गलतियों की वजह से अपने स्वास्थ्य में तब्दीलियां ले आते हैं या अस्वस्थता या रोग को निमंत्रण दे देते हैं, उससे तो कम से कम हम अपने प्रयासों से बच ही सकते हैं। सहज स्वास्थ्य के हर एक कड़ी में हमारा प्रयास यही होता है कि हम स्वास्थ्य को अपने करीब बनाए रखें और रोगों को दूर रखने के लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं वो प्रयास हर कोई करने में सक्षम हो, और सही जानकारी से यह संभव भी है। आज इन्हीं विषयों पर हमें सही जानकारियां देने के लिए स्वास्थ्य जगत के ही विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के जाने माने एक्सपर्ट हैं और भारत के सुप्रसिद्ध ऑस्टियोपैथ्स में से एक हैं। भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पे उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और अभी भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात समझने वाली है, अगर हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सही जानकारियां हमारे पास रखते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र का काम करते हैं रोगों से लड़ने के लिए और रोगों को दूर रखने के लिए। सही जानकारी के अभाव में लोग गलत चीजें कर लेते हैं और फिर उसके खामियाजा रोग के रूप में या व्याधि के रूप में भुगतना पड़ता है। आज एक ऐसा ही बड़ा रोग या ये कहें एक ऐसी बीमारी जिससे लोग ग्रस्त हैं वो है डायबिटीज। डायबिटीज को जब हम नाम सुनते ही हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो ऐसी बीमारी है, इसके साथ जीवन भर रखना है। अब जीवन भर रहने के बारे में सोचें ना सोचें तो भी कम से कम डायबिटीज के मरीजों को क्या करना चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये चीज समझने वाली बात है। प्रायः ये चीज सुनाया जाता है कि भाई अभी आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत होगी, आपका जो फूड सिस्टम है उसे चेंज करना है, ये चीज बताया जाता है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जब डायबिटीज के मरीजों को अपने आहार पद्धति में बदलाव लाने की बात कही जाती है तो क्या बदलाव है, किस चीज को बदलने की जरूरत?
1: डायबिटीज का मरीज जब पहली बार उस बीमारी से ग्रसित होता है या उसे मालूम चलता है कि वो ग्रसित है और उसके परिवार में किसी को भी ये समस्या नहीं है या उसकी हम उम्र जो मित्र हैं उनमें से किसी को ये समस्या नहीं है, तो उसको एक बहुत बुरा झटका लगता है। उसको ऐसा लगता है कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और वो अपने आप को कोसता है और तुरंत एक प्रण करता है कि मैं अपने आप को अब सुधार के रखूंगा, मैं अपने आप को ठीक से रखूंगा। और अमूमन लोगों में भैया मुझे कहना नहीं चाहिए, वो इस मोटिवेशन को हार्डली 15 दिन 20 दिन एक महीना रख पाते हैं, और वो जैसे ही उनको डायबिटीज होती वो तुरंत भोजन पे कंट्रोल करना शुरू करते हैं और उनको उससे अच्छा लगने लगता है। फिर वो जब बाहर समाज में निकलते हैं या वो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं या घर पे भी देखते हैं कि सब लोग तो खा रहे हैं यार, मैं क्यों नहीं खा पा रहा, तो वो अपना संयम जो है उसको छोड़ देते हैं और फिर से खाने लगते हैं। और एक बहुत गलत सोच वो अपने दिमाग में विकसित करते हैं कि अरे मैं दवा तो खा रहा हूं, भोजन को कंट्रोल क्यों करूं। एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, मेरे एक बहुत अच्छे पेशेंट हैं, उनको मैं बहुत रेगुलरली देखता हूं, वो डायबिटीज से ग्रसित हैं, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, वो इंजेक्शन लगाने के बाद चॉकलेट खाते हैं कि मेरी इंसुलिन गिर रही है। मैंने एक दो बार उनको धीरे से समझाने की कोशिश करी कि आप इंसुलिन की यूनिट कम कर दीजिए, आपको चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर वो कहते नहीं नहीं मेरी शुगर गिर रही है। उनका मन जो है वो कंट्रोल में ही नहीं है, वो बिना चॉकलेट खाए रह नहीं पा रहे हैं और उस स्वाद के लिए वो अपने शरीर को नुकसान दिए चले जा रहे हैं। सो सबसे पहली बात, अगर आपको ये बीमारी हुई है तो ये आपको संयम से इसका जो अपना भोजन है, आपका दिनचर्या है, आपके रहन सहन को संयम से रखना पड़ेगा। कल मैंने अपने लेक्चर के दौरान, बातचीत के दौरान आपसे बोला था कि डायबिटीज एक अपॉर्चुनिटी की तरह है अपने आप को फिट रखने के लिए। आपने जो भी गलत करना था कर लिया, जिस उम्र तक आप बेछूट खा रहे थे, बिना एक्सरसाइज के रह रहे थे, जब मन चाह रहा था तब खा रहे थे, जितनी बार मन कर रहा था खा रहे थे, जो आपको अच्छा लग रहा था वो खा रहे थे, जो आपको दिख रहा था वो खा रहे। डायबिटीज एक अपॉर्चुनिटी है आपको फिट रखने के लिए। आप पहले जो भी खा रहे थे, जितना भी खा रहे थे, जैसे भी खा रहे थे, उसको अब छोड़ दीजिए, संयम से खाना शुरू करिए। आप अच्छा खा, कभी कभार मन कुछ, हमको अब ये ध्यान देना है कि पहले हम जो खाते थे, जितना खाते थे, जितनी बार खाते थे, जो हमारा मन करता था वो हम खाते थे, उस पे अब हमको संयम रखना है। हमको बहुत कुछ अपने शरीर के लिए अब खाना है, न कि मन के लिए। कभी कभार महीने दो महीने में एक बार थोड़ा बहुत मन का जरूर खा लीजिए, मगर प्लीज अपने शरीर की अब सुनना शुरू करिए। आपके शरीर ने आपको बताया है कि उसको एक समस्या हो रही है, और उस समस्या का निवारण सिर्फ अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करना है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि वाणी से व्यवहार, वाणी से व्यापार। मतलब अगर आपकी जिह्वा ठीक है तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा और आपका व्यवहार भी बढ़ेगा। और मैं एक डॉक्टर होकर उसमें सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आपकी जिह्वा से अब स्वास्थ्य भी है। अगर आप अपनी जिह्वा पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आप डायबिटीज रिवर्सल भी अपने साथ कर सकते हैं।
0: ये बात प्रायः पूछी जाती है कि भाई ठीक है, हम पहले जैसे तो चीजें नहीं खाएंगे, या हम पहले जितनी मात्रा में खा रहे थे या जितने बार खा रहे थे उन चीजों को बदलने पर तो लोग प्रयासरत होते हैं। अक्सर लोग फ्रूट्स के बारे में ये बात करते हैं कि भाई पहले बड़े चाव से हम फ्रूट खाते थे, अब प्रश्न उठता है कि भाई अब क्या मेरे को फ्रूट्स खाना छोड़ देना पड़ेगा। चीनी तो लोग समझ लेते हैं कि चलिए चीनी के बिना चाय पीना शुरू करते हैं या मीठे चीजों से परहेज करना शुरू करते हैं। फ्रूट्स के बारे में क्या ख्याल है? फ्रूट्स को तो हम बहुत ही हेल्दी चीजें समझते हैं।
1: सबसे पहली बात पे कहना चाहूंगा कि आपको जो चीज हमेशा के लिए छोड़नी चाहिए वो है चीनी। आपने खुद ही बोला भैया, चीनी के साथ साथ कॉर्न, शुगर सिरप और चीनी के जो भी डेरिवेटिव्स हैं, जैसे शहद या हनी हुआ, गुड़ हुआ, इन सब चीजों को आपको छोड़ देना चाहिए। आप फल जो हैं, वो कोई भी फल जो आप खा रहे थे उसमें भी आपको कुछ फलों के लिए थोड़ा सा संयम करना पड़ेगा। और इसमें भी जो दो सबसे जरूरी फल हैं जिसको हम रोकने को कहते हैं, वो है केला और आम। ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कभी केला मत खाइए या कभी आम मत खाइए, मगर एक भाग आम और आधा केला आप खा सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छी बात ये हुई कि आप सेब हुआ, नाशपाती हुआ, वाटरमेलन हुआ, खरबूजा हुआ, पपीता हुआ और जामुन हुआ, ये सारी चीजें आप बहुत आराम से खा सकते हैं। सुबेरे आप सेब खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, आप चेरीज खा सकते हैं, ब्लूबेरीज खा सकते हैं। आपके एरिया में जो आपको फल मिलता है वो आप जरूर खा सकते हैं। ये चीज का ध्यान बस देने लायक है कि हमें फल खाना है, हमें फल का रस जो है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा चीनी होती है और उसमें फाइबर जो है वो जीरो होता है। इसीलिए जब हम फ्रूट खाते हैं तो हमें फ्रूट के साथ फ्रूट शुगर, उसके न्यूट्रिएंट और उसके सारे के सारे जो खुज्जा या फाइबर है वो भी हमें मिलता है, और ये हमको बहुत आराम देता है। एक चीज का हमको पहले फल खाने से भी या भोजन करने से भी पहले हमको सबसे जो चीज ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि हम रिफाइंड ग्रेन्स जो हैं, जो ज्यादा पिसे हुए अनाज हैं, खासकर मैदा, उससे बनी हुई चीजें उसको अवॉइड करें। हम जितनी भी उससे बनी हुई चीजें, जैसे क्या, केक, पेस्ट्री, डोनट, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें जो प्रोसेस्ड फूड हैं उसको छोड़ें। जितने भी फ्राइड फूड्स हैं, मतलब जो तल के ही बन रहे, जैसे बर्गर हुआ, फ्रेंच फ्राई हुआ, उसको बंद करें। जो बहुत ज्यादा हाई फैट कंटेंट है जिनमें, या हाई शुगर कंटेंट है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इसको हम प्लीज बंद करें। और इसको हम रिप्लेस किस चीज से करें, चेंज किससे करें, होल ग्रेन से, मतलब जो भी मोटे अनाज हैं और जो पूरे अनाज हैं उससे इसको रिप्लेस करें। सिंगल ग्रेन, एक बार में एक ही अनाज का हम सेवन करें। जो सब्जी हमें पसंद है हम हर सब्जी खा सकते हैं, हम जो फल हमें पसंद है संयम में हम सारे फल खा सकते हैं। और हमको कोशिश करना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा ऑयल, बहुत ज्यादा सॉल्ट, बहुत ज्यादा फ्राइड, ये सारी चीजें छोड़। और आप अगर इसे छोड़ देंगे तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। डायबिटीज की जो सबसे खराब बात ये है कि वो मालूम चलने के बाद भी शरीर में कुछ बहुत परिवर्तन या चेंजेस नहीं आते हैं, तो आदमी ये मानने को तैयार नहीं रहता कि उसके साथ कुछ हो गया है। वो थोड़ा सा थक रहा है तो वो कहता, अरे यार ज्यादा काम कर लिए थक गए हैं। आपको थकान लग रही है, आप उसका बहाना बनाने लगते हैं। आपके शरीर में स्फूर्ति नहीं है, आप बोलते हैं हमने आज ज्यादा काम कर लिया, या आज मैं ज्यादा चल दिया हूं। आपको झटका कब लगता है? या तो उसकी वजह से आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, या आपकी कोई फोड़ा या फुंसी आपके शरीर में, या कोई कट लगा है या चोट लगी है वो ठीक नहीं हो रही हो, हील नहीं हो रही हो, या आपकी आंख पे चश्मा का नंबर बार बार बदल रहा हो, आपको पेशाब पे कंट्रोल छूट गया हो, आपको बाथरूम पे कंट्रोल छूट गया हो, आप एकदम परेशान होने लगे, तब आप फ्रोजन शोल्डर हो जाए, आपको पता चला अपना दांत निकलवाने गए, वहां डॉक्टर ने टेस्ट किया और मालूम चला अरे आपको तो डायबिटीज है, तब आपको झटका लगा कि अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो जो आपके शरीर में कोई जब बदलाव नहीं आ रहा होता है तो आप फिर से बेछूट खाने लगते हैं। तो प्लीज, ये एक शांति से अंदर चल रहा हुआ एक बीमारी है, इसको शांत ही रहने दें, अपने भोजन को कंट्रोल करके रखें। इवन भैया ये तक कहा जाता है अगर आप बीमार होंगे, वायरल इन्फेक्शन होगा, आप बहुत स्ट्रेस में होंगे, तब भी आपका शुगर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज करिए, संयम से भोजन करिए और आप एकदम ठीक रहेंगे।
0: एक अवधारणा जो डायबिटीज के बारे में अक्सर पूछी जाती है या कई लोग अपने मन में पाल के रखते हैं, डॉक्टर साहब जैसे आप ये कह रहे थे कि एक साइलेंट बीमारी है ये, एक पता नहीं चलता, यकायक पता चल गया कि कोई दांत के दर्द के लिए गया, वहां दांत निकालवाना था तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करने को बोला तो शुगर निकल आया, और इत्यादि अनेक चीजों में लोगों को ये चीजें पता चलती हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हमारे परिवार में तो किसी को डायबिटीज है नहीं, तो हमें भी आएगा नहीं, हमें होगा नहीं। वैसे भी हमारी उम्र तो अभी है, हम अभी जवान हैं, हम 30-40 साल के हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा, हमारे घर में भी किसी को डायबिटीज नहीं है और ना मुझे हो सकता है क्योंकि मैं जवान हूं, ये भी लोग कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए कि हमें क्या इन चीजों के बारे में सजग होने की जरूरत है।
1: ये एक ऐसी बीमारी है जो माँ के पेट में भी आपको मिल सकती है, जेस्टेशनल डायबिटीज उसे कहते हैं, और ये आपके जीवन के अंतिम पड़ाव में भी आपको मिल सकती है। और मैं सबसे कहता हूं इससे मिलना भी नहीं है, और अगर बाई चांस ये आपको मिल गई है तो भोजन में संयम करके इसको अपने एकदम कंट्रोल में रखना है। आपको इसको अपने कंट्रोल में रखना है, न कि इसके कंट्रोल में आप चले जाइए। और ये जो बीमारी है वो आपकी जिह्वा से ही आपको परेशान करती है, जितना आप उसको संभाल लेंगे उतना आप इससे बचे रहेंगे। एक एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहूंगा। मेरे चिकित्सालय में आज ही एक डॉक्टर आए हैं, उनको डायबिटीज हो गया है, ही इज ओनली 32, 32 साल के हैं मात्र, और ये मालूम चला कि वो अल्कोहल के सेवन की वजह से उनको डायबिटीज है, और उनके घर वाले बहुत परेशान हैं। वो एक मतलब 32 साल के यंग डायनेमिक और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, और घर वाले तो ये बोल रहे हैं कि इनको 6 महीने ये आदत पड़ी और जिसकी वजह से वो डाउन हिल चले गए, उनको डायबिटीज हो गया। ये किसी को भी हो सकती है, और आपको अपने पैंक्रियास को बचा के रखना है। मैंने बोला वायर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से आपका पैंक्रियास गड़बड़ हो सकता है, आपको हो सकती है, आप बेछूट खाए चले जा रहे हैं। आप देखिए ना, आप एक बड़ी सीधी बात समझिए कि आप सोचिए, चौकीदार है आपके पास कोई, आप उसको रात में ड्यूटी करने के लिए उठा के रखे हैं, वो रात में ड्यूटी कर रहा है, पर जब उसके सोने का समय आ गया तब भी आप उसको हर 15 मिनट पे उठा दे रहे हैं, वो कैसे काम करेगा? हम और आप ही हैं, हम लोग अगर 4 घंटा या 6 घंटा सोते हैं और हर 15 मिनट में कोई उठा रहा है हमको या 20 मिनट पे हिला रहा है तो हम कैसे सो पाएंगे? ये और आप ये समझिए, हिलाना या उठाने का मतलब है हम कुछ भी मुंह में भोजन डालते हैं, पैंक्रियास को उठ उसके लिए काम करना पड़ता है। और आप जितना ज्यादा मीठा, जितना ज्यादा रिफाइंड, जितना ज्यादा प्रोसेस खाएंगे उतना ज्यादा उसको इंसुलिन निकालना पड़ेगा। तो आपको ये कभी भी मिल सकती है, ये एकदम भेदभाव नहीं करती है, न पुरुष में, न महिला में, न अमीर में, न गरीब में, न उम्र में, न लिंग में, ये किसी चीज में कोई भेदभाव नहीं करती है, किसी को भी मिल सकता है। आपके माता पिता को नहीं है तो आपको इसके मिलने के चांसेस बहुत बहुत कम है। मैंने अपने अपने ही एक क्लिनिक में ही देखा कि माता पिता को नहीं है, बच्चे को हो गया, वो बड़े परेशान है क्यों हो गया, पर वो उनके खान पान, उनकी बहुत सारे अननोन कॉजेस भी हैं। तो अगर हम अपने भोजन को कंट्रोल कर लें तो हम इससे बच सकते हैं, और अगर हमें हो भी गई है डायबिटीज तब भी हम अपने भोजन को कंट्रोल कर लें तो हम इससे बचे रह सकते हैं। आप मेरी बात मान लीजिए, अगर आप 80-85 किलो के हैं और आपको डायबिटीज हो गई है, आप अपना 7 से 8 किलो वजन कम कर लेंगे, आप नॉर्मल हो जाएंगे, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा, आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: यानी ये बात स्पष्ट होती है कि अगर मैं बार बार खा रहा, बीच बीच में खा रहा हूँ, भले मैं छोटी मात्रा में खाऊं, अगर मैं सतत ये कार्य कर रहा हूँ तो मैं अपने पैनक्रियास को आराम करने का मौका ही नहीं दे रहा, और उसकी वजह से ये मुझे हाई रिस्क पर डालती है, डायबिटीज के मार्ग पर मुझे अग्रसर करती है। साथ ही साथ अगर मैं अपने जीवन शैली के बारे में जागरूक नहीं हूँ, अपने वजन के बारे में जागरूक नहीं हूँ, अगर हमारे घर में डायबिटीज की हिस्ट्री हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को ये चीज हो सकता है, ये बात समझ में आ रहा है, और इससे ये पता चलता है कि हम सबको जागरूक रहने की जरूरत है। एक और चीज मैं आखिर में पूछना चाहूंगा, वो ये है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो डायबिटीज के मरीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या उसे बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं होनी चाहिए?
1: नंबर 1 जो सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं वो है कोल्ड ड्रिंक। नंबर 2 मिठाई और आइसक्रीम। नंबर 3 मैदे से बनी हुई सारी प्रोसेस चीजें। और इन सब जो भी चीज आप देख रहे हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट कॉमन है, वो है केन शुगर। केन शुगर, कॉर्न सिरप शुगर और किसी भी तरह का स्वीटनर जो आप जो नेचुरल है वो आपके लिए जहर है, इसको छोड़ देना चाहिए। और ये सब छोड़ने के साथ साथ भोजन की क्वांटिटी भी कंट्रोल में खानी चाहिए। इतना आप कर लीजिए, आप इस समस्या से पूरा बाहर निकल आएंगे।
0: बहुत ही ज्ञानवर्धक और फायदेमंद बातचीत आज हमारी हुई है दोस्तों। डॉक्टर राहुल मोदी जी ने बड़ी स्पष्टता से हमें डायबिटीज से बचाव के लिए, अगर आप डायबिटीज के शिकार नहीं है तो कैसे उसके रास्ते पे शिकार बनना नहीं है, उसके लिए कौन सा मार्ग चुनना है ये भी बताया। साथ ही साथ अगर आप डायबिटीज के मरीज हो चुके हैं तो भी आप इससे बचकर बाहर कैसे निकल सकते हैं और क्या हमें करने की जरूरत है, ये चीज हमें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आज की बातचीत से हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, अपने परिवार में, स्वजनों का, मित्रों का, संबंधियों का, साथ में काम करने वाले सहकर्मियों का, सभी का ख्याल रख सकते हैं। सिर्फ भोजन पर ध्यान देना है, हम चीनी को, मैदा को, प्रोसेस्ड फूड को, अगर इन चीजों को रोक लें तो फिर हम अपने स्वास्थ्य की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आज जो चर्चा हुई है वो मेरे लिए तो फायदेमंद रही ही है, मगर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी श्रोता मित्रों के लिए ये जानकारी लाभप्रद होगी और आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगी। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हम सबके मन के अंदर जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर दिया, और हमें सहज स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करने के लिए, डायबिटीज से बचने के लिए मार्गदर्शन दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज हमने डायबिटीज और उससे संबंधित विषयों पर जानकारी हासिल की है। ये सिर्फ जानकारी जानकारी ना होकर हमारे जीवन की धारणा बने, हम एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ विश्व, एक स्वस्थ राष्ट्र को बना सकें, इसकी ओर हम सभी अग्रसर हों। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ஒரே ருக்கு ஒரே ருக்கு ஒரே ருக்கு ஒரே த்ரிதேவ் திரிமூர்த்தி ஏக் பைக் பே தீன் ஹே ஒரே தும் லோகோ ஷர்ம் நீ ஆதி ஒரு பைக் ஏக் ஒரு ஏக் சாத் தீன் சலே ஜா ரே ஹோ ஒரே தீன் லோகோ கா ஜானா அலவுட் நீ ஹே பைக் பே மாலூம் நீ தும்கோ ஒரே அப்னி நீ தோ இஸ் பைக் கி சோச்சோ பிச்சாரி தீன் கே போஜ் கி மாரி
1: சார் பஹத் ஜரூரி மேட்ச் ஹே சார் ஆஜ்
0: ஒரே தும்ஹாரே மேட்ச் கி தோ ஏக் பைக் பே தீன் ஜா ரே ஹோ ஒரு குச்ச ஹோ கயா தோ சீதே ஹமேஷா கே லியே க்ரீன் போல்ட் ஹோ ஜாஓகே ஒரே ஜிந்தகி கே ஸ்டம்ப் உக்கட் ஜாயேங்கே ஒரே யே ட்ராஃபிக் ஹே பாயி யஹாம் தோ கோய் ஃப்ரீ ஹிட் பி நீ மில்தி ठोको ताली ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि यह है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क
2: याद रखें एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं यह एक दंडनीय अपराध है सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी सुनते रहो मुस्कुराते रहो
3: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ये जो पूरा सफर हम तय कर रहे हैं जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हु एम आई, इस सवाल का जवाब हम तलाश पाएंगे या नहीं। आज हमने आपसे वादा किया था कि राजयोग जो ब्रह्मा कुमारीज का मेडिटेशन टेक्निक है उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो इस सफर पर हर बार की तरह हमें ले जाने के लिए हमारे साथ है सिस्टर शिवानी। ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका हार्दिक स्वागत।
4: ओम शांति।
3: ओम शांति। सिस्टर शिवानी, आपका वादा है हमसे, हमारे सभी दर्शकों से, कि राजयोग टेक्निक जो कि हर सेंटर में सिखाया जाता है, 7 दिन का कोर्स जो आप हमें बताते हैं, उसको इस सफर में हमारे साथ तय करेंगे। उस कोर्स के बारे में बात करते हैं। पहले एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये हु एम आई, यू नो, ये तलाश है क्यों? क्यों इतना सवाल ये आज के इस वक्त में तंग कर रहा है? मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में मैं बात बताऊंगी आपको कि मेरे साथ कैसे हुआ, लेकिन एक्चुअली क्या है, क्यों हु एम आई इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों मैं तलाश रही हूँ?
4: क्योंकि समवेयर एक तो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है इसके बारे में, यू नो, हमने देखा कि बहुत सारे फिलोसोफर्स, सेंट्स, ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हमने सुना कि हु एम आई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस पहेली का हल कर देते हैं कि मैं कौन हूँ, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। सो एवरीबडी इज़ ऑन दिस एक्सप्लोरेशन, यू नो, गेट द अंडरस्टैंडिंग हु एम आई। सो दे फील कि दे नीड टू अंडरस्टैंड हु एम आई, बट एट द ब्रह्मा कुमारीज वी फेल्ट दैट इट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग हु एम आई, बट इट इज़ एक्सपीरियंसिंग हु एम आई। आप कौन है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो शायद हम ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन उसका अनुभव करना, जब हम उसको अनुभव कर लेते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सच में ख़त्म हो जाती है। एंड प्रॉब्लम्स नॉट ओनली ऑन अ पर्सनल लेवल, हम देखेंगे आज के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो इस दुनिया में है, पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, वो

0: एवरीथिंग इट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दिस आंसर हु एम आई. जहां ये राइट आंसर मिला ये सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगे.
1: ओके वंडरफुल. हमने पहले भी बात कही थी कि अनुभव सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि अनुभव ही हमें विश्वास दिलाएगा. यू नो वो सच्चाई के दर्शन कराएगा. एक बात यहाँ मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो ये कि इतने सालों तक मैं अपने आप को जो मैं हूँ वो मानती रही, लेकिन सडनली कहा जाता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस. यू नो जब तक आपको मालूम ही नहीं है आप बहुत खुश हैं अपने आप में अपनी जिंदगी में. सडनली वन फाइन डे आई फेल्ट दैट व्हाई आई एम हियर. वो सवाल जब आपको आने लगता है, परेशान करने लगता है, तब आप हर चीज तलाशने लगते हैं. लेकिन तो ठीक है, हम मेडिटेशन में जाके और हम इस पूरे अनुभव को यू नो एहसास को लेके हम जान सकते हैं. वो लोगों का क्या जो हम कहते हैं कि इग्नोर ही है, जो इसी मुगालते में अभी भी जी रहे हैं. अब मैं कह सकती हूँ कि वो मुगालता था क्योंकि सडनली यू नो मैं अभी तक ये मानती थी, सब कुछ ऐसे ही जी रही थी कि जैसी मैं हूँ, जो हूँ, जो जिंदगी जी रही हूँ, मेरी अपनी खुशियां, मेरे अपने गम है, मेरी अपनी जिंदगी है और मैं कंट्रोल में हूँ अपनी लाइफ की, मैं कर सकती हूँ, मैं हूँ. सडनली जब क्वेश्चन आया वाई आई एम हेयर यू नो, तब मेरी प्रॉब्लम्स शुरू हुई. लेकिन अगर मैं क्या जब मैं पहले वाली थी वहीं से मेरी अवेकनिंग हो सकती थी, इतना लंबा सफर मैं ना तय करती.
0: एब्सोल्युटली. एक्चुअली जो आपने कहा ना इग्नोरेंस एंड अवेकनिंग, अज्ञानता की नींद में हम सोए हुए हैं और सडनली हमें जब अपना परिचय मिलता है तो हम उस नींद से जागृत अवस्था में आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं फिर जागरण हुआ, तीसरा नेत्र खुल गया, बुद्धि खुल गई, यू नो अपना ही परिचय मिल गया. कि जब हम अपने को ही नहीं जानते हैं, अपना ही परिचय नहीं जानते हैं और कोई बाह्य चीजों से हमने अपने आप को मान लिया है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो ये गलत परिचय जब तक हमारे पास है तो हम इग्नोरेंस में है. हम सब कुछ कर रहे हैं, सारे रोल्स निभा रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन वो कौन है जो ये कर रहा है उसी का परिचय नहीं है. जैसे कि गाड़ी चल रही है लेकिन ड्राइवर कौन है जो उस गाड़ी को चलाने वाला है उसी का परिचय नहीं है, तो शायद वो गाड़ी बहुत सही तरह से नहीं चलती है. तो अभी भी जैसे आपने कहा कि आपके जीवन में कभी खुशी कभी गम, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये जीवन का एक हिस्सा है कि हमेशा खुशी नहीं हो सकती है, कभी खुशी होगी, कभी गम, कभी दर्द, कभी तकलीफ, कभी गुस्सा. लेकिन ये जो साइंस है, कभी गुस्सा कभी दर्द, इनको हमने स्वीकार किया. एक्चुअली ये सिग्नल्स है. ये सिग्नल्स हैं कि कहीं ना कहीं हम सोए हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है और हम इससे अगर उठ जाते हैं तो ये सारे दर्द खत्म हो जाएंगे. सो लेट्स नॉट टेक दीज एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. लेट्स टेक दैट दीज आर सिग्नल्स विच आर कमिंग टू टेल मी दैट वेक अप. व्हाट इज मिसिंग? क्यों आपके जीवन में क्रोध आ रहा है? क्यों आपके जीवन में दुख और अशांति आ रही है जबकि ये आपको पसंद नहीं है? मन की तबीयत खराब हो रही है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है, इसको क्यों स्वीकार करते हैं? Why aren't we taking some test and saying where is the problem? Investigate, explore, where is the problem? क्योंकि I don't like this. अब जैसे शरीर के मामले में हम बहुत क्लियर हैं कि ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, ये बीमारी हो गई, ये बीमारी है, लेकिन इन बीमारियों को हमने स्वीकार कर लिया कि यही नेचुरल है. दैट्स व्हाट वी सेड, आवर बिलीफ सिस्टम. जब हम रियलाइज करें कि ये बीमारी है, वी विल वेक अप. वी नीड टू वेक अप टू दैट रियलिटी. एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ईगो.
1: यस,
0: ईगो से ही ये सारी प्रॉब्लम्स आई, एंगर, ग्रीड, जेलसी, सब कुछ, यू नो, ईर्ष्या, ये सारा कुछ ईगो से आया.
1: Can we come back to again ego? क्या हम एक बार फिर define करें? हम we have gone through it, लेकिन हर बार एक नए रूप में ego की बात भी सामने आती है कि क्या है exactly ego? Ego को कई बार अभी भी मान्यता या धारणाएं हैं कि ego is good. Ego helps you to grow, you know, and ego is something which actually makes you reach the dreams you have, या आपकी growth का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है. But क्या है ego?
0: Attachment to a wrong image of myself. Attachment to an image of what I am not. अपना सही परिचय न होने के कारण किसी और identity के साथ अपने आप को जोड़ लेना, ये अहंकार है. अपना सत्य परिचय न जानने के कारण किसी और स्वरूप को मैं समझ लेना, ये ego है. और जहां attachment होगी, जहां हमने किसी चीज को टाइटली पकड़ा है, अटैचमेंट कैन बी टू अ पर्सन, व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, पोजीशन के साथ, इवन एन आइडिया के साथ, मेरा आइडिया सही है, यू नो, अटैचमेंट टू दैट. तो जहां हमारी किसी चीज के साथ अटैचमेंट हो जाती है, हम अपने अस्तित्व को उसमें खो देते हैं. यू नो, आई गेट अटैच्ड, लेट्स से फॉर एग्जांपल, दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स, राइट. अगर ये जुड़ गए, अभी तो ये है, ये कवर है, ये फोन है, लेकिन अब हमें पता है कि ये फोन की आइडेंटिटी है. Once it gets attached to this thing, now
1: it becomes one.
0: तो इस फोन की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी,
1: खत्म हो गई.
0: अब वो खत्म हो गई है. Now it's another object. है ना? अब ये एक ऑब्जेक्ट था, अब सडनली ये एक और ऑब्जेक्ट बन गया. मतलब इसका अपना अस्तित्व खत्म हो गया. अब जैसे ही ये इस चीज के साथ जुड़ गया, ये इस चीज पर डिपेंडेंट हो गया, ठीक है. अगर ये चीज बेंट करती है तो ये भी बेंट करेगा. अगर ये यहां गिरती है तो ये भी गिरेगा. अगर मैं किसी के साथ अटैच हो जाऊं जो कि मेरा असली स्वरूप नहीं है, अगर उस चीज में परिवर्तन आता है, वो व्यक्ति अगर दुखी होता है, मैं भी दुखी होती हूँ. वो व्यक्ति अगर हंसता है तो मैं भी हंसती हूँ, क्योंकि मेरा अटैचमेंट है ना, मेरी अपना आइडेंटिटी नहीं है. तो व्हाटएवर दिस गोज थ्रू, I go through it automatically.
1: And wonderful. If that object, the other object is my, self-image, created image.
0: Yeah, it is a created image.
1: Then it becomes.
0: ये मेरी identity है, लेकिन मैं अपनी identity को भूल के किसी और चीज से attach हो जाऊँ और इसको फिर अपनी identity समझने लग जाऊँ और फिर जैसे जैसे ये shift होगा, मेरा shift होना natural हो जाएगा. This is ego. Attachment to a wrong image of myself. This is another image now. जहाँ attachment हो गई, आपने किसी चीज को साथ आप अटैच्ड है, तो कहीं ना कहीं अंदर एक
1: फियर
0: कि कहीं ये मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि आपको पकड़ के रखा हुआ आपने उसको. तो कहीं ना कहीं एक डर बना रहेगा कि कहीं ये मेरे से छूट ना जाए. तो सारी जीवन कैसे बीतेगी? लेट्स से कि हमें ये फोन मिला और किसी ने कहा इसको एकदम टाइटली पकड़ के रखो, ये गिरना नहीं चाहिए. पकड़ लिया, बहुत टाइट पकड़ा, नॉलेज है कि ये गिरेगा. ये नॉलेज है कि ये इम्पॉसिबल है कि ये कभी नहीं गिरेगा, ये मालूम है, समझ है. सी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन समझ एंड एक्सपीरियंस. समझ है कि ये गिरेगा, फिर भी टाइटली पकड़ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं. टाइट पकड़ा, लेट से इतना टाइट पकड़ के रखा कि 10 दिन तक ये नहीं गिरा. तो पहली बात, मेरे को बहुत एनर्जी लगी क्योंकि मैंने बहुत टाइटली पकड़ा, नेचुरल नहीं पकड़ के रखा, बिकॉज आई वॉज स्केर्ड. तो 10 दिन के बाद ये
1: गिर गया.
0: 10वें दिन कैसे फील होगा?
1: आई फील वेरी बैड.
0: वेरी बैड, राइट, क्योंकि मेरी चीज खो गई. मिली थी, पता था खोएगी, लेकिन फिर भी आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. तो जिस दिन वो गिर गई तो मुझे बहुत दुख होगा.
1: लेकिन मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी ना.
0: हाँ, लेकिन एक दिन तो गिरनी थी. 10 दिन नहीं, 20 दिन, 20 दिन नहीं, 40 दिन, एक दिन तो आपके हाथ से ये छूटेगा ही छूटेगा. तो 10वें दिन आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन 10 दिन कैसे बीते?
1: डर में, कुछ और सोच नहीं सकते ना, फिर आप कंटिन्यूस उसी प्रोसेस में रहते हैं.
0: क्योंकि 10 दिन आप इस डर में जी रहे कहीं ये गिर ना जाए. Now you see, this is happening with everything in my life. जीवन में हर चीज जो मुझे मिलती है, लोग, पोजीशन, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ मुझे यूज करने के लिए मिलता, इंजॉय करने के लिए मिलता है. लेट मी इंजॉय इट वाइल इट इज देयर विद मी. लेट मी इंजॉय दिस वाइल इट इज देयर विद मी, नेचुरल. लेकिन नहीं, पता है कि एक दिन जाएगा. हर एक चीज के लिए पता है कि एक दिन जाएगा. धन जा सकता है, लोग जाएंगे एक दिन, मालूम है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी पकड़ कर ऐसे रखते हैं जैसे कि कभी जाना ही नहीं चाहिए.
1: एक मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि देन देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, यू नो, जो बहुत पकड़ के रखते हैं एंड देयर लाइक टू केयरलेस. सो उन दोनों के बीच क्या बैलेंस नहीं होना चाहिए? थोड़ा
0: केयरलेस, हम आउटवर्डली केयरलेस हो सकते हैं लेकिन इंटरनली फिर भी अटैचमेंट है. सी, पकड़ के रखना मींस कि हमें ये चाहिए कि ये चीज खो ना जाए.
1: चाहिए ही चाहिए.
0: दैट डिजायर जो है कि ये हमेशा मेरे पास होने चाहिए. तो उससे क्या होता है कि हमारी सारी लाइफ ये फियर में बीत जाती है. कहीं मेरी जॉब को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरे पैसे को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार के किसी सदस्य को कुछ ना हो जाए. एंड द डीपेस्ट फियर
1: मुझे कुछ ना
0: हो, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए,
1: डेथ
0: लेवल ऑफ अटैचमेंट ना. क्योंकि सबसे ज्यादा अटैचमेंट किसके साथ है?
1: खुद के साथ. खुद कौन है एक्चुअली, दिस इज अगेन अ बिग क्वेश्चन.
0: लेकिन सबसे ज्यादा अटैचमेंट, तो जिस लेवल पर अटैचमेंट होगी उतना फियर होगा. तो सबसे ज्यादा फियर है कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, उसके बाद फियर है कहीं परिवार को कुछ ना हो जाए, उसके बाद फियर है कहीं पोजीशन को, वस्तु को कुछ ना हो जाए. तो हमारी सारी जीवन फियर
1: ना हो जाए,
0: जहाँ फियर है वहां टेंशन है, एंगर है, एंग्जाइटी है, एवरीथिंग इज देयर. तो सबसे डीपेस्ट फियर कहीं मुझे कुछ ना हो जाए. जैसे ही आप मैं कहते हैं, तो विच इज द फर्स्ट पिक्चर दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू?
1: आई एम अ बीइंग, यू नो, वुमन, आई एम अ वुमन.
0: तो किस चीज का चित्र बना?
1: एक शरीर का, एक बॉडी का,
0: है ना. इसका इमिजिएटली द पिक्चर विच यू सी इन द मिरर एवरी मॉर्निंग, जो शीशे में रोज सुबह दिखाई देता है, तो जैसे ही मैं कहते हैं वो पिक्चर सामने आता है, मतलब इस शरीर का पिक्चर. नाउ यू विल से कि आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आज खाना बनाते बनाते मेरा हाथ कट गया, आज वॉक करते करते मॉर्निंग मेरे पाँव में मोच आ गई, मेरा सर दर्द हो रहा है.
1: नहीं तो पर ये मेरा नहीं है क्या?
0: नहीं, ये मेरा है. एग्जैक्टली, ये मेरा है ना. लेकिन ये मेरा है, ये मैं नहीं है. आपने कहा मेरा सर दर्द, आप कहेंगे, आप कहेंगे मेरा हाथ कट गया, आप ये नहीं कहेंगे मैं हाथ आज कट गया.
1: No, no, of course not, because that's part of my body.
0: That's part of my body. See, my body. Even for the whole body, we are saying my body. मेरा शरीर. अभी दो मिनट पहले हमने कहा था आए जब कहते हैं तो कौन सा पिक्चर सामने आया?
1: The body.
0: So is it I the body?
1: Okay.
0: Or my body?
1: Yeah.
0: सबसे पहली identity crisis, मेरा शरीर है या मैं शरीर हूँ?
1: मैं शरीर नहीं हूँ.
0: मैं शरीर नहीं हूँ.
1: It's like मेरा शरीर है.
0: No, I don't know. You have to decide that.
1: No, but actually, if I look at it, it's like मेरा शरीर है, you know,
0: हम हर एक अंग के लिए कहते हैं ना, मेरा मेरा मेरा, मेरी आंखें, मेरे कान में दर्द हो रहा है, हर अंग के लिए मेरा मेरा. यहाँ तक कि जब पूरा शरीर दर्द हो रहा है हम कहेंगे आज मेरा पूरा शरीर, माय बॉडी इज एकिंग. नेवर एवर विल आई से आई द बॉडी इज पेनिंग टुडे. मैं शरीर आज बहुत दर्द हो रहा हूँ, मैं शरीर को बुखार हो गया. नहीं,
1: इट्स
0: द रियलाइजेशन. तो जब ये मेरा शरीर है तो इसका मतलब अब कोई और है जो कह रहा है कि ये शरीर मेरा है.
1: इसका मतलब मैं कौन हूँ?
0: हाँ. So that means we were living in all these wrong identities.
1: So it means this like body is also something out.
0: Yeah, absolutely. It's separate. ये मेरा है. जैसे ये ड्रेस मेरा है. We are very clear कि ये मैं नहीं हूँ. ये मैंने धारण किया है, ये मैंने पहना है. इसी तरह ये मैं नहीं हूँ, ये मैंने धारण किया है. सी, बट ये मैं सेपरेट हो गए. जस्ट लुक एट दिस, यू टेक योर हैंड आउट एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स आल्सो टू ट्राई दिस आउट, कि आप अपने हाथ को मूव कीजिए एंड व्हाइल यू आर डूइंग इट आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं ये हाथ हूँ? फ्लैश, ब्लड, बोन्स?
1: नो, आई एम नॉट.
0: और एम आई द पावर which knows how to use this hand? Or am I the power which chooses how to use this hand? एक हाथ है, इसी हाथ से आप किसी को मार भी सकते हैं, किसी को प्यार से थपथपा भी सकते हैं, किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हैं. ऑब्जेक्ट, मैं हाथ हूं या मैं वो शक्ति हूं जो डिसाइड करती हूँ कि इस हाथ से
1: क्या करना है? What to do with this?
0: Yeah.
1: Actually, okay.
0: Right? But there is that power who decides and gives the instruction to this hand कि अब क्या करना है. तो ये मैं नहीं हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जो decide करती है कि इस शरीर के द्वारा क्या कर्म करना है.
1: वो शक्ति और मैं अलग, और मैं, और मेरा शरीर.
0: हाँ,
1: मैं शक्ति और मेरा शरीर.
0: राइट, मैं शक्ति और ये मेरा शरीर. ये सारे जो कर्म इंद्रियां हैं, ये सब कुछ, ये खुद कुछ नहीं करती है, ये जड़ है, ये मैटर है. मैं चूज करती हूँ इसके थ्रू क्या करना है. सो सबसे पहली रियलाइजेशन जो चाहिए कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा कॉस्ट्यूम है, और मैं वो शक्ति हूँ जो इस कॉस्ट्यूम को यूज करती हूँ. एनर्जी, पावर.
1: किस फॉर्म में हूँ मैं? एनर्जी में.
0: एनर्जी, नो, पावर इज नीडेड. जैसे ट्यूबलाइट, हम कहते हैं ये ट्यूबलाइट है. अब ट्यूब एक कांच का टुकड़ा है, उसके अंदर कोई पावर नहीं है. जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो फ्लो करती है उसके थ्रू हमें लाइट मिलती है. राइट, हम उस इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते.
1: एक्चुअली वी आर लाइक रोबोट्स.
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वी दिस इज लाइक अ रोबोट. अब आप रोबोट को देखिए, एक मशीन है, एक रोबोट है. एक रोबोट को प्रोग्राम करने के लिए एक कंप्यूटर होता है. राइट, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टू रोबोट काम करता है. लेकिन कंप्यूटर भी अपने आप कुछ नहीं करता, कंप्यूटर को भी
1: ऑपरेट करना पड़ता.
0: सिमिलरली रोबोट, ये पूरा शरीर जैसे चाहे वैसे चलेगा, इसको कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर मेरा ब्रेन.
1: That's a physical aspect.
0: The brain, yeah, the brain. दिमाग.
1: हम पिक्चर देखते हैं,
0: yes,
1: you know, like, yes. Neurons and
0: everything. वो दिमाग है, उसके अंदर पावर है कि जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर फीड की जाएगी वो उसको प्रोसेस करेगा. मैसेज इस मशीन को मिलेगा, ये मशीन काम करना शुरू कर देगी. और मैं ऑपरेटर हूँ, मैं वो प्रोग्रामर हूँ. कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता. कंप्यूटर के पीछे भी इंस्ट्रक्शन फीड करने वाला प्रोग्रामर वो मैं हूँ.
1: तो वो कहाँ हूँ मैं अभी भी?
0: कंप्यूटर के पास. दैट विल सी वेयर आई सिट. बट फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड आई एम नॉट द मशीन, आई एम नॉट द कंप्यूटर, आई एम द प्रोग्रामर. दिस इज अ मशीन विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शन. ये जो हम कहते हैं ना कि आंखें कुछ भी देख रही है, मुंह कुछ भी बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता. जब हमें ये याद आ जाएगा कि इसको चलाने वाला मैं मास्टर हूँ, तो मैं वो शक्ति हूँ, मैं वो पावर हूँ, एनर्जी हूँ, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं. द वर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट. वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द रियलाइजेशन दैट मैं ये फिजिकल मैटर नहीं हूँ, बिकॉज मैटर है और एनर्जी है. अभी तक हम मैटर समझ के अपने आप को चल रहे हैं, तो जैसे ही इसको कुछ होता है तो हमें लगता है मुझे कुछ हो गया. राइट, मुझे नहीं होता, मेरे शरीर को चोट लगता है. इस वजह से उस टाइम के मेरे शरीर को चोट लगती है, मुझे चोट नहीं लगती है. लेकिन अभी तक हमने क्या किया था? हमने समझा यही मैं हूँ. सो व्हाट हैपेंस, दिस इज द कार एंड आई एम द ड्राइवर.
1: इज इट आल्सो पार्ट ऑफ ईगो ओनली?
0: व्हाट इज पार्ट ऑफ ईगो?
1: दैट टेकिंग मी माय बॉडी एज मी.
0: यस, दिस इज ईगो ना, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माय सेल्फ. सो व्हेन वी फॉरगेट कि मैं वो चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, उसके अलावा जो भी इमेज हम अपना बनाते हैं. इसलिए जब हमने आपसे कहा कि मैं कहते ही कौन सा इमेज सामने आता है, तो आपका इमेज आया. That's why the first ego starts here.
1: Okay, so we have negated all the things. So
0: we
1: have
0: negated everything and come to the source. Position, possession, objects, relation, body.
1: And even body. That's the most important.
0: Yes, sorry, yes, because strongest ego. यहाँ है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी कॉन्शियसनेस. यहाँ है ये मैं
1: भी, तो यही था ना.
0: इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा अटैचमेंट है. जो चीज जिस ऑर्डर में मिली थी, सबसे पहली चीज शरीर मिला ना,
1: क्योंकि सबसे बड़ा आई थिंक आइडेंटिफिकेशन यही था.
0: यही था क्योंकि सबसे पहला ये मिला. देखो आत्मा को सबसे पहली चीज शरीर मिलता है, फिर शरीर को नाम मिलता है. आपको पहले शरीर मिला, फिर आपके शरीर को नाम कनुप्रिया मिला, फिर आपको मम्मी पापा और एवरीथिंग. सो दैट ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट. तो राजयोगा में सबसे पहली रियलाइजेशन हमें मिलती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं पावर हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं ये जड़ शरीर नहीं हूँ. एंड जैसे ही समझ में आता है कि मैं एनर्जी हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो मृत्यु किसकी होगी?
1: बॉडी की. इवन ब्रेन, माइंड.
0: हाँ,
1: again mind is,
0: we'll see that separately.
1: Okay.
0: What is the mind? First important is to understand,
1: accept,
0: ke to understand that mrityu kiski hogi?
1: Body.
0: To meri mrityu
1: nahi ho sakti.
0: And hum sari jeevan kis cheez mein bita dete hain? Bhaye mein us cheez ke jo ki kabhi hone wala nahi hai. To isliye aaj din tak hum sunte aaye ki atma ajar amar avinashi hai. जो जल नहीं सकती, जो मर नहीं सकती और जिसका विनाश नहीं हो सकता. तो आत्मा जैसे ही हमें समझ में आता है कि इट्स एनर्जी, आई एम यूजिंग दिस बॉडी एंड नाउ इट बिकम्स के सारा दिन मैं अपनी कॉन्शियसनेस में, इस अवेयरनेस में अब चलती हूँ कि मैं एक शक्ति हूँ और ये शरीर मेरा
1: इंस्ट्रूमेंट
0: कॉस्ट्यूम है, ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है. जैसे एक गाड़ी है, मैं ड्राइवर हूँ। जैसे ये याद आ जाएगा कि मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर अपनी सीट पर बैठ जाएगा, अब वो जैसा चाहे उस तरह से गाड़ी को चला सकता है।
1: That's great. I can turn actually. I can really change.
0: That's when it has come to take the control back into my hands. You know, कई बार लोग कहते हैं जी मेरा हाथ उठ गया। अपने आप
1: नहीं
0: हो सकता। बट इट्स जस्ट दैट वो कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि इतनी फास्ट सब कुछ हो रहा है, उठाया कैसे? उन्होंने ही तो थॉट क्रिएट किया। कोई चीज हाथ में आती है उठाकर मार देते हैं।
1: लेकिन थॉट क्रिएट किसने किया?
0: हाँ, वो हम देखेंगे, वो हम करेंगे आगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन अभी के लिए, सबसे पहली चीज ये समझना कि ये शरीर नाशवान है, ये मैटर है, और इसीलिए ये पांच तत्वों में फिर से मिल जाएगा, और मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। एंटायर कॉन्शियसनेस चेंजेस। अभी तक था कि मैं एक शरीर हूँ जो बूढ़ा भी हो जाता है, जो बीमार भी हो जाता है, तो जैसे ही ये बूढ़ा या बीमार हो जाता मैं थोड़ा
1: परेशान हो जाता,
0: क्योंकि मुझे लगता है मैं ऐसे हो रही हूँ, मैं चेंज हो रही हूँ। अब समझ में आता है कि मैं एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, मैं इन आंखों को आंखों के द्वारा देखने वाली शक्ति हूँ। आई एम दैट ऑपरेटर बिहाइंड।
1: आई थिंक वो सारी बातें जो हम सुनते आ रहे हैं,
0: वो सारी फिट इन हो जाती है
1: और हम शाश्वत है, ये अब सब क्लियर होता जाता है एक्चुअली।
0: आप देखो जब किसी डेड बॉडी को लेकर जाते हैं ना, तो कहते हैं अर्थी जा रही है। जिसका रथी चला गया, चैरियट को चलाने वाला जो चैरियटर था वो चला गया, तो अर्थी जा रही है। तो इसीलिए उसको कहते हैं अर्थी, क्योंकि ज्ञान है, लेकिन क्या हुआ, वो सिर्फ ज्ञान तक सीमित रह गया।
1: वो प्रैक्टिकल, वही एक्सपीरियंस, अनुभव। सिस्टर शिवानी, यहाँ क्योंकि वक्त है कि हम इजाजत लें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इंटेलेक्चुअली आई थिंक हमारे सभी दर्शक, हम सब समझ गए, क्योंकि हम सुनते भी आ रहे थे कहीं अंदर ये बात, खासकर भारतीयों में अगर हम देखें तो ये हम जीते आ रहे होते हैं, सुनते आ रहे होते हैं, तो ये एक रियलाइजेशन। और आज जब जिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को आपने लेकर बताया, जो लॉजिक्स दे दे के हमारे सामने बात आई है, बहुत क्लियर समझ में आ रही है। अगेन वो अनुभव के बिना, यू नो, बिना एक्सपीरियंस के, इंटेलेक्चुअली वी कैन एक्सेप्ट, वी कैन अंडरस्टैंड, बट उसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतार पाना और फिर इस शक्ति का जो रियल मैं हूँ उसका करना क्या है, उसके बारे में हम आगे जरूर जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ये एक पहला जो पर्दा था वो हटाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हु एम आई, ये सवाल जो कई दिनों से, कई सालों से हमारे दिमाग में चल रहा है, कौंधता है बार बार, उसका एक रास्ता, एक रोशनी की किरण नजर आ रही है कि मैं वो एनर्जी हूँ, मैं ये शरीर, मैं सिर्फ मेरा नाम, मेरी पोजीशन, मेरी जो जो मैं बातें करती आ रही हूँ अभी तक, वो नहीं है। वो सारी गलत धारणाएं एक तरफ रख के आज खुले मन से हम इस बात को स्वीकारने की कोशिश करते हैं, स्वीकारते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। आगे उस आत्मा को एक्सपीरियंस कैसे करूँगी, अगली कड़ी में जानने की कोशिश करेंगे। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। आप फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999 3444 6 9 8 7 3 6 6 5 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर अगली कड़ी में ये अनुभव करने की कोशिश करेंगे कि हु एम आई का जो आज आंसर हमने तलाशा है कि मैं एक आत्मा हूँ, वो कैसे अनुभव कर सकती हूँ। अगली कड़ी तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: सपोज एक स्टूडेंट है जिसका एक महीने के बाद एग्जाम्स हैं, वो आज बैठकर ना प्रिपरेशन करता है, ही इज प्लानिंग ऑल हिज लेसंस। जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ, तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए, ओ गॉड लेट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम द 10th चैप्टर, टक फर्स्ट प्रोग्रामिंग। और ये एक महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल। एक महीने के बाद जैसे ही विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, as soon as he gets a question paper, he is least bit bothered. How many questions have come from 9 chapters? He is trying to look out whether there is a question from the 10th chapter or not. और बस उनके आंखों के सामने ये question from the 10th chapter दिखाई देता है। एक महीने से क्या प्रोग्रामिंग कर रहा है? If there is any question from the 10th chapter, I'll be in trouble, I'll be in trouble, I'll be in trouble. Automatically he is in trouble. और इतना stressed up हो जाता है, सारा पसीने पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने ब्लैकआउट हो जाता है, और जो 9 चैप्टर में से पढ़ा वो धीरे धीरे इवॉपरेट होकर उड़ने लगता है। Why? Because it's the way we have programmed ourselves. Thoughts are the software. एक और उदाहरण देता हूं। जिस कॉलेज में पढ़ाता था तो वहां पे जो स्टूडेंट्स है, राइट फ्रॉम 8:30 to 3:30, यू नो, हम प्रोफेसर्स लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत, they're so damn tired. किसी तरह वो अपना बैग बैगेज उठाता है, somehow he comes out, और वो अपना घर देखता है, 100 meters away. 100 meters seems to him as 100 kilometers, because he's so tired. और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है, क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? No. He will run at the fastest of fast speed. If not the 100 meters world record, lekin 100 meters Indian record to usko todna hi tha. What I'm trying to communicate is, aisa nahi hai ki uske paas energy nahi tha, energy tha, but he kept on programming. I'm tired, I'm tired, I'm tired. Automatically the body manifested itself in the same way. Jaise hi usne us kutte ko dekha to kya kya, ek switch off kiya, dusra switch on kiya, he had energy and he could run at the fastest of fast speed. जैसे ही घर में पहुंचा, द फर्स्ट थिंग दैट इट डज इट, स्विच ऑन द टेलीविजन। राइट देयर फ्रॉम 7 o'clock टू लेट 10 o'clock, ही इज देयर इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। 10 बजे वो रियलाइज करता है, ओ माय गॉड, टुमारो मुझे इतने सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और 10 बजे वो लिखना आरंभ करता है, सोते सोते 12 बज जाते हैं, 6 बजे का अलार्म रखता है, और उसका मन में यही विचार आता कि मैं कैसे उठ पाऊंगा। और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता, 10 मिनट सोता हूं, और 10 मिनट का कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। एवरी डे ही इज देयर इन द कैंपस लेट एंड ही हैज टू हियर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द प्रोफेसर्स। एक महीने के बाद द क्रेजी प्रोफेसर, द सेम प्रोफेसर स्वामीनाथन, एंटर्स द क्लास एंड सेज टू द स्टूडेंट, हे स्टूडेंट्स, लिसन टू माई अनाउंसमेंट वेरी केयरफुली, टुमारो वी आर ऑल गोइंग टू अ ट्रिप टू खंडाला, प्लीज मेक इट श्योर दैट टुमारो यू आर रीचिंग द कैंपस शार्प 7 AM. As usual, television till 10 o'clock, he's there in front of television. Suddenly at 10 o'clock, he realizes, my God, tomorrow trip to Khandala. Mujhe bahut practice karni hogi, kya kya karna hoga. Aur 10 baje wo practice karna aaram karta hai. Har din wo 12 baje sota hai, lekin us din wo 1 baje so raha hai. He has to reach the campus 7 a.m. Every day he keeps the alarm at 6 o'clock. That day he keeps the alarm at 4 o'clock. Hardly 3 hours of sleep. Lekin 4 बजे का अलार्म रखता है, लेकिन 3 बजे भी उठेगा, 3:15 बजे भी उठेगा, 3:30 बजे भी उठेगा। एंड बिफोर द अलार्म कैन रिंग, दिस जेंटलमैन इज सो फ्रेश। इट्स अ वे वी प्रोग्राम आवरसेल्फ्स। अ सारा दिन ही इज देयर इन खंडाला एंजॉयिंग हिमसेल्फ, प्लेइंग इन द घाट्स, एंजॉयिंग विद हिज फ्रेंड्स। ही हैड हार्डली हैड 3 to 3.5 आवर्स ऑफ स्लीप, बट नो फॉर्म ऑफ टायर्डनेस। इट इज द वे वी प्रोग्राम आवरसेल्फ्स। और ऐसा नहीं है कि हम छोटे या स्टूडेंट्स ही प्रोग्राम करते हैं, हम बड़े भी बहुत अक्सर करके प्रोग्रामिंग कर देते हैं, सेल्फ प्रोग्रामिंग। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग दैट वी डू।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आ गए हम, भूल जाओ गम। तो आइए बात करते हैं 2 सितंबर की बातें। आज 2026 आज का तारीख हो गया और भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रीय शके 1948 11 अगस्त 17 भाद्रपद बुधवार आज है। विक्रम संवत 2083 भाद्रपद कृष्ण पक्ष पष्टी बुधवार भरनी आज है। और इस्लामी हिजरी 1448 19 रबी उल अव्वल बुध भूतेन आज है। इसके साथ ही आज विशेष जो है विश्व नारियल दिवस भी है, जिसके बारे में हम बातें करेंगे। नारियल हमारा एक बहुत ही सुंदर फल है जिसको पूरे विश्व में याद किया जाता है शुभ कार्य के लिए, और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं और हेल्दी वेल्दी और हैप्पी देने वाला ये नारियल फल है। तो आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और आज के इस खूबसूरत दिन को यादगार बनाएंगे आप सभी के साथ मिलकर। तो आइए बुधवार के इस खूबसूरत दिन को बहुत ही सुंदर बनाते हैं और गणेश जी का एक सुंदर भजन से शुरू करते हैं, दुख हरता सुख करता। और अभी जो है इसी महीने शायद गणपति का भी उत्सव आने वाला है, तो इसकी भी तैयारियां जो है जोर शोरों से चल रहा है सब जगह। तो आशा करूंगा कि आप भी अगर गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आप भी शायद गणेश फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होंगे। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार। नमस्कार
0: हिलाल जी, नमस्ते, बोलिए कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ, प्रोग्राम को सुनकर के आनंद और मस्ती लुटा रहा हूँ।
0: बढ़िया, बहुत सुंदर।
1: क्या बोला है आपके साथ में रहकर के हमारे को आपसे मिलकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें सुननी है, सुनते रहेंगे और हमेशा रहेंगे आपके साथ में। तो मेरा एक गाना है सर, भक्त पुकारे सुन ले पुकार मेरी प्रभु, भक्त पुकारे सुन ले प्रभु पुकार हमारी। ये है भजन सर, ये हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो ये थे गुड़ीलाल जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। तो आइए विश्व नारियल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आप सभी को ले चलते हैं गणपति की आरती के लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, गणपति का श्री गणेश आरती आपने कर लिया है, दिन की अच्छी शुरुआत हो गई है और अगर आप अभी तक सो रहे हैं तो जाग जाइए क्योंकि सुबह जागते हैं तो अच्छा भाग्य बनता है, सुबह देरी करते हैं तो भाग्य भी देरी से मिलता है, इसलिए सुबह जल्दी उठने का आदत बनाइएगा। 2 सितंबर 2026 आज का तारीख है और चलिए बात करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप भी आज के इस खूबसूरत दिन को यादगार बना सकते हैं और विश्व नारियल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा हर साल 2 सितंबर को ये मनाया जाता है, नारियल दिवस के दिन नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं। नारियल एक ऐसा फल है जिसके प्रत्येक भाग का हम तरह तरह से उपयोग करते हैं। नारियल दिवस नारियल की महत्वता को रेखांकित करता है। ये मिल बैठकर ये पता लगाने का दिवस है कि किस प्रकार से हम इसे और उपयोग में ला सकते हैं। आजकल हमारा देश पॉलीथीन के बाहर कहर से गुजर रहा है और जो सड़ता नहीं है और नालों में, रेल पटरियों में तथा सड़कों के किनारे को प्रदूषित कर देता है। पॉलीथीन को हटाकर हम नारियल की जटा से बने थैलों का उपयोग कर सकते हैं। नारियल हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है तो इसीलिए नारियल को सभी तरह से, माना जैसे ही नारियल आना शुरू हो जाते हैं, नारियल का हर एक पार्ट जो है वो हम सब के लिए उपयोगी बन जाता है। उसका कोई भी ऐसा पार्ट हमारे लिए मुश्किल नहीं करता, वो हर चीज़ जो है हम उपयोग में लाते हैं और उसका उपयोग करते भी हैं। तो आइए, नारियल दिवस की बहुत से शुभकामनाओं के साथ आइए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको ले चलता हूँ और ये हमारे मित्र गुड़ीलाल जी भी याद कर रहे थे इस गीत को, तो चलिए कोशिश करते हैं कि भक्त पुकारे माई आपके लिए अभी ये प्यारा गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 8:34 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ। चलिए नारियल दिवस के बारे में बात करते हैं। नारियल का उपयोग कैसे हम करते हैं। नारियल की खेती हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है। देश के 4 दक्षिणी प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में नारियल की खेती की जाती है। देश का 90% तक नारियल यहीं से प्राप्त हो जाता है। ये नमकीन मिट्टी में समुद्र के किनारे उगाया जाता है और ये नारियल पानी पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। गर्मी के मौसम में नारियल पानी पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। जब नारियल पकता है तो इसमें अंदर से सफ़ेद नारियल का फल प्राप्त होता है। ये पूजा में काम आता है। सफ़ेद नारियल हम कच्चा भी खाते हैं, मिठाई और कई पकवान भी बनाए जाते इस्तेमाल करते हैं। नारियल के रेशों में गद्दे, थैले तथा और भी कई प्रकार के उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। नारियल को विभिन्न प्रकार से उपयोग कर हम विभिन्न वस्तुएं बनाते हैं और देश के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में इनका व्यापार भी करते हैं। तो आइए नारियल से बनी हुई वस्तुओं के बारे में अगर जानें तो ऐसा बताया जाता है नारियल से बनी वस्तुओं का निर्यात से हमारे देश को लगभग 470 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय आमदनी होती है। नारियल का उपयोग धार्मिक कर्मकांडों में भी किया जाता है और भारत में इसलिए ये पवित्र माना गया है। तो आइए इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन अभी आपको ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। और आप सुनाए हैं रेडियो माधवन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो एक और खूबसूरत सा भजन आपको कबीर दा का सुनाता हूँ। ना मंदिर में और ना मस्जिद में, राम सब श्वासों के श्वास में। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत भजन को अभी।

सभी कुछ करके साहेब कबीर ने देखा, तीर्थ सबन में पानी है, सभी तीर्थों में पानी है, तीर्थ सबन में पानी है, होई कुछ नहीं नहाए देखा, प्रतिमा तो सकल जड़ है, बोले नहीं बोलाए देखा, कुरान पुराण सब वाद विवाद है, ये घट का पर्दा खोल देखा, कहे कबीर अनुभव की बात है, एक नाम के बिना सब खोज देखा। कबीर साहब अनुभव करने की बात कहते हैं, पंडित केरी पोथियां ज्योति तर का ज्ञान, और को सगुन बताव ही आप ही फंद के माही। इसीलिए साहेब कबीर प्रेम की बात करते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। आप सब पंडित हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं ना, आप पंडित हैं। आप किसी पर दया करते हैं, आप पंडित हैं। जाति पाति तो हमने बना दी, आइए बजा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं नारियल के बारे में। बातें हो रही थी, विश्व नारियल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8:44 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। नारियल से जुड़ी हुई आप भी अपनी कहानी ज़रूर बता सकते हैं। हाल ही में अगर आपने किसी उद्घाटन या पूजा स्थल पर जाना हुआ हो, नारियल तोड़ना हुआ हो, तो थोड़ा सा वो प्रसंग ज़रूर बताइए। हाल ही में हम भी गए थे मुंबई, जहां पर विशेष रूप से सेंटर का रीओपनिंग हुआ था। बड़ी प्यारी जो है वहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्था अच्छी बनी थी और 3-4 दीदियां आई थी, तो 3-4 दीदियों ने जो है नारियल फोड़ कर उसका जो है ओपनिंग सेरेमनी में उसका शुरू वहां से हुआ और बड़े अच्छी तरह से जो है वहां पर नारियल तोड़े गए और जितने भी भाई बहनें थे बड़ी खुश हो रहे थे। तो वो एक प्रसंग ऐसा होता है जहां पर आपको जो है श्रीफल हाथ में मिलता है और आप उसे फोड़ देते हैं तो लोगों की तालियाँ बजती हैं। और दूसरा, एक आप पूजा के स्थल पर जाते हैं जहाँ पर मंदिर में आप नारियल और फूल फल और सब चीज़ें जो है एक कटोरी में टोकरी में होती हैं और वो पूजा स्थल पे जाते हैं, मंदिर के पास पुजारी को देते हैं और पुजारी हार फूल वगैरह सब चढ़ाकर नारियल तोड़कर आधा नारियल और वो टोकरी में कुछ सामग्री वापस आपको देते हैं। तो उससे भी जैसे ही आप नारियल फोड़ने के बाद वो कटोरी वापस आपको मिलता है तो बड़ा खुशी और प्रसन्नता महसूस होती है। तो आप बताइए, पिछली बार हम गए थे 2 महीने पहले अंबाजी में, तब हमें इस तरह की खुशी हुई थी। हेलो जी, नमस्कार।
1: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सुरेश जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे, बिल्कुल। अभी नारियल की बात हो रही है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो नारियल की बात करें तो सर, नारियल एक ऐसा फल है कि इसमें खाना मिल जाता है, पीना मिल जाता है और उसमें वो जलाने के लिए भी काम आता है। तो ये सभी प्रकार के जो हमारे अनुरूप है, क्योंकि नारियल से तो कई सारी चीजें भी बनती है और जो सिर पर डालने का तेल बनता है और कई सारे चद्दर में भी काम आते हैं, जो पैर को लुसने के लिए भी काम आता है, उसका जो छेत्रा होता है वही, और खाने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी स्वादिष्ट रसोई भी बनती है, स्वादिष्ट मिठाई भी बनती है। बहुत सारी जानकारी
0: जी।
1: सर हम भी एक बार कृष्णागिरी गए थे तो वहाँ भी हमने कई सारे नारियल के पेड़ देखे थे, तो तमिलनाडु में, और इतने सारे लोग उसको ठेला भर भर के ले जाते थे वो नारियल तोड़ के, क्योंकि वो तो पेड़ बहुत लंबा आता है तो इसके लिए वो उसको सुविधा करते हैं, वो ऊपर जाने की रस्सी से ऊपर जाते हैं और उसको नारियल को तोड़ के नीचे आते हैं। तो कई सारे हमने ऐसे देखे थे वहाँ लोग जो नारियल को तोड़ने के लिए जाते थे ऊपर पेड़ के ऊपर। बहुत अच्छी बात है सर, आज के दिन की बहुत शुभकामनाएं हमारे यहाँ। आज क्या है सर, आज के दिन जो महिला है ना वो रसोई बनाया करेगी आज के दिन।
0: जी जी।
1: और कल महिलाओं को बिल्कुल छुट्टी, कुछ नहीं करना है, खाना पीना कुछ नहीं बनाना है, आज बना देंगे कल ठंडा खाना है, आज कल सातम है, तो कल महिलाओं के लिए बिल्कुल छुट्टी है, रसोई में कुछ नहीं बनाना है खाने पीने के लिए। तो आप एक साल में एक बार वो दिन आता है तो महिलाओं को छुट्टी मिल जाती है, ये भी अच्छी बात है। आज बनाएंगे, खाएंगे पूरे दिन। और परसों है कृष्ण भगवान का जन्म दिन है, आठम है कृष्ण भगवान का।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ झांकियों की तैयारी हो गई है, आप भी आएंगे तो देख सकते हैं झांकियां।
1: हमारे यहाँ भी मेले की तैयारी, हमारे गांव में भी बड़ा मेला होता है कृष्ण भगवान के जो दिन।
0: अच्छा,
1: और मेला होता है बड़ा, कल भी मेला था नागपंचम का जो मेला था हमारे गांव में, और परसों भी मेला है आठम के दिन। तो अच्छा रहता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, छोटे छोटे खिलौने देखते हैं, जाते हैं बच्चे को लेके, बड़े भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि मेला तो किसको अच्छा नहीं लगता है, चाहे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक को भी अच्छा लगता है सबको।
0: चलो,
1: गाना भी आपने सुना दिया सर, सभी हमारे मित्रों को आपको आज के दिन की शुभकामनाएं। और वो गाना भी जरूर सुना देना कि फूलों से बजा, फूलों से सजाए दरबार गजानन जी आ जाना। ठीक है सर?
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सुरेश भाई, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, और सुरेश जी ने अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ शेयर किया। आप भी कुछ बातें अगर आप सुनाना चाहें, बताना चाहें नारियल से जुड़ा हुआ तो ज़रूर सुना सकते हैं। तो आइए गजानन जी का भजन सुनेंगे, और आप सभी को फिर से एक बार नारियल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ करते हैं। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। आज बजकर 58 मिनट होने वाले हैं और 2 सितंबर 2026 आज का तारीख है। नारियल दिवस के बारे में बातें की। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है, कोकस न्यूसीफेरा वैज्ञानिक नाम, और ये पाम फैमिली से संबंध रखता है। दुनिया के मुख्य नारियल उत्पादक देश फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, किरीबाटी, मलेशिया, मार्शल आइलैंड, पोवा, न्यू गिनिया, फिलीपींस, समोआ, सोलोमन आइलैंड, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंग, वनोतु, वियतनाम, जैमका और केन्या है, जिनमें सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, ब्राज़ील और श्रीलंका में हो रहा है। विश्व नारियल दिवस मनाने का उद्देश्य नारियल को उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने को प्रोत्साहित करना और इसके उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना है। इससे उद्योग और नारियल उत्पादन किसानों को फायदा होगा। तो ये सारा जो मुहिम है, ये अभियान है, खास किसानों को उनके इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों को समृद्ध देने के लिए और पूरे देश में ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग मिले, इसके लिए भी नारियल का ये दिन लोगों को जागरूकता करने का, किसानों को प्रमोट करने का दिन है। तो चलिए, आप समझ गए होंगे कि क्यों इसके ऊपर काम किया जा रहा है, क्यों 2 सितंबर नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए, वक्त हो गया है समाचारों का, सीधे आपको ले चलता हूँ मैं दिल्ली और वहाँ से सुनेंगे अभी समाचार। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी के भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों के पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
2: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
2: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है, इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, जीरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फोरेंसिक दल ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
7: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
8: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी गए हुए हैं।
7: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उप कप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15-वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र, एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्योहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है, हिंदुस्तान में है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। और आज साधना जी का भी जन्मदिन है, अभिनेत्री, एक विशेष अभिनेत्री, भारतीय सिनेमा की हिंदी फिल्म अबाना से इन्होंने अपने फिल्मी सफ़र का शुरुआत किया और साधना ने हिंदी फिल्मों से ही शोहरत पाई और जो मुकाम हासिल किया वो किसी से छिपा भी नहीं है। साधना का पूरा नाम साधना शिवदासानी, बाद में नैयर था, और अपने माता पिता की एकमात्र संतान होने के नाते अपने बालों के स्टाइल के लिए भी वो काफ़ी जानी जाती थी। उनके बालों का जो कट है उस स्टाइल को साधना कट के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ले चलते हैं साधना जी की जीवन कहानी से, आपको जोड़ते हैं अभी।

बचपन से ही इस लड़की को एक्टिंग का शौक था। माथा जरा चौड़ा था तो ऐसा स्टाइल बनाया कि आगे जाकर इस लड़की के नाम से ही वो स्टाइल मशहूर हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साधना कटवाली, साधना जी की। साधना जी का जन्म 2 सितंबर सन 1941 में हुआ। इनके पिता ने इनका नाम साधना रखा अपनी पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर, जो कि एक बेहतरीन डांसर भी थी। अभी नन्ही साधना बड़ी ही हो रही थी कि हिंदुस्तान ने बंटवारा देखा और उसके बाद ये कराची से मुंबई आ गईं। क्योंकि साधना जी बचपन से ही एक्टिंग करना चाहती थी तो इनके पिता ने फिल्म इंडस्ट्री में जरा मेहनत की और 1955 की फिल्म श्री 420 में ये नजर आई, गाना इचक दाना बीचक दाना में बतौर कोरस गर्ल। हालांकि ये रोल इतना छोटा था कि किसी की नजर साधना जी पे ज्यादा पड़ी नहीं। मात्र 15 साल की उम्र में इन्होंने कॉलेज के ड्रामास में भाग लेना शुरू किया। इनकी अभिनय क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि एक प्रोड्यूसर की नजर इन पे पड़ी और इन्हें 1 रुपए का टोकन अमाउंट दिया गया और एक सिंधी फिल्म अबाना के लिए साइन किया गया। अब यहाँ पर किस्मत ने एक अलग बाजी खेली। अबाना फिल्म की पब्लिसिटी के दौरान इनकी फोटो

कर दिया। राज खोसला साहब के साथ तो इनकी जोड़ी खूब जमी। फिल्म वो कौन थी को कौन भूल सकता है, उसके सारे गाने मकबूल हुए। मदन मोहन साहब का संगीत, लता जी की आवाज, राजा मेहदी अली खान साहब के बोल और साधना जी का अभिनय।

0: यह किस्सा भी मशहूर रहा कि जब फिल्म मेरे महबूब इन्हें ऑफर की गई तब इन्होंने इनकार कर दिया और उस जमाने के मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से इन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि मैं फिल्म मेरे महबूब क्यों साइन करूं। ऋषिदा ने कहा कि इस फिल्म का हीरो कौन है, बताया गया राजेंद्र कुमार। और तब ऋषिकेश मुखर्जी ने यह हिदायत दी कि साधना तुम इस फिल्म को जरूर साइन करो क्योंकि राजेंद्र कुमार हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट ही चुनता है और ये फिल्म भी बड़ी कामयाब होगी। ठीक वैसा ही हुआ। इन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में भी कमाल काम किया था पर फिर भी कोई अवार्ड इनके हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच इन्हें थायराइड की प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ये अमेरिका गईं अपना इलाज करवाने। दुनिया को लगा कि अब साधना कभी लौट कर नहीं आएगी और फिल्म इंडस्ट्री को इसने टाटा बाय बाय कह दिया है। लेकिन ये वापस आई और वापस आकर इन्होंने इंतकाम लिया, बल्कि फिल्म इंतकाम हमारे सामने रखी। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके साथ ही आई फिल्म एक फूल दो माली और गीता मेरा नाम। इन दोनों ही फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब बिजनेस किया और उसके बाद साधना जी धीरे धीरे फिल्मों से दूर हो गईं। इनका यह मानना था कि मैं सिर्फ बतौर हीरोइन ही काम करूंगी, किसी भी हालात में मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट बनके नजर नहीं आऊंगी।
1: जिसने मेरी जान बचाई अगर वो चाहता तो हमारे रिवाज के मुताबिक उसी दिन मेरा हाथ शादी के लिए मांग सकता था, मगर वो एक बहादुर और शरीफ इंसान है जिसने हमारे रिवाज का फायदा उठाना अपनी शान और शराफत के खिलाफ समझा।
0: ये किस्सा भी मशहूर है कि साधना जी को साधना कट कैसे मिला। बात दरअसल यूं रही कि इनका माथा जरा चौड़ा था और फिल्म के डायरेक्टर आर के नैयर को लगा कि अगर माथे पे थोड़ी जुल्फें बिखेर दी जाएं तो चेहरा और भी आकर्षक लगेगा। इसलिए अपनी पसंदीदा अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न के हेयर स्टाइल से प्रेरित होकर आर के नैयर ने साधना जी को वो फ्रिंज कट दिया जिसे आगे जाकर साधना कट के नाम से मकबूलियत हासिल हुई। स्कूल और कॉलेज में लड़कियां अक्सर साधना कट में ही नजर आती थीं। हर हीरो के साथ इनकी जोड़ी खूब हिट रही, चाहे वो शम्मी कपूर रहे कि संजय खान, देव आनंद रहे कि राजेंद्र कुमार या फिर सुनील दत्त।
1: नहीं रखोगे?
2: नहीं।
1: जानते हो मैं यहाँ की रानी हूँ, मैं तुम्हें हुक्म भी दे सकती हूँ।
2: मैं भी राजकुमार दिल की सल्तनत का, किसी का हुक्म मानने का आदि नहीं।
0: गौर करने वाली बात यह है कि एक्ट्रेस बबीता इनके रिश्ते में लगती हैं। करीना कपूर और करिश्मा कपूर भी इनके रिश्तेदार ही हैं और इनके निजी जीवन की तरफ थोड़ा सा और करें तो पता चलता है इनका विवाह हुआ लव इन शिमला के डायरेक्टर आर के नैयर के साथ। हालांकि इनके कोई बच्चे नहीं हुए पर यह शादी अंत तक चली जब तक नैयर साहब जीवित रहे। रिटायरमेंट के बाद साधना जी फिल्मों में नहीं आई, हालांकि इनकी इच्छा थी बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये फिल्मों से जुड़ी रहें। ये बात भी गौर करने लायक है कि इन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया पर सन 2002 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। यकीनन साधना जी का अभिनय, इनकी मुस्कुराहट, इनकी जज्बाती सीन्स, इनका डांस, सब कुछ अद्वितीय रहा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये कोर्ट केसेस से जुड़ी रहीं, बहुत बीमार हो गई थीं और इन्हें ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। बाद में पता चला साधना जी कैंसर से पीड़ित थीं। 25 दिसंबर सन 2015 वो दिन बना जब मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में साधना जी ने दम तोड़ दिया। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में साधना जी जैसी ना कोई थी और ना ही कोई होगी।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। साधना जी के बारे में आपने सुना, साधना जी की जीवन कहानी को आपने सुना। तो चलिए, साधना जी के पिताजी का नाम सेवाराम और माता का नाम लाली देवी था और माता पिता के एकमात्र संतान होने के कारण साधना जी का बचपन से ही बड़े प्यार के साथ जो है उनका पालन पोषण हुआ और 1947 में भारत के बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार कराची छोड़कर मुंबई आ गया और उस समय साधना की आयु मात्र 6 साल की थी। साधना का नाम उनके पिता के अपने समय की पसंदीदा अभिनेत्री साधना भोस के नाम पर रखा था। साधना ने 8 वर्ष की उम्र तक अपनी शिक्षा घर पर ही पूरी की और फिर ये शिक्षा उन्हें उनकी माँ से प्राप्त हुई थी। रुपये

खुले पर्दे पर अपनी दिलकश अदाकारी से घर घर में पसंद की जाने वाली साधना का विवाह आरके नैयर के साथ हुआ, जिस कारण वो साधना नैयर के नाम से भी जानी गई, किंतु उनका साधना नाम ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो आइए उनके कुछ खूबसूरत गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए, इस बीच हमारे दयाराम जी पाकिस्तान बॉर्डर पर से फ़ोन करके आप सभी को याद किया है, उसके बाद सुगना जी ने याद किया, और आइए एक और दो सभी जुड़ना चाहते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार गुड़ीलाल जी, स्वागत है। अच्छा, बड़ा अच्छा है। ठीक है, ठीक है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। साधना जी की बातें हो रही थी, और साधना जी जो है फिल्म में आने से पहले स्कूली जीवन के समय से ही नृत्य उनको बड़ा अच्छा लगता था, और नृत्य सीखने के लिए एक डांस स्कूल में जाते थे। तभी एक दिन एक नृत्य निर्देशक उस डांस स्कूल में आए, और फिर हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग जी,
2: हमारे गुजरात के भाई बहनों को सभी को राधन सत की शुभकामनाएं।
0: जी जी जी।
2: और कल शीतला सप्तमी है तो उसकी भी, और परसों जन्माष्टमी और पालना नाम, सभी की एक साथ में शुभकामनाएं। मस्त सदा खुश रहे, मस्त रहे, और ऐसे ही त्योहार मनाते रहे, हर दिन को एक त्योहार समझ के मनाते रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और मन में खुशियां रखे बस
0: जी।
2: तो इसी बात पे सर एक गरबा गाना सुनना, तो कृष्ण भगवान का सुनाओ दो लाइने, फिर आप पूरा सुना देना, ठीक है
0: जी।

0: ਲਿਆ ਜਾਦੂ ਭਰਿਆ, ਜਾਦੂ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀਰਾ ਨੇ ਚੜਿਆ, ਜਾਦੂ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀਰਾ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਕਾਨ ਤਰ ਗਏ ਕਾਨ ਤਰ ਗਏ ਮੋਰ ਲਿਆ ਜਾਦੂ ਭਰਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ,
1: तो ये थे सुरेश जी पिंडवाड़ा से, जो अपनी बातें हमारे साथ साझा कर रहे थे। तो एक गीत भी उन्होंने याद किया है, धनश्याम मुरली वाले की तस्वीर। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक कृष्ण भजन की तरफ। अब कोशिश करता हूँ कि मैं वो कृष्ण भजन आपको सुना पाऊँ, और मिलते ही मैं दम ये लगा देता हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ले चलता हूं एक और गीत की तरफ, जो साधना जी का है, अभी आपके लिए। सुनते रहो मुस्कुराओ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ साधना जी के बारे में बातें कर रहे थे और उनकी गाने भी आपको मैं सुना रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि उनके बचपन में डांस के लिए उन्हें प्रेरित किया गया था और एक दिन उनके नृत्य निर्देशक स्कूल में इनके डांस को देखा, तब उन्होंने बताया कि राज कपूर को अपनी फिल्म के एक ग्रुप डांस के लिए छोटी सी छात्राओं की बच्चों की ज़रूरत है जो फिल्म के अंदर ग्रुप डांस में काम कर सके। साधना की डांस टीचर ने कुछ लड़कियों से नृत्य करवाया और जिन लड़कियों को चुना गया उसमें से साधना भी एक थी और इससे साधना बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा था। राज कपूर की वो फिल्म थी श्री 420। डांस सीन की शूटिंग से पहले रिहर्सल हुई, वो गाना था रामैया वस्तावैया। हेलो जी, नमस्कार। जी जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रहा है भाई जी।
1: ये मेरा फोन थोड़ा खराब हो गया भाई साहब।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: अभी आ रही है। अच्छा अच्छा, सब आपको पहले और सबको मधुबन भाइयों को मेरा राम राम। और आज भाई एक भजन सुनाएंगे तो अच्छा है, चित्रकूट के घाट घाट पर भिलड़ी जो विवाद, राम मेरे घर आना, सुनाएंगे तो अच्छा है।
0: ठीक है, जरूर।
1: ओके
0: बुराराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो ये थे बुराराम जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ रोज साझा करते हैं और राम जी राम आएंगे ये भजन वो सुनना भी चाहते हैं। मैं बात कर रहा था साधना जी के बारे में और बचपन में जब स्कूल के बच्चों के साथ डांस कर रहे थे तो रामैया वस्तावैया इस डांस की शूटिंग में रोज़ शामिल होती रही और फिर नृत्य निर्देशक जब जैसे कहते साधना वैसे ही करती। शूटिंग कई दिनों तक चली, लंच चाय में तो मिलते ही थे, साथ ही चलते समय नगद मेहनताना भी मिल जाता था। एक दिन साधना ने देखा कि श्री 420 के शहर में बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, फिल्म रिलीज हो रही है, ऐसे में एक्स्ट्रा कलाकार और कोरस डांसर को कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूसर प्रीमियर पर नहीं बुलाता, इसलिए साधना ने खुद अपने और अपने सहेलियों के लिए टिकटें खरीदी। दरअसल साधना ये चाहती थी कि वे पर्दे पर डांस करती हुई कैसी लगती है ये देखना चाहती। उनकी सहेलियां भी साथ ले गए और सब ने देखा। सहेलियों के साथ साधना सिनेमा हॉल पहुंची, फिल्म शुरू हुई। जैसे ही गीत रामैया वस्तावैया शुरू हुआ तो साधना के फुसफुसाते हुए सहेलियों से कहा, इस गीत को गौर से देखना, मैंने इसी में काम किया है। सभी सहेलियां आंखें गड़ कर फिल्म देखने लगी लेकिन गाना समाप्त हो गया और वे कहीं भी नज़र नहीं आई। तभी सहेली ने पूछा, अरे तू तो कहीं भी नज़र नहीं आई। साधना की आँखें उनकी बात सुनकर डबडबाने लगी। उन्हें क्या पता था कि फिल्म में संपादन में राजकुमार उनके चेहरे को काट देंगे, लेकिन ये एक संयोगी कहा जाए कि जिस राज कपूर ने साधना को उनकी पहली फिल्म में आंसू दिए थे उन्हें 8 साल बाद उनके साथ दुल्हा दुल्हन में हीरो का रोल निभाया था। तो कहानी इस तरह से थी साधना जी की। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ आज के दिन जन्म में उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। तो आइए, जन्मदिन जिनका भी है उन सभी को हम लोग याद करते हुए आप सभी को बताना चाहूँगा। आज जैसे कि 2 सितंबर है और 2 सितंबर को जन्म में उन लोगों की बात करें तो ये प्रसिद्ध अभिनेत्री साधना जी, 1941 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। पार्थो सेन गुप्ता, भारतीय फिल्म निर्माता, 1965 में इनका जन्म आज ही के दिन। भारतीय अभिनेता पवन कल्याण जी का भी जन्म आज है, 1971 में इनका जन्म हुआ था। और भारतीय मॉडल और अभिनेत्री उदित गोस्वामी जी का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था और 1984 में इनका जन्म हुआ था। भारत के क्रिकेटर ईशांत शर्मा का भी जन्मदिन आज है, 1988 में इनका जन्म हुआ था। और भारतीय पार्श्व गायक स्मिथ सिंह सोडी, इनका भी जन्मदिन आज है, 1989 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारतीय राजनीतिक है, हिमाचल के पहले गौर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने का किताब शांता कुमार के नाम है। शांता कुमार जी का जन्मदिन भी आज है, 1934 में इनका जन्म हुआ था। भारत के विशेष राजनेता तथा आज़ादी के दीवाने दरोगा प्रसाद राय, 1922 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। केरल के बहुत ही पॉपुलर समाज सुधारक थे टी के माधवन, 1885 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन आज है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शाम 4 बजे सफ़र कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: हर छठ और उप छठ की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। जैसे चांद के निकलने में देरी हो सकती है, वैसे ही जीवन में हमारी इच्छाओं के पूरे होने में भी समय लग सकता है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अलसी हमारे हेल्थ के लिए किस तरह फ़ायदा करती है, कौन सी बीमारी ठीक करती है, ज़रूर आप जानेंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। आज हम हर छठ भी मनाएंगे तो उप छठ भी मनाएंगे। और आज की रेसिपी भी बहुत ही स्वादिष्ट सिखाने वाली हूँ। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, जैसे चांद के निकलने में देर हो सकती है, वैसे ही जीवन में हमारी इच्छाओं के पूरा होने में भी समय लग सकता है। जैसे चांद के निकलने में देर हो सकती है, वैसे ही जीवन में हमारी इच्छाओं के पूरा होने में भी समय लग सकता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार बहुत ही सुंदर दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। पहले तो ये बताना चाहूँगी कि राजस्थान की धरती अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जानी जाती है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, यहाँ हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई सुंदर भावना और जीवन संदेश छुपा होता है। ऐसा ही एक पर्व है जिसको कहते ऊब छठ, जो आज के दिन है। नाम से ही पता चलता है, ऊब यानी खड़े रहना। इस दिन महिलाएं श्रद्धा और संकल्प के साथ व्रत रखती है और चांद के दर्शन होने तक खड़े रहकर उसकी प्रतीक्षा करती है। चंद्रमा के दर्शन के बाद पूजा अर्चना करके व्रत पूरा किया जाता है। तो बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहता था। उसकी कई बहुएं थीं। परिवार में सभी बहुएं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत पूजा करती थी। एक बार ऊबछट का दिन आया, सभी बहुओं ने व्रत रखा और चंद्रमा के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगी। उनमें से एक बहु बहुत ही श्रद्धालु थी। उसने पूरे दिन निर्जल रह करके भगवान और चंद्रमा का स्मरण किया। शाम हुई, आसमान में चांद निकलने का इंतजार होने लगा। समय बीतता गया लेकिन चंद्रमा दिखाई नहीं दिया। वह बहु अपने संकल्प पर अड़िग रही। उसने मन में कहा, मेरी श्रद्धा सच्ची है तो प्रभु मुझे धैर्य और शक्ति प्रदान करे। आखिरकार चंद्रमा के दर्शन हुए, उसने विधि पूर्वक पूजा की और अपना व्रत पूरा किया। लोक मान्यता है कि उसकी सच्ची श्रद्धा, धैर्य और संकल्प से परिवार में सुख शांति बनी रही। तो इस कथा का संदेश यही है, ऊब छठ हमें केवल व्रत की परंपरा नहीं बताती बल्कि धैर्य और संकल्प का पाठ भी पढ़ाती है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे चांद के निकलने में देर हो सकती है, वैसे ही जीवन में हमारी इच्छाओं के पूरा होने में भी समय लग सकता है। लेकिन अगर हमारी भावना पवित्र हो और संकल्प मजबूत हो तो हमें परिस्थितियों के सामने हार नहीं माननी पड़ेगी। रात कितनी भी लंबी हो, चांद जरूर निकलता है। धैर्य कितना भी कठिन हो, सुख का सवेरा जरूर आता है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। और आइए फिर से सुन लेते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। अलसी कैसे फ़ायदा करती है हमारे स्वास्थ्य में के लिए और कौन सी बीमारियां ठीक करती है अलसी, जिसको हम तीसी भी कहते हैं। तो देखिए, श्वास की तकलीफ है तो अलसी के दाने कूट छान कर जल में उबाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद पीसी हुई मिश्री 20 ग्राम। झाड़े की ऋतु में सर्दी का मौसम आता है ना, उस समय आप शहद मिला सकते हैं मिश्री की जगह, और इस तरह आप सेवन करिएगा तो श्वास काश में लाभ होगा। अगर श्वास काश की तकलीफ है तो अलसी के दाने कूट कर छान कर जल में उबाल लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अभी देखिए अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो आप मिश्री डाल सकते हैं। सर्दी के ऋतु में अगर ये तकलीफ है तो शहद मिला लीजिए और सेवन करिए, इससे श्वास काश में राहत मिलेगी। फिर अगला उपाय भी बहुत ही सुंदर है। अगर हैजा की तकलीफ है तो अलसी के दानों का चूर्ण 5-6 ग्राम लेकर के उसमें 50 ग्राम गर्म पानी ठंडा करके 3 बार पिलाइए। इस प्रकार बार बार पिलाने से हैजे में राहत मिलेगी। हैजे की शिकायत है तो अलसी के दानों का चूर्ण 5-6 ग्राम लीजिए, उसमें 50 ग्राम गर्म पानी ठंडा करके 3 बार पिलाइएगा। इस प्रकार बार बार पिलाने से हैजे में राहत मिलती है। अलसी के साबुत दाने 5 ग्राम, चांदी न होने पर कासा की कटोरी में 40 ग्राम जल में भिगोकर ढक करके 12 घंटे के लिए रख दीजिए। यह जल छान कर पीजिए। यह जल सुबह का शाम को और शाम का सुबह 12 घंटे के अंतर से लेने से श्वास ग्रस्त रोगी की पीड़ा शांत हो जाती है। हाँ, किंतु खान पान संबंधी परहेज आपको रखना पड़ेगा। तो जिनके भी श्वास ग्रस्त तकलीफ है, श्वास से ग्रस्त है जो भी, जिनके भी श्वास की तकलीफ है, अलसी के साबुत दाने 5 ग्राम आप क्या करेंगे, या तो चांदी या फिर कासा की कटोरी में, ठीक है, 40 ग्राम जल में भिगो करके रखिए, ढक करके 12 घंटे के लिए रख दीजिए। ये जल छान करके पीजिए। ये जल सुबह का शाम को छान सकते हैं, फिर शाम का भिगो कर सुबह पी सकते हैं। 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह लेने से श्वास ग्रस्त रोगी की पीड़ा शांत हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना है कि खाने पीने का परहेज जरूरी है। और जल के साथ अलसी पीस कर और जीरा गरम करके पुल्टिस बांधने से जो कच्चा घाव होता है ना, वो पक जाता है। जब तक पुल्टिस में गीलापन रहे तभी उसे आप बदल कर दूसरी बांध दीजिए। तो अगर कच्चा घाव है तो आप इस तरह अलसी की पुल्टिस बांध सकते हैं, इससे घाव पक जाएगा और फिर ठीक हो जाएगा। कफ और खांसी की तकलीफ है तो अलसी के दानों को धीमी धीमी आग के ऊपर तब तक आप सेके जब तक उसके गंध नहीं आ जाए भुनने की। जब हम कोई भी चीज़ सेकते हैं भुनते हैं तो उसकी खुशबू आने लगती है, तब तक आपको सेकना है, फिर उतार लीजिए। फिर इसमें मिश्री मिला करके पीस दीजिए ठंडा होने पर, ठीक है। 10 से 20 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी में ये चूर्ण कुछ दिनों तक दोनों समय लीजिए। इससे कप परिपक्व होकर के सरलता से निकल जाएगा और जुकाम में भी आराम हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, अलसी के दानों को धीमी धीमी आंच पर आपको सेकना है, सेकने के बाद इसको पीसना है। मिश्री भी पीस लीजिए और दोनों को मिला करके 10 से 20 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ ये चूर्ण दोनों टाइम लेना है। इससे कप परिपक्व होकर के सरलता से बाहर निकल जाएगा और कफ और कासी में राहत मिल जाएगी। लास्ट उपाय भी बहुत ही सुंदर है। कफ वात है जन्म विकारों में, क्योंकि कितनी बार जन्म से ही कफ वात शुरू हो जाते हैं, तो काली मिर्च पीसी हुई और शहद आवश्यकता के अनुसार आप मिला दीजिए स्वाद के अनुसार, ठीक है। फिर इसकी गोली बना दीजिए। इन गोलियों को सुबह और शाम लीजिएगा। इसके सेवन से वायु का कफज समस्त विकारों में लाभ होता है। गोली खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है, 1 घंटे के बाद पानी पीना है, ठीक है। ये तो काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए और शहद दोनों मिला करके गोली बना दीजिए और चूसते रहिए। इससे जो कफ होगा वो ठीक हो जाएगा। 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। तो ये हुए घरेलू उपाय। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। देखिए, आज उपछट का त्योहार है तो महिलाएं आज के दिन किसके दर्शन का इंतजार करती है, यह आज का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: दासी पुत्र बनवीर, विक्रमादित्य रे खून सुरंगी जोड़ी, रस लोही नागी तलवार ले, सिसोदिया वंश रा आखरी अंश, उदय सिंह ने मारण सारू दौड़ियो। उदय सिंह मेवाड़ी राजवंश रो एकमात्र कुल दीपक, पण पन्ना धायरे जीवता थका, किणरी मा इजमो खायो जको उदय सिंह ताई पूग सके। पन्ना धाय सिसोदिया राजवंश री धाय, महाराणा सांगा रे विश्वास और हाडी राणी रे आस ने पालन वाली एक नारी, मेवाड़ रा सूरज ने प्रकाशमान करण वाली एक शक्ति, एक समान दो टावरा ने एक ही आंचल सु दूध पावन वाली ममता मई मां, मां सु मोटो कोण।

बधाई माँ, बनवीर ऐठे ही आ रही हो है। बनवीर इरादो ठीक नहीं लगे है, उदय सिंह ने जान रो खतरो है।

बेटा वो बकत आई गयो है जो थारा पिताजी राजवंशी रक्षा री खातिर खुद रो बलिदान दियो भी आही आज थने भी सौभाग्य मिलियो है

0: खम्मा घणी अंदाता
1: ठठे उदय
0: अंदाता इन गौ समान बालक ने मत मारो
1: थारे कया इन नाग ने जीव तो छोड़ दो हट जा ढेसू

మేవాడు మారాణా, ఆ సున్నే బణుల మేవాడు మారాణా.

0: पन्ना धायरी आख्या रे सामी उनरे लाडे सरी लाश बिछोड़ी ही वा मन ही मन आपरे बलिदानी बेटे चंदन सु केवण दाकी हे लाडे सर थारो बलिदान एड़ो नी जावेला देख तू कितो सौभाग्यशाली है कि मेवाड़ री रक्षा खातर आज थारे जीवन रो सदुपयोग।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आइए सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
4: जय माता जी, जय श्री हरि।
3: हाँ जी, जय श्री हरि। स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। और कैसे हो?
4: बस अच्छे हैं। रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे प्यारे मित्रों को, भाई बहनों को आज के दिन की ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और गुजरात के भाई बहनों को आज यादन सर और कल शीतला सप्तमी है, तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और पूरे देशवासियों को जन्माष्टमी और पालना नाम आ रही है, तो उसकी भी शुभकामनाएं
3: जी।
4: क्योंकि यादन सर और शीतला सप्तमी हमारे गुजरात में अभी मनाते हैं ना।
3: हम आज की बात करेंगे, बिल्कुल। आज उप छठ भी है, हर छठ भी है, तो रांधन छठ भी है।
4: सब कुछ छठ ही छठ है
3: जी।
4: छठ फिर दीपावली के बाद आएगी
3: जी। तो कैसे इन त्योहारों का आपको अगर नॉलेज हो तो बताइए।
4: कौन से
3: तीनों ही त्योहार आज है, रांधन छठ, उप छठ और हर छठ, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आप जानते हो तो बताइए।
4: उप छठ के बारे में मैं बताऊंगा कि मतलब बेटी और बहू है, मतलब और औरतें, मतलब आज के दिन उपवास रखती है, और शाम को 6 बजे के बाद में जब तक सूर्य चंद्रमा नहीं दिखता तब तक खड़ी रहती है, बैठती नहीं है, और भगवान के उधर उधर मंदिरों में जाती है, भजन कीर्तन करती है, दर्शन करती है। जब चंद्रमा दिखाई देता है, दर्शन चंद्र भगवान के दर्शन करके फिर अपना उपवास खोलती है
3: जी।
4: तो ये भी एक अपने अपने बहुत ही बढ़िया। और राधन छठ है, तो राधन छठ हमारे तो राधन छठ मतलब चित्र महीने में आती है
3: जी।
4: तो उस दिन मतलब ठंडा बनाया जाता है, और कल महिलाओं को छुट्टियां मिलेगी
3: जी।
4: ये मतलब आज जो बनाएंगे वही कल खाएंगे, माता जी की पूजा अर्चना करके
3: जी।
4: और कल कल कोई नहीं बनाएंगे, फिर परसों सीधा बनाएंगे
3: जी।
4: तो ये परसों काय का बनाएंगे, फिर परसों तो जन्माष्टमी की छुट्टी रहेगी ना, उपवास रहेगा और
3: जी
4: तो चलता ही रहेगा, ये तो कोई नहीं है।
3: भादरवा महीना पूरा त्योहारों का ही जाता है, सावन भादवा दो महीने पूरे त्योहारों के जाते हैं।
4: मैं तो हमारे मित्रों को यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में हर दिन एक त्योहार बना दो ना, ताकि अपने अपन खुश रह पाए, अपने आने आजू बाजू वाले खुश रह पाए। हर दिन को एक त्योहार मानो
3: जी।
4: और अपना भारतवर्ष ऐसा है कि इसमें त्योहारों की कोई कमी नहीं है,
3: बिल्कुल।
4: तो हर दिन को आप अगर त्योहार मना लोगे ना, तो फिर मतलब आपके जीवन में दुख की कोई किरण ही नहीं रहेगी, दुख का अंधेरा मिट जाएगा, सूर्य का प्रकाश ही रहेगा
3: जी।
4: सही है ना?
3: बिल्कुल सही है।
4: हर दिन मतलब हर एक दिन मतलब अपने जीवन में पर्व होना चाहिए
3: जी।
4: आप जब पर्व आते हैं तब खुशियां मनाते हो, फिर पर्व चले जाते हैं तो वही बात। तो मैं कहता हूँ हर दिन को पर्व मनाओ ना
3: जी।
4: क्यों क्यों दुखी होना, क्यों खुश होना, मतलब हर दिन को समानता की तरफ देखो ना। दीपावली आती है तो महीने भर पहले से आप तैयारियां चालू कर देते हो, तो वो तैयारी हर दिन होनी चाहिए, हर दिन अपने घरों को साफ कीजिए और मतलब खुश रहना सीखिए, अपने जीवन में खुशियाँ लीजिए
3: जी।
4: तो कितने भी बड़ा दुख का पहाड़ होगा तो वो किनारा हो जाए,
3: बिल्कुल,
4: क्योंकि दुख से बीमारी आती है और दुख से शरीर स्वस्थ रहता था नॉर्मल। बस यही कहना चाहता हूँ सभी दोस्तों को और मेरा प्यार भरा नमस्कार, आज के दिन की देव शुभकामना, मंगल कामना, जय माता दी
3: जी, जय श्री हरि। बहुत बहुत आभार, ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, आपने भी त्योहारों की जानकारी दी है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, भाई आप कौन से त्योहारों की नॉलेज रखते हैं। वैसे तो आज के दिन तीन त्योहार है, रांधन छठ भी है, ऊप छठ भी है और हर छठ भी है। हेलो,
5: हाँ दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से।
3: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
5: आपका भी स्वागत है दीदी, बहुत अच्छे है। हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी आज के दिन की शुभकामनाएं। रांधन छठ है
3: जी,
5: छठ के बारे में बताऊं तो दीदी आज के दिन जो महिलाएं हैं तो ज्यादातर तो भोजन में ही व्यस्त रहेगी आज सुबह से शाम तक। सुबह में तो नहीं होगा लेकिन दोपहर से शाम तक वो रात तक बस भोजन भी करेगी और जिसने जो बनाया वो कल खाएंगे ठंडा, क्योंकि कल गर्म तो खाते नहीं थे सकता तो दिन
3: जी।
5: तो आज भोजन बनाएंगी और भगवान को प्रार्थना भी करेगी कि भाई ऐसा सबको अच्छा रखे और सबको ये भोजन करने वाला मिल सके
3: जी।
5: तो ये भी एक होती है, छठ की पूजा भी करती है दीदी, कई महिलाएं हमारे यहाँ मंदिर में आती है और भगवान के साथ छठ की पूजा भी करती है, पीपल के पीछे भी, पीपल के पास भी बैठ के भी पूजा करती है
3: जी।
5: तो कई सारे आज महिलाओं बस यही व्यस्त में रहेगी, ज्यादातर तो भोजन को ही बनाना है।
3: अच्छा, भोजन में क्या बनता है गुजरात में?
5: भोजन में दीदी बनता है तो जो सुखड़ी बनती है, तो गेहूँ के लोटकी आती है
3: जी,
5: गोल की, और दूसरा थेपला बनता है यानी कि मेथी का बनाए
3: जी,
5: या कोई और बनाए, और जो कोई गेहूँ का लोटकी भाकरी बनाती है, कोई करेला का साग होता है, कोई पात्रा बनाता है, कोई अलग अलग सभी लोग बनाते हैं दीदी
3: जी,
5: कोई पात्रा भी बना के कोई तैयार भी ला देते हैं, क्योंकि अब तो सभी चीजें बाजार में तैयार मिलती है,
3: बिल्कुल बिल्कुल,
5: थेपला भी मिलता है, वो सब कुछ पात्रा भी मिलता है, मिठाइयाँ भी सभी मिल जाती है, लेकिन पात्रा बनाया हुआ तो सही है दीदी, क्योंकि हम तो कभी बाजार से कुछ चीज लाते नहीं, घर पे बनाते हैं, जो बनाते हैं कल खाते हैं
3: जी जी जी,
5: तो बस वही बनाएगी सभी अपने अपने हिसाब से जो बनाते हैं और कल ठंडा खा लेते हैं।
3: तो कल पूरे दिन ठंडा खाएंगे?
5: कल पूरा दिन ठंडा खाना और ठंडा पानी से ही नहाना, गर्म पानी से नहाना भी नहीं
3: जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने,
5: क्योंकि छठ माता का जो दिन होता है दीदी तो गर्म कोई चीज का उपयोग करना ही नहीं
3: जी,
5: माता जी को ठंडा ही चाहिए, गर्म नहीं चाहिए
3: जी जी जी जी।
5: तो कई सारी बातें हैं इसमें, आप जरूर कल बताओगे, क्योंकि ये तो छठला सातन की बात कल है, तो आप कल की बात जरूर बताना है
3: जी जी जी, बिल्कुल,
5: माता रानी क्यों ठंडा चाहती है, गर्म पीनी चाहती है, तो आपको बताते हैं हर साल से कल की,
3: बिल्कुल।
5: नमस्ते, हमारे कई सारे मित्र भी इंतजार कर रहे हैं, नमस्ते।
3: चलिए बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने भी रांधन छठ की बहुत ही अच्छी बातें बताई है। राजस्थान में रांधन छठ और शीतला सप्तमी चैत्र महीने में मनाते हैं, और गुजरात में अभी भादरवा महीने में, गुजरात में सावन चल रहा है, राजस्थान में भादरवा लग गया है, तो भादरवा चल रहा है तो अभी मनाते हैं। देखिए त्यौहार हम सभी मनाते हैं, क्योंकि त्यौहार भले हम थोड़ा सा कल्चर हमारा अलग अलग हो गया लेकिन खुशी तो वही है ना। जैसे राजस्थान में रांधन छठ के दिन ओलिया की तैयारी की जाती है, दही चावल बनाए जाते हैं, सब्जी पूरी, उस समय केरी नई नई आती है तो केरी की लौंजी है, इस तरह की सब्जियां बनाते हैं ताकि दूसरे दिन पूरे दिन टिकी रहे। और गुजरात में कभी देखे कोई हांडवा बनाता है, कोई थेपला बनाता है, तो कोई क्या बस दूसरे दिन ख़राब ना हो ऐसी चीज़ ही बनाते हैं। राजस्थान में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हाँ इधर थोड़ा फिक्स है कि कुछ भी बनाओ लेकिन ओलिया तो बनाना ही है, ओलिया दही चावल को कहते हैं, जो रेसिपी आपको कितनी बार सिखा चुकी हूँ, तो ये तो ज़रूर बनाते हैं। और ये शाम के समय बनाती है महिलाएँ ताकि दूसरे दिन पूरा दिन वो भोजन टिका रहे, इसलिए शाम को थोड़ा रात को लेट सोती है, लेकिन बनाती ठंडा, मतलब गर्म भोजन आज बना के रख देती है, कल शीतला सप्तमी है तो कल पूरे दिन ठंडा खाया जाता है ये गुजरात में। और अब तो देखिए गुजरात के लोग भी हर जगह है, हर स्टेट में है, राजस्थान में भी बहुत सारे है, तो जो गुजरात के रहने वाले हैं वो तो कहीं पर भी रहेंगे लेकिन अपना त्यौहार तो मनाएंगे ही। और साथ ही साथ हर छठ और उपछठ भी है, उपछठ भी देखिए राजस्थान में, अब दूसरे स्टेट का पता नहीं लेकिन राजस्थान में इस त्यौहार को अच्छी तरह मनाते हैं। वो कहते हैं कि महिलाएं अपने सुहाग के लिए और कन्याएं अपने अच्छे भर के लिए इस व्रत को रखती है और पूरे दिन उपवास रखती है, इसमें भोजन नहीं करते। ठीक है, फराल खा लेते हैं, फराल जिसे नहीं रहा जाता है वो फराल बना करके खा लेते हैं, बाकी निराहार रहते हैं, ऐसे पूरे दिन उपवास करते हैं, फिर रात को खाना खाते हैं। और वो अभी मैं है ना प्रश्न का जवाब आ जाएगा, कब खाते वो मैं नहीं बताऊंगी, वो मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगी तभी बताऊंगी, नहीं तो प्रश्न का जवाब अभी आ जाएगा इसलिए मैं रात को कब खाते वो नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो प्रश्न चलिए मैं पूछ ही लेती हूँ साथ ही साथ कि महिलाएं आज के दिन विशेष करके किसके दर्शन का इंतजार करती है। यह आज का प्रश्न है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और हम उपछट की बात कर रहे थे कि उपछट पूरे दिन महिलाएं खड़ी नहीं रहती है, वो पूरे दिन अपने घर का काम जो भी है करती है, उपवास तो रखती है, फल फ्रूट जो भी है खा लेते हैं, नहीं खाने वाले नहीं भी खाते लेकिन जो अपने घर का डेली रूटीन है वो कार्य करती है। फिर शाम के समय सूर्य अस्त होने के आधा घंटा पहले महिलाएं क्या या तो तालाब नदी अपने गांव में जो भी व्यवस्था है वहां नहाने के लिए जाती है, और नहीं होते हैं तो घर पर ही नहा लेते हैं। और सूर्य अस्त होने के बाद महिलाएं खड़ी रहती है, नहाने के बाद फिर बैठती नहीं है, फिर खड़ी रहती है, कन्याएं महिलाएं सब खड़ी रहती है। अब खड़े रहो और उसका इंतज़ार करो, तो किसका इंतज़ार है वो आपको बताना है, मैं अभी नाम नहीं ले रही हूँ। ठीक है, इसके बीच 4-5 घंटे लग जाते हैं, 4-5 घंटे महिलाएं समझ लीजिए सूर्य अस्त होता है 6:30 के आसपास, तब से लेकर के उसके दर्शन तक खड़ी रहती है, तो आराम से 5-5.5 घंटा हो जाता है। अब एक जगह आप आधा घंटा भी खड़े रह के देखिए, खड़े नहीं रह पाएंगे, ऐसा लगेगा बैठ जाए, इसलिए महिलाएं घूमती रहती है, पहले ही सारा काम घर का कर लेती है, खाना भी बना देती है, उसके बाद महिलाएं मंदिरों में जाएगी, अपने गांव में जो भी मंदिर है थोड़ी थोड़ी देर सब मंदिरों में जाएगी, ताकि क्या है कि चलते रहो तो फिर भी आप चल सकते हो 5-6 घंटा, लेकिन एक जगह खड़े रहना मुश्किल है, इसलिए थोड़े से लोग भी आज के दिन कंपनी देते हैं कि चलो या चले वहाँ चले, आजकल तो थोड़ा सा क्रेज चेंज होता जा रहा है तो रिश्तेदार के यहाँ भी मिलने चले जाते हैं, खड़े ही रहेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, फिर जितने भी मंदिर है थोड़ी थोड़ी देर सब मंदिरों में जाएंगे, भजन वजन बोलेंगे, जितने टाइम पास हो जाएगा, तो इस तरह उपछट मनाई जाती है। चलिए और भी बताएंगे लेकिन अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार मैं हूँ हरमीत सिंह.
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से.
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड.
1: मिट्टी से नहीं जज्बातों से.
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो चलिए आशियाना के किचन में आज मैं आपको कंकोड़ा की सब्जी सिखा देती हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और कहते हैं ना कि सिंपल सब्जी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो बहुत जने ग्रेवी वाली भी बनाते हैं लेकिन आप सिंपल बना करके खाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो कंकोड़ा ले लीजिएगा, सामग्री में हरी मिर्च लीजिएगा, राई जीरा लेना है, तेल लीजिएगा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बस हींग ये आपको लेना है, हरा धनिया ले ही सकते हैं। तो क्या क्या लेना है, कंकोड़ा लीजिएगा, फिर आप लीजिएगा तेल, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, राई, जीरा, हींग, हरा धनिया ले सकते हैं और धनिया पाउडर ले लीजिएगा। तो ये हो गई सामग्री। अब आप कंकोड़े की अच्छी तरह धुलाई कर लीजिए। धुलाई करने के बाद नीचे से वो जो डंठल निकला हुआ होता है उसको तो तोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, ऊपर का कोना हल्का सा होता है उसको भी निकाल देते हैं और बाकी आप गोल गोल कटिंग कर लीजिए। कोई इसकी लंबी लंबी फाके भी करते हैं तो कोई गोल गोल कटिंग भी करते हैं, लेकिन गोल कटिंग वाला बता रही हूँ मैं आज आपको कि गोल कटिंग कर लीजिए। ठीक है, गोल गोल काट लीजिए और हरी मिर्च वगैरह सब काट के रख दीजिए। अब आप रखिए कढ़ाई गैस पर, तेल डालिए, तेल गरम हो जाए तो राई जीरे का तड़का लगाइए। अब इसमें आप हरी मिर्च डालिए, हींग पाउडर डालिए और मसाला थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए। ये जो फ्राई हो जाए तो फिर आप कंकोड़ा डाल दीजिए। ठीक है, कंकोड़ा डाल करके आप नमक और हल्दी पाउडर डाल दीजिए और अच्छी तरह हिलाकर धीमी आंच पर आप एक थाली ढक के रख दीजिए। थाली में आप पानी डाल सकते हैं, ठीक है, थाली के ऊपर भाप से इसको बॉईल होने दीजिएगा और जब आपको लगे कि हाँ अब सब्जी थोड़ी सीजने को आई होगी तब आप थाली धीरे से हटाइए, पानी अंदर नहीं गिरे। और फिर आप लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल दीजिए, अच्छी तरह हिला करके एक दो मिनट पका करके फिर गैस बंद करके आप हरा धनिया डाल दीजिए। तो ये बन गई कंकोड़े की सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी। आप गेहूं की चपाती के साथ खाइए, आप मक्के की या बाजरे की रोटी के साथ खाइए, सबके साथ अच्छी लगेगी। तो फिर से बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। कंकोड़े की धुलाई करके इनको काट लीजिए, गोल गोल पीस कर दीजिए, इसके हरी मिर्च भी साफ करके काट करके रख दीजिए। अब आप कढ़ाई रखिए, गैस पर तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो राई जीरे का तड़का लगा दीजिए, हींग पाउडर भी डाल देना है तो आपको हरी मिर्च भी डाल देनी है। ये मसाला पक जाए तो आप कंकोड़ा कटे हुए डाल दीजिए और हल्दी पाउडर और नमक डाल करके हिला करके धीमी आंच करके एक थाली ढक दीजिए, थाली में पानी डाल दीजिए, पानी से इसको भाप से इसको बॉईल होने दीजिए सब्जी को, ठीक है। और उसके बाद आप थाली हटा दीजिए, आपको लगे कि हाँ हमारी सब्जी अब सीजने को आई होगी तो आप हटा दीजिए थाली। फिर लाल मिर्च पाउडर, फिर भी आप चेक कर सकते हैं, हाथ से दबा के पट्ट दे के दब जाए तो सीज गई, और दबाने पर नहीं दबे तो थोड़ी सी कचास है तो फिर से सीजने दीजिए, ठीक है। फिर थाली हटाकर इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल करके हिला कर एक दो मिनट फ्राई करिए, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और हरा धनिया डाल दीजिए। ये बन गई कंकोड़ा की सब्जी, और आप चपाती के साथ इसको खा सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही खाना है, ठीक है। तो आइए फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफ़ी अच्छा रहा है। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं अलसी पर। तो अलसी कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करती है वो आपने जाना है। फिर आज त्योहारों की बात हुई है, रांदन छठ, हर छठ और ऊब छठ का त्यौहार हमने धूमधाम से मनाया है। बहुत बहुत पुनः आप सभी को इन त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और कंकोड़ा की सब्ज़ी जो बनाना सीखा ही है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि आज के दिन ऊब छठ के त्यौहार पर स्पेशल महिलाएं किसका इंतज़ार करती है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त होता है तब से खड़ी ही रहती है महिलाएँ, चंद्र दर्शन तक खड़ी रहती है। तो आज का उत्तर है चंद्र दर्शन। तो सही जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से और सुभाष भाई महाराष्ट्र से, शोभा जी आबूराज से, हेमलता सूरत से। तो आपका जवाब सही है। तो पहले तो आपके लिए ढेर सारी तालियां, जिन्होंने सही जवाब दिया उनके लिए ढेर सारी तालियां बजाना चाहिए। फिर देखिए विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई झोटाना से, जगदीश भाई इडर से। इन्होंने जवाब दिया पति, तो ये गलत है। सगुणा बहन झोटाना से, कंचन भाई मंडाली से और भूरीलाल जी मानपुर से। तो आप सभी विषय में जुड़े हैं, इसके लिए भी ढेर सारी तालियां। तो चंद्र दर्शन तक महिलाएं खड़ी रहती है, उसके बाद वो भोजन करती है, ठीक है। और आज का मीठा मोती है, परमात्मा को सब याद करते हैं लेकिन सर्व प्राप्ति उन्हीं को होती है जो अपने को शरीर नहीं आत्मा समझते हैं। अब मैं आपको कृष्ण कन्हैया पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। थाने माल मलिदा भावे रे टूटी फूटी जो पड़ी में कैया आवे रे। थाने माल मलिदा भावे रे टूटी फूटी जो

चांदी की चौकी के ऊपर जीमण की तैयारी, चांदी की चौकी के ऊपर जीमण की तैयारी, छप्पन भोग छत्तीसों मेवा खीर जलेबी न्यारी खाए, मीठो पान चबावे रे टूटी फूटी झोपड़ी में कहिया आवे रे, माखन मिश्री बिच बिच में जी भर करके खावे, माखन मिश्री बीच बीच में जी भर करके खावे, बनवारी दिन में जो खावे रात पसंद ना आवे, मासू कैया प्रेम बढ़ावे रे टूटी फूटी झोपड़ी में कैया आवे रे, थाने माल मलीदा भावे रे टूटी फूटी।

0: कल राठौड़ परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर था, क्योंकि घर में दामाद पुराना बना है, घर जमाई नया। हमारे देश में दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है, जिसकी आदत सूरजमल को भी थी। लेकिन अब जो इन्हीं घर वालों के साथ रहने लगे हैं, तो क्या वैसी ही इज्जत मिलेगी? या चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आज राठौड़ परिवार में, जहां परिवार के बच्चे भी कैंप से लौट कर आ गए हैं और अब जमाई जी यानी सूरजमल जी लगे हुए हैं नई जॉब की तलाश में।
1: अरे सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में?
2: जाह्नवी क्या है ये, तुम लोग कल ही अपने कैंपस से वापस आए हो, इसका मतलब यह नहीं कि घर को ही कैंपस बना दो।
3: दादी लेकिन मैं ये गाना नहीं बजा रही हूँ, दिस सॉन्ग डज नॉट हैज विज।
1: चीज? क्या चीज नहीं है, अब गाने में कौन सी चीज आ गई?
3: चीज नहीं दादी, रीज रीज।
4: अरे बेटा हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं, तुम लोग हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो या चलो अंग्रेजी ही बोलो, पर ये कौन सी एलियन भाषा बोलते रहते हो?
3: पापा प्लीज डोंट बी सो बेसिक।
1: अरे ये कैसी अंग्रेजी है, पटर पटर करती रहती है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता।
5: दादी जाह्नवी के कहने का मतलब है कि उसे ये गाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने ये गाना नहीं बजाया है।
1: तो कौन बजा रहा है ये गाना, जिसने मेरे सर में दर्द कर दिया है?
5: दादी चलिए चल के कमरे में देख लेते हैं।
6: जाह्नवी क्यों फंसा रही है वीरू को?
5: कुछ नहीं होगा, देखती जा।
4: ये लीजिए, ये तो वीर जी है। अरे सर गाना बंद करेंगे आप, पीर पीर।
7: अरे किसने मेरा गाना बंद किया?
4: मैंने किया, कोई आपत्ति है आपको?
7: अरे बड़े बड़े चाचू आप, अच्छा किया गाना बंद कर दिया, किसने चलाया था ये गाना?
3: तुमने।
7: हाँ वो बड़े चाचू वो रॉकिंग गाना है, तो मैं तो बस ग्रूव कर रहा था।
4: सुबह सुबह इतना जोर से गाना चलाया है, घर के बाकी लोगों के बारे में भी सोचा कर, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं।
1: हाँ तो इसमें क्या हो गया, गाना ही तो चलाया है। आजा मेरा पोता, मेरा लाडला बच्चा, सुन तू कर वो क्या कहते हैं, घूम घूम घूम, तू कर।
3: घूम नहीं दादी, ग्रूव।
1: अरे वो ही तो कह रही हूँ मैं। अरे हाँ वही वही, अरे करने दो बेचारे को, क्या सुबह सुबह उसको परेशान करने में लग रहे हो सारे।
4: माँ आपके ही सर में दर्द हो रहा था ना?
1: देख वीरेंद्र

0: नहीं समझेगा क्योंकि तेरी तो दो दो बेटियां हैं। अरे लड़कों को ऐसे नहीं रखा जाता मीन मेख निकाल के। आखिर इकलौता चिराग है हमारे घर का, समझा?
1: और हम क्या है दादी?
2: इस सवाल का जवाब है किसी के पास। पोते को टोको नहीं रोको नहीं, और पोती को। वैसे अंबिका देवी राठौर शुरू से बेटों पर प्राण न्योछावर करती आई हैं। हालांकि बेटियों को भी शिक्षित तो किया, लेकिन उनकी शिक्षा को अहम नहीं समझा। हम सोचते हैं कि एक लड़की को स्कूल भेज तो रहे हैं, इससे ज्यादा बराबरी क्या होगी। लेकिन रोज किसी न किसी तरीके से बेटी को दिखा ही देते हैं कि बेटा ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं राठौड़ परिवार की सुबह और कौन से रंग दिखाती है।
3: राजकुमारी, ओ राजकुमारी, कहाँ मर गई?
4: जिंदा हूँ जेठानी जी, बस आई।
3: राजकुमारी, आज ना मेरे पैर में बड़ा दर्द है, आज नाश्ता तू ही बना लेना।
4: जेठानी जी, नाश्ता तो बन गया।
3: अच्छा, आज नाश्ता इतनी जल्दी बन गया?
4: जल्दी कहाँ जेठानी जी, 8 बज रहे हैं।
3: अरे 8 बज गए, ये बाकी के 7 और 6 कहाँ गए?
5: बड़ी भाभी, वो आए थे घर पे, राजकुमारी भाभी के हाथ का नाश्ता खाकर चले गए।
3: हे राम, मजाक मत कर किशन, मुझे तो डर लगता है, इस कम उम्र में ये मुझे क्या हो रहा है।
5: कम उम्र?
6: हाँ हाँ हाँ भाभी जी, आप तो बस हमसे थोड़ी सी बड़ी हैं, आपको क्या होगा।
3: हाँ वो तो है, वैसे इस घर के नए जमाई सा कहाँ हैं? अभी तक अपने कमरे में पड़े सो रहे हैं का?
5: बड़ी भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी और जीजू साथ में वॉक करने गए हैं, आते ही होंगे।
6: लो आ गए वो।
7: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो घर आ गया, चलो जमाई सा।
8: बढ़िया बढ़िया,
7: बहुत अच्छा।
8: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक।
7: वाह, आज तो मजा आ गया। सूरजमल बेटा बड़ा समझदार, आज तो पेड़ पौधों के बारे में बड़ी जानकारी दी इसने।
9: हाँ बस इन्हीं खेती बाड़ी के चक्कर में लगे रहते हैं ये, इनको बताइए पापा कि पेड़ पौधे पर पैसे नहीं लगते।
7: शांति, थोड़ा शांति से बात किया कर बेटा।
9: कैसे शांत रहूं पापा, एक हफ्ता निकलने को आया है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, ना नौकरी ढूंढते हैं ना कोई।
8: पापा आप शांति को कुछ मत कहिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
7: शांति चुप हो जा, जमाई साहब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही बैठिए।
9: क्यों पापा, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आपको पता है मैं सुबह ही एक पोस्ट देख रही थी, मेरी क्लास में जो सुषमा थी ना, वो अपने पति के साथ वेकेशन पे लंदन गई है और मैं यहाँ।
10: शांति तू ये क्या बोले जा रही है बहन, एक पोस्ट की वजह से तू जीजा जी को इतना सुना रही है?
9: रागिनी दीदी, आपकी शादी नहीं हुई है ना, अभी आप नहीं समझेंगी।
10: मैं इतना तो समझती हूँ शांति कि पैसे कमाना सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी नहीं होती है, जब रिश्ता बराबरी का है तो जिम्मेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन अब मुझे कहनी ही पड़ेगी, ये जो तू रोज पार्टी करती है, इधर उधर जाती है, इससे अच्छा है जाके कुछ काम कर, पैसे कमा।
9: हाँ जैसे आप कमा रही हैं अपने एनजीओ से, कितना कमाती हैं दीदी आप बताइए जरा।
7: तुम दोनों बस करो, घर के मुद्दों पर बैठ के सम्मान के साथ बात की जाती है, फैसले लिए जाते हैं, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी, गुस्से में एक दूसरे को जो भी कह रहे हो वह शब्द जैसे बाण से छूटे तीर है, वापस नहीं आएंगे। इसलिए जाओ सब हाथ धोकर आओ, पहले सब नाश्ता करेंगे, दिमाग ठंडा होगा तब फिर बात होगी।
6: राजकुमारी जाओ सबके लिए नाश्ता लगा दो।
4: हाँ जाती हूँ।
6: कहाँ जा रही हो, किचन उधर है?
4: वो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है।
6: इतना क्या स्पेशल बना दिया? जो किचन के बाहर है।
4: अरे आप बस देखते जाइए, शौक ही हो जाएंगे आप।
6: इसी बात का तो डर है।
4: हा? कुछ कहा आपने?
6: नहीं नहीं, बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दी होगी तुमको।
4: तो फिर मैं आती हूँ, मैं कीड़े मकोड़े लेकर आऊँ आपके चूहों के लिए।
6: क्या?
4: अरे मजाक कर रही थी।
6: राजकुमारी घर में वैसे ही कितना टेंशन है, और तुम?
11: भैया इस टेंशन में किसी को तो मजाक करने दीजिए, वरना हमारी बहनें तो नदी में आए तूफान की तरह सब तहस नहस कर देंगी।
6: चल ठीक है, अब नाश्ता करने चले।
2: वैसे क्या लगता है आपको, राजकुमारी जी ने आज ऐसा क्या बनाया होगा जो किचन की दीवारों में नहीं समा पाया, और भगवत जी ने तो कह दिया कि जो बात होगी अब नाश्ते के बाद होगी, लेकिन नाश्ता करने के बाद ये सब लोग बोलने लायक बचेंगे भी या नहीं? वैसे जिस गुस्से में सब लोग गए हैं उससे तो लगता है कि नाश्ते की टेबल पर भी हंगामा होने वाला है, लेकिन ये राठौड़ परिवार है जी, यहाँ की हवाओं का किसे पता कब किस दिशा में बहने लगे। वैसे भगवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, गुस्से में कही बात का बाद में कितना भी दुख हो, पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे इस घर के शेर शायर किशन कल रात अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिख रहे थे, जाते जाते आप भी सुनते जाइए।
12: रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं, नीचे से सहारा भी देती हैं, ऊपर से उजाला भी देती हैं, अकेली हों तो बस ये धूल बनती हैं। रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
13: घर ऑन एयर, पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
14: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा, रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
15: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मींस खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है, और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मींस नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली ग्रेट।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और ये जो प्रोग्राम है जिसका इंतजार आप पूरे सातों दिन करते हैं, तो यकीनन जिस तरह आपको इंतजार रहता है वैसे ही हमें भी इंतजार रहता है। लेकिन इंतजार के साथ साथ हमारा एक और काम रहता है, वो ये कि बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, ऐसी कहानियां जो समाज को प्रेरित कर सकें, कुछ सिखा सकें, कुछ बता सकें, इस तरह की कहानियां आप सबके सामने हम लेकर के आए। हमारा भी पूरा सप्ताह बस इसी जद्दोजहद में निकल जाता है। तो चलिए आज देखते हैं आज की कहानी, यकीनन आपको प्रभावित जरूर करेगी। और आज हम चल रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर से हमारे साथ हमारे आज के विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, श्रीमान गोकुल प्रसाद पारिक सर और उनकी श्रीमती जी निर्मला पारिक मैम। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पारिक सर जो है वो राजस्थान के पहले ऐसे दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं जो 10वीं कक्षा में वरीयता सूची में जिन्होंने अपना स्थान बनाया था, और उसके अलावा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी, यानी जिसको RAS के नाम से राजस्थान में जाना जाता है, उसमें भी चयनित होने वाले वो पहले दृष्टिबाधित व्यक्ति रहे हैं। और अभी कुछ ही सालों पहले वे सीनियर RAS ऑफिसर के पद से रिटायर भी हो चुके हैं। तो चलिए इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज उनकी कहानी में क्या संघर्ष रहा या उनकी कहानी किस तरह से आगे बढ़ी, खासकर उनको ये अपने हमराही की, ये जानना समझना बहुत दिलचस्प होगा। तो पारिक सर और मैम, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच, नमस्ते सभी को।
0: जी सर, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप, हमने तो जो कुछ बता सकते थे वो अपने तरीके से बताया, लेकिन आप स्वयं अपने बारे में हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा बताएं, अपने जीवन परिचय के बारे में, ये दृष्टिबाधित आप किस तरह से हुए, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड प्लीज सर।
1: ऐसा कुछ बहुत कुछ तो बताने जैसा है नहीं, लेकिन ये है कि मैं बहुत छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था, और लगभग 1.5 साल की एज में स्मॉल पॉक्स, जो माता की जिसको कहते थे चेतक, उससे मेरी दोनों आंखों की जो दृष्टि है वो खराब हो गई, खत्म हो गई थी। लेकिन 1.5 साल की एज में उस जमाने में 1950 में जैसे आईसाइट चली जाती है तो ये समझा जाता है कि भाई, समझा जाता था उस समय, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल नहीं थी, तो यूँ समझा जाता था कि जीवन नष्ट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन बाद में मेरा सौभाग्य था और ये पता चला कि भाई जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए भी स्पेशल स्कूल होते हैं, पर्टिकुलरली अजमेर में स्कूल जो है, उसके बारे में हमको मेरे दादाजी को, एक्चुअली मेरे दादाजी को पता, उन्होंने मुझे स्कूल में ले जाकर भर्ती करा दिया, मैं वहाँ पढ़ने लगा। ऐसे तो खट्टे मीठे कई अनुभव होते ही हैं, लेकिन मैं बस सबसे अच्छी बात ये थी कि पढ़ाई चलती रही, और पढ़ाई में मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर्स रहते थे तो बढ़िया रहा। कुल मिला के जब टेंथ में आए, टेंथ का रिजल्ट आया, तब शायद उसका वो ऐसा परिणाम मिला जिससे भाई हमारा स्कूल अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा, और गांव भी करने लगा, परिवार भी करने लगा। मैं तो इतना कुछ समझता नहीं था ज्यादा, तो खुश तो मैं भी था बहुत कि अखबार वाले, रेडियो वाले, उसमें टीवी तो था नहीं, तो इंटरव्यू लेते थे, खुश होते थे, वही वाह क्या बात है, अखबार में फोटो छपता, तो ये सब हुआ। 8वीं पोजिशन मेरी आई थी उस टेंथ में, और उसके बाद में मैंने पढ़ाई करी, लेकिन इस बीच मैंने STC ट्रेनिंग करी।
0: अच्छा,
1: समय तक ब्लाइंड को अलाउ नहीं था STC ट्रेनिंग में जाना
0: जी,
1: उनको सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था, और माउंट आबू में STC स्कूल को उन्होंने उसके लिए चुना था कि भाई वहाँ पर हम हमारे विजुअली इम्पेयर ट्रेनिंग होंगे, वहाँ पर सिखाएंगे। तो हम लोगों ने वहाँ ट्रेनिंग की, मैं भी था, मेरे साथ चार साथी और थे
0: जी,
1: ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करने के बाद में बड़ी मुश्किल से, अब उन डिटेल्स में तो मैं क्या जाऊँ, कि उस समय पोस्टिंग कराना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। इस तरह से सिस्टमेटिक तो नहीं था पोस्टिंग होना, और फिर किसी ब्लाइंड के लिए पोस्टिंग पा लेना, और वो भी एक सामान्य स्कूल में, जो तो बहुत बड़ी बात। उसमें या तो म्यूजिक टीचर बन जाते थे या तो फिर तो ज्यादा पढ़ जाते, और एमए वगैरह करने के बाद या पीएचडी वगैरह कोई कर लेते, वो लेक्चरर बने थे उस समय तक, ये सुना था हमने
0: जी,
1: या म्यूजिक टीचर बने थे। बाकी एक कॉमन स्कूल में जो उसमें टीचर बनना बहुत मुश्किल था। खैर जैसे तैसे काफी संघर्ष के बाद में मैं टीचर बना, लेकिन मुझे संतोष नहीं था, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना काफी चैलेंजिंग तो था, लेकिन चैलेंजिंग से तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात से थी कि सोसाइटी में जो मैसेज आता था ना, वो मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए कम था।
0: अच्छा जी।
1: वो ये समझा जाता था कि प्राइमरी स्कूल के टीचर तो बहुत साधारण टीचर होते हैं
0: जी।
1: तो मैंने आरपीएससी का एग्जाम दिया, आरएएस आरटीएस का जो एग्जाम होता है, एग्जाम मैंने तो दिया केवल उस समय तो ये सोच के दिया था कि भाई मुझे सिद्ध करना है कि मैं प्राइमरी स्कूल टीचर के लेवल से थोड़ा ज्यादा योग्य हूँ या ऊपर हूँ, ये सिद्ध करना था मुझे। उस समय तक ये नहीं लगता था कि मैं ज्वाइन कर पाऊंगा
0: जी,
1: लेकिन हुआ ये कि मैं सिलेक्ट हुआ पहले चांस ही, और मैंने ज्वाइन भी किया। अब क्या है कि ये प्रोग्राम इतना भी इतनी भी आजादी नहीं देता कि उन सब बातों की चर्चा करें कि कितनी कितनी समस्याएं आई थी
0: जी जी जी जी जी।
1: क्योंकि समस्या तो जिस दिन आपने आंखों की ज्योति खो दी ना, उस दिन ही समस्याएं शुरू हो गई
0: जी जी जी। ठीक है,
1: चर्चा का विषय तो ये होता है कि कब समस्या नहीं आई।
0: बिल्कुल सर। लेकिन
1: फिर ये समझो कि ये होता है कि आपने उस समस्याओं पर किस तरह से पार पा लिया।
0: निश्चित रूप से सर। लेकिन होता क्या है ना सर, जब कोई काम पहली बार होता है तो उस समय की जो परिस्थितियां बनती हैं या उस समय की जो एक तरह से जो संघर्ष होता है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाने का कार्य करता है।
1: एक्चुअली ये कहना बिल्कुल सही है, क्या है कि शुरू शुरू में जब आप किसी भी, जब रास्ता नहीं होता है उस पर आप चल के जाते हो, कठिनाइयां भी आती हैं, और उस समय लेकिन उसके साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है कि हम बहुत से अन्य लोगों के लिए एक राह तैयार कर रहे होते हैं। मतलब मैं तो यूँ कहता हूँ कि जो भी ब्लाइंड व्यक्ति कहीं पर पोस्टिंग लेके काम करता है किसी जगह पर, चाहे वो कोई स्कूल टीचर हो, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कुक का काम भी करते हैं, मुझे उनसे बड़ी खुशी होती है। देखो हमारे पास तो कई सारी सुविधाएं हैं, ये फिर भी काम कर रहे हैं जिन जो सुविधाएं दूसरों के लिए जुटा रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हम ब्रांड एम्बेसडर होते हैं ब्लाइंड कम्युनिटी के
0: जी,
1: और हमको ये दिखाना होता है कि, और क्योंकि जो जो भी बाद में किसी को देखेगा ना, किसी भी ब्लाइंड को, तो वो हमारे बारे में जो उसकी राय बनी होगी ना, वो राय उसके काम आएगी। काम आएगी का मतलब वो उसको प्रभावित करेगी, और उसी के आधार पर उसकी राय वो बनेगी। तो कुल मिला के इस तरह से सोसाइटी में पूरी में बनती है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप पर्टिकुलरली पहले पहले व्यक्ति होते हैं किसी फील्ड में, तो आपको जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स करने चाहिए। हमने भी करने की कोशिश की, कहाँ तक मैं सफल हुआ ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे मुंह से सफलता रहा। फिर उसके बाद में बस जब स्टेट सर्विसेज में आ गए, उसके बाद तो फिर समस्याएं थोड़ी बहुत कम ही हुई है, बड़ी नहीं तो बढ़ती थी।
0: तब तो सर आपका समस्या समाधान का काम शुरू हो गया फिर।
1: एक्चुअली वैसे तो मैं नहीं मानता ये बात, क्योंकि मेरे लिए दिक्कत ये होती थी कि मैं अगर मैं किसी ऑफिस में पोस्टेड हूँ, उस ऑफिस में अगर मैं नया हूँ तो मुझे सब लोग ही को अपने बारे में बताने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते। इस बीच अगर बाय द वे मेरे बॉस का ट्रांसफर हो गया, तो उनको फिर से जीरो से उनको सिखाना पड़ता था, क्योंकि वो ये सोचते थे कि ब्लाइंड है, ब्लाइंड के बारे में लोगों की धारणा ये होती है कि वो काम करने के लिए थोड़े आए हैं, ठीक है उनको सरकार सुविधा दे रही है तो ठीक है उनको लगा दिया, बेटर हो। लेकिन ये भावना खत्म होनी थी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप काम करते हो, काम किए बिना बैठे रहोगे ना, तो वो और भी मुश्किल काम होगा। तो मैं ये देखता था कि जब भी हमारे बॉस का ट्रांसफर हो गया या मेरे असिस्टेंट का ट्रांसफर हो गया, तो मुझे जीरो से शुरू करके उनको एक बार फिर से ये समझाना पड़ता था कि भाई मैं खाली बैठे रहने के लिए या कोई शोपीस नहीं हूँ, मैं मुझे काम करना है और जितना अच्छा काम करके आपका आउटकम होगा ना, जितने अच्छे रिजल्ट्स आप दोगे ना, वो आपके आपके मैं तो मेरे लिए तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे बाद में आने वाले जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड उस जगह पर आते हैं ना, उन सब के लिए वो काम आते वो सब।
0: बहुत खूब सर, निश्चित रूप से ये एक जो ऐसा मतलब संघर्ष है जिस पर जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। और सर कहीं कहीं जो बातें आप कह रहे हैं ना वो आज भी देखने में आती हैं, तो उस जमाने में यानी आज के लगभग मुझे लगता है 40-50 साल पहले तो और ज्यादा रही होंगी।
1: हाँ देखो ऐसा है, आज तो टेक्नोलॉजी ने काफी हमारी सुविधाएं बढ़ा दी हैं
0: जी।
1: सबसे बड़ी सुविधा तो यूं समझो कि जैसे आईटी सेक्टर ने जो प्रोग्रेस करी है ना, कम लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, इन्होंने हमारी जिंदगी को बहुत ईजी बना दिया। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जो बहुत जरूरी हो गए। लेकिन जब हम लोग काम करते थे, मेरी जब पोस्टिंग हुई उसके बाद मैंने जब तक काम किया तब तक भी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप और पर्टिकुलरली एक्सेसिबिलिटी के मामले में तो बहुत मुश्किल थी, तो हमको तो मैनुअली सारे काम करने पड़ते। एक बात ये थी कि सबसे बड़ा ये होता है कि आपको पग पग पर खतरा रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं कितने रिस्की डिसीजंस लेने होते हैं, उन सब पर साइन होते हैं सरकारी मामलों में आप जानते हैं। एक
0: बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर, यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको, लेकिन कभी मन में ये ख्याल आया सर कि यार बहुत हो गया बस प्रशासनिक पद छोड़ दिया जाए, ऐसा कभी लगा आपको सर?
1: नहीं नहीं ऐसा मुझे तो अभी भी नहीं लगता। मैं तो अगर मुझे तो मेरी हेल्थ वगैरह के हिसाब से और उसके हिसाब से तो मुझे अभी भी नहीं लगता, मेरे दिमाग के हिसाब से भी नहीं लगता। मैं मुझे ये कभी नहीं लगा कि बस बहुत हो चुका, काम करने में मजा आता था। मेरे कॉलिग्स और मेरे जो सबोर्डिनेट्स थे ना, वो मुझे शाम को 5 बजे भी कहते सर आप ऐसे लगता है जैसे आप अभी अभी ऑफिस आए हैं। मतलब मैं क्योंकि मैं कभी इस तरह का टेंशन नहीं लेता था, मैं अपने किसी काम को टेंशन के रूप में नहीं लेता था। मुझे टेंशन इस बात की होती थी खाली कि काम हुआ नहीं, और हमेशा मैं अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट के भी फेवर में नहीं रहता था। मैं नहीं चाहता था कि कभी कोई मुझे ऐसे समझा जाए कि आप कोई स्पेशल व्यक्ति हैं, तो आपको मुझे कभी कोई स्पेशल सुविधा वैसे तरह की नहीं दी गई। अगर मेरी पोस्ट के लिए गाड़ी अवेलेबल है तो गाड़ी दिलिए मुझे, लेकिन नहीं है अवेलेबल तो ऐसा नहीं है कि भाई मुझे स्पेशली उन्होंने कोई गाड़ी दे दी हो, मुझे कोई स्पेशल असिस्टेंट दे दिया हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। ऑल्दो दिया जाना चाहिए मैं भी मानता हूँ, तो कुछ ऐसी सरकार को कोई कमेटी बना के कुछ सोचा जाना चाहिए और कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि उनका उनकी जो कैपेबिलिटी है ऐसे अधिकारियों की ऐसे कर्मचारियों की उसका हम अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अब वो तो अलग प्रश्न है, उस पर ज्यादा
0: जी निश्चित रूप से वो तो थोड़ा सा एक अलग लेवल की बात होगी, निश्चित
1: विषयांतर हो जाएगा।
0: तो यहाँ पर सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा कि मैम का भी परिचय लिया जाए और हमारे श्रोता उनको भी सुन सकें, तो मैम जरा आप भी प्लीज अपने बारे में बताएं।
2: मेरा नाम निर्मला पारी।
0: जी मैम।
2: मैं धर्मपत्नी हूँ।
0: जी मैम।
2: और क्या परिचय है हमारी शादी 9 में हुई थी।
0: जी मैम। तो आप थोड़ा सा मैम बताएं कि आप भी राजस्थान से हैं या आप कहीं और से हैं?
2: नहीं एक्चुअल हम कभी राजस्थान से थे, लेकिन हमारे दादाजी चले गए थे यहाँ से।
0: अच्छा अच्छा।
2: तो हमारे मेरा जन्म है जो उड़ीसा में हुआ था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। ओ,
2: क्या तो एक्चुअल में हम वैसे तो उड़ीसा के ही हो गए।
0: बिल्कुल मैम, अब आप राजस्थान के हो गए।
2: हाँ, हो गए।
0: तो पारिक सर ये सब जब चल रहा था प्रशासनिक सेवा, फिर टीचिंग की जॉब, उसके बाद में सरकार के साथ काम करना, तो विवाह के बारे में कब सोचना शुरू किया आपने, किस तरह वो कहानी आगे बढ़ी?
1: एक्चुअली क्या कि विवाह तो विवाह के बारे में मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स सोचा करते थे
0: जी।
1: मेरे पास कई ऐसे कुछ प्रपोजल्स आए थे जिनकी वैसे अलग अलग चर्चा करना कोई बात हो जाएगी
0: जी।
1: लेकिन वो प्रपोजल आए लेकिन मैं उन पर गौर करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि विवाह जो होता है ना वो एक लड़के एक लड़की का नहीं होता है
0: जी।
1: तो इसलिए मैं अपने पेरेंट्स की खुशी के हिसाब से ही विवाह करना चाहता था।
0: अच्छा।
1: कुछ ऐसे हमारे जो यहाँ के लोकल भी ऐसे ऐसे रिलेशन ऐसे भी मतलब रिलेशंस के मामले के जरिए भी कुछ रिश्ते आए थे
0: जी,
1: लेकिन वो बैठे नहीं, कुछ न कुछ रीजन हो जाते थे। बात तो कई दिनों से चलती थी और काफी कुछ लोग निराश भी होते थे, कुछ लोग सत्याय भी करते थे। अल्टीमेटली हमारे बुआजी फूफा जी हैं वो वहीं रहते हैं जहाँ वो घर है, मेरी धर्मपत्नी के पिताजी का घर समझो
0: जी जी,
1: वो घर जहाँ है वहीं हमारे बुआजी और फूफा जी के आस पास ही रहते थे। उड़ीसा में अनुगुल नाम की जगह है
0: जी,
1: डिस्ट्रिक्ट है वैसे तो। वो लोग मिलते जुलते रहते थे तो परिवारों की आपस में परिचय होता ही था। तो उन्होंने एक दिन पिताजी से चर्चा की
0: जी,
1: एक लड़की है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अब आप लोगों को लगेगी या नहीं पता नहीं, अगर मेरे पिताजी से उन्होंने कहा कि अगर आप सहमति दो तो मैं उनसे चर्चा करूं। बात चली
0: जी,
1: यस हो गया और शादी हो गई। मतलब पूरी तरह से फैमिली द्वारा निर्धारित और उनके द्वारा ही उसका एग्जीक्यूशन और सब कैसे हुआ
0: जी सर।
1: ये बात तो हमारी लाइफ में मतलब ठीक है, जैसे नॉर्मल
0: जी। आपने कहा सर कई प्रस्ताव आए, तो वो मतलब प्रस्ताव मतलब पिताजी के पास ही आए या डायरेक्टली आपके पास आते थे? और अगर वो समाज
1: तो आए थे मेरे पास, जो आए थे वो तो ऐसे आए थे जो कि ऐसे कहना चाहिए ना अपने सामाजिक आधार पे नहीं आए।
0: जी जी जी जी जी,
1: जो मेरे पास डायरेक्ट आए ना वो तो ऐसे आए,
0: वो आपके दोस्तों के मदद से या किसी जान पहचान
1: के या जो मेरे साथ पढ़ने वालों के या
0: मतलब मैं सीधा सीधा पूछना ये चाह रहा हूँ सर कि जब आप आरएएस ऑफिसर बन गए और वो उस जमाने में नई बात थी सही, तो समाज में परिवार में ये चर्चाएं नहीं हुई आगे होकर के कि भाई देखिए अब ये व्यक्ति बहुत काबिल हैं और इनको जो है हमें अपनी मतलब बेटी देनी चाहिए या यहाँ रिलेशन करना चाहिए, इस तरह की बातें?
1: मतलब मेरे से तो किसी ने ऐसी चर्चा की नहीं।
0: नहीं, पिताजी से आपने सुना हो? बाय द वे
1: पिताजी से भी कोई मतलब उस जमाने में शायद एक्सेप्टेंस आज के जैसा नहीं था।
0: नहीं था निश्चित रूप से सर,
1: इसलिए लेकिन क्या था कि एक्चुअली कुछ ऐसे भी रिश्ते आए थे जिनको हम लोगों ने आउटराइट ये रिजेक्ट इसलिए कर दिया
0: जी।
1: जैसे कोई जैसे मतलब कोई ब्लाइंड लड़की हो, ब्लाइंड का तो आया नहीं वैसे,
0: हाँ अदर है, अदर डिसेबिलिटी में हो भाई,
1: लड़की का आया था जैसे वो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी।
0: अच्छा,
1: तो मैंने उसके लिए मैंने तो उस समय यद्यपि मैं शादी के मामले में बीच में बोलता नहीं था, लेकिन ऐसे रिश्ते के लिए मैंने खुद भी मना कर दिया, मैं माताश्री को पिताश्री को कहा नहीं मैं ऐसी शादी नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कि मैं विकलांग व्यक्तियों को नजरअंदाज करना चाहता, मैंने कहा इससे मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी लाइफ जिंदगी में कठिनाई आ जाएगी
0: निश्चित रूप से।
1: जो लड़की बोल नहीं सके और इशारे मैं नहीं समझ सकूं,
0: बिल्कुल
1: मैं कुछ बोलूं उसको वो समझ नहीं सके क्योंकि उसको सुनता नहीं है, तो ऐसा सोना किस काम का जो कान तोड़े
0: जी।
1: ऐसे रिश्ते के लिए तो मैंने खुद ही डायरेक्टली मना कर दिया
0: जी सर,
1: तो मैं मतलब मेरे परिवार वालों ने भी आगे बढ़ते ये स्वीकार किया था कि भाई हम कोई और जैसे आंशिक
0: कुल मिलाकर के समाज में वही सब था कि भाई ये किसी तरीके से इनको डिसेबिलिटी है तो रिलेशन भी इनका ऐसे ही किसी व्यक्ति से होगा।
1: हाँ, लोगों की धारणा तो यही होती है, अभी भी मुझे लगता है यही होती है
0: निश्चित रूप से सर, यही कारण है
1: ज्यादा
0: जी
1: तो ज्यादा कॉन्टेक्ट में इस तरह के मैं आया नहीं मैं इन दिनों में
0: जी जी जी,
1: मेंटेलिटी तो कभी चेंज होती नहीं है, खाली वो क्या कहना चाहिए कि एक्टर बदल जाते हैं बाकी किरदार तो वो ही रहते हैं।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल,
1: तो वो चल रहा है वो अभी भी, बाकी उस समय भी ऐसा ही था, बल्कि उस समय कुछ ज्यादा था। आज एजुकेशन के कारण क्या आज लड़कियां थोड़ी इंडिपेंडेंट खुद होने लग गई, खुद उनकी सोच डेवलप होने लग गई
0: जी।
1: वो बहरहाल जो भी हुआ देर से मतलब जैसे भी हुआ, लेकिन शादी जो हुई तो वो कम्प्लीटली एक्सपेक्टेशंस या जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल अच्छी हो गई। और
0: तो निर्मला मैडम के यहाँ जब प्रस्ताव गया सर, तो वो तो फिर मतलब तुरंत ही स्वीकार हो गया होगा क्योंकि वो परिचित के माध्यम से गया था, तो
1: तुरंत तो कैसे होता है, वो भी वहाँ भी विचार विमर्श चल रहा है इनके परिवार में।
0: अच्छा,
1: आप ही बताएं ज्यादा बेटर है
0: जी। मैम बताएं प्लीज निर्मला मैम कि
2: मैं इतनी बड़ी तो थी नहीं
0: जी जी जी मैम,
2: 20 years 20 साल की थी
0: जी मैम,
2: तो हमारे पापा जी तो जो है ना अब तो है नहीं
0: जी,
2: वो थोड़े अलग किस्म के इंसान थे
0: जी मैम,
2: उनको योग्यता की पहचान थी, वैसा
0: क्या बात जी।
2: उन्होंने फिर भी उन्होंने विचार विमर्श किया घर पे, मम्मी है दादी और इनसे विचार विमर्श किया और उनके उनके जो जान पहचान थे उनसे विचार विमर्श किया
0: जी।
2: और फिर उनको सलाह दी कि आप एक बार देख के ऐसे मना मत करो,
0: जी,
2: मत करो
0: जी।
2: तो वो उड़ीसा से उनके जो फूफा जी है
0: जी,
2: हमारे फूफा जी मतलब उनके साथ यहाँ पे आए।
0: अच्छा।
2: फिर यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से उन्होंने देख के फिर घर गए। घर जाने के बाद मेरे से पूछा उन्होंने, उस जमाने से भी आज अब भी कई लोग ऐसे हैं कि बेटियों को पूछते नहीं
0: जी,
2: लेकिन उन्होंने मेरे से पूछा अगर तू हाँ करेगी तभी कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर।
0: जी मैम।
2: तो मैंने भी सोच समझ के, अब जितनी मेरी क्षमता थी उस टाइम सोचने की,
0: बिल्कुल मैम,
2: हिसाब से मैंने सोच के फिर हाँ भरी, फिर
0: वाह क्या बात। लेकिन कोई ऐसा रहा मैम आपके परिवार में जिसने विरोध किया हो?
2: उनका तो कोई सामने तो देखो कोई आया नहीं
0: जी,
2: क्योंकि मेरे पापा ऐसे आदमी थे वो थोड़ी अलग ही तो थे, मैंने बताया आपको
0: जी जी जी।
2: तो लोग सामने बोलने से भी थोड़ी डरते थे
0: जी जी जी,
2: पता नहीं ये क्या कह देंगे। और वो मेरे पिताजी जो थे वो मानते नहीं थे कि हम यहाँ उड़ीसा में रहते हैं, वो राजस्थान में रहते हैं
0: जी मैम,
2: ऐसी चीजें वो मानते।
0: अच्छा।
2: उनको बस उनको क्या है कि उनको योग्यता वो पहचानते थे और वो ये नहीं देखते थे कि भाई आदमी तो वो ये चाहते थे कि भाई लड़की की शादी करनी है, मान लो वो बाद में हो जाए तो ऐसे भी हो सकता है
0: जी।
2: और ऐसे भी सोचते थे वो कि मान लो मैं किसी से शादी कराऊं और वो योग्य नहीं हो, खाली मतलब सुंदर हो तो उसका क्या करना है।
0: क्या बात है जी जी जी,
2: कम से कम योग्यता तो होनी चाहिए।
0: बिल्कुल मैम।
2: पापा जी ये सोचते थे और कुछ कुछ मेरी सोच भी मेरे पापा जी की तरह।
0: बहुत अच्छी बात है मैम जी। तो आपने मैम मतलब सर से मिलने से पहले कोई परिचय थोड़ी रहा होगा आपका ये कि ब्लाइंड व्यक्ति कैसे होते हैं
2: तो
0: कैसे जी?
2: ऐसे तो मैंने बता दिया था।
0: अच्छा।
2: ब्लाइंड है और क्या कि उससे पहले हम जहाँ पे रहते थे हमारे पड़ोस में एक लड़का कॉलेज में एडमिशन लिया था।
0: अच्छा।
2: वो ब्लाइंड था।
0: अच्छा।
2: उसको मैंने देखा था वो कैसे क्या करता था, उसको मैं देखती थी तो उसको उसका ध्यान था मुझे ब्लाइंड लोग थे। तो हमारे भुवनेश्वर में स्कूल था और एक ढेंकनाल करके स्थित है वहाँ स्कूल था और मुझे कुछ पढ़ने का शौक था, कुछ पढ़ते थे और करते थे तो ऐसे इन चीजों का ध्यान था मुझे, ऐसे ब्लाइंड होते हैं ऐसे पढ़ते हैं उनके ऐसे लिखी होती है, ये सब चीजों का काफी ध्यान था। उससे वो मतलब वो जो लड़का था ना पड़ोस
0: जी मैम,
2: उससे मिलने के बाद थोड़ा सा ज्यादा जानने लगी।
0: तो सर को फिर जानना मिल सर को जानने को मिला या नहीं, शादी से पहले कुछ बात बात करने का मौका मिला था?
2: नहीं, बात करने का मौका
0: नहीं मिला। अच्छा, पूरा मतलब एक वो जो अरेंज मैरिज की तरह जो होता है वैसे ही सब कुछ हुआ आपके मामले में? फिर भी कभी मन में ही थी पूरी? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा मैम ने बताया भी कि एज भी थोड़ी सी इतनी ज्यादा नहीं थी तो इसलिए भी मैम मैम को कुछ ज्यादा मतलब विकल्प थे नहीं कि वो जाने बात करें, क्यों सर?
1: ऐसा तो नहीं था,
2: ऐसा तो नहीं था,
1: क्योंकि जो हमारे ससुर जी ना वो इस तरह के मॉडर्न विचारधारा के थे।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो वो ये कभी पसंद नहीं करते थे कि भाई मैं किसी भी तरह से अपनी बेटी पर कोई दबाव डालूं या उसको किसी भी तरह का प्रेशर या कुछ, चाहे वो डराने का हो समझाने का भी नहीं करते थे। वो कहते कि नहीं, अगर योग्य है तो मुझे योग्य लगता है लड़का, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अकेला नहीं मेरी बेटी को भी पसंद आना चाहिए। उस जमाने में लड़कियों को इतना भी ज्यादा दिखाने का रिवाज नहीं था, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, आजकल के जैसे कई कई बार मिल लेते हैं वैसे नहीं था, लेकिन फिर भी दिखाने का रिवाज तो उस समय भी चल पड़ा था।
0: जी जी जी।
1: हम तो दूर थे ना थोड़े
0: जी,
1: पर्सनली हमारे लिए तो देखना थोड़ा मुश्किल था
0: बिल्कुल
1: पहले मिलना
0: जी,
1: बल्कि हम तो शादी के बाद भी अभी कहना चाहिए फेरे वगैरह होने के बाद ही मिले थे पहली
0: बार। जी लेकिन सर प्रशासनिक सेवा में रहते हुए कभी आपको काम करने का या सोचने का अवसर मिला कि भाई वाकई में ये जो विवाह का मामला है इस क्षेत्र में भी जो है दिव्यांगों के लिए काम किया जाना चाहिए, ऐसा कभी अवसर मिला आपको? सर
1: अवसर तो क्या मतलब ऐसा कुछ करने का अवसर मुझे नहीं मिला, लेकिन सोचते तो हम हमेशा थे, जब भी कोई ऐसा कोई भी उचित मंच होता उस पर भी हम चर्चा ये किया करते। मैं ये समझता भी हूँ क्या है कि पर्टिकुलरली ब्लाइंड व्यक्ति के लिए तो उसके स्पाउस से ज्यादा विश्वसनीय कोई और हो नहीं सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, निश्चित रूप से।
1: और किसी भी मामले में कुछ भी हो सकता है, आपकी कितनी कोई मदद करे, आर्थिक मदद करे, कुछ करे वो करे, लेकिन आप विश्वास तो स्पाउस पर जितना कर सकते हो उतना किसी और पर नहीं कर सकते। अगर मैं तो कभी कभी मजाक में ये भी कहता हूँ कि अगर मेरी पत्नी मुझे कहे कि इस कागज पर साइन कर दो, ठीक है उसमें आप अगर वो मेरी पत्नी अगर ये चाहे कि भाई मैं इसमें फंस जाऊं, फंस जाने तो फिर क्या है। तो यहाँ तक समझता हूँ, विचारधारा तो ये है।
0: बिल्कुल सर।
1: अगर ऐसा नहीं है तो आपकी शादी कायम ही नहीं रह पाएगी। वैसे ही रोजाना वो तो पहले पता चल जाता है, रोजाना झगड़े होते हैं, या कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, माहौल खुद खुद कोई क्रिएट करना होता है और अपने आप को समझना होता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि ये वैसे देखा जाए ना, मैं भी इस बात को समझता हूँ। अगर आपने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है ना, ये मामले में देखा जाए तो मैं बधाई भी देना चाहूंगा
0: जी, धन्यवाद।
1: इस तरह के कार्यक्रम कम से कम इससे जागृति तो आएगी आएगी
0: निश्चित रूप से।
1: जागृति के अलावा एक और चीज होगी कि समझ भी डेवलप होगी।
0: बिल्कुल,
1: समझ बहुत जरूरी चीज होती
0: है, बहुत जरूरी है सर।
1: मैं मतलब जब हम छोटे थे तो भी मैंने ये सुना था कि हमारे मेरे सीनियर पढ़ने वालों में सीनियर थे कोई
0: जी,
1: उनसे कोई लड़की प्यार करती थी, लेकिन मैंने बाद में सुना था, मैं तो मिला नहीं देखो
0: जी
1: बात जी, लेकिन मैंने ये सुना था कि वो प्यार तो करती थी लेकिन शादी करने के लिए तैयार नहीं।
0: बताइए, वही बात है सर, समझ वाली जो बात कही ना आपने, समझ विकसित होना बहुत जरूरी है। जी सर,
1: तो समझ विकसित होनी चाहिए, और समझ विकसित होने की एक और चीज है
0: जी,
1: अगर उनके सामने ऐसे एग्जाम्पल सेट हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उनके सामने, तो शायद उससे थोड़ी मदद मिल सकती है। इसलिए कुछ इस तरह के केसेस को अगर आप प्रकाश में लाते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, जैसे कि आपका ये प्रोग्राम है, ये अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जा सकते हैं, जैसे हमारे जो संगठन चलते हैं
0: जी,
1: वेलफेयर के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाते हैं
0: जी,
1: ऐसे फंक्शंस भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम कई बार ये देखते हैं ना कि ऐसे कपल्स का एक कॉम्पिटिशन कराते हैं
0: जी,
1: बेस्ट कपल ऑफ द ईयर
0: बिल्कुल
1: सिलेक्ट करके उनको आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि उनको आप कोई बहुत महंगे कीमती अवार्ड्स दो, प्राइस दो, ऐसा नहीं, उनको खाली सर्टिफिकेट दे सकते हैं हम, या केवल उनका अनाउंसमेंट भी करेंगे ना, उससे भी बहुत कुछ मिल सकता है
0: जी।

0: गौर करो।
1: और इस मामले में भी सर कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि मतलब जो डिसेबल्ड जो पुरुष हैं उनकी स्थिति थोड़ी ज्यादा बेहतर है, लेकिन लड़कियों की स्थिति आज भी चुनौतीपूर्ण है, चिंताजनक है, खासकर विवाह के मामले में।
0: स्थिति इसलिए ज्यादा चिंताजनक है
1: जी,
0: क्योंकि जो लड़की है उससे एक्सपेक्टेशंस तो ज्यादा है।
1: जी जी,
0: क्या होता है कि आम लड़की भी है जब शादी करके अपने ससुराल जाती है ना, उससे इतनी अधिक एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है
1: जी,
0: वो बेचारी खुद अपना जीवन तो भूल जाए और ये मेरी सासू है, ये मेरी ननद है, ये मेरा जेठ है, ये मेरा पति है, ये मेरा ससुर है, और बाद में बड़ी हो जाए तो ये मेरे बच्चे हैं
1: जी।
0: तो वो मतलब महिलाओं की स्थिति इस मामले में वास्तव में परेशानी पैदा करने वाली है। मैं कई बार इस बात को बहुत सोचता हूँ। तो इसलिए क्या है कि कोई डिसेबल लड़की होती है उसको आमतौर पर महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि ये सोचते हैं लोग कि जब हमारे घर के एक्सपेक्टेशंस जो है ना उनको ये शायद फुलफिल नहीं कर पाए
1: जी,
0: हो सकता है कि इसकी जो डिसेबिलिटी है वो हमारे दैनिक जीवन में और हमारी जो परफॉर्मेंस है इसमें बाधा से बाधक, क्योंकि अभी तक अपन ये देखते आए हैं कि कोई भी डिसेबल लड़का है तो उसकी अगर पोस्टिंग हो जाती है कहीं पर
1: जी,
0: किसी भी पोस्ट पर, टीचर बन गया, ऑफिसर बन गया, ऑफिसर नहीं बना, टीचर बना, टीचर से और भी छोटी पोस्ट भी मिली, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बना, लेकिन जब वो बन जाता है तो यूं मान लेते हैं कि ये तो सक्सेसफुल हो गया अपनी लाइफ। लेकिन लड़कियों के लिए केवल कुछ जॉब प्राप्त कर लेना गारंटी नहीं है सफलता
1: जी,
0: इसलिए लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए कुछ ऐसा सोचा जाना चाहिए, ये कम से कम हमारे ग्रुप के लेवल पे विचार किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, शायद इसका सॉल्यूशन और भी मुश्किल है, तो इसलिए बहुत अधिक प्रयत्न करने की जरूरत है
1: जी जी।
0: तो मैं आशा करता हूँ कि आज अगली जो जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग अभी जो विचारार्थ जो लोग हैं वो लोग इस पर गौर करें, कुछ सोचें, समझें, क्रियान्वयन करने की कोशिश करें।
1: जी जी, तो सब कुछ होते हुए सर, इतनी सारी सुविधाएं होते हुए भी, और कहीं ना कहीं मतलब आपको लगा कभी किसी मोड़ पर कि आपके जीवन में भी कोई चुनौती है विवाह के बाद, कहीं पर अपने आप को कमजोर महसूस किया आपने सर?
0: देखो वैसे जहां तक दो तीन चीजें होती हैं, एक तो आप कार्यस्थल पर
1: जी,
0: कार्यस्थल पर तो मुझे वैसे ये तो भावना कभी नहीं आई
1: जी,
0: लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि कैसे कैसे लोगों से मुझे डील करना पड़ रहा है, और क्योंकि और ऐसे लोग हैं जो मेरे से बहुत ही कम, बहुत ही लो लेवल की परफॉर्मेंस है, फिर भी उनको सम्मान ज्यादा मिल रहा है, या उनको सम्मान के अलावा भी उनको काम भी कुछ अधिक अलग तरह से दिया जाता है
1: जी।
0: और उनकी लेकिन इस मामले में तो प्रॉब्लम होती थी, रोजाना ही होती थी, लोग मिलते थे। कई बार ऐसे होता था कि हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते थे जो एक इक्वल रैंक के अगर दो ऑफिसर हैं तो वो मुझे कम महत्व दे रहे हैं, कई बार फील होता था। और लेकिन मैंने ये देखा कि जो मीडियम लेवल के जो लोग हैं ना उनमें ज्यादा सपोर्ट है।
1: अच्छा,
0: जो लोग बिल्कुल तो बहुत कम पढ़े लिखे या बहुत छोटे लेवल के कर्मचारियों में भी जो बहुत ही छोटे पद पर जो थे उन लोगों में कभी दिक्कत होती थी, या फिर बहुत बड़े जो लोग थे जो हमारे आउट ऑफ टच रहते थे कभी। बाय द वे एक दिन हमारे चेयरमैन साहब मुझे कहते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन
1: जी,
0: कहते हैं आप तो वो हो ना जो सरकार से कोर्ट में लड़के आए थे।
1: अच्छा,
0: मैंने कहा सॉरी सर, मैं तो कभी मेरे किसी भी मामले के लिए कोर्ट में गया नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी
1: जी।
0: चेयरमैन इतने बड़े ऑफिसर होते हैं कि उनको जवाब देना थोड़ा और लगता है, लेकिन मुझे देना पड़ा।
1: बिल्कुल सर,
0: पता नहीं था कि देना
1: जी,
0: देना पड़ा। मतलब सर सॉरी, लेकिन आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई कभी मेरे किसी भी मेरे मामले के लिए कोर्ट में कभी गया नहीं है, केवल सरकारी मामलों के लिए कोर्ट में गया हूँ सरकार की तरफ से
1: जी।
0: तो ऐसे कभी कभी ऐसे देखा है मैंने कि भाई घंटी बजा रहे हैं तो दो घंटी बज गई, मान लो दोनों बराबर के अफसरों में, तो हो सकता है कि कई बार दूसरा जो है उसके पास लोग वो पहले जा रहे हैं सबका, ऐसा कभी कभी देखा है। लेकिन जितने दिन मुझे ज्यादा हो जाते थे जिस ऑफिस में मुझे

0: फील हुआ हमेशा। ये शुरू शुरू में होती थी ये प्रॉब्लम, जिस ऑफिस में हम शुरू में ज्वाइन करता मैं तो होती थी, लेकिन जैसे जैसे मुझे वहाँ टाइम बीतता था तो मैंने ये देखा कि सभी लोग मेरे से ज्यादा फ्रेंडली हो जाते थे और इतना उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग जाता।
1: ये सर अक्सर कई लोगों की शिकायत सुनने को मिलती है, अभी भी मिलती है, जो आजकल जो प्रशासनिक सेवाओं में जो लोग जा रहे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं दिया जाता है, उनको जो सबॉर्डिनेट और जो जूनियर हैं वो रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, इग्नोर करते हैं। तो अभी अगर इस कार्यक्रम को आपके इस तरह के जो युवा साथी सुने हैं मान लीजिए, तो उनको उनको अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए और अपना कहीं ना कहीं एक मुकाम स्थापित करने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर?
0: तो पहली सलाह तो मैं यही दूंगा, आप चूंकि हमें एक कमी है तो उस कमी को, जैसे आपके पास अगर कम पैसे हैं और आपको खाना खाना है तो हो सकता है कि आप खाने का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का तैयार करें कि आपकी लिमिटेशंस में वो तैयार हो जाए, तो कुछ कट किया जा सकता है, सलाद वगैरह कट कर दिया या दूसरा। तो लेकिन उसके लिए मेरा सजेशन तो ये होगा कि एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े। आप ये मत सोचिए दूसरे जो बराबर के अधिकारी कर्मचारी को जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत में आपको उनके बराबर सफलता मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं
1: जी।
0: आपको कुछ जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहली शर्त
1: जी।
0: दूसरी बात यह है कि आप अपने मन में ये मान लीजिए कि आप में कुछ तो कमी है ना
1: जी,
0: आपको उसको स्वीकार करते हुए उसका सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि आप कभी उन लोगों से अनावश्यक रूप से शत्रुता नहीं लें, किसी से अनावश्यक रूप से किसी पर अत्यधिक विश्वास नहीं करें, हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें और अपने लेवल पे ऐसे ऐसे तरीके इजाद करें कि आप जो काम कर रहे हैं
1: जी
0: उसमें जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर भरोसा हो कि आपने जो किया है वो आप किसी के कहने से नहीं कर रहे हो। एक मैं बहुत छोटा सा सजेशन ये देना चाहूंगा, कभी किसी को ये मैसेज नहीं पहुंचना चाहिए कि नहीं वो फला फला जो एक्स एक्स कर्मचारी है उसके कहने से तो साफ साइन कर ही देंगे।
1: ओ जी जी जी जी,
0: तो अगर किसी के मन में भावना जमा हो गई, किसी के मतलब दूसरे के व्यक्ति व्यक्ति के मन में भी
1: जी,
0: क्या इस तरह का प्रचार भी आपके ऑफिस में हो गया, आपके कॉलीग्स में अगर इस तरह की बात चलने भी लग गई ना, तो वो बहुत नुकसानदायक हो सकता है
1: जी।
0: ये कभी भी इस तरह का अपनी तरफ से कभी भी किसी को ऐसा सोचने का अवसर नहीं, बल्कि सबको ये होना चाहिए कि नहीं यार ये तो मतलब खुद अपने लेवल पे इनको खुद को भरोसा हो तभी ये तो साइन करेंगे या फिर कोई काम करेंगे या कोई बात करेंगे। पर आप अनावश्यक रूप से झगड़ा करने की या इस तरह की अगर आपकी प्रवृत्ति होगी तो आपको जरूरत से ज्यादा नुकसान होगा।
1: बिल्कुल,
0: सामान्य आदमी झगड़ा कर सकता है लेकिन आप झगड़ा करोगे तो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप अपने आप को सुपर ईगो रख के या इस तरह का कोई काम करो ना, तो वो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, एक मतलब मेरे एक टीचर कहा करते थे कि तो चर्चा कर रहे थे कि आप में कुछ विजुअल मतलब एक दिन चलते चलते किसी के सामने एक गाड़ी खड़ी थी वो रुक गया
1: जी,
0: साथी का उसने किसी ने पूछा कि आप में कुछ विजुअल सेंस है कि आप कैसे रुक गए, गाड़ी गाड़ी खड़ी है सामने तो उससे टकराए कैसे नहीं, तो ये विजुअल सेंस तो नहीं है लेकिन इंडिविजुअल सेंस है। तो आपको इंडिविजुअली इतना, मैं आपको बहुत छोटा सा एक मेरा उदाहरण बताना चाहता हूँ, वैसे तो बहुत उदाहरण है लेकिन मैं एक छोटा सा बताऊँ कि मेरी पोस्टिंग एक प्राइमरी स्कूल में हुई
1: जी।
0: हम सिर्फ दो टीचर थे जब मैंने ज्वाइन किया, उसके दिन शाम को ही लोगों ने बच्चों ने जाके अपने घर पे बताया कि हमारे स्कूल में एक ऐसे टीचर आए जिनको दिखता नहीं है बिल्कुल
1: जी।
0: दूसरे दिन उनके सारे पेरेंट्स ने उनको स्कूल भेजने से इनकार कर
1: बताइए जी,
0: तो कि जब टीचर को दिखता ही नहीं है, खुद को ही नहीं दिखता है तो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे,
1: क्या पढ़ाएंगे बिल्कुल जी। तो
0: आप अचंभा करेंगे कि वो सारे गांव के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे, लेकिन उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स पर भरोसा नहीं करके उन्होंने ये कहा कि हो सकता है बाबा आपकी बात सही हो लेकिन हमको एक दो दिन जाने तो दो, अगर वो नहीं पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे तो हमको छोड़ा देना स्कूल
1: जी।
0: बच्चों की ये बात सुन के आप एंकरेज हो सकते हैं, जो बच्चे ना समझते प्राइमरी स्कूल के बच्चे उन्होंने इतना अच्छा जवाब अपने पेरेंट्स को दिया
1: बिल्कुल,
0: पेरेंट्स ने हमको बताया
1: जी।
0: और उसके बाद जब बच्चे आने लगे एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन, तो उसके बाद जब मेरा ट्रांसफर होने लगा वहां से, तो वो सारे बच्चे बोले कि जिसने ट्रांसफर किया है वो कहाँ है हमको बताओ, हम उनका सिर फोड़ देंगे। और सारे पेरेंट्स है वो रोने लगे कि गुरुजी आप तो ना ट्रांसफर कैंसिल कराओ। मैंने भाई कोई मंत्री संतरी मेरा दोस्त नहीं है, ना मेरा रिश्तेदार है, मैं तो एक्चुअली चाहता था ट्रांसफर कराना, क्यों गांव थोड़ा दूर था हमारे गांव से। तो मैंने उनको इसी तरह से मनाया, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह से मेरा ट्रांसफर कोटा से जयपुर हुआ था एक बार, तो हमारे जो रीजनल कमिश्नर थे वहां पर मोहंती जी थे, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैं तो रिलीव नहीं करूंगा। वो उस समय कलेक्टर हुआ करते थे, अभी तो बाद में डिविजनल कमिश्नर जयपुर में रहे।
1: जी जी जी।
0: तो वो कलेक्टर थे, वो बोले नहीं मैं तो रिलीव नहीं करूंगा आपको। मैंने बड़ी मेहनत से उनको रिक्वेस्ट करके मैंने कहा सर जयपुर ट्रांसफर हुआ है, और कहीं हो रहा हो तो मैं आप बात मान लेता, लेकिन अब कोटा की जगह अगर मैं जयपुर जा रहा हूँ तो आप रिलीव कर दो, तो आप मेरा भला ही तो करोगे। तो बोले ठीक है, अब जब आप ये कह रहे हो कि मेरा ही भला हो रहा है तो कर देता हूँ, बात मेरी इच्छा तो नहीं है।
1: ये
0: आपके ऊपर निर्भर करता है
1: जी, जी।
0: ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है, आपकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन मुझे ये मैं जरूर कहूंगा कि आपको कल आपको जरूर गड़बड़ होगी, मतलब जब आप किसी ऑफिस में पहली पहली बार जाओगे ना, शुरू शुरू में आपको दिक्कत ही होगी, क्योंकि शुरू में ना तो आपका ऑफिसर आपको काम देना चाहेगा, वो सोचेगा कि अगर उसको काम कराए बिना मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट करके भी हो जाए तो ठीक है, इनको तो बैठे रहने दो। ये सोचेगा आपके सबोर्डिनेट ये सोचेंगे कि ये नहीं हो और इनकी जगह दूसरे सर से हम मिल लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये समझेंगे थोड़ी हमारी बात। लेकिन जैसे जैसे आपका व्यवहार आप इनके साथ इंटरेक्ट करोगे और अगर आप अच्छे से करोगे, एक मैं बहुत जरूरी चीज होती है वो है आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना।
1: बिल्कुल सर।
0: और अगर आप अपने नॉलेज से लोगों को परास्त कर दोगे ना, तो लोग आपसे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
1: क्या बात है, बहुत सही कहा सर।
0: नॉलेज अगर नहीं हुआ, अगर आपको नॉलेज नहीं हुआ ना, तो आप कभी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते।
1: बिल्कुल।
0: तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं
1: जी।
0: और बाकी मैंने अभी तो पूरा तो सोचा नहीं है, इसलिए मुझे अभी अभी जो क्या कहना चाहिए तत्काल मुझे जो समझ में आई वो मैंने आपको कुछ बताई है।
1: निश्चित रूप से ये कई लोगों को,
0: जब मेरे से कोई ऐसे आरएएस जो नए बनते हैं आकाश अरोड़ा वगैरह बात करते हैं कोई, तो मैं उनको सजेशन ऐसे देता हूँ, तो वो कितना इम्प्लीमेंट करते हैं या कर पाते हैं ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने फीडबैक तो लिया नहीं।
1: जी जी जी।
0: तो मैं तैयार भी हूँ, अगर बाय द वे आपके प्रोग्राम के माध्यम से किसी को अगर कोई फीलिंग आए और वो मेरे से अगर कभी भी कांटेक्ट करना चाहे ना, मैं रेडी हूँ।
1: जी जी जी। क्या बात।
0: कभी भी किसी भी तरह का मोटिवेशनल गाइडेंस या टेक्निकल गाइडेंस या कुछ भी अगर ऐसा चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस जितने भी है मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ, मैं करता हूँ
1: जी।
0: लेकिन फिर भी अगर कोई और व्यक्ति भी ऐसा हो जो नए बच्चे बनना चाहते हैं, वो भी अगर मेरे से शेयर करते हैं या मेरे से विचार विमर्श करते हैं, कुछ लोग आके घर आके भी बात करते जाते हैं मेरे
1: से,
0: जो मेरा इंटरव्यू है मैं क्या करूँ क्या कहूँ या इस तरह की बातें करते हैं, फोन पर भी कई लोग मेरे से राय लेते हैं।
1: जी जी जी।
0: लेकिन फिर भी मैं और ऑफर ये दे सकता हूँ, मेरी तरफ से इतना कर सकता हूँ कि अगर कभी भी जो मुझे नहीं भी जानते हैं
1: जी,
0: तो बाय द वे अगर वो मेरा सोर्स कोई ढूंढ के किसी आप लोगों के माध्यम से या किसी भी तरह से मेरा फोन नंबर लेके कैसे भी आए कॉन्टेक्ट करें,
1: निश्चित रूप से जो भी संपर्क करेंगे उन्हें आपका नंबर दे दिया जाएगा सर, ताकि जी जी जी लोग सीधे आपसे बात कर सके। मैं चाहूंगा थोड़ा सा मैम से बात करते हैं, काफी लंबी चर्चा हो गई और ये बहुत जरूरी भी है सर, कुछ चीजें क्लियर भी होना, लेकिन एक घंटे में सब कुछ समाहित भी नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के आपका संघर्ष प्रशासनिक सेवा में ज्यादा रहा, पारिवारिक और घरेलू संघर्ष तो कुछ इस तरह का नहीं रहा आपके साथ, ये बहुत अच्छी बात।
0: घरेलू संघर्ष नहीं रहा, घरेलू संघर्ष शुरू में कोई मतलब, फिर हर फील्ड में घरेलू सामाजिक में भी ऐसा होता है
1: जी,
0: कि आप जिन लोगों से परिचित नहीं है ना
1: जी,
0: उन लोगों में एस्टेब्लिश होने में आपको थोड़ा समय लगेगा।
1: जी जी जी।
0: मतलब ऐसा हो चुका है कि मुझे बस में ट्रेवल करते टाइम भी कुछ लोगों से मतलब अनकंफर्टेबल फील हुआ
1: जी,
0: लेकिन क्योंकि वो लोग मुझे जानते नहीं है इसलिए हुआ है। तो लेकिन मैंने फिर ये देखा कि अगर वो आधे घंटे एक घंटे मेरे साथ रहा वो मान लो उसी बस, फिर उससे मैं अनकंफर्टेबल फील ना तो मैं कर रहा था ना वो कर रहा
1: जी।
0: तो ये मैं सभी को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप अच्छे से पूरी मेहनत से पूरी अपनी शक्ति लगा के मेहनत कीजिए। ये कभी मत सोचो कि कुछ कर नहीं पाएंगे, ये भी मत सोचो कि हम कोई सुपरमैन है सब कुछ कर पाएंगे। इसलिए ऐसा कहो कि जो जरूरत है वो सब करो।
1: जी जी मैम, तो थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताएं निर्मला मैम हमारे सुनने वालों को। जी कितने बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं आजकल?
2: दो बच्चे हैं।
1: जी मैम।
2: एक की तो गुड़िया की तो हो गई शादी।
1: अच्छा मैम। जी
2: वो अपने ससुराल में है।
1: जी तो वो जॉब करती हैं गुड़िया?
2: वो नहीं करती है अभी तो फिलहाल, पहले करती थी।
1: जी
2: अब शादी होने के बाद वो थोड़े दिन तो नहीं करी।
1: जी
2: फिर अब सोच रही है करने की, तो जो उसका हस्बैंड है उनका गुड़गांव में पोस्टिंग हो गई।
1: जी
2: तो अब कोरोना के चक्कर में गए नहीं, तो वहाँ जाने के बाद वापस।
1: वाह बहुत। और कौन है उनके अलावा?
2: है।
1: जी
2: इंजीनियर है।
1: अच्छा वेरी गुड। जी मैम
2: है वो।
1: जी
2: अमेरिकन कंपनी है ऑटोमेटिक करके।
1: जी जी तो मैडम सर तो प्रशासनिक सेवाओं में रहे का समय सारा, बल्कि एक्स्ट्रा समय भी सर का तो वहीं लग जाता होगा सारा, और घर की परिवार की और बच्चों की परवरिश की सारी जिम्मेदारी ज्यादातर आप पर ही रही होगी। कभी कोई मुश्किल आई आपको?
2: नहीं कोई खास मुश्किल, अब बच्चे छोटे होते हैं तो सभी लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किल आती ही है।
1: जी
2: तो कोई खास नहीं है, हम दोनों ने मिल के
1: कभी आपको ऐसा हुआ कि कोई शिकायत रही सर से? मैं जानता हूँ कार्यक्रम में वैसे आप मना ही करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं किसी मोड़ पर आपको लगा हो?
2: कोई शिकायत तो नहीं।
1: जी जी जी जी मैम। जी मैम
2: तो उसमें मुझे घर में सेट होने की, सबके साथ बोलने की थोड़ी
1: सी परेशानी। जी चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये तो
0: एक्चुअली वही हुआ जो अभी मैं कह रहा था ना कि शुरू में प्रॉब्लम आती है।
1: जी सर जी सर।
0: और जैसे जैसे समय बीतता है
1: जी,
0: ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कभी हम लोग में विरोधाभास नहीं हो, लेकिन हमें इतनी क्षमता है कि हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं या रिजेक्ट करते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत अच्छी बात है सर। और
2: ऐसे ऐसे जैसे दिक्कतें हुई, कुछ दिक्कतें हुई
1: जी मैम,
2: ट्रेवल करने में इसमें कुछ दिक्कतें हैं, जैसे सर ने बताया कि कुछ ऐसे होती थी बसों में और ऐसे लोगों का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दूसरी तरह का होता था, इग्नोर करते थे कभी किसी से, थोड़ा जोर से बोल भी दिया, इस तरह की कुछ हुई धीरे धीरे हो गया।
1: जी
2: तो आपको पता है कि होती है।
1: हाँ ये तो सब जगह की परिस्थितियां हैं। जी जी जी वाह बहुत खूब मैम। तो अब लगभग कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है मैम, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों से?
2: अब ये है जैसे लड़कियों को अपने सोच समझ के विचार करके और अपने क्षमता से जो भी करें, जैसे शादी करने का मामला तो
1: जी जी बहुत धन्यवाद मैम। तो सर अब कार्यक्रम के ठीक अंत में मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे सभी सुनने वालों को अपनी तरफ से कुछ संदेश दीजिए प्लीज।
0: बस मैं तो मुझे लगता है कि मैं पूरे प्रोग्राम में संदेश ही देता रहा हूँ।
1: जी जी जी जी
0: संदेश से भी ज्यादा उपदेश हो गया है।
1: जी बाकी जी जी
0: बाकी थोड़ा क्या है कि ये तो रिटायरमेंट की लाइफ में शायद हो ही जाता है कुछ ऐसा।
1: जी जी
0: वो उपदेश बन जाते हैं। बाकी एक्चुअली मैं ये क्या है कि मैं बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हूँ।
1: जी
0: मैं हमेशा ये कहता हूँ कि केवल आरएएस बहुत अच्छी सर्विस है, इस आधार पे आरएएस में जाने के लिए मत ट्राई कीजिए।
1: जी
0: केवल ये सोचिए कि आपकी रुचि क्या है, आप किस फील्ड में जाना पसंद करते हैं, अब अपने आप को ये महसूस है कि मैं ब्लाइंड हूँ इसलिए मुझे इसमें जाना चाहिए, ब्लाइंड हूँ इसलिए इसमें नहीं जाना चाहिए, ये मत सोचिए।
1: वाह,
0: ये सोचिए कि आप किसमें, मतलब आपका मन किसमें है, दिल किसमें है। खाली दिमाग से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से विचार विमर्श करके और फैसला करो। और अगर कोई, वैसे जहाँ तक इस प्रोग्राम का की थीम है हमराई के हिसाब से, उस हिसाब से अगर शादी के बारे में अगर किसी को भी डिसीजन लेना है ना, तो ओवरऑल एक पैकेज के रूप में चर्चा करके विचार विमर्श करें, न कि केवल एक किसी चीज पर कि भाई ये इसकी आंखें खराब है, इसकी टांग खराब है, इसका दिमाग खराब है, इसका इनकम नहीं है, या इसकी एजुकेशन कम है, मतलब तो एक किसी चीज को फोकस नहीं करें, बल्कि ओवरऑल पैकेज के रूप में उसको देख के और अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह से खुले दिमाग से सोच कर तो डिसाइड करें तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। और हमेशा डेमोक्रेटिक बने रहिए, कभी ये मत सोचिए कि मैं हूँ तो मेरी बात हमेशा सही है, ऐसा हो सकता है कि आपकी बात गलत हो, और गलत जैसी कोई बात नहीं है, तो ओपिनियन होते ना गलत और सही नहीं होते बल्कि डिफरेंट होते
1: जी।
0: इस बात को हमेशा स्वीकार करें
1: जी,
0: तो आपस में ओपिनियन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, गलत और सही नहीं होते।
1: बिल्कुल सही है सर,
0: एक दूसरे को सोच के समझ के विचार विमर्श करें, उस हिसाब से एक्शन प्लान बनाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सर, हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें श्रोताओं से करने के लिए। तो जी उम्मीद है श्रोताओं आपका ये, आपको आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। आप अपने सुझाव अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए डायल करें 94-14-15-14-15। रेडियो मधुबन का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से, रेडियो मधुबन के ही नाम से है। अगर आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in पर कर सकते हैं। तो इंतजार रहेगा आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का। और इजाजत दीजिए आज, तो मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।

0: साथी नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान अनिल कुमार अग्रवाल सर दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, और आप विशेष सीनियर मैनेजर हैं NCL में विशेष रूप से, और काफी अच्छा लगा मुझे जब आपके बारे में सुना। तो आज हम लोग आपसे कुछ खास बातें, आपके जीवन के कुछ अनमोल अनुभवों को सुनेंगे, और बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा आपके बातों से, आपके विचारों से। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा सेशन होगा आज के इस प्रोग्राम में। और आप कोल इंडिया से बिल्कुल सेवा आपने दे रहे हैं उसमें, तो बहुत बहुत स्वागत है अनिल कुमार अग्रवाल सर आपका आज के इस प्रोग्राम में बातें मुलाकातें जी।
1: धन्यवाद।
0: ओम शांति। अनिल कुमार सर, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा हूं।
0: जी जी जी, मैं चाहूंगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई कोल इंडिया से जुड़ने का। जी,
1: मैंने एक्चुअल में माइनिंग इंजीनियरिंग की थी, डिग्री की थी माइनिंग इंजीनियरिंग। उसके बाद में कोल इंडिया ज्वाइन किया मैंने, और कोल इंडिया ज्वाइन करने के बाद में तीन सब्सिडियरी में रहा, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, महानदी कोलफील्ड में, और अभी वर्तमान में 8 महीने से NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में पदस्थ हूं मैं।
0: बहुत बढ़िया। तो मैं चाहूंगा कि इस फील्ड में, जैसे कि हम लोग अगर युवा साथी आना चाहते हैं माइनिंग के क्षेत्र में, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे? आज वर्तमान में जब आप जुड़े थे उस समय क्या सिचुएशन था, और आज युवाओं के लिए क्या क्या नया आयाम खुले हुए हैं, और आपकी ज्वाइनिंग के समय में किस तरह की चीजें फॉर्मेलिटीज होती थी, आज क्या फॉर्मेलिटीज है, वो थोड़ा सा बताइए।
1: एक्चुअल में अगर कोई माइनिंग इंजीनियरिंग पढ़ के ज्वाइन करना चाहता है तो कोल इंडिया लिमिटेड साल में रिक्रूटमेंट निकालता है जो भी ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं उनके लिए, और जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनके लिए सब्सिडियरी बेस पे रिक्रूटमेंट होता है। NCL, SCCL, WCL, मतलब जो अनुसंगी कंपनियां हैं कोल इंडिया लिमिटेड की, वो अपना अपना रिक्रूटमेंट करती है। एज ए सुपरवाइजर उनको रखा जाता है ओवरमैन के रूप में। तो इसका क्या है कि जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स है उनकी नियुक्ति डायरेक्ट कोल इंडिया लिमिटेड करता है, और वो अपनी अनुसंगी कंपनियों में आवश्यकता के अनुरूप उनकी पदस्थापना करता है, जहां पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। अभी एक्चुअल में जो पहले और अभी में माइनिंग का सिनेरियो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। अभी हमारी देश की एनर्जी रिक्वायरमेंट काफी बढ़ गई है, और हमारा जो लक्ष्य है कि हम जो कुछ कोयला इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से इधर से, तो हमारी करेंसी इंडियन करेंसी जा रही है, हमको करेंसी वहां देना पड़ रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट का भी मेन लक्ष्य है कि हम मैक्सिमम यहाँ पे प्रोडक्शन करें और इंपोर्ट को खत्म कर दें, और इंपोर्ट को खत्म करें। अभी हम लोगों का 80% करीब पावर प्रोडक्शन जो हो रहा है वो थर्मल बेस्ड को पावर प्लांट से हो रहा है, जो कि कोल इंडिया के पुले के द्वारा ही हो रहा है। बाकी रिसोर्सेज हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में आपका वाइंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, तो ये भी इंडिया में अभी उतना एडवांस लेवल पे नहीं आया है। आने वाले समय में बोल रहे हैं कि पॉल्यूशन वगैरह को खत्म करने के लिए धीरे धीरे कोल इंडिया को खत्म करेंगे, जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज है आपकी अमेरिका वगैरह, वहां पे कोल माइनिंग वगैरह काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो रही है, अब धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं।
0: अच्छा।
1: कि पॉल्यूशन वगैरह खत्म किया जाए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली वातावरण रहे पूरा, लेकिन इंडिया को उस लेवल पे पहुंचने में अभी समय लगेगा। अभी वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड लास्ट ईयर 625 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया था, और इस बार एक्सपेक्टेड है कि 700 मिलियन टन करेगा। और अभी गवर्नमेंट ने काफी माइंसों को आउटसोर्स भी किया है, जैसे हमारा मेजर कंज्यूमर है NTPC, NTPC सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से ही बिजली का उत्पादन करता है। तो अभी उन्होंने भी क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से माइन से ली है लीज पे, और खुद भी वो प्रोडक्शन करेंगे, कोयला निकालेंगे, प्राइवेट सेक्टर्स को भी माइन से दी जा रही है। तो अभी
0: अच्छा अच्छा
1: 850 मिलियन के आसपास हम लोग पहुंचेंगे इस साल लग रहा है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया करंट सिनेरियो के बारे में, और हमारी युवा साथियों के लिए आपने कहा कि जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए हर साल जो है एजेंसीज विशेष रूप से निकलती हैं, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इसमें अब जैसे कि अलग जो रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल सोलर है या फिर विंड पावर है, तो इसमें डेवलप करने में क्यों टाइम लग रहा है, क्या कारण है?
1: ये अभी क्या है कि सोलर एनर्जी वगैरह के लिए उतना स्पेस और उतनी हम लोगों को टेक्नोलॉजी अभी धीरे धीरे काफ़ी एडवांस हो रही है, लेकिन क्या है कि उस लेवल पे अभी नहीं पहुंची है। जैसे न्यूक्लियर पावर वगैरह का भी आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो जितनी इंडिया में, इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाली कंट्री है आफ्टर चाइना, तो इंडिया में कंजम्पशन भी काफ़ी है, डिमांड काफ़ी है एनर्जी की। और अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है, हम लोग का ट्रेंड जो चल रहा है कि घरों में एसी, गाड़ियों में एसी, मोबाइल में एसी, अभी आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आ गई है आपकी, तो हर जगह मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है। और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमको कोल के साथ में अदर रिसोर्सेस को भी की तरफ भी जाना है। और उस तरफ जाने से क्या होगा कि इधर में जो हम लोग का पॉल्यूशन और ये सब का हो रहा है, उसमें थोड़ी सी लगाम लगेगी। नेचुरली कोल इंडिया में जब प्रोडक्शन होता है तो लैंड का डिग्रेडेशन होता है, डस्ट वगैरह का जनरेशन होता है ना। फॉरेस्ट लैंड है तो वहाँ पे पशु पक्षी और ये सब है, वो भी डिग्रेड कर जाते हैं, वाटर लेवल थोड़ा नीचे चल देता है, तो सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम्स रहती है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट प्रॉपर स्टेप्स ले रही है और उसको भी ओवरकम कर रही है। हर चीज के लिए रूल्स बने हुए हैं कि आपको माइंस बंद करेंगे तो लैंड को लेवल करना है, उसको आपको उपयोगी बना के देना है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स आ रहे हैं मतलब, और उनके ऊपर उनको फॉलो किया जा रहा है और उनको इम्प्लीमेंट किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन उनका हो रहा है बेस लेवल पे भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी इसमें टाइम तो लग रहा है उन चीजों में, लेकिन फिर भी इसके ऊपर काम तो चल रहा है, तो किस तरह का जो जैसे काम हो, और क्या समुदाय से भी कुछ अपना इम्प्रूवमेंट हो जाए या हमारे स्वभाव में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए कि हम लोग इस पोल्यूशन से पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, क्या हो सकता है आपके विचार से? जी
1: नहीं, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स की तरफ से, डीजीएमएस की तरफ से मतलब काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस हैं। हम लोग जो लैंड वगैरह को मतलब जहाँ से माइनिंग कर लेते हैं, कोयला निकाल लेते हैं, उस जगह में हमारे लिए ये बना हुआ है कि हमको प्लांटेशन करके देना है, उस जगह को फिर से पूरा ग्रीनरी से भरना है। तो ये सब स्टेप्स अभी पूरे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं कोल इंडिया के द्वारा भी हर जगहों पे,
0: अच्छा
1: तो
0: जी
1: कंट्रोल तो हो रहा है। और कोल ट्रांसपोर्टेशन में जो प्रॉब्लम्स हो रही है तो टार्पोलिन वगैरह से ढक के कोयला ले जाना है, खुले में नहीं ले जाना है। ब्लास्टिंग वगैरह में भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिटोनेटर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आ गया है कि ज़्यादा डस्ट वगैरह और ये सब नहीं उड़े जिससे, और वाटर स्प्रेइंग वगैरह का सिस्टम है, मतलब जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो उसका इम्पेक्ट रहता है मतलब।
0: बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM पर बातें मिलाते, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, और अनिल जी हमारे साथ है, कोल कोल इंडिया के सीनियर मैनेजर, और अभी बहुत ही अच्छी बातें उनसे हो रही हैं। आशा करूंगा कि आप सभी को अच्छा लग रहा है। तो कोई सवाल अगर आपको पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं, आप अपना सवाल डालिए, रिलेटेड कोई भी पोल्यूशन से या फिर एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीजें आपको पूछना है तो आप एक बार सवाल जरूर डाल सकें अपने नाम के साथ में, तो हम आपके सवाल सर से पूछेंगे। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जहाँ पर अब बात आती है कि एनर्जी रिसोर्स को, जैसे कि हम लोग अभी कोल माइन से ही सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद और क्या ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे विंड आपने बताया और एयर बताया, और फिर हमने वाटर से भी हमें जो है पावर मिल सकती है, एनर्जी मिल सकती
1: है। हाइड्रोलिक पावर,
0: जी जी हाइड्रोलिक पावर, तो और भी कोई रिसोर्स है जिससे हम लोग एनर्जी बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं?
1: अभी ये न्यूक्लियर एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट है, आगे फॉरेन वगैरह में चल रहा है,
0: जी जी जी
1: लेकिन क्या है कि अभी हमको थोड़ा सा समय लग रहा है, और हमारे पास तो बेसिक हमारी जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे और हमारे पास जो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट ही ज्यादा है। एनटीपीसी का मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आपका थर्मल बेस्ड पावर प्लांट से ही हो रहा है, जो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कोल से ही हो रहा है, तो उसी से मोस्टली हम लोग की पूरी देश की ऊर्जा की खपत को पूरा भी किया जा रहा है लगभग, और इसीलिए इस पे इम्फेसिस भी दिया जा रहा है कि मैक्सिमम कोल का प्रोडक्शन हो जिससे मैक्सिमम पावर जनरेशन हो, और 24/7 मतलब अवेलेबल रहे इलेक्ट्रिसिटी गर्मी में भी। जैसे अभी क्या है कि आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस साल भी गर्मी पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा बता रहे हैं और आने वाले समय पे ज्यादा होगी, तो उस समय पावर की रिक्वायरमेंट नेचुरली बढ़ जाएगी, और पावर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ये भी हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम उसको सेव करके रखें और जितनी आवश्यकता हो उतना ही उसका उपयोग करें, जिससे जिनको और लोग जो है आवश्यकता पड़ने पे उपलब्ध हो पाए। अननेसेसरी जैसे घरों में बिजली और पंखे चला के आदमी छोड़ देता है, वो सब चीजें मिनिमाइज करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ये बहुत मुश्किल कार्य है, और देश की आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फुलफिल करना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, मतलब गवर्नमेंट के लिए।
0: जी जी अनिल जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बिजली बनाने में काफी मुश्किल का काम होता है, बहुत मेहनत से बनती है, तो इसीलिए उसका कम यूज करें, जरूरत के अनुसार यूज करें, ज्यादा वेस्ट न करें, यही उसकी बचत करने का भी काम है। तो ये हम सभी नागरिकों का फर्ज बनता है कि कम बिजली इस्तेमाल करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ राम जी जी भी जुड़ गए हैं गुजरात से, आप विशेष एक्स एमपी फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं राजकोट शहर, और अभी जिला ग्राहक सुरक्षा मंडल के आप प्रेसिडेंट हैं, तो आपसे हम लोग विशेष बातें जानेंगे। तो राम जी भाई, बातें जानेंगे, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप और अपने बारे में और बातें बताइए जी।
2: आप और अपने बारे में और बातें बताइए जी। आप सुनाई देता है, मैं एडिबल हूं मैं?
0: यस यस, आप ऑडिबल हैं
2: अभी? यस, यस, आप ऑडिबल हैं?
0: हाँ जी, सुनाइए, आपको आपको सुन रहे हैं हम लोग।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते
2: आपका और अनिल भाई जी का मैं स्वागत कर रहा हूँ। ओम शांति। और आपको सबको मैं लगता है कि आई एम एज में मैं आप सब दोनों से बड़ा हूँ, तो आशीर्वाद दे रहा हूँ। आई एम रनिंग 80 सर। मैं और मेरी मिसिस दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजकोट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और बीके की बात करूं ब्रह्मा कुमारी, मैं जब स्टूडेंट था तब से धोराजी में, धोराजी इज माई होम टाउन एंड माई बर्थ प्लेस इन राजकोट गुजरात स्टेट, तो बीके से हम बहुत, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में से हमें बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है। मैं समझता हूँ कि जिंदगी जीने का एक रास्ता ब्रह्मा कुमारी आइडियोलॉजी से है, पूरे विश्व में बीके का ब्रह्मा कुमारी का वर्चस्व चल रहा है। ना कोई पैसा मांगना है, ना कोई धर्म धर्म करना है, ना कोई रोग मिटाने की बात करनी है, मार्ग में जीने के रास्ता बताने की बात बीके कर रही है। अभी राजकोट में मैं एक पत्रिका बता रहा हूं, ये पत्रिका आप देख रहे हैं, अलविदा तनाव, अलविदा तनाव की ये पत्रिका 8 दिन प्रोग्राम चला है मेरे यहाँ, और पूरे देश से, गुजरात से पूरे देश से 8 दिन, 8 फरवरी से 16 फरवरी तक ये प्रोग्राम चला है। इससे मैंने देखा कि लेटेस्ट से लेटेस्ट समय जो तनाव है आफ्टर कोरोना कोविड, बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत से लोग परेशान है, डिप्रेशन है, आज आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक बढ़ रहा है, क्रिकेटर गुजर मर रहे, डॉक्टर मर रहे। तो बीके मैं समझता हूँ, और मेरी अनुभव है 80 साल का हूँ, तो स्टूडेंट साहब तब से मैं बीके हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी पूरे विश्व में सबको सलामत करती है, स्टूडेंट्स को सबको। मैं इस आइडियोलॉजी के जुड़ा, मेरी वाइफ भी कुछ बात करेंगी। इन बिटवीन अलीश भाई ने जो कहा कि पावर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन बिटवीन, ये जो गर्मी विंटर की होगी है तब भी, लेकिन बिजली में मेरी एबीटी पानी और बिजली मैं कभी भी एक पॉइंट बिगाड़ता नहीं हूँ। तो अनिल भाई को मैं वंदन कर रहा हूँ, आप लोग मुझे हम सबको पावर दे रहे हैं, अच्छी तरह से आप भी आगे बढ़िए। और भाई रमेश भाई ने मुझे ये चांस दिया, मुझे लायक समझा के मैं इस सेमिनार में जोड़ा हूँ। मेरी ओर से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है, मैं आज भी मृत्युंजय भाई से हर रोज मिलता रहता हूँ। मृत्युंजय भाई जब भी राजकोट आते हैं मेरे घर पे भी आते हैं। मैं पुरानी याद बताऊ तो आशाबेन ब्रिजमोहन भाई सर, मेरे गुजरात में सरला दीदी, ये एक आप फोटो बताऊंगा, ये फोटो भी आप देखिए, ये फोटो मेरी वाइफ दीदी के, और दीदी के पास है, देखिए ये मेरा बहुत पुराना नाता है, इसका ये एविडेंस है। आज भी राजकोट सेंटर और गुजरात का बड़ा अहमदाबाद में सेंटर में मैं हर रोज मेरी ओर से जाता रहता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ, मुझे इससे बहुत अच्छी शांति मिली है। मैं ये समझता हूँ कि मैं सीम से संसद में गया हूँ, एक छोटे से गांव में सीम से संसद में गया हूँ। बीके ने मुझे बहुत हेल्प की है, मैं और मेरी वाइफ, देखिए हिंदुस्तान में बहुत कम लोग पति पत्नी लोकसभा में गए, मैं भी इन राज्यसभा, लेकिन लोकसभा में जाना बहुत मुश्किल है, और बीके के आशीर्वाद से मैं और मेरी वाइफ दोनों लोकसभा में गए हैं। आज भी मुझे बीके का आशीर्वाद मिलता है, बहनों का आशीर्वाद मिलता है, भाइयों का आशीर्वाद मिलता है, और मैं 86 का बाईपास हूँ, 86 में मेरी बाईपास सर्जरी लंदन हुई, राजीव गांधी सेंट मी टू लंदन, मेरी दो नी रिप्लेसमेंट हुआ, नी रिप्लेसमेंट दो हर्निया हुआ, लेकिन आई एम वर्किंग 24 आवर्स, जैसे साहब ने बताया कि 24/7 आप बिजली दे रहे हैं, ऐसे में 24/7 में लोगों की सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। आपको आशीर्वाद शुभकामना, जरा एक दो मिनट मेरी बात बात करेगी।
3: ओम शांति रमेश भाई, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो। हमारा और प्रकाशमणि दादी का इतना नाता था कि उसकी पहली मृत्यु तिथि में भी मैंने माउंट आबू पर 1 घंटा लेक्चर दिया था। सब लोग बोल रहे थे दीदी आपके शरीर में दादी का प्रवेश हुआ है, ऐसा बोल रहे थे। और दादी प्रकाशमणि दादी, हृदय मोहिनी दादी और भारती दीदी और सरला दीदी, जब ये मेरा मकान का नींव डाला तभी भी सब प्रवेश करके अंदर आई थी मेरे घर में, तो मुझे आज भी उसका दर्शन होता है कि नहीं, आप हमेशा हमें सुख शांति और पीसफुल रखते हैं। समाज और दुनिया में सब जगह पीस मिलना बहुत मुश्किल है, पीस अवार्ड जो किसी को मिला है तो इंटरनेशनल अवार्ड भी ब्रह्मा कुमारी बहनों को ही, दादी को ही जाता था, इसीलिए सभी दादियों मेरे हृदय में है। और आशा बहन ब्रिजमोहन भाई, वहां भी हमने दिल्ली में भी सेंटर देने के लिए बहुत, मैं जब एमपी थी तब वहां भी दिया है, रजौरी गार्डन और दूसरी जगह जो अभी गुड़गांव का सेंटर है वहां के लिए मैं गवर्नर के पास साथ में गई थी। और राजकोट धोराजी में मेरी होम टाउन में मेरे बड़े भाई मेरे जेठ जी थे, वो पति पत्नी दोनों उसमें जुड़े हुए थे, तो उसने हमारी जमीन थी वो उसमें ही हमारा सेंटर बनाया हुआ है, आज भी है। और बड़े भाई का एक प्रसंग बताऊं कि वो जन्माष्टमी के दिन वो माउंट आबू गए थे और वहां ही उसने देह छोड़ा था और जो बाबा का फल सब उसकी गोदी में थे वो प्रसाद भी लेकर जब उठे तभी वहां उसका देहांत हुआ था और बड़ी धामधूम से उसका मृतदेह को भी वहां रखा था और यहाँ लाए थे। ऐसे पवित्र आत्मा था तो हम सब उसके साथ, हमारा परिवार सारा उसके साथ जुड़े हुए। आज भी हम घर बैठे योग करते हैं। भाभी और भाई दोनों तो मुरली सुनने के लिए दररोज जाते थे लेकिन हमको इतना समय नहीं मिलता है कि हम मुरली सुनने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ हम कभी कभार सुन लेते हैं और योगा तो डेली करते हैं, 4 बजे उठकर भी करते हैं। तो इसी तरह हमारे जो जो दिव्य आत्मा जो लेखराज बाबा ने जो आज मार्ग बताया है और हमारी सभी दीदियों ने ये दादियों ने सब ये मार्ग अपनाया था तो हम भी चाहते हैं कि वही रास्ते पर हम चलेंगे तो हम तंदुरुस्त भी रहेंगे। हेल्दी वेल्दी और तंदुरुस्त रहना ये आज के युग में बहुत जरूरी है। वही नहीं होता तो कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, कभी हमारी लाइफ का कोई मोल नहीं रहता। इसीलिए बस तंदुरुस्ती के लिए भी आप तो बहुत ज्ञान देते हो, तंदुरुस्ती के लिए भी आप योगा योग के माध्यम से बहुत सारी चीजें बताते हो जिससे बहुत सारी बीमारियां भी चली जाती है। भवानी साहब पहली बार ऑपरेशन करके माउंट आबू वहाँ योग शिविर में आए थे। हम तो बहुत बार योग शिविर में भी भाग लिया है, बड़े बड़े मिनिस्टर को लेकर भी मैं वहां गई हूँ। ब्रिजमोहन भाई और आशा बहन दोनों जब भी मुझे कहते कि रमा बहन दिल्ली में सारे एमपी को खाना खिलाना है, वहां मिलना है, मीटिंग करनी है, तो हर बार मेरे घर पे आते थे और मैं वहां आयोजन करती थी। और उसी तरह जब वहां बुलाते थे तभी भी बहुत सारे लोगों को लेकर भी हम जाते थे। तो दादी का संदेश हमें बहुत आज भी दिल में ऐसे हृदय में बैठ गया है कि हम कभी वो याद करते हैं तो भी हमें बहुत आनंद की खुशी होती है लेकिन जी अच्छा जी। लगता है उसकी याद आती है।
0: सही बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जुड़कर अपनी भावनाएं अपने विचार हमारे साथ साझा किया आपने और पुरानी यादें आपने ताजा कराई, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद।
3: ओम शांति।

0: ¿Aló?
1: ¿Aló?
0: भाई जी,
1: नहीं, बस बस बस, मेरी बात खत्म हो गई। थोड़ा भावुक हो गया है मेरी मिसिस। इट्स
0: हाँ,
1: ऑल राइट, नथिंग टू वरी, हम
0: ओके
1: मिलते रहेंगे। कभी भी
0: भाई,
1: मेरे लायक सेवा हो, राजकोट में, गुजरात में, हिंदुस्तान में, कभी भी। आज भी मैं दिल्ली में
0: बिल्कुल
1: जाता रहा, जैसे आप मुझे मिले थे। मेरे कजिन ब्रदर्स अभी मिनिस्टर है,
0: भाई,
1: मांडविया हेल्थ मिनिस्टर इज माई कजिन ब्रदर्स। मैं उधर ही जाता हूँ, मिलता हूँ, सबको मिलता हूँ।
2: इच्छा है आप आने की?
1: और हम आबू भी आएंगे, प्रोग्राम करेंगे तब नेक्स्ट टाइम। आप सबको मैं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इनविटेशन दे रहा
0: आइए,
1: हूँ, आप सबको राजकोट आइए, गुजरात में सब जगह पर आइए। गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, थोड़े दिन गुजरात में
0: जी
1: बिताइए।
0: हाँ,
1: थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
0: थैंक यू। चलिए मित्रों, फिर से राम जी भाई ने अपनी शुभकामनाएं विचार हमारे साथ साझा किया। और आनंद जी, मैं चाहूंगा कि आप फिर से हमें जो है आप भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, तो थोड़ा सा वो भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसे आपका जुड़ना हुआ। जी
3: एक्चुअल में हमारी माता जी जिन्होंने अपना देह त्याग किया 2 वर्ष पूर्व, वो काफी समय
0: अच्छा
3: से ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई थी, इस संस्था से। और हम काफी लंबे समय से उनको देखते थे, वो अपना योग वगैरह, ध्यान वगैरह करती थी और काफी इन चीजों को मानती थी। तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति हमें अपनी माता जी से विरासत में मिली, कहा जाए तो उनको देख के लगता था, और उनकी जो बातें हम सुनते थे तो उससे लगता था कि जीवन का जो उद्देश्य है वो एक्चुअल में कुछ और है, वो नहीं है जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। तो भावनाएं काफी थी। मैं अभी 1 महीना पहले करीब गया था, आपका माउंट आबू भी गया था, करीब 30 तारीख के आसपास, 30 फरवरी के आसपास। तो वहाँ पे भी रहा 1-1.5-2 घंटे, और उसके बाद में मैं यहाँ आया आपका सिंगरौली में। तो यहाँ पे श्याम जी भाई के साथ में मैंने ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन किया, और अभी मैं यहाँ के सेंटर पे जाता हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है जब आदमी के जीवन का सही उद्देश्य और जिस मार्ग पे आदमी को चलना है उस पे आदमी अपनी यात्रा प्रारंभ करता है।
0: हाँ जी
3: तो
0: अनिल कुमार जी,
3: मुझे अभी ब्रह्म कुमारी से यहाँ पे जुड़े 15 दिन ही हुए हैं मतलब,
0: अच्छा,
3: और सेंटर्स पे मैं जा रहा हूँ। और हालांकि विरासत में मुझे ये चीजें मिली, मतलब ब्रह्म कुमारी का ज्ञान हमारी माता जी के द्वारा दिया गया, तो वो चीजें कहीं ना कहीं अंदर पे थी।
0: हाँ
3: और अभी जो मैं माउंट आबू गया तो वहाँ सेंटर वगैरह घूमा, तो फिर यहाँ पे जाके मैंने ज्वाइन किया, और
0: बिल्कुल
3: काफी अच्छा मेरा अनुभव रहा। और काफी अच्छा लगता है जब उस जगह पे मैं जाता हूँ और श्याम जी भाई के साथ में, वो अभी इनिशियल 7 दिन की क्लासेस मेरी करवाए, तो
0: अच्छा,
3: उसे काफी चीजें जानने को मिली, और उस दिशा पे हम अपना कदम अभी रखे हैं, और आगे ऊपर वाले के साथ में हमको अपनी यात्रा करनी ही है पूरी, क्योंकि अल्टीमेट तो हमारा
0: बिल्कुल
3: डेस्टिनेशन गॉड ही है, भगवान ही हमारा मतलब
0: जी, सही
3: डेस्टिनेशन
0: बात
3: है,
0: है, बिल्कुल
3: बाकी
0: बिल्कुल।
3: सब तो और कुछ नहीं है। तो
0: बाकी सब
3: यात्रा तो
0: खेल
3: प्रारंभ हुई है, बाकी
0: है।
3: ईश्वर कहाँ तक ले जाता है और कितना किस लायक बनाता है, बाकी प्रयास रहेगा। और ब्रह्म कुमारी का मैंने अभी देखा यहाँ पे एक निगाही माइंस में, लास्ट 8 तारीख को एक कैंप लगा था, ये
0: जी
3: आठ
0: जी
3: को
0: जी
3: नहीं, ये 5 तारीख को, संडे को शायद कैंप
0: बिल्कुल
3: एक हुआ था। तो उसमें इनकी प्रदर्शनी और एग्जीबिशन वगैरह था, तो
0: अच्छा अच्छा
3: वहां पर मैं देखा लोगों का डिवोशन, डेडिकेशन। और सबसे बड़ी एक अच्छी चीज मैंने देखी, जो भाई जी ने भी कही, कि बिना किसी आशा के, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से जो ब्रह्म कुमारी के से जुड़े लोग जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, वो वाकई एक तो उदाहरण के उदाहरण ही है। मतलब उसकी आदमी इस घोर कलयुग में कल्पना नहीं कर सकता कि बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी लालसा के आदमी सेवाएं दे, अपनी समय दे। तो ये एक वाकई एक अनुकरणीय कार्य है, और ये चीजें मैंने अनुभव की यहाँ पे, और मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा।

0: में या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में।
1: किस चीज का अवेयरनेस प्रोग्राम?
0: अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि हम लोग बिजली कम खर्च करें, ये वो सब चीजें।
1: नहीं, हम लोग की यहाँ पे क्या है ना, देखिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है ये तो हमारी मीडिया है, मीडिया से ही रोज आता है कि भाई जितनी आवश्यकता है आप उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करें। बेसिकली हमारी जो यहाँ पे एक कोल इंडिया की एक एक अच्छा काम है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट
0: जी।
1: सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग जो सराउंडिंग के विलेजेस हैं जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ की पब्लिक के लिए काम करते हैं, रोड हो गया, ये हो गया, सोशल वर्क वगैरह, तो
0: जी।
1: ये सब कामें होती है, काम होते हैं। और बाकी हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं तो वो वर्कर्स और एम्प्लॉयज के लिए हम लोग जो करते हैं उनको अवेयरनेस के लिए कि माइंस में आप कैसे सेफ वर्क करोगे, क्या करोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, तो ये डिफरेंट टाइप के हर लेवल के जिस जिस जगह में जो आदमी काम कर रहा है उनके हिसाब से एक तो
0: उनके हिसाब से
1: प्रोग्राम्स
0: वो करते
1: होते रहते हैं।
0: जी। थोड़ा मोबाइल ऊपर कीजिए, आपका सर कट रहा है सर जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आप सोशल वर्क भी करते हैं, आपके आसपास के गांव में लोगों को जाके बताते हैं और उनकी क्या जरूरत है वो नीड भी पूरा करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कोल इंडिया के माध्यम से ये सारी चीजें भी हो रही हैं। और मैं चाहूंगा कि आपकी कुछ यात्राओं के बारे में हमें बताइए, आपने कहाँ कहाँ यात्राएं की, किस संदर्भ में की थोड़ा सा।
1: यात्राएं तो बहुत विशेष नहीं हुई है, मेरा पुत्र राजस्थान भी है कोटा में,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: अभी मैं मिलने के लिए गया था तो माउंट आबू गया। काफी दिनों
0: हाँ
1: से इच्छा थी कि एक बार माउंट आबू जाऊं, तो उसी क्रम में मतलब माउंट आबू गया। राजस्थान में काफी जगहों में यात्रा की है मैंने, राजस्थान में उदयपुर, जयपुर और आपका दादी रानी सती, झुंझुनू, ये सब जगहों में जगहों को देखा है। और धार्मिक स्थलों में हरिद्वार हो गया और आपका साउथ इंडिया में भी विजिट किया है, कन्याकुमारी वगैरह। और यात्राओं से क्या है कि आदमी को उस जगह का कल्चर, उस जगह का खान पान, काफी कुछ चीजें देखने, सीखने, समझने को मिलती है। और इसी से पता चलता है आदमी को कि अपने देश में अनेकता में एकता, जो बोलते हैं भारतवर्ष विविधताओं का देश है और तब भी एक है। तो ये सब यात्राएं करने से इस चीज का अनुभव होता है। जब आप नॉर्थ में जाते हैं तो एक अलग कल्चर है, साउथ का अलग कल्चर है, ईस्ट का अलग कल्चर है। अब हमने अपना 15 वर्ष उड़ीसा में बिताया, सर्विस की 15 वर्ष वहां पे, तो ईस्ट का कल्चर वहां पे देखा। तो क्या है कि हर जगह के कल्चर अलग है और इन्हीं से पता चलता है कि विविधताओं का देश है भारत, और विविधताओं में भी एकता बिल्कुल परिलक्षित होती है भारत के अंदर में।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। अब मैं चाहूँगा कि जैसे अभी इन सारी चीज़ों को देखकर, एनर्जी को हम लोग जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं, आने वाले समय में कितना टाइम में जो चेंज आने वाला है, एक परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें भारत में, जैसे आपने दूसरे देशों का उदाहरण दिया, तो भारत में कितना टाइम लगेगा और क्या करना होगा। जी
1: भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में काम हो रहे हैं, लेकिन 2030 के बाद ही ऐसा लगता है कि अभी नियर टर्म में भारत की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है मतलब वो अदर सोर्सेस से फुलफिल इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी। तो कोल इंडिया और थर्मल बेस्ड पावर प्लांट के ऊपर में हमको अभी आश्रित रहना होगा, जब तक कि हमारे पास में एनर्जी के

दूसरे सोर्सेस नहीं आ जाते हैं और उनको आने में अभी समय लगेगा। तब तक तो हमको कोल इंडिया से कोल का उत्खनन करना पड़ेगा और इसी से ही आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कम 10 साल का पीरियड है अभी, जहाँ पे कोल इंडिया या फिर किसी भी अदर जगह से हमको कोयला निकालना ही पड़ेगा।

0: जी, अनिल जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि पूरे 2030 के बाद ही ये चीजें संभव होगा, ऐसा आपने कहा। आइए आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा सा आपकी हॉबीज के बारे में, आपकी कुछ आदतों के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, आपको क्या अच्छा लगता है और फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करेंगे?
1: फ्री टाइम तो काफी कम मिलता है, फिर भी आदमी
0: हाँ
1: थोड़ा सा समाचार टीवी वगैरह देख लिया, कुछ बुक्स वगैरह भी थोड़ा पढ़ लेते हैं,
0: जी,
1: और बाकी साल में एक दो बार अपना घूमने फिरने का कहीं भी प्रोग्राम हल्का फुल्का हो जाता है,
0: अच्छा,
1: और सच बाकी टेबल टेनिस खेलता था, मैं स्पोर्ट्समैन था, तो यहाँ पे तो अभी बंद है, ये तो वहां पे था उड़ीसा में, तो खेलता था
0: अरे वाह,
1: शाम को सुबह
0: अच्छा
1: में, और फिटनेस के लिए भी ठीक है, और थोड़ा सा माइंड डाइवर्जन भी रहता है, मतलब
0: बिल्कुल
1: आदमी
0: बिल्कुल, दोनों
1: हेल्दी
0: चीजें
1: फील
0: होती
1: करता है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: जी।
1: बेसिकली यही
0: अनिल जी,
1: चीजें
0: मैं
1: हैं।
0: चाहूंगा कि जी कुछ बता रहे थे आप।
1: बेसिकली तो ये चीजें हैं, मतलब आदमी एक स्पोर्ट्स से थोड़ा सा जुड़ा रहे, और दूसरा बीके से जुड़ने के बाद में तो आध्यात्मिक और शारीरिक समस्त स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, मैं तो यही सोच के चल रहा हूँ, और यही होगा ही, मतलब
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऑलराउंड होलिस्टिक हेल्थ आपको प्राप्त होगा जब आप जुड़ गए
1: हाँ
0: हैं बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे वो
1: बिल्कुल
0: सारी चीज।
1: बिल्कुल।
0: और मैं चाहूंगा कि युवाओं के लिए एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे अभी?
1: अभी आज के जो युग में, पहले एक तो सोसाइटी थी, समाज था, छोटी
0: जी,
1: जगहों में तो कम से कम ये चीजें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी, किसी को किसी की आवश्यकता हो नहीं हो, अगर किसी को पता चल जाए कि उसके साथ प्रॉब्लम है तो 10 लोग आते थे, लेकिन आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि समय इतना तेजी से परिवर्तित हुआ है कि आदमी टोटली सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, मतलब अगल बगल वाले को भी किसी से कोई मतलब नहीं है, और उसकी लाइफ हो गई है कि पैसा कमाना है या अपने काम पे जाना है, या बचे समय में सोशल मीडिया पे वो इंगेज रहता है, और सोशल मीडिया पे दोस्त बनाता है, सोशल मीडिया पे जिनकी और उसको देख के खुश रहता है कि मेरे 500 फ्रेंड है, जो कि जरूरत पड़ने पे कोई भी नहीं है आपके पास में, तो पहले के और अभी की सोच में और हिसाब किताब में काफी चेंज आ गया है, तो ये
0: जी,
1: चीजें मतलब क्या है ना कि आने वाली युवा जनरेशन को भी ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का पर्पज अच्छा है, लेकिन क्या है कि उसको जिस वे पे लिया जा रहा है, अभी आदमी बच्चे जो है ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं बोलना चाहिए, मोबाइल के आदी हो चुके हैं, मोबाइल को ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं, 10 मिनट के लिए आप उनसे मोबाइल ले लो तो वो परेशान हो जाते हैं, तो ये एक अच्छे साइन नहीं है भविष्य के लिए और युवाओं के लिए भी, आवश्यकता होने पे उसका उपयोग करें, लेकिन हमारी आवश्यकता वो नहीं है, हम उनकी आवश्यकता हो गए, मतलब बिना उसके हम जी नहीं सकते, इस टाइप का ट्रेंड हो गया है। तो क्या है कि अभी जो बीके के थ्रू भी और जो ये पता चलता है कि अभी कलयुग का अंतिम समय है, और इसके बाद आपका कलयुग बदल जाएगा, तो ये कलयुग की पराकाष्ठा जो अभी देखने को मिल रही है, ये इसी फॉर्म में मिल रही है कि आदमी पहले आदमी के काम आता था, अभी वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो
0: खत्म जी,
1: युवा कम से कम अपनी मानसिकता, अपने सोच विचार भावनाओं को ऐसा रखे कि इंसान होने का फर्ज अदा करे, किसी के काम आए, किसी के बारे में सोचे और अच्छा सोचे, क्योंकि खराब सोच के आप किसी का कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, न
0: सही
1: किसी का
0: बात,
1: प्रारब्ध भाग्य चेंज कर सकते हैं, ये सब हमारे संचित कर्म ही है जो हम अभी उपभोग कर रहे हैं, या आने वाले जन्म में जो उपभोग करेंगे भोग करेंगे, वो भी हमारे इस जन्म के ही संचित कर्म होंगे या कितने जन्मों के होंगे,
0: तो उसका
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: प्रतिफल ही हमको मिलता है। तो खराब सोच के हम किसी का कुछ नहीं खराब कर सकते, तो अच्छा ही सोचे, और अच्छा सोचने से हम भी स्वस्थ और खुश रहेंगे, और सामने वाले के
1: और
0: प्रति
1: दूसरे
0: अगर
1: को भी
0: अच्छी
1: खुश।
0: भावनाएं जाएंगी, हमारे बॉडी से पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगे, तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा कभी। तो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: युवा पीढ़ी
1: सही
0: कम से कम क्या है कि सोशल मीडिया और ये सब चीजों से हटके भी थोड़ा सा जीवन के
1: कहते
0: बारे में सोचे,
1: हैं
0: जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाने के लिए। अभी ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आदमी बिना मतलब का परेशान है, बच्चे परेशान है पढ़ाई के लिए, युवा परेशान है, मतलब हर वर्ग का जो व्यक्ति है किसी न किसी रूप में परेशान है। और वो इतनी तेजी से जो समय परिवर्तित हुआ उसी के चलते, क्योंकि तो मन की शांति नहीं रह गई है,
1: बिल्कुल
0: और मन की
1: बिल्कुल
0: शांति नहीं है तो आदमी नेचुरली परेशान रहेगा।
1: जी। अनिल कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया युवाओं के लिए, और बहुत बहुत साधुवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच अपने विचार साझा करने के लिए। एंड राम जी भाई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने भी अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।
2: अमागणी नमस्कार।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

ये संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है और हमारा जीवन एक महाभारत। हमारा कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अपनी महाभारत कभी हम शस्त्र के बिना लड़ते हैं, कभी शस्त्र के साथ, कभी अपने शत्रु के विरुद्ध और कभी अपने विरुद्ध। न्याय के लिए, सत्य के लिए, अधिकार के लिए, इस संघर्ष में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा विश्वास है, सबसे बड़ा शस्त्र हमारा कर्म है।

0: नमस्ते दोस्तों, आपको अपनी कविता सुनाता हूँ। मैंने एक पतंग उड़ाई, रंग था उसका लाल, सबकी पतंगे काटी मैंने, किया ना खूब कमाल। कैसी लगी आपको मेरी नई कविता? चलो अब मीना से मिलने चलते हैं उसके स्कूल में।
1: तुम देखना मीना, पहला इनाम तो अपनी रोशनी ही जीतेगी।
2: वो तो ठीक है सुनील, लेकिन रोशनी है कहाँ?
3: मीना,
2: अरे रोशनी कहाँ रह गई थी इतनी देर से हम लोग?
3: तुम्हें तो पता ही है मीना, मुझे अपनी छोटी बहन चंदा को खाना खिला के आना पड़ता है। सुबह सुबह माँ को और भी बहुत से काम होते हैं, तो
4: वो सब छोड़ो रोशनी। पता है भूगोल के प्रश्नोत्तर की एक प्रतियोगिता होने वाली है 18 तारीख को 2 बजे।
3: प्रतियोगिता?
4: हाँ रोशनी, सरपंच जी करवा रहे हैं ये प्रतियोगिता, और पता है पहला इनाम है 1 बस्ता।
2: रोशनी, तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लोगी ना?
4: हाँ मीना, रोशनी से अच्छा भूगोल भला किसे आता है? हाँ काश मैं भी रोशनी की तरह भूगोल में होशियार होता तो पहला इनाम, मेरा मतलब वो बस्ता, मुझे ही मिलता।
3: और क्या क्या इनाम है सुनील?
4: पहला इनाम हो गया बस्ता, दूसरा इनाम है कमीज का कपड़ा, और तीसरा इनाम है एक कहानी की किताब।
3: मैं इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लूंगी।
5: जरूर हिस्सा लूंगी, सबको हरा दूंगी।
0: उस दिन शाम को रोशनी सुनील से मिली।
3: सुनील, तुम वो बस्ता जीतना चाहते हो ना?
4: हाँ रोशनी, लेकिन मैं भला?
3: मैं तुम्हें भूगोल पढ़ाऊंगी। अभी प्रतियोगिता में पूरा 1 हफ्ता बाकी है, देखना 1 हफ्ते में मैं तुम्हें भूगोल के पाठ अच्छी तरह सिखा दूंगी, फिर पहला इनाम तुम्हारा।
4: अरे वाह, लेकिन तुम ये क्यों चाहती हो कि पहला इनाम मैं ही जीतूं?
3: क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो सुनील।
4: लेकिन तुम,
3: चलो अब ज्यादा मत सोचो, कल स्कूल खत्म होने के बाद हम साथ मिलके भूगोल के पाठ याद करेंगे।
0: और जब सुनील ने ये बात मीना को बताई तो मीना ने कहा,
2: सुनील रोशनी भला तुम्हें क्यों जिताना चाहती है?
4: क्योंकि वो मेरी दोस्त है।
2: वो तो ठीक है सुनील, लेकिन मुझे लगता है बात कुछ और है। चल मिट्ठू रोशनी के घर।
5: रोशनी के घर लेते हैं पूरी खबर।
0: और जब मीना और मिट्ठू रोशनी के घर पहुँचे तो मीना ने देखा कि रोशनी अपनी 1 साल की छोटी सी बहन चंदा के साथ खेल रही थी।
3: चंदा, पता है तेरी रोशनी दीदी तेरे लिए कमीज का कपड़ा लाएगी इनाम में जीत कर, फिर माँ तेरी प्यारी सी कमीज सिलेंगी और मेरी चंदा सबसे सुंदर लगेगी।
6: ओ, मेरी बहन को भूख लगी है। अच्छा अच्छा, मैं अभी साबुन से हाथ धोकर आती हूँ और अपनी प्यारी चंदा को खाना खिलाती हूँ।
3: अरे मीना तुम?
2: मैंने सब सुन लिया है रोशनी, तुम वो कमीज का कपड़ा यानी दूसरा इनाम ही जीतना चाहती हो, है ना?
3: हाँ मीना, पता है क्यों? आओ ये देखो, देख रही हो चंदा की ये फटी कमीज? माँ ने अपने सारे पैसे तो मेरे कपड़ों पर ही खर्च कर दिए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं चंदा के लिए वो कमीज का कपड़ा जीत के लाऊं।
2: लेकिन रोशनी, अगर सुनील तुम्हारे भूगोल सिखाने के बाद भी पहले नंबर पे नहीं आया
3: तो फिर वो दूसरे नंबर पे आएगा, तब मैं उसे बस्ता देकर उससे कमीज का कपड़ा ले लूंगी, उसे तो वैसे भी बस्ता ही चाहिए ना।
2: रोशनी, लेकिन तुम्हें ये बात सुनील को भी बतानी चाहिए।
3: तुम ठीक कह रही हो मीना, मैं कल सुबह ही सुनील को सब बता दूंगी।
0: अगले दिन रोशनी ने सुनील को पूरी बात बताई और फिर अगले 6 दिन तक रोशनी और सुनील भूगोल के पाठ पढ़ते रहे। मीना भी उनके साथ ही बैठा करती थी। और फिर प्रतियोगिता के दिन,
2: सुनील सुनील सुनील, रोशनी,
4: क्या हुआ रोशनी को और वो अभी तक क्यों नहीं आई?
2: रोशनी नहीं आएगी सुनील।
4: क्यों मीना?
2: क्योंकि उसकी छोटी बहन चंदा की तबीयत ठीक नहीं है।
4: अब क्या करें?
2: वही मैं भी सोच रही हूँ।
4: एक काम हो सकता है मीना, तुम अगर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो तो हम पहले 2 इनाम जीत सकते हैं।
0: और जब प्रतियोगिता का नतीजा आया,
7: बच्चों इस प्रतियोगिता में पहला नंबर आया है सुनील का। दूसरे नंबर पे है मीना। और तीसरे नंबर पे है अपना कृष्णा।
5: हे, हे, हे, हे, हे, हे, हे, हे, हे।
0: सुनील और मीना भागे भागे रोशनी के घर पहुंचे। वहां पहुंच के उन्होंने देखा कि नर्स बहन जी रोशनी की माँ को कुछ बता रही थी।
8: दीदी, चंदा के पेट में दर्द है, इसे खाना खिलाने से पहले आप अपने हाथ साबुन से तो धोती है ना?
9: अच्छी तरह नर्स बहन जी, मैं भी और रोशनी भी, क्योंकि सुबह और दोपहर को रोशनी ही तो खाना खिलाती है चंदा को।
10: माँ वो
9: क्या हुआ रोशनी?
10: माँ मैं पिछले कुछ दिनों से चंदा को बिना साबुन से हाथ धोए ही खाना खिला रही थी।
9: क्या, बिना साबुन से हाथ धोए? लेकिन क्यों रोशनी?
10: माँ वो प्रतियोगिता की तैयारी में कुछ याद ही नहीं रहा।
8: रोशनी, तुम चंदा से प्यार करती हो ना?
10: बहुत प्यार करती हूँ नरस बहन जी।
8: तो फिर आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना बेटे। छोटे बच्चे फूल की तरह नाजुक होते हैं और उनका पेट भी, समझी? यूं तो कीटाणु हम सबको अस्वस्थ करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को कीटाणु बहुत जल्दी बीमार कर देते हैं, क्योंकि उनमें कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता कम होती है, समझी?
10: जी नरस बहन जी।
8: अब तो चंदा को खाना खिलाने से पहले साबुन से हाथ धोना नहीं भूलोगी ना?
10: कभी नहीं भूलूंगी नरस बहन जी।
2: रोशनी, तुमने आज प्रतियोगिता में हिस्सा न लेकर भी चंदा को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है।
10: मैं समझी नहीं मीना।
2: तुमने अभी नर्स बहन जी से हमेशा साबुन से हाथ धोने का जो वादा किया है ना, वही है चंदा के लिए सबसे बड़ा तोहफा।
8: बिल्कुल ठीक कहा मीना। बड़े भाई बहन छोटे बच्चों को इससे अच्छा तोहफा दे भी नहीं सकते।
2: रोशनी ये लो कमीज का कपड़ा, मैं प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पे आई हूँ।
10: नहीं मीना, मैं ये नहीं ले सकती, क्योंकि ये तुम्हारा इनाम है।
2: लेकिन मेहनत तो तुम्हारी है ना? अगर तुम मुझे और सुनील को भूगोल के पाठ याद न कराती तो ना वो बस्ता जीतता और ना ही मैं ये कमीज का कपड़ा।
10: ओह मीना, तुम कितनी अच्छी हो, अब माँ चंदा के लिए बहुत प्यारी कमीज सिलेंगी।
0: भाई वाह, मजा आ गया मीना से मिलकर। चलो अब देखते हैं कि अपने कवि और कवियत्री यानी मीना और मिट्ठू आज कौन सी नई कविता बना रहे हैं।
2: छोटे भाई या छोटी बहन को खाना जब भी खिलाना,
5: अपने दोनों हाथों को साबुन से धोकर आना।
0: क्या कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने, भाई वाह मजा आ गया। चलो अब सुनते हैं एक गाना।

0: गाना तो सुन लिया, अब सुनो मेरी एक और कविता। गाना तो था कमाल, चलो अब करें थोड़ा सा धमाल, पानी डाल के गिलास में चलो खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है, ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: तो आज का शब्द है हलचल।
3: बहन जी, हलचल का पहला अक्षर है ह, और ह से होता है हाथी।
1: शाबाश सुनील। और हाथी की नाक को क्या कहते हैं?
2: सून।
1: हाँ, चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
4: बहन जी, ह के बाद हलचल में आता है ल, और ल से होती है लाठी।
1: शाबाश रोशनी। और लाठी शब्द से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
5: जिसकी लाठी उसकी भैंस।
1: बिल्कुल सही मीना। बच्चों वैसे तो इस मुहावरे का मतलब है जिसके पास बल है वो कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान सिर्फ अपनी मेहनत और सच्ची लगन से ही कुछ हासिल कर सकता है।
6: बहन जी, अगला शब्द मैं बताऊं?
1: हाँ सुमी बताओ।
6: ह और ल के बाद हलचल में आता है च, और च से होता है चांद।
1: शाबाश सुमी। मैंने तुम्हें चांद से जुड़ा एक मुहावरा भी सिखाया था, याद है?
6: जी बहन जी, चार चांद लगाना।
1: शाबाश सुमी। और इस मुहावरे का मतलब होता है
7: किसी काम की शोभा बढ़ाना।
1: बिल्कुल सही कृष्णा। अब अगला शब्द कौन बताएगा?
8: ह, ल और च के बाद हलचल में आखिरी अक्षर आता है ल, और ल से होता है लड्डू।
1: शाबाश मीना। और दिल में लड्डू फूटने का मतलब होता है
8: बहुत खुश होना।
1: बिल्कुल सही। तो बच्चों तुम भी खुश होना।
2: जी बहन जी।
0: पत्ते पेड़ से टूटते हैं, मीना से मिलके मन में लड्डू फूटते हैं। ये है ओखली और ये रहा मूसल, इसमें हम मसाले कूटते हैं। क्या कहा, मेरी ये कविता भी बेकार है। चलो अगली बार फिर से कोशिश करूंगा। तब तक आप अपने सुझाव, विचार और अनुभव लिखना मत भूलना। अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखोगे ना?
9: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके कई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सर
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, 8वां पाठ, गाड़ियां और पहिए, पृष्ठ 81। इस पृष्ठ पर बहुत सारे कार्य होते हुए दिखाए गए हैं, जैसे लड़की का रोटियां बनाना, ठेले पर बोरियों का लादकर जाना, साइकिल चलाना, लड़के का पहिए को ढकेलना और पतंग उड़ाना, कुम्हार का बर्तन बनाना, ट्रैक्टर पर जाना, बस का जाना और सब्जी वाले का सब्जी बेचते हुए चित्र और साथ में एक लड़के का अपनी मां के साथ चित्र। लड़का बोला,
3: अरे देखो इसके कितने बड़े पहिए हैं, मैंने इससे बड़े पहिए आज तक नहीं देखे।
2: तुमने ऐसी गोल गोल चीजें अपने आसपास जरूर देखी होंगी। तुम अपनी कॉपी में इस तरह की गोल गोल चीजों की एक सूची बनाओ। पृष्ठ 82, चूड़ी से गोला बनाओ। क्या तुम कभी चूड़ियों की दुकान पर गए हो? यहां पर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ 3 चूड़ियों के चित्र हैं और बाईं तरफ भी चूड़ियों के चित्र हैं, जिस पर लिखा है कांच की चूड़ियां, और साथ ही एक महिला का चित्र भी है। महिला कहती है,
3: मैं ये चूड़ियां नहीं पहन सकती, ये बहुत छोटी हैं।
2: इनमें से कौन सी चूड़ी तुम्हारे हाथ के नाप की है, अंदाजा लगाओ। एक तार लो और अपने लिए चूड़ी बनाओ। क्या तुम्हारी मैडम या मां ये चूड़ी पहन पाएगी? रिक्त स्थान। चूड़ी का इस्तेमाल गोला बनाने के लिए किया जा सकता है। कुछ और चीजों के बारे में सोचो जिनका इस्तेमाल गोला बनाने में किया जा सकता है। यहां पर दिए गए खाली स्थानों में उन वस्तुओं के नाम लिखो जिनका इस्तेमाल तुम गोला बनाने में कर सकते हो। अब तुम अपनी कॉपी में या पास के मैदान में उन चीजों की मदद से गोला बनाओ जिनसे तुम्हें लगता है कि गोला बनाया जा सकता है। किस चीज की मदद से सबसे छोटा गोला बन सकता है? रिक्त स्थान। और किस चीज की मदद से सबसे बड़ा गोला बन सकता है? रिक्त स्थान। पृष्ठ 83, गोल घेरे के खेल। बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं। यहां पर खेलों के 2 चित्र हैं, चित्र खेल 1 और चित्र खेल 2। खेल 1 में बच्चे गोला बनाकर रुमाल उठाने का खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और खेल 2 में 2 बच्चे गोले में रुमाल को रखकर उठाते हुए दिख रहे हैं और बाकी बच्चे उनके पीछे खड़े होकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्या तुम इन खेलों को खेलते हो? इनको खेलते हुए तुम कौन सा गाना गाते हो? अपने स्कूल में इन खेलों को खेलो। इन खेलों को खेलने के लिए हम गोल घेरा क्यों बनाते हैं? अगर आयत बनाते तो क्या होता? चर्चा करो। कुछ और खेलों के बारे में सोचो जो गोल घेरे बनाकर खेले जा सकते हों। इस पृष्ठ के अंतिम हिस्से में एक लड़की को कमर में रिंग से खेलते हुए दिखाया गया है। पृष्ठ 84, गोला बनाना। नैना, चिंपू और अरीबा एक खेल खेलना चाहते हैं। वो मैदान में एक बड़ा गोला बनाना चाहते हैं लेकिन वो इसे बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए अरीबा एक टहनी की सहायता से मैदान में गोला बनाने की कोशिश करती है। चिंपू और नैना कहते हैं,
4: ये तो बिल्कुल भी गोल नहीं लग रहा है।
2: अरीबा कहती है,
5: अच्छा तुम दोनों ही कोशिश करके देख लो।
2: चिंपू और नैना दोनों मैदान पर अपना अपना गोला बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर 3 चित्र दिखाए गए हैं और तीनों में बच्चों को गोला बनाते हुए दिखाया गया है। क्या इनमें से कोई गोले की अच्छी ड्राइंग है? क्या तुम चौक से फर्श पर गोला बना सकते हो? कोशिश करो। अपनी कॉपी में भी पेंसिल से गोला बनाने की कोशिश करो। अपने दोस्तों की कॉपी में बने गोले देखो, किसने सबसे अच्छा गोला बनाया है। शिक्षकों के लिए निर्देश, इस अभ्यास का उद्देश्य छात्र को मुक्त हस्त से वृत्त बनाने का अवसर देना है। फर्श के अलावा छात्र मैदान में किसी नुकीली चीज से वृत्त बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। विभिन्न चित्रों की तुलना से उन्हें वृत्त के आकार का एहसास होगा। पृष्ठ 85। रस्सी की मदद से गोला बनाना। अरीबा ने तय किया कि वो धागे और कील की मदद से मैदान पर गोला यानी वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया। फिर अपने एक दोस्त की मदद से गोला बनाया। नीचे बने हुए चित्र को देखो कि उन्होंने गोला कैसे बनाया। यहां पर दो बच्चों को रस्सी और कील की मदद से गोला बनाते हुए दिखाया गया है और उसके सामने एक बंदर का चित्र है जो कह रहा है,
6: क्या तुम भी अरीबा की तरह कील और रस्सी की मदद से गोला बना सकते हो?
2: छोटे समूह बनाकर नीचे लिखी गतिविधियां करो। हर एक समूह अलग अलग लंबाई की रस्सी व कीलें ले। हर एक समूह अरीबा की तरह जमीन पर गोला बनाए। सभी समूहों द्वारा बनाए गए गोलों को देखो। अब इन प्रश्नों के उत्तर दो। किस समूह ने सबसे छोटा गोला बनाया? रिक्त स्थान। उनकी रस्सी कितनी लंबी थी? रिक्त स्थान। क्या ज्यादा लंबी रस्सी से ज्यादा बड़ा गोला बनता है? रिक्त स्थान। क्या तुम बता सकते हो क्यों? रिक्त स्थान। यहां पर एक गोले का चित्र है जिस पर अर्धव्यास को दर्शाया गया है और साथ ही एक बंदर का चित्र है जो कह रहा है,
6: जिस रस्सी से गोला बनाया गया उसकी लंबाई गोले का अर्धव्यास यानी आधा व्यास है।
2: सबसे छोटे गोले का अर्धव्यास कितना लंबा है? रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश, इस अभ्यास का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न आकार के वृत्त बनाएं, उनके अर्धव्यास यानी त्रिज्या की लंबाई मापें तथा ये देखें कि अर्धव्यास की लंबाई बदलने से वृत्त का आकार कैसे बदलता है। पृष्ठ 86। स्केल से इस चूड़ी का अर्धव्यास बनाओ, इसकी लंबाई भी नापो। यहां पर एक चूड़ी का चित्र है। अब देखो तुम्हारे दोस्तों ने क्या बनाया है। चित्र देखो, उनसे उनके द्वारा नापी गई अर्धव्यासों की लंबाई भी पूछो। क्या सभी अर्धव्यासों की लंबाई बराबर है? यहां दिए गए गोलों के अर्धव्यास बनाओ। अब अंदाजा लगाओ कि किस गोले का अर्धव्यास बड़ा है। रिक्त स्थान। यहां पर दो गोले दिखाए गए हैं, एक छोटा है और दूसरा बड़ा। दोनों गोलों के अर्धव्यास स्केल से नापो, उनके अर्धव्यास की लंबाई लिखो। हरे रंग के गोले का अर्धव्यास, रिक्त स्थान। नीले रंग के गोले का अर्धव्यास, रिक्त स्थान। पता करो, साइकिल के पहियों या बैलगाड़ी के पहियों के अर्धव्यास नापो। तुम इसे धागे या टेप की सहायता से नाप सकते हो। क्या इसके दोनों पहियों के अर्धव्यास बराबर हैं? रिक्त स्थान। क्या तुमने ट्रैक्टर या रोड रोलर देखा है? रिक्त स्थान। तुमने सबसे बड़ा पहिया कौन सा देखा है? रिक्त स्थान। क्या ट्रैक्टर या रोड रोलर के सभी पहियों के अर्धव्यास बराबर होते हैं? रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के वृत्तों की त्रिज्या बनाने और उन्हें नापने के अनेक रोचक अभ्यास जरूरी हैं। वो पहिए और गाड़ी भी बना सकते हैं। पृष्ठ 87। लाली और काली रस्सी द्वारा खंभे से बंधी हुई हैं। काली की रस्सी ज्यादा लंबी है। दोनों में से कौन ज्यादा दूरी तक की घास खा सकती है? रिक्त स्थान। यहां पर एक चित्र में दो बकरियों का चित्र बना है जिनके नाम है काली और लाली। उन्हें रस्सी से बंधे हुए दिखाया गया है और साथ ही रस्सी पर कपड़े टंगे हुए हैं। दलजीत के डिजाइन। दलजीत ने परकार की सहायता से ये डिजाइन बनाए हैं। यहां पर तीन चित्र हैं। पहले चित्र में एक पौधा दिखाया गया है, दूसरे में एक वृत्त है और तीसरे चित्र में एक बच्चे को परकार की सहायता से गोला बनाते हुए दिखाया गया है। उसकी बहन आई और उसके साथ मिलकर और डिजाइन बनाने लगी। यहां पर एक दूसरे चित्र में एक लड़की को परकार की मदद से वृत्तों के विभिन्न डिजाइन बनाते हुए दिखाया गया है। क्या तुम ऐसे डिजाइन बनाना चाहते हो? ऐसे डिजाइन बनाने के लिए तुम्हें परकार की जरूरत है। पृष्ठ 88। परकार का इस्तेमाल। क्या तुमने पहले कभी परकार देखी है? तुम गोला बनाने के लिए इसका प्रयोग कैसे करोगे? अपनी परकार को खोलो। परकार के नुकीले सिरे को कागज पर रखो। परकार को ऊपर से पकड़ो। नुकीले सिरे को हिलाए बिना पेंसिल को गोल घुमाने की कोशिश करो। क्या तुम गोला बना पाए? यहां पर दो चित्र दिए गए हैं। ऊपर वाले चित्र में एक प्रकार को दिखाया गया है जिसके अंदर पेंसिल है, और दूसरे चित्र में लड़की को परकार की मदद से एक कागज पर गोला बनाते हुए दिखाया गया है। उस निशान को ढूंढो जहां तुमने परकार के नुकेले सिरे को रखा था। यही निशान तुम्हारे गोले का केंद्र है। क्या ये गोला उस गोले से अच्छा है जो तुमने बिना परकार के प्रयोग किए बनाया था? इस गोले का अर्धव्यास बनाओ और उसकी लंबाई नापो। अब तुम दलजीत की तरह अपने डिजाइन बनाने की कोशिश करो। तुमने कितने डिजाइन बनाए? अंदाजा लगाओ कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया। परकार की मदद से ऐसा ही डिजाइन नीचे दिए गए बॉक्स में बनाओ। इस पृष्ठ के सबसे नीचे वाले हिस्से में दो चित्र हैं। बाईं ओर एक वृत्त बना है, उसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी एक रेखा खींची है, और दूसरा खाली बॉक्स है। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चों को परकार की सहायता से अपने डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। इस तरह से उन्हें परकार की सहायता से वृत्त बनाने का रोचक अभ्यास भी होगा। पृष्ठ 89। क्या ये एक वृत्त है? नैना एक गोला बना रही थी। यहां पर नैना को गोला बनाते हुए दिखाया गया है। रवि ने उससे रबर मांगा। उसने अपनी परकार रख दी और रबर दे दी। अब वो फिर से गोला बनाने लगी, लेकिन उसका गोला ऐसा बना। यहां पर फिर एक दूसरे चित्र में नैना को गोला बनाते हुए दिखाया गया है। सोचो, नैना की बनाई गई आकृति ऐसी क्यों बनी? चर्चा करो। क्या एक गोले के एक से ज्यादा केंद्र हो सकते हैं? दूसरे दिन नैना परकार की मदद से एक गोला बना रही थी, पर यह कुछ ऐसा बन गया। यहां पर एक चित्र में नैना को गोला बनाते हुए दिखाया गया है, किंतु ये टेढ़ा गोला बन रहा है। क्या तुम में से किसी की आकृति नैना द्वारा बनाई गई आकृति के समान बनी है? यहां पर सबसे नीचे नैना को पेंसिल और परकार के साथ दिखाया गया है। नैना कहती है,
7: अरे मेरी परकार का पेंच ढीला है, मुझे उसे कसने दो। अब मेरी परकार फिसलेगी नहीं।
2: पृष्ठ 90। केंद्र को खोजो। सादिक और समीना अपना अपना गोला बनाना चाहते हैं। यहां पर दो बच्चों

0: अरे गोली का केंद्र कहाँ है?
1: समीना ने कहा,
0: चिंता मत करो, देखो मैं उसे कैसे ढूंढती हूं।
1: उसने अपने गोले को मोड़कर आधा कर दिया। यहां पर एक गोले को मोड़कर दिखाया गया है। गोले के बीचों बीच सीधी खड़ी उसके केंद्र से जाती हुई रेखा है और साथ ही आधे गोले को डॉट की मदद से दर्शाया गया है। पृष्ठ 91। फिर दोबारा उसने कुछ इस तरह मोड़ दिया। यहां पर एक आधे गोले का चित्र बना है जिसमें ऊपर वाले आधे भाग को डॉट की मदद से दर्शाया गया है। उसने मुड़ा हुआ गोला खोला। यहां पर सादिक और समीना का चित्र है। समीना कहती है,
0: क्या तुम एक दूसरे को काटती हुई दो लाइनें देख रहे हो?
1: सादिक ने कहा,
0: हां।
1: इसके नीचे समीना का चित्र बना है जो कहती है,
0: मैंने वहां एक बिंदु लगा दिया जहां से ये लाइनें एक दूसरे को काट रही थीं। ये इस गोले का केंद्र बिंदु है।
1: अब तुम चूड़ी की मदद से कागज पर एक गोला बनाओ, इसे काटो और समीना के तरीके से इसका केंद्र ढूंढो। हम पृष्ठ 88 पर दिए गए डिजाइन को इस तरह से भी बना सकते हैं। तुमने कैसे बनाया? इस पृष्ठ के अंतिम हिस्से में दो गोले दिखाए गए हैं। बड़े गोले के अंदर दो गोले दिखाए गए हैं। दोनों गोलों के आधे आधे भाग बिंदुओं की मदद से दर्शाए गए हैं। अब इस गोले को देखते हुए तुम दूसरे गोले में बिंदुओं की मदद से दो छोटे गोले बनाओ। पृष्ठ 92। संतुलन करना। क्या तुम एक प्लेट को अपनी उंगली पर टिका सकते हो? यहां पर एक बंदर के दो चित्र हैं जो अपनी उंगली पर प्लेट को टिकाने की कोशिश करता दिख रहा है। बंदर ने कहा,
2: मैं करके देखूंगा। गिर गई, मैं फिर कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि मुझे प्लेट का केंद्र मिल गया है।
1: तुम भी प्लेट को उंगली पर टिकाने की कोशिश करो, देखो उंगली पर कहां टिकेगी। लट्टू को घुमाओ। जाकिर, अप्पू, नैना और गुड्डू बोर हो रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी इसलिए वो बाहर खेलने भी नहीं जा सकते थे। यहां पर एक घर का दृश्य है जिसमें चार बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अचानक गप्पू के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा,
2: चलो हम सब अपना अपना लट्टू बनाते हैं।
1: उन्होंने गत्ते का एक टुकड़ा लिया, उस पर एक गोला बनाया, उसमें छेद कर माचिस की तीली लगा दी। पृष्ठ 93। यहां पर तीन चित्र दिखाए गए हैं जिनमें चारों बच्चे अपने अपने लट्टू बनाते हुए दिख रहे हैं। अब सब अपना अपना लट्टू घुमाने के लिए उत्साहित थे। उनके लट्टू कुछ ऐसे लग रहे थे। यहां पर चारों बच्चों के लट्टुओं का चित्र है। पहला चित्र जाकिर के लट्टू का है। जाकिर के लट्टू में तीली बिल्कुल दाईं तरफ है। अप्पू के लट्टू में तीली बिल्कुल बीचों बीच है। नैना के लट्टू में तीली बिल्कुल बाईं तरफ है और गुड्डू के लट्टू में तीली दाईं तरफ है। अब तुम इन चारों लट्टुओं को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। सोचो, किसका लट्टू बिल्कुल नहीं घूमेगा? रिक्त स्थान। किसका लट्टू थोड़ा सा घूमेगा? रिक्त स्थान। किसका लट्टू सबसे अच्छा घूमेगा? रिक्त स्थान। और किस लट्टू की तीली केंद्र के पास है? रिक्त स्थान। अपना लट्टू खुद बनाओ। तुम भी अपना लट्टू बना सकते हो और उससे खेल सकते हो। लट्टू ठीक से घूमे इसके लिए छेद कहां करना होगा? और इसी के साथ आठवां पाठ गाड़ियां और पहिए यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे। सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है बच्चों की दुनिया, और बच्चों की दुनिया होती है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि उनके माइंड में लर्न करने की बहुत ज्यादा शक्ति भी होती है, वो सीखते भी रहते हैं और बहुत कुछ इमेजिन भी करते हैं। तो उसी इमेजिनेशन के अंदर जाएंगे और आज बच्चों की दुनिया में एक अलग स्टोरी बनाएंगे हम सब मिलके। तो स्टोरी में एडवेंचर होने वाला है, डर होने वाला है, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। लेकिन उससे पहले ये तो पता कर लें कि है कौन कौन आज स्टूडियो में हमारे साथ। तो एक बार आपके नाम और क्लास तो बता दीजिए सब लोग।
3: मेरा नाम है हर्षिता, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
5: मेरा नाम है शिवन्या, मैं 2nd क्लास में हूँ।
6: मेरा नाम है आराध्या, मैं 2nd क्लास में।
7: मेरा नाम सक्षम है, मैं 6th क्लास में हूँ।
8: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
2: ओके, तो एक काम करते हैं, ये एक गेम है, इसमें हमें अपनी स्टोरी बनानी है, और वो स्टोरी कैसी भी हो सकती है, आपको जो मन में आए, मतलब वो आसमान पे, जमीन पे, एनिमल्स पे, लोगों पे, कुछ भी आ सकता है उस स्टोरी में। स्टोरी तो सबने सुनी है ना, स्टोरी तो अच्छी लगती है। तो यहाँ आपको अपनी स्टोरी बनानी है, लेकिन नई स्टोरी नहीं बनानी है, जो फर्स्ट पहले जैसे राघव बोलेगा, वो जो स्टोरी जहाँ छोड़ेगा वहाँ से आपको उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, ओके, सब लोग समझ गए? तो चलो राघव।
9: Yes. इसके बाद से।
2: हाँ, उसके बाद से आपको बोलना है। राघव स्टार्ट करो।
8: एक 10 साल का बच्चा था, उसके मतलब उसके पास एक मीटेरॉइड गिरा।
2: उसका नाम क्या था?
8: उसका नाम राहुल।
7: वो मीटेरॉइड से बचने के लिए भागा।
2: ओके,
9: और वो भागते रहे,
2: भागते रहा। फिर क्या हुआ?
9: उसको एक वो लायन दिख लिया, और वो बोला, वो जो लायन था रॉयल से बोला,
2: लायन जल्दी से घुर्राया। फिर क्या हुआ?
8: फिर राहुल भागा और लायन से उसने बोला कि मुझे छोड़ दो, उस मीटेरॉइड के पास चले जाओ। फिर लायन तो उसके पीछे ही पड़ गया। फिर वो भागते भागते बच गया लायन से, पर वो एक अंधेरी जगह पे पहुंच गया। उस अंधेरी जगह पे बहुत सारे लायन थे, और वो एक लायन के ऊपर सैडल लगा के उसके ऊपर राइड करने लगा।
2: वाह, लायन पे राइड करने लगा।
8: वो लायन उसको काट गया।
9: उसके बाद उसको एक गुफा मिली। फिर उस राहुल के पास पावर आ गया, तो उसको एक जाल था, वहीं पे उसको ऐसे बंद कर,
2: लायन को बंद कर दिया जाल में।
8: उसके बाद राहुल बड़ी शांति से अपने कमरे पे गया। उसने कमरा खोला और जाके लेट के सो गया।
2: लाइन के काटने के बाद सो गया जाके? बड़ा ब्रेव राहुल है। और ये क्या किया उसने, तो अपना इलाज भी नहीं कराया। अच्छा बताओ आगे क्या हुआ? काटा था। चलो आगे क्या हुआ? सो गया राहुल, फिर क्या हुआ?
8: दीदी जब वो सो गए थोड़ी देर के बाद, इतने में बहुत सारा खून बह गया था, तो भी उसको कुछ नहीं हुआ। और फिर वो वापस, क्योंकि उधर उसके घर पे तो कोई नहीं था, फिर वो भागे भागे भागे भागे बाहर गया। और बाहर जाने के बाद उसको ऐसे लगा कि मेरे सामने ऐसे सारे भूत खड़े हैं।
2: फिर क्या हुआ?
10: दीदी जब उसको लगने लगा कि भूत उसके सामने खड़े है तो उसने अपनी कटाना उठाई और उसने उसने भूत को काट के रख दिया।
2: भूत काट दिया ओके।
7: फिर वो वापस घर पे गया और सोने लगा तो उसने देखा कि उसके बेड पे चींटियां हैं बहुत सारी।
2: ओके भूत भूत गए तो चींटियां आ गई, फिर क्या हुआ?
9: फिर वो सुबह तक सोते रहा।
2: सुबह तक सोता रहा
9: और वो हाँ। वो खुद भूल गया कि वो रोबोट है।
2: अच्छा तो असल में राहुल एक रोबोट था, बताओ
8: दीदी। फिर राहुल जब उठा ना सोके तो उसे पता चला ये पूरा सपना था। तो फिर वो अपने जो भी वो उसका मीटराइट तो सच में गिरा हुआ था तो उसकी जो लैब टीचर वो साइंटिस्ट के साथ काम करता था वो लैब टूट गई थी तो इसलिए वो फिर कहीं और ढूंढ रहा था कि कोई साइंटिस्ट मिल जाए अमेरिका में इजिप्ट में।
2: तो मतलब सपना था ये सब कुछ, तो लैब भी टूट गई और सपना भी खुल गया। तो सपने में राहुल रोबोट भी बन गया था और उसने भूतों से लड़ाई भी कर ली थी, पावर भी आ गई थी स्पेशल राहुल में, क्या बात है।
8: और फिर इजिप्ट और अमेरिका भी ढूंढ रहा था साइंटिस्ट।
2: तो राहुल को तो बड़ी सारी कंट्रीज ढूंढ रही थी। क्या कहानी बनाई आप लोगों ने, वाह वाह। एक और बनाएंगे कहानी?
9: हाँ, भूत वाली।
2: कौन शुरू करेगा इस बार?
9: दीदी भूत वाली। लेकिन
2: इसमें एक से ज्यादा जो मर्जी बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं।
10: मैंने तो बस ये बोला था कि मीटियोराइट।
2: अच्छा मेरी बात सुन लो, आप लोगों को स्टोरी बढ़ानी है आगे, ठीक है? लेकिन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए, दो तीन चीजें होनी चाहिए उसमें, ठीक है? तो अभी स्टोरी आप स्टार्ट करो।
9: दीदी आप भूत वाला बोले,
2: कुछ भी आप बना सकते हो स्टोरी जो आपको मन में आए, बस जोड़ना चाहिए पीछे वाली स्टोरी से, जुड़ना जरूरी है। माइक नहीं भी लाओगे तो चलेगा।
7: करनाल में एक गांव था जो बहुत पुराना था।
2: उस गांव में क्या था कुछ तो बताओ, इंट्रो दो।
9: उस गांव में तीन लड़के थे।
2: ओके।
9: वहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी और वो जब रात में सोने गई अपने बच्चों के साथ तब उसके साथ फिर उसको आवाज आया कि छन छन की। फिर बाहर जाके देखी कोई नहीं है, फिर बाहर आके देखी कि इधर उसको आवाज आया, इधर आ। जब बाहर गई तो उस चुड़ैल ने अपना फेस ही बदल लिया तो उसकी फ्रेंड बन गई। वो चुड़ैल बोली कि तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? हाँ। तो वो बुढ़िया बोल रही हाँ, तो फिर उसके घर में सो गई वो चुड़ैल। फिर
2: तो तीन लड़के थे वहाँ पे और एक
8: दीदी, वो तीन लड़के दोस्त थे। वो बुढ़िया है ना उनके बगल में पड़ोस में रहती थी हाँ, तो उनको लगा कि है ना किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई तो वो अपने कमरे से तीनों बाहर आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक है ना एक जो भूत था वो है ना उसकी दोस्त के रूप में था तो उन्हें भी समझ नहीं आया तो वो तीनों है ना वापस कमरे में चले गए, उनको बुढ़िया ही नहीं दिखी थी।
2: ओके
10: दीदी। फिर उसके बाद वो जब कमरे में गए सुबह उठ गए, उठने के बाद उनके साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें हुई जैसे कि अब वो रोज ऐसे ही मतलब उनके पास जो गाय थी उनको मतलब छोड़ते थे लैंड में ऐसे चारा खिलाने के लिए तो फिर उस टाइम में ना उनको ऐसे आवाजें आ रही थी कि मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको ऐसा वैसे।
2: फिर क्या हुआ?
10: फिर उसके बाद है ना दीदी, उसके बाद है ना किसी मतलब एक है ना काली जादू वाली बुढ़िया है ना वो काला जादू कर रही थी तो वो उसने बुढ़िया को जिंदा कर दिया वो जो मरी थी। और फिर उसने बोला तुम कौन हो? तो उसने बोला कि हाँ मेरे को मेरी दोस्त ने मार दिया था। पर फिर उसने बोला कि ना वो तुम्हारी दोस्त नहीं थी, वो चुड़ैल थी, वो तुम्हारा दोस्त का रूप लेके आई थी। तो उसने बोला उस चुड़ैल को तो मैं मार दूंगी।
2: ओके।
7: और सबसे खास बात जो वो तीन लड़के थे वो भूत एक्सप्लोरर थे, वो रात को भूत को ढूंढने के लिए निकले थे उसी।
2: अच्छा भूत
9: उनमें से एक लड़के को तीर चलाना आता था। और जो एक लड़का था उसका नाम था राहुल, वो भूत ही नहीं था।
2: वो भूत नहीं था और बाकी दोनों भूत थे?
8: वो भूत थे और वो दूसरे भूतों को एक्सप्लोर करते थे।
2: ओके
8: दीदी, वो दोनों भूत थे और उन्होंने एक साथ राहुल को मार दिया। फिर वो जो राहुल था उसकी आत्मा निकली और वो भी एक भूत बन गया और वो उनको छोड़ने नहीं वाला।
7: दीदी फिर है ना, और राहुल ने उठ के देखा तो वो तो उसका सपना था। फिर वो अपने उन दोनों दोस्तों के पास गया, फिर उन दोनों दोस्तों को उसने बोला कि क्या तुम भूत हो? तो उसने बोला नहीं, हम तो तुम्हारे दोस्त ही हैं। तो उसको पक्का पता चल गया था कि उसके वो दोस्त ही हैं, ना एक भूत। वो बस उसको सपने में आया था और ना उनके पास वाली कोई बुढ़िया मरी थी,
2: कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ सपना था।
7: सब कुछ सपना था।
8: उसने उठ के सब कुछ देख लिया कि हाँ ये सपना था, कन्फर्म करा और बस वो अपने खुशी खुशी फिर काम पे चला गया।
2: ओके अच्छा, तो इतनी भूत वाली स्टोरी सुनाई आप लोगों ने, ये आपको लगता है सच में भूत होते हैं कि नहीं होते
9: हैं? नहीं होते
7: हैं।
2: एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। ओके
9: लेकिन मेरे को तो डर लगता है भूत।
2: डर लगता है भूत से?
7: दीदी
9: मैं पढ़ती भी नहीं हूँ हनुमान चालीसा।
2: हनुमान चालीसा पढ़ते हो?
9: आता हनुमान चालीसा लेकिन मैं पढ़ती नहीं।
2: क्यों नहीं पढ़ते? आती है तो पढ़नी चाहिए ना, है ना? थोड़ी थोड़ी आती है क्या, है ना? अभी आप छोटे हो ना इसलिए पूरी नहीं आती होगी आपको, है ना? कोई बात नहीं, सीख लेना।
7: दी मैं ये बोल रहा था कि वो पूरा उसका सपना था और उसने सपने में कुछ किया ही नहीं था। और जो ये भूत भूत होते हैं वो रियल में नहीं होते हैं। मतलब अगर आप सोचेंगे कि हाँ भूत रियल में होते तो अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी घूमती रहे, पर हमको ऑलवेज पॉजिटिव सोचना चाहिए।
9: लेकिन भगवान रियल में होते हैं।
2: भगवान रियल में होते हैं।
8: दीदी बोलते ना अगर मतलब पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा।
2: लेकिन भूतों से डर लगता है क्या? किसको लगता है डर? लगता है, लगता है
9: मुझे तो? रात को लगता है।
2: रात को लगता है ना? हाँ मुझे भी लगता है कभी कभी, लग सकता है डर
9: कभी
8: डर जल्दी थोड़ा मुझे भी कह जाता है अंदर थोड़ा बहुत। जो डर होता है ना सोचते हैं हमें तो डर नहीं लगता, बिल्कुल ब्रेव, पर कहीं ना कहीं डर थोड़ा बहुत तो होता ही,
2: थोड़ा बहुत होता है ना। राघव लगता है?
7: नहीं दीदी, दीदी पहले लगता था अब नहीं लगता, और अब तो ऐसा लगता है कि भूत को पकड़ के उसको पूरा कूट के फेंक दूंगा।
2: ऐसा लगता है? ओके आपको
7: पहले लगता था अब इतना नहीं लगता, पहले अब लगता ही नहीं।
2: पहले कब लगता था मतलब?
7: पहले जैसे जब मैं थोड़ा छोटा था तब लगता था।
2: कितने छोटे थे आप?
7: 7 या 7 से नीचे
2: तब लगता था ना। तो क्यों लगता था? आप लोगों ने क्या भूत वाले वीडियोस या मूवीज देखे हैं?
9: मैं तो खाली भूत वाले वीडियो देखती रहती हूं।
2: खाली भूत वाले वीडियो देखते हो? और आप?
9: मैंने भूल भुलैया मूवी देख रखी है।
2: हाँ उसमें भूत होता है ना।
8: दीदी मैंने भूल भुलैया 1 से लेके 3 तक सारी देखी है।
7: दीदी मैंने भी देखी है।
2: अच्छा यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो आप लोग?
7: नहीं दीदी टीवी पे भी आती है। हाँ या फिर हम चला लेते हैं।
2: चला लेते हो? तो जैसे भूत के वीडियोस वैसे तो देखो ना, अगर वीडियोस तो जो हम देखते हैं वैसा हमको लगने लगता है, मालूम है? अगर हम जो जैसे आप कोई ऐसे पोएम वाले वीडियो देखोगे, गाने वाले वीडियो देखोगे तो गाना सीख लोगे ना, वीडियो देख के याद हो जाता है ना।
9: स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाता है
2: ना, तो याद हो जाता है ना फिर। तो ऐसे अगर क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है ना, तो अगर आप भूत वाले वीडियोस देखोगे ना तो वो ब्रेन को याद हो जाता है, तो वो हर जगह फिर हमको भूत दिखाता है और डराता है। तो इसलिए
9: मेरे को ऐसा लगता है इस घर में कोई आत्मा भटकती है,
2: है ना? तो अगर हम वीडियोस देखते हैं ना तो फिर हमको और डर लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ना ऐसे हमको डरा देता है, क्योंकि उसको याद हो जाता है वो भूत वाला वीडियो। तो अगर हमको थोड़ा डर कम करना है ना तो हमको वो वीडियो नहीं देखने हैं। हमको ना और कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आपको बहुत मजा आता है देखने में, भूत के अलावा जिसमें बहुत मजा आता है?
9: सोसो सासा।
2: उसमें क्या होता है?
9: उसमें दो बहन होती है।
2: दो बहनें होती हैं। कार्टून है क्या?
9: बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कार्टून है,
2: थोड़ा बहुत है।
7: यूट्यूब चैनल
2: है। ओके और आपको क्या अच्छा लगता है?
9: कार्टून
2: अच्छे लगते है ना आपको?
9: मेरे को वीर वाला
2: कार्टून अच्छा लगता है।
9: मुझे ब्लू विंग वाला।
2: ओके और आपको?
7: कार्टून ब्लू लॉक।
2: ओके और आपको? हाँ एनिमे भी अच्छा लग सकता है। और आपको?
8: दीदी मैं इतना कार्टून देखती नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता। वैसे तो मैं फिर यूट्यूब चैनल में IUPU का एक चैनल है वो देखती
9: हूँ। मैं भोजपुरी
8: तो वो जो उसके अंदर वो ऐसे चैलेंजेस करवाते हैं।
2: हाँ उसमें मजा आता है ना, चैलेंजेस करते हैं, गेम्स करते हैं। शिक्षा आप तो सबसे बड़े, आपको क्या अच्छा लगता है?
8: दीदी सिंचैन और डोरेमोन।
9: दीदी आपने वही कभी चाली चाली खेला है?
2: नहीं मैंने तो नहीं खेला. मैं आप लोगों से सीख लूंगी अभी इसके बाद, ठीक है? तो इसलिए जो ये भूत वाला है,
10: और कभी कभी ऐसे वीडियो में दिखाते हैं कि वो एकदम पेंसिल अगर चलती है ना तो भूत से चलते ऐसे होता है वो.
9: तो अगर खुद हो जाता है, अगर यस पे हो जाता है तो, अगर सच्चे में भूत हो तो वो यस पे ऐसे हो जाता है,
2: पेंसिल घूम जाती है. तो आपने खेला है वो? नहीं खेला है ना, देखा है उसके बारे में वीडियो.
7: दीदी जब राघव और मैं तो शाम में थे तो हमने राघव के दोस्त के घर पे जाके कुछ भूतिया वीडियो देखी थी.
2: अच्छा.
7: रात को बहुत डर थे,
2: बहुत डर लग रहा था.
10: अपने घर चला गया था उसी टाइम भी चला गया
2: था. डर तो लगता है ना देख के.
10: दीदी फिर मेरे को बाद में फोन करके बोल रहा था यार कुछ होता नहीं है, चल मैं आई रह ही जाता
2: है ना. लेकिन डर लगने लगता है उस वक्त, तो डर लगने तो मन करता है घर भाग जाओ फटाफट.
10: दीदी वो ऐसे बोलते थे कि हेल में किसी बंदे ने बनाई है, उसके मतलब एक डॉग था उसके साइड में हाथ मतलब वो हेल के हाथ भी थे खून के.
2: अरे बाप रे.
10: और उसके मतलब वो ना डॉग इकलौता था जो हंस रहा था, हंसता हुआ डॉग किसी को नहीं दिखता,
2: डरावना हंसता हुआ डॉग. ओके
9: दीदी मैं किशनगंज में एक रात सो रही थी तो मेरे को रात में

0: ऐसे आवाज आए बहुत जोर से.
1: आवाज सुनाई दी. ओके. तो जैसा हम बात कर रहे थे, जब हम वीडियोस देखते हैं ना, तो आप ना वीडियोस देख के फिर भूल जाओगे, कुछ और करने लगोगे, है ना. लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें सबकॉन्शियस, वो आप बाद में पढ़ोगे जब बड़े हो जाओगे ना, एक ऐसा ब्रेन होता है जिसको सब कुछ याद होता है, छप जाता है. तो अगर आप भूत वाले वीडियोस या गेम्स खेलोगे ना, तो आपको डराएगा, वो रात को डराएगा, है ना, अलग अलग टाइम पे डर लगेगा. तो ऐसे वाले गेम्स या वीडियोस की जगह आपने जो और कार्टून्स बताए ना, वो अच्छी अच्छी चीजें देखो. क्योंकि डरना किसी को अच्छा लगता है क्या?
2: नहीं दीदी,
1: नहीं लगता है ना.
0: देखने का मन करता है लेकिन डर लगता है.
1: डर लगता है ना. तो डर जब लगता है तो मजा आता है क्या? आज तो बड़ा अच्छा लगा डरने में, ऐसा होता है? नहीं ना, तब तो लगता है घर भाग जाओ. डर लगता है ना बहुत, अकेले जाने में भी डर लगता है.
0: हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते
1: हैं. हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं. तो डर ना लगे उसके लिए हमको क्या करना है, ऐसे वाले वीडियोस की जगह
0: और कुछ देखना है.
1: कितना अच्छा आंसर दिया आपने. वाओ
2: दीदी, क्या हुआ था जब मैं 6 में थी और मेरे गली में ना मेरे थोड़े फ्रेंड्स थे और एक दो रिलेटिव्स भी थे, तो उस टाइम में ना वो एक लाइट होती है ना लेजर लाइट करके, वो छोटे बच्चे से घुमाते हैं, तो ना हम ऐसे वो मतलब इधर से घुमा रहे थे, मेरे जो छत है ना उधर से हम वो घुमा रहे थे. और फिर कल परसों ना लिटरली हमको ऊपर आसमान में ना ऐसे लेजर लाइट कोई नहीं घुमा रहा, ऐसे दिखता तो है सब तरफ देख के आ जाता है, कोई नहीं घुमा रहा, पर वो कहीं ना कहीं से तो वो आता ही है लेजर लाइट, और हम पे ही गिरता है वो लेजर लाइट, ऐसे होता है. और फिर रात को मतलब एकदम से ये होता है. फिर मेरे वो जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमारे घर पे आवाज़ें आ रही थी. वैसे वो उस टाइम पे बहुत डर लग रहा था, वो सबसे मेरा एकदम डरावना सीन था.
1: तो अभी हमें ये समझ में आया कि अगर हमें डर लगता है, एक तो किसी बड़े को बताना है अगर ज़्यादा डर लगे तो, है ना, बताना ज़रूरी है फिर, ऐसे नहीं तो आपको अकेले और डर लगेगा. और दूसरा, जैसा आपने बताया कि और दूसरे तरह के वीडियोस देखने हैं, है ना, नहीं तो हमारा ब्रेन फिर वो याद करके हो सकता है आज डराए कल डराए और फिर बाद में भी डरा सकता है हमको. और डरते हैं तो फिर वीक लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना, फिर हमको कभी कभी ऐसे घबराहट होने लगती है ना, और भागने का मन करता है, यहाँ से भाग जाओ फटाफट कहीं पर, है ना. और अकेले जाने में तो बहुत ही डर लगता है, पानी पीने या वॉशरूम जाने में भी डर लगता है ना, अकेले रात को अंधेरे में.
0: हाँ, मैं पापा जब सोते हैं मेरे को वॉशरूम लगता है, तो मैं पापा के साथ ही जाती हूँ.
1: हाँ, तो इसलिए कौन से वीडियोस देखने हैं, अच्छे वाले, ठीक है, पक्का. और अच्छे अच्छे वीडियोस देखेंगे जिसमें मजा आए, जिसको हम एंजॉय करें, है ना. ओके
2: दीदी, मेरा एक दोस्त है, उसका एक और दोस्त है, उस वो है ना, मतलब उसके साथ बहुत ज्यादा होरन चीज हुई थी. मतलब है ना, मैं आपको बता नहीं सकता.
1: कोई बात नहीं,
2: वो बहुत ज्यादा.
1: कोई बात,
0: दीदी एक भूत के बारे में बताऊं?
1: बताओ.
0: तो एक लड़का था, वो रात में सोया ही नहीं था, और जब वो बाहर पानी पीने गया तो उसको बहुत अजीब सा लगा डरने के.
1: उसने भी कोई हॉरर स्टोरी देख ली होगी इसलिए. आराध्या तो नहीं देखती है भूत वाले वीडियोस? नहीं ना. हाँ, अच्छी बात है, अच्छे अच्छे वीडियोस देखना, ठीक है.
0: डेडी जब मुझे रात में वॉशरूम आते हैं, मैं अकेले चली जाती हूँ.
1: हाँ, क्यों? क्योंकि आप भूत वाले वीडियोस नहीं देखते ना, इसलिए आपको डर नहीं लगता. बहुत अच्छी बात है. तो इसीलिए अगर आपको लगता भी है ना डर लगने लगा है, कोई बात नहीं, जैसे ब्रेन में वो वाले वीडियोस छप गए थे, दूसरा कुछ अच्छा देखोगे तो वो भी छप जाएगा. तो इसलिए अच्छा अच्छा देखो, है ना. आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, भगवान को दोस्त बना के उनको साथ लेकर जा सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा मेडिटेशन सीख सकते हो, तो उससे डर फिर छू मंतर हो जाएगा, गिली गिली छू हो जाएगा. क्या हो जाएगा?
2: गिली गिली छू.
1: चलो, डर को करते हैं गिली गिली छू, हमारे दोस्तों को करते हैं बाय बाय.

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

0: इस प्रोग्राम में पेश खदमत है एक नज्म। उन्वान है बिल्ली और शेरनी। शायर है जियाउर रहमान जिया। इस नज्म को पहले तहत में पेश किया जा रहा है। आवाज है मोहतरमा सादिया रहमान की।
1: एक दिन ये शेरनी से जाके बिल्ली ने कहा, तेरा रुतबा मुझसे हो सकता नहीं हरगिज बड़ा। देख, मैं एक झोल में देती हूँ बच्चे किस कदर। एक से जायद नहीं तूने किए पैदा मगर। शेरनी बिल्ली से बोली, खा के फौरन पेच उताब। कुछ दिनों के बाद दूंगी मैं तुम्हें इसका जवाब। कुछ ही मुद्दत बाद दोनों फिर अचानक ही मिली। साथ बिल्ली के मगर था, एक भी बच्चा नहीं। शेरनी ने पूछा, खाला आपके बच्चे नहीं? मुब्तिला कोई मुसीबत में तो बेचारे नहीं। आह, ठंडी भर के बिल्ली इस तरह गोया हुई, मेरी कुछ औलाद कुत्तों का निवाला बन गई। बच रहे थे जो उन्हें इंसान के बच्चे ले गए। सब्र ही करती हूँ मैं, किस्मत में मेरी वो न थे। शेरनी के सामने था उसका बच्चा नौजवान। देखकर बच्चे को अपने हो रही थी शादमा। शेरनी बिल्ली से बोली, ए मेरी खाला सुनो, किस लिए तुम कोसती हो अपनी किस्मत को? कहो नाज जिन पर था तुम्हें कमजोर वो औलाद थी। कितनी आसानी से वो दुश्मन के हत्थे चढ़ गई। इस कदर औलाद से क्या शान तेरी बढ़ गई। 8-10 से तो है बेहतर एक हो लेकिन जरी।
0: और अब ये नज्म तरन्नुम के साथ पेश की जा रही है। गुलकार हैं देवाशीष और अनुजा बिसारिया। इस नज्म को मौसीकी से आरास्ता किया है राकेश पंडित और उनके साथियों ने।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंट्स इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश

0: स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बाल संसार में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय पर, सार्थक दृष्टिकोण से समाधान की नवीनता। मुख्य भाग आज के इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे रचनात्मक सोच और नवीनता हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रचनात्मक सोच का मतलब है समस्याओं को नए और अनूठे तरीकों से हल करना। यह कौशल हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता दिला सकता है। रचनात्मक सोच के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पार्श्व सोच, आलोचनात्मक सोच और कल्पनाशील सोच। इन सभी प्रकारों का उपयोग करके हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं।
1: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज फिर से हम लोग आ गए हैं आपके साथ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ एपिसोड में हमने बहुत ही अच्छी तरह से एक सकारात्मक दृष्टिकोण पर हमने बातें की, और इस दृष्टिकोण के साथ ही कुछ प्रश्न रह गए थे और सार्थक नवीनता की परिभाषा की ओर हम लोग बढ़ रहे थे। तो आइए, मैं चाहूँगा कि सार्थक परिभाषा क्या है और ये सामान्य नवीनता से कैसे भिन्न है, ये बात बताइए।
2: बहुत अच्छा प्रश्न भी है, और बाल जगत के लिए हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर बाल संसार को एक नई दिशा देने में सहायक होगा। और जब हम बात करते हैं सकारात्मकता की, तो शुरू में इस शब्द को सुनते ही थोड़ी सी बोझिलता मालूम पड़ती है, और बच्चों को ऐसा लगता है कि ये विषय जो है वो बड़ों तक सीमित है या बड़ों के लिए बना हुआ है। लेकिन जब वो इसकी गहराई में जाते हैं, या बड़े कई बार उनको छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से ये बताने की चेष्टा करते हैं कि आप बेटा जो भी सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी को मेंशन करना। और जय कई बार आप नॉलेज के बेस पर देखते हैं, स्किल के बेस पे देखते हैं और एटीट्यूड के बेस पे देखते हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग लगता है कि ज्ञान तो हमको है और जिस स्तर का ज्ञान है उससे हम अपना जीवन चला लेंगे। लेकिन ज्ञान के परिदृश्य या परिप्रेक्ष्य में जब कोई नई बात हमारे सामने आती है, तो हमें लगता है कि नहीं, ये ज्ञान हमको कहीं ना कहीं अपने जो नॉलेज है उसमें वैल्यूएशन करना चाहिए। और कुछ कुशलता की बात भी आएगी, स्किल की बात आएगी, तो वहाँ भी बच्चे कहीं ना कहीं जागृति का भाव महसूस करते हैं। लेकिन जब उनको ये बताया जाता है कि ज्ञान और कुशलता दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा एक एटीट्यूड डेवलप होगा, हमारा एक ओवरऑल थिंकिंग निकल के आएगी, जिसको हम थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कहते हैं, कि एक सोच हमारे पास में थी, एक चिंतन हमारे पास में था, एक नए चिंतन के प्रति हम जागृत हुए हैं, और इस जागृति को जब हमने स्वीकार किया है तो वहाँ से अपने ओवरऑल एटीट्यूड में हम चेंज ला सकते हैं और पॉजिटिविटी को एक नए तरीके से समझ सकते हैं। जी
1: चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अजय जी। और जैसे कि हमने यहाँ भिन्न कैसे हैं वो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एक प्रश्न ये भी आता है कि जो सार्थक नवीनता में उपयोगकर्ता की ज़रूरतों को पूरा करने का क्या महत्व है।
2: बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब उपयोग की बात आती है तो मैंने एक बात और कही थी कि कोई भी इंसान अच्छा है, वो बहुत अच्छा हो सकता है, और उसकी अच्छाई उस तक सीमित है। लेकिन जब वो अच्छाई सोसाइटी में कम्युनिकेट होती है या कन्वर्ट होती है या डेडिकेट होती है, तो मेरे साथ साथ में कुछ और लोगों को भी खुशी मिलती है। मैंने कोई कर्म किया, या उदाहरण के लिए मैंने मन से कोई काम किया, तो मुझे लग रहा है, या कुछ मन से अनुकूल या प्रतिकूल होने पर माता पिता ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करेक्शन कर लो, तो हम थोड़ा सा एक रोष व्यक्त करते हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें लगता है कि क्या हम ठीक से सोच भी नहीं पा रहे हैं, हमारी कोई दृष्टि ही नहीं है। तो वो वहाँ पर माता पिता ये समझाते हैं कि एक मन जो आपका है, जिससे आप सोच रहे हो, कुछ करना चाहते हो, लेकिन इस मन से हजारों मन दुखी हैं। एक बहुत सारे मन को तकलीफ हो रही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें माइनर अमेंडमेंट कर लिया जाए, अकॉर्डिंग टू मर्यादा हो जाए, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी की एक्सेप्टेंस हो जाए, परिवार उसको स्वीकार करे, तो इतनी सारी जो सामाजिक स्वीकृति एक्सेप्टेंस है अगर वो बढ़ती है तो इसका मन है कि एक मन जो कुछ सोच रहा है, करना चाह रहा है, उस पर कोई बैन नहीं है, लेकिन उसको एक दिशा दी जा रही है कि उससे बहुत सारे मन को सुख शांति आनंद प्राप्त हो सके। तो वो जो माइनर हम चेंज करते हैं वो हमारी दृष्टिकोण को इस बात के लिए तैयार करता है कि केवल हम सकारात्मक नहीं हैं बल्कि सार्थक भी हैं। माने मैं अच्छा हूँ लेकिन मैं उपयोगी भी हूँ, मैं समाज के किसी काम में आता हूँ, मुझे समाज का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा जाता है। और ऐसी स्थिति में कई बार बड़े उदाहरण भी देते हैं कि ठीक है बेटा एक काम करो, ये तुमको मैं समझा रहा हूँ, तुमको अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये एक ग्लास है उसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो तुम बताओ कि क्या स्थिति है। लेकिन जब बच्चा बोलता है कि ये आधा खाली है, तो वहीं उसे समझाने का प्रयास किया जाता है कि अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर होती तो बेटा आप क्या देखते, आप देखते कि आधा गिलास भरा हुआ है। अब आधा गिलास भरा हुआ है और बाकी आपने नहीं बोला तो अंडरस्टूड है वो, लेकिन आपका जो अटेंशन है, आपका जो फोकस है, आप जिस लेवल पर अपने ब्रेन को, अपने मन को, बुद्धि को, संस्कार को, दोनों तीनों को मिला के देख रहे हो, इससे पता चलता है कि हमारी दृष्टि में ये आधा ग्लास भरा हुआ है। अब इसमें जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है, और वो हो सकता है उसका ज्ञान नहीं भी हो, लेकिन एक कॉमन सेंस हमारी सोच को बताता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, हम खाली की ओर नहीं देख रहे हैं। और जब वैज्ञानिक दृष्टि उसमें वैल्यूएशन के रूप में होती है तो वहां ये बताने का हम प्रयास करते हैं कि बाकी में एयर है, अब आधे ग्लास में पानी है और आधे में हवा है, वो खाली नहीं है। इसका मतलब है कि भरपूरता को देखने की दृष्टि हमने विकसित कर ली है। और ये दृष्टि इस छोटे से उदाहरण से क्यों आपको समझाई जा रही है, उसके पीछे कारण है कि जब भी आप देखने का प्रयास करेंगे तो एक नॉर्मल एटीट्यूड होता है कि वो उसका जो चिंतन होता है वो अधोगामी होता है, ऊर्ध्वगामी नहीं होता है। अब ऊंचाई की ओर जाना थोड़ा सा हमको श्रम लगेगा, हाथ पैर चलना पड़ेगा, तैरने में भी आप देखें पानी की विपरीत दिशा में जाना तो वहाँ ऐसा लगता है कि कोई एफर्ट कर रहा है, पसीना बह रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन जिस दिशा में पानी बह रहा है, संसार जहाँ जा रहा है, आप बिल्कुल सहज भी हो जाओ और बिल्कुल सांसों को हल्का सा रोक लो तो भी आप बहते जाओगे, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो जहाँ प्रयास है वहाँ सकारात्मकता है, और सकारात्मकता आपको एक नई दिशा देती है कि आप एक काम करिए कि जिस चिंतन को आप फलीभूत करना चाह रहे हैं उसके प्रति थोड़ा सा लॉयल्टी को आप व्यक्त करें। लॉयल्टी इन द सेंस कि वो जो सकारात्मक चिंतन है वो आपको एक जिम्मेदारी महसूस करा रहा है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ में जब जवाबदेही की बात आती है तो वहाँ हमारे मन में सार्थकता के प्रति जो दृष्टिकोण था वो फलीभूत होता है, परिणाम में आता है। और जब सकारात्मकता के साथ सार्थकता की बात हो और परिणाम आपको प्राप्त हो रहा हो तो आपके एफर्ट, आपका पुरुषार्थ, आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म सभी को आपने एक नई दिशा दी है, एक प्लान किया है, एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है, और उसी का परिणाम है कि वहां आपको चीजें रिजल्ट के रूप में दिखाई दे रही है और वो भी

डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा है और सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर आपने जो बातें बताई बहुत ही उपयोगी बताई आपने। और इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों को अगर हम लोग गहराई से समझ लेते हैं तो हमारा जीवन बेहतर बन जाता है। तो इस पर मैं अभी आप सभी को कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में जिस तरह से हम लोग थोड़ा सा अगर काम कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और माता पिता बच्चे सब जो है एक साथ रहते हैं, एक रूटीन बन जाता है और एक जो है रूटीन में क्या हो जाता है, मोनोटोनस आ जाता है और उसके वजह से हमारे जीवन में हम कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि जब ये मोनोटोनसनेस आ जाता है तो हम चाहकर भी कोई नवीनता उसमें ला नहीं सकते। ऐसे में हमें जो है थोड़ा सा विचार मंथन करने की ज़रूरत है। जब हम विचार मंथन करेंगे और किसी थर्ड पर्सन को यानी जो आपके फैमिली से नहीं ऐसे व्यक्ति को अगर आप अपने साथ जोड़ लेते हैं या उनको पूछ लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल सटीक उत्तर दे देगा, ताकि आपकी क्रिएटिविटी भी मिल जाएगी और आपको नवीनता भी मिल जाएगी। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से किसी थर्ड पर्सन को मेंटर को बताने की कोशिश करते हैं या कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें विदेश में बहुत ज़्यादा जो है कंसल्टेंट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मेंटर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और वो उनको सिखाया भी जाता है और उनको खास पेमेंट देकर उनको बुलाया जाता है या उनके साथ जाके मिलते हैं। अगर एक छोटा सा उदाहरण दें, अगर कंप्यूटर पे आप काम करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि कंप्यूटर पे काम करते करते कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो हैंग होने पर हम रिसाइकल बिन में जाके कुछ चीज़ों को डिलीट कर देते हैं जितनी हमारी जानकारी है, उसके बाद भी काम नहीं करता तो हमें किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है और वो बंदा आता है और दो मिनट में समझ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और वो अपने कमांड्स देकर उसको क्लीन कर देता है और आपका कंप्यूटर साफ़ सुथरा और स्पीडली चलने लगता है। तो यही बात है कि हम भी जब मुश्किल में आ जाए तो बेझिझक एक बीमारी में जैसे कुछ बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जैसे जाते हैं, वैसे आप एक कंसल्टेंट या मेंटोर के पास ज़रूर अपने इस सिचुएशन को लेकर उनसे बात कीजिए, बात करने से आपको जवाब मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ आप सभी को, और बड़ा अच्छा प्रश्न है लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बातें हो रही डॉक्टर अजय शुक्ला जी से। अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार। और मैं चाहूँगा कि आज जैसे कि आपने जो बातें हमें सुनाई हैं सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में, इसके साथ ही मैं ये चीज़ें जरूर जोड़ना चाहूँगा कि इसके विभिन्न तरीके क्या है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं अपनी आँखों को खोलता हूँ और मुझे संसार में बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे लगता है कि गूगल देवता मेरी बड़ी मदद करेंगे। और मैंने उसमें एक शब्द बोल दिया, एआई। अब एआई बोल दिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने क्लैरिटी से आ जाएगा। पूरा का पूरा यूथ चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं कैच कर लूँ। अब एक बच्चा मेरे पास में आता है और कहता है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। तो मैंने उनसे कहा कि एक काम करते हैं कि आपको पास में मेट्रो सिटी है, इंदौर, एमपी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ चलते हैं। और वहाँ एक प्रोग्राम है, बम्बई से एक टीम आई है, मुंबई से, वो लोग कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं और अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, तो उसमें एक सीनियर प्रोफेसर वहाँ से आ रहे हैं, प्रोफेसर रत्नाकर अहिरे जी, तो क्यों नहीं हम उनसे मिलवाएंगे आपको और कुछ संवाद होगा। और इट मे बी पॉसिबल कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वेल नोन है और इस फील्ड में काम करते हैं और आपकी मदद करेंगे। अब इसी बीच में उनको मऊ से इंदौर आने में टाइम हो जाता है और एक और प्रोफेसर जो मेरे मित्र हैं और इंदौर में ही हैं, उनका आगमन हो जाता है। और मैंने कहा कि संयोग से ये पूरा प्रोग्राम 7 बजे के बजाय 10 बजे अब हो पाएगा। अब यहाँ पर बच्चे से मैं बात कर रहा था कि अब आप बताओ, 3 घंटे का डिले है, हम बिफोर टाइम आ गए हैं, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी क्या मदद कर सकता है, क्या हमें इस 3 घंटे की रिकवरी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकता है। तो बच्चे ने अलग अलग उदाहरण बताया, फॉर एग्जांपल कि म्यूजिक हम सुन लें, अभी कोई थिएटर में चल के फिल्म देख लें, ये सारी बातें। उसी समय एक सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अभय गुप्ता जी वहाँ पर आए और उनसे मैंने परिचय कराया और मैंने कहा कि ये बच्चा ये जानना चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इससे पहले कि इस बच्चे को आप गाइड करें, तो उन्होंने संयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने की बात कही और ये भी कहा कि जो इंसान आपसे मेरा परिचय करा रहे हैं, ये हम लोगों को पढ़ाते हैं, ये प्रिंसिपल को पढ़ाते हैं, प्रोफेसर को पढ़ाते हैं, और इनकी सहजता और देखो आपकी, ये आपका रिलेशन मेरे से जोड़ रहे हैं और मेरे से बातचीत करा रहे हैं। सारी बातचीत होती रही, बच्चे ने 1-1.5 घंटे काफ़ी सवाल किए। लास्ट में जब उन्होंने कहा कि मुझे जाना है, चूँकि प्रोग्राम लेट होगा और आप चूँकि वहाँ स्पीकर हैं, तो एज ए स्पीकर आपको रुकना पड़ रहा है, तो इस सारी प्रक्रिया में बच्चे से मैंने लगभग रिमेनिंग टाइम में 1 आवर और बात की और कार्यक्रम में वो बच्चा भी शामिल था। तो उसने कहा कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है और इसमें मैं अपना करियर बना सकता हूँ, लेकिन एक प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है और जो आप सोच रहे हैं वो मैं भी सोच रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुँचा कैसे जाए, कौन करेगा, हु इज क्रिएटर, भाई आखिर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। तो मैंने कहा कि ये काम करते हैं कि मैं सबसे पहले आपके माथे पर हाथ रखता हूं और मैं बोलता हूं कि यहां से सेल्फ इंटेलिजेंस क्रिएट होता है, ये सेल्फ इंटेलिजेंस की मशीन है और ये आपको बताएगी कि आपकी बुद्धिमत्ता का लेवल क्या है, इसको आप ढूंढो, मैं आगे मदद करूंगा आपकी। फिर मैंने कहा कि इसी माथे में से एक और बात आती है सोशल इंटेलिजेंस। सेल्फ इंटेलिजेंस का वैल्यूएशन तो मैं कर सकता हूँ और मेरे पास जो क्षमताएं हैं, मैं स्वयं के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, आप भी ढूंढ सकते हो, लेकिन सोशल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति तय करता है कि सामने वाले का जो ब्रेन है वो सोसाइटी में किस लेवल पर कंट्रीब्यूट हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो उसे भी हम देखेंगे। और इसी शरीर में नीचे अगर हम हाथ लगाएंगे तो हार्ट है हमारा, साइंटिफिक लेवल पर वो केवल पंप करता है, लेकिन इमोशंस को के क्रिएशन की बात हम यहाँ से करते हैं क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम बात कर रहे हैं, किसी बॉडी के पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो जो भावनाएं हैं, अब इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ क्रिएट हुआ और इसी के अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्रिएट होता है, क्योंकि जितनी भी भावनात्मक या रागात्मक स्थितियाँ आई हैं वो दिल से आई हैं। और ये कहा गया है कि आज मेरे हृदय में या कोई किसी बात को कोई हर्ट होता है तो क्या बोलता है कि भाई तुमने आज ऐसी बात बोली कि मैं बिल्कुल, मेरे को हृदय में वो चुभ गई। तो चुभना भी होता है और दिल में कोई बात लग भी जाती है, लेकिन आप प्रफुल्लित हो गए, आप आनंदित हो गए और आज दिल गदगद हो गया, ये भी सिचुएशन है। इसका मतलब हो गया कि ये जो ब्रेन है इसमें सेल्फ इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और हार्ट में इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और एक और इंटेलिजेंस है और वो है सोल इंटेलिजेंस, जो दोनों भ्रकुटी के बीच में जहाँ आत्मा का निवास है। अब ये आत्मा का निवास और आत्मा के बारे में जब आप अध्ययन कर लेते हैं तो वो आपका सोल इंटेलिजेंस हो गया। अब दो और दो चार और एक पाँच इंटेलिजेंस का यूज करने के बाद एक ह्यूमन बींग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ता है। तो बच्चा मेरे से कहता है कि अब जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ना, तो मैं आराम से लिखूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो से बड़ा ह्यूमन बीइंग है और ये जब कुछ करेगा तब तो वहाँ परिणाम आने वाला है ना। वो रोबोटिक कल्चर में हम जा रहे हैं, रोबोट को सब कुछ दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल में रोबोट जाके पेशेंट को बॉटल दे देगा, मेडिसिन दे देगा, लेकिन वो मेडिसिन को यूज कैसे करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन भी दे देगा, लेकिन वो यूज कौन करेगा? वो डॉक्टर को ही करना पड़ेगा ना। तो लास्टली डॉक्टर या कंपाउंडर या नर्सेस की सेवाओं को हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग एक रोबोट जाके उस इंसान से हालचाल ले लेगा, वहाँ वो आर्टिफिशियल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं होगी, लेकिन एक नर्स जाके जब एक पेशेंट का हाथ पकड़ के पूछती है कि आपकी तबीयत भाई जी कैसी है, तो उस समय जो पेशेंट की मुस्कुराहट होती है वो उसको रिकवर करती है, न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन उसकी उपयोगिता से हम इनकार नहीं कर सकते। जी
0: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा होगा। आइए एक और आखिरी प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, जहाँ पर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की और ह्यूमन नेचर की बात की, ह्यूमन नेचर से कैसे जो है हमारा काम आसान हो जाता है। तो ये एक जब मनुष्य की बात करते हैं या ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करते हैं या मानवता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो है मानवीय मूल्य भी बड़ा काम करता है। तो इसमें कृतज्ञता का अभ्यास करने से सकारात्मक दृष्टिकोण जो है, सकारात्मक दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताइए।
1: बहुत संवेदनशील प्रश्न है और मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ जब भाव जगत होता है तो वो एवरी टाइम इंसान को मनुष्य बनाए रखने में मददगार साबित होता है। और जब हम कृतज्ञता की बात करते हैं, आभार की बात करते हैं, तो एक नियम भी है कि जितना भी हमने अचीव किया है, एक्वायर किया है, प्राप्त किया है, या कुल मिला के हमें जितनी भी प्राप्ति, कुल मिला के मैं अगर इसको प्रत्यक्ष रूप से कहूँ कि अगर कोई बच्चा या कोई इंसान सोसाइटी में अच्छी स्थिति में है, तो इसके बैकग्राउंड में एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज, एक राष्ट्र का योगदान है। वो बच्चा अचानक पैदा हुआ और सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया और वो एक्नॉलेज नहीं करे, तो उसका मन जब भावों से भरा होगा तो वो इंसानियत के मार्ग पर चल सकता है। तो इसलिए किसी भी किताब को हम लिखते हैं या कोई भी ज्ञान को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम आभार व्यक्त करते हैं कि ये हमारे आसपास के समाज से मिला। कुल मिला के मैं कहूँ कि एक समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि अगर कोई इंसान अच्छा है, इसके पीछे भी पूरा समाज का योगदान है, और अगर कोई इंसान बुरा है तो वो अकेले बुरा नहीं हुआ है, वो सारी परिस्थितियाँ उसके परिवार और समाज में घटित हुई हैं, इसका परिणाम है कि वो बुरा है। तो अच्छा और बुरा कोई इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी आप अचीव कर रहे हैं, इसी समाज और इसी सोसाइटी से कर रहे हैं, और जो भी आपने प्राप्त किया है अगर इसको एक्नॉलेज करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो हमारे मन में कभी अभिमान की स्थिति क्रिएट नहीं होगी। और जब अभिमान से मुक्त हम रहेंगे तो उस स्थिति में हमारी जो दृष्टि और दृष्टिकोण है वो सकारात्मक और सार्थकता से भरी हुई भी होगी, और हम मन से, अंतर मन से इस कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए जो भी एक्वायर कर रहे हैं, जो भी प्राप्त कर रहे हैं, उसे हम सहजता से निमित्त निर्माण और निर्मल स्वरूप में समाज को पुनः सौंप सकते हैं, आभार और धन्यवाद के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अजय शुक्ला सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, कृतज्ञता किस तरह से हमारे जीवन को या सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाता है और बहुत सारे ऐसे कला क्लेश को मिटा देता है जिसके लिए हम लोग काफ़ी लंबे समय तक बीमार भी हो जाते हैं, लंबे समय तक वो जो दुश्मनी कह सकते हैं या कला क्लेश को लेके जीवन को तनाव डिप्रेशन से लेकर चलते हैं, कृतज्ञता भाव अपने आप ही सब कुछ कर देता है, शून्य कर देता है, लेने वाले को, देने वाले को, सबके लिए समान भाव से उसको शून्य कर देता है, और उसके प्रति भी आभार, दूसरे जो नहीं कर रहे हैं उसके प्रति भी आभार व्यक्त करता है। बड़ा अच्छा आपने बताया। तो चलिए मित्रों, आज के इस विशेष जो कार्यक्रम है बाल संसार, जिसमें हम सार्थक नवीनता की बातें कर रहे थे और एक मूल्य के साथ हम कार्यक्रम को समापन कर रहे हैं, तो फिर मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक को लेकर। आशा करूँगा कि हर टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको नई सीख मिल जाती है, तो आप सीखते रहें और जानते रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे और एक बार फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: समापन। तो बच्चों, आज हमने जाना कि रचनात्मक सोच और नवीनता कैसे हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं। तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कम्फर्टेबल बिटवीन द टू पीपल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ साधना सरगम। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सफर कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान रतन जी हैं, जम्मू कश्मीर से, और आप ब्रह्मा कुमारी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर सेंटर के कारोबार को भी आप देखते हैं। तो रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप?
2: बढ़िया भाई।
1: और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका पहले प्रोफेशन क्या था, क्या करते थे आप?
2: भाई जी, मेरे जीवन की शुरुआत जम्मू प्रदेश के अखनूर से हुई।
1: अच्छा।
2: अखनूर के पास हमारा एक छोटा सा गांव था। जैसे हम थोड़े से आने हुए तो हमारे पिताजी जो सेना में सर्विस करते थे रिटायर हुए।
1: अच्छा।
2: तो उन्होंने अखनूर शहर में एक छोटा सा प्लॉट लिया और वहाँ रिटायरमेंट के बाद मकान बना के रखा। और इसलिए गांव में रहते तो हम पढ़ नहीं पाते, उनकी जो सोच थी जो उन्होंने हमें बताई, तो जम्मू शहर हमारे पास ही था तो हम सेंटर प्लेस में आ गए। वहाँ स्कूल की और पढ़ने की सुविधाएं थी, वहाँ उन्होंने हमें रखा और उससे हम सारा परिवार पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सके। इस प्रकार से हमारा जीवन शुरू हुआ। अनायास मुझे ऐसे लगा कि उन दिनों जैसे जैसे हम पढ़ने लगे और मैंने मैट्रिकुलेशन कर लिया, कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो मुझे लगा कि हमें आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए जैसे मेरे पिताजी थे।
1: सही बात है।
2: उनसे प्रेरणा लेकर मैंने भी उनकी एब्सेंस में आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की और लकीली मैं हो गया।
1: अच्छा अच्छा।
2: और ये भी एक भय था, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में आप ये देखते हैं कि पिताजी के सामने बच्चों को थोड़ा भय लगता है, और वो आर्मी में थे तो हमें और भी ज्यादा भय लगता था उनसे। तो मैंने सोचा वो अब आने वाले हैं और मैं बड़ा हूँ तो मेरे साथ कभी भी वाद विवाद ना हो जाए कुछ।
1: जी जी।
2: तो जैसे अपनी सोच रहती है उस समय,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो इसलिए मैं पहले से ही घर से निकल जाऊं एब्सेंस में ही। तो मैंने लकीली आर्मी ज्वाइन कर ली।
1: अच्छा अच्छा।
2: इस प्रकार से हमारा जीवन चला।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कितने टाइम तक आपका आर्मी में क्या रोल रहा?
2: ऐसा है भाई जी, मैंने तो एक सिपाही के तौर पे ज्वाइन किया था।
1: जी जी।
2: साल डेढ़ साल तो ट्रेनिंग चलती है।
1: बिल्कुल।
2: और उसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे ट्राई करनी चाहिए ऑफिसर बनने के लिए। मैं ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में जाने लगा जो उनके सिलेक्शन टेस्ट होते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: तो बाई चांस मैं नहीं क्लिक कर पाया, तो दो एक बार मैंने ट्राई किया और फिर इतनी देर में कोई मेरी जीवन है आर्मी में कोई 5.25 साल के करीब हो गया।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो फिर मुझे लगा कि जब मैं जो चाहता हूँ वो नहीं पा रहा हूँ तो मैं किस लिए यहाँ बैठा हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो उसी समय मैं बहुत अच्छे अच्छे संस्थाओं से जुड़ता चला गया और बहुत कुछ सीखता चला गया।
1: क्या बात।
2: तो फिर मैंने सोचा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे इसमें कुछ एंजॉयमेंट नहीं आ रही, अच्छा नहीं लग रहा, मैंने सेवा तो की है। लकीली उन्हीं दिनों 71 की वॉर हो गई, 71 दिसंबर में जो पाकिस्तान से वॉर शुरू हुई थी, और जैसे ही वो ख़त्म हुई तो उसके बाद मैंने डिस्चार्ज के लिए अप्लाई किया कि मैं और नहीं रह पाऊंगा, मुझे छोड़ देना चाहिए। और उसमें मुझे एक प्रॉब्लम थी कि हमारे ज़मीन की कुछ जो गांव की ज़मीन थी उसमें कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे।
1: अच्छा,
2: उससे छुड़वाने के लिए भी मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा।
1: हाँ।
2: और मैं वहाँ से मुक्त होकर घर में आ गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। रतन जी से आप अपना अनुभव जो है उनका जीवन का सुन रहे हैं, और बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया कि पिताजी आर्मी में थे तो इनको भी प्रेरणा मिली कि हमें भी आर्मी में ज्वाइन करना चाहिए। तो उन्होंने लकीली प्रयास भी किया, ज्वाइन भी हुए, और कुछ समय तक आर्मी में रहने के बाद फिर परिस्थितियाँ कुछ और आ गई और 71 का जो वार है वो पूरा होने के बाद ये वापस अपने घर लौट आए और वहाँ पर जो ज़मीन का मसला था उसे ठीक करने में लगे। तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए रतन जी, मैं चाहूँगा कि जैसे आज के इस प्रोग्राम में आपने आर्मी के बारे में बताया और ब्रह्मा कुमारी से भी वर्तमान समय आप इंस्टीट्यूशन में आए हुए हैं ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में, और ये ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ, आपका क्या स्टोरी बना, वो थोड़ा सा बताएं।
1: ऐसा हुआ भ्राता जी के हमारे लौकिक पिताजी सेना में थे और जैसे मैंने आपको कहा कि वो रिटायरमेंट से पहले मैं निकल गया
0: जी, जी, जी।
1: जब वो रिटायर होकर घर में आए तो उन्होंने हमें ये बताया कि मैं वहाँ जब सेना में रह रहा था तो वो जबलपुर के एरिया में लास्ट में सेवाएं दे रहे थे।
0: अच्छा,
1: रिटायरमेंट से पहले कुछ ना कुछ ड्यूटीज रहती हैं,
0: बिल्कुल,
1: जो सिंपल ड्यूटीज रहती हैं ताकि आदमी उनसे मुक्त हो सके। तो वो जबलपुर में फर्स्ट एमपी बटालियन में सेवा दे रहे थे, बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को सिखाया करते थे, उनमें उनकी सेवाएं थी। वहां उनको उनके सबॉर्डिनेट्स जो थे वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आया जाया करते थे कुछ समय जो उनको मिलता था।
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि भाई जी एक बहुत अच्छा आश्रम है, हम उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा वो योगा सिखाते हैं, तो आप आइए। तो कभी कभी, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिसमें आदमी थोड़ा दुखी, परेशान या स्ट्रेस में होता है, ऐसी सिचुएशन जब उनके सामने हुआ करती थी तो वो उनको कहते थे कि आप हमारे साथ चलिए, आप बड़ा रिलैक्स फील करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। तो पिताजी को ये लगता था कि मैंने जीवन बहुत जिया है, बहुत दुनिया देखी है, बहुत कुछ फ्रॉड होता है, तो मैं किसी गलत जगह में ना फंस जाऊं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो वो मना करते थे कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना। और रिपीटेडली जब वो कहते रहे तो एक दिन उन्होंने कहा, शिवरात्रि के दिन थे, तो उन्होंने उनको एक कार्ड दिया जिसपे लिखा हुआ था कि आपको बहुत हार्दिक निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप आइए और भगवान शिव के बारे में सुनिए। तो उन्होंने कहा चलो आज मैं इनको खुश करने के लिए देख आता हूँ कि वहाँ क्या है। इस प्रकार से उनका जाना हुआ, ये लगभग 1967 की बात है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: और लकीली फिर वहीं से वो उनके संपर्क में आए, उनको अच्छा लगा और इन्होंने ज्वाइन किया। और उन्हीं दिनों उनको उस समय ओम प्रकाश भाई जी वहाँ हुआ करते थे जो जोन के इंचार्ज थे, और वो काफी सीनियर थे, और वो ये कहा करते थे अक्सर, जैसे वो पिताजी सुनाया करते थे हमें कि ब्रह्मा बाबा जो इस संस्थान को चलाने वाले हैं काफी बुजुर्ग हैं और उनकी स्थिति ऐसी है कि वो कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। तो ऐसा है कि जो लोग अभी तक उनको मिल नहीं पाए, वहाँ जा नहीं पाए, उनके दर्शन नहीं कर पाए, तो उनको जाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो लकीली पिताजी कहते हैं मैंने उनको कहा कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, और मैंने वहां से छुट्टी ली 2 मास की और मैं चला गया। तो उनके थ्रू वो उनको जाने का सौभाग्य मिला और वो 68 में पिताजी ब्रह्मा बाबा का मिल सके, उनके दर्शन कर सके, उनका सानिध्य प्राप्त कर सके।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया जी जी। तो फिर आपका लकीली, फिर
1: जी लकीली जब वो घर में आए और 68 में वो रिटायर हो गए 31 दिसंबर को मोस्ट प्रोबेबली, और उसके बाद एक दो दिन उनको आने में लगा घर।
0: बिल्कुल।
1: तो वहाँ जब आए तो उन्होंने, वैसे घर वालों को उन्होंने पहले सूचित कर दिया था, मैं उस समय घर में नहीं था इसलिए मुझे मालूम नहीं पड़ा। तो जब जैसे ही मैं घर में आया तो मैंने देखा कि वो सारे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कोई योगा कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, तो मैंने भी उसको फॉलो करना शुरू किया।
0: क्या बात है, क्या बात। तो यानी पिताजी से ये सारी चीजें आपको
1: जी, जी जी,
0: क्या बात। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बहुत ही सुंदर स्टोरी आपने सुनाया कि कैसे ब्रह्मा कुमारी से आपका जुड़ना हुआ। आइए जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे सभी श्रोताओं को।
1: देखिए भ्राता जी, जब मैं जुड़ा था तो हम बड़े सिंपल और फक्कड़ से आदमी थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कुछ ज्यादा बड़े लोग नहीं थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और सामान्य फैमिली को बिलोंग करते थे। पर हमारे लौकिक पिताजी ने, हमारी ये बड़ी उनकी चाहना थी कि मेरे सारे बच्चे पढ़े लिखे, और उन्होंने जो उनकी सामान्य जीवन था और जितनी उनकी समर्थ थी उन्होंने हमें, हम पे पूरा किया। मुझे उन्होंने बोर्डिंग में रखा और मैं अच्छे से पढ़ाई कर सका।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मुझे लगता है कि आज जो मैं हूँ, और फिर ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का भी सौभाग्य मुझे उनके द्वारा मिला, और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद जो हमें यहाँ योगा सिखाया गया, ध्यान करने की कला, जीवन में अच्छे गुण लाने की कला, जो आज हम लोगों को सुनते हैं कि हम बड़े स्ट्रेस में हैं, जीवन में बड़ी परेशानियां हैं और जीवन के बोझ को ढोना मुश्किल हो रहा है, जीवन जीना नहीं, बोझ ढोना मुश्किल हो रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कोई पत्नी से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, इन सारी व्यवस्थाओं को आज जो हम झेल पा रहे हैं और बड़ा सुख और मौज का जीवन अनुभव कर रहे हैं और दूसरों को भी कुछ अच्छा सिखा पा रहे हैं, खुद को अच्छा बनाना, अच्छा महसूस करना, ये मैं समझता हूँ इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की देन है। नहीं तो आज का जीवन कितना आत्मा को, मनुष्य आत्माओं को दुखी या परेशान कर रहा है। परंतु हम कितना सुखमय जीवन में व्यतीत कर रहे हैं और कितना आनंद से जीते हैं। तो मैं सबके लिए ये कहूँगा कि आप जैसे और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर इस ईश्वरी सहज राजयोग को ज़रूर सीखें। और जो ईश्वरी ज्ञान यहाँ थोड़ा सा सिंपल बताया जाता है वो कितनी महान चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है। आप कितना भी कुछ पढ़ लें फिर आपको मैनेजमेंट ऑफ लाइफ के लिए, जीवन में सुख के लिए, शांति के लिए भटकना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है जो कुछ हम और दुनिया में प्राप्त कर रहे हैं वो बैलेंस्ड नहीं है और वो पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, संपन्नता नहीं है। तो अगर हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से ऐसे गुण और अच्छी चीज़ें ले सकेंगे तो नेचुरली हमारा जीवन संपन्न होगा और हमारा सब देश भी और समाज भी सबका भला होगा।
0: जी जी अर्जन जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया जनता जनार्दन को। निश्चित तौर पे आपने जिस तरह से जिस भाव को प्रकट किया, आज हम लोग जो हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी परेशानी झेलते जाए हैं, बोझ सा हमारा जीवन लग रहा है, तो यहाँ संस्थान से जुड़ने के बाद जो जीवन जीने की कला आपको सिखाई जाएगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो कला आपको सिखाई जाएगी और आपको एक अंदर से जो है आंतरिक सुकून जो महसूस होगा उसके सामने सारे सुख पीके लगेंगे आपको, तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन को इस और थोड़ा सा टाइम दे और इन कलाओं को सीख कर अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रतन जी, आप हमारे साथ जुड़कर अपना अनुभव साझा किया, थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई,
0: शुक्रिया। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर कार्यक्रम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये बात कर रहे थे हम लोग, विशेष 2 सितंबर की कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा था मैं, और निश्चित तौर पे आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है सितंबर की कुछ खास बातें आपसे जब मैं शेयर कर रहा था। तो हमारे साथ विशेष रतन जी आए हुए थे और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया जो आप सभी को भी अच्छा लगा। तो आइए आज के विशेष जो जीवन कहानी से मैं जुड़ना चाहूँगा साधना जी की। साधना जी, इनका जन्मदिन है तो इनके बारे में हम लोग कुछ खास बातें आपसे शेयर करूँगा। साधना एक अभिनेत्री हैं और जब हम लोग इनकी बातें सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और भारतीय सिनेमा की बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री रही। फिल्म अभाना से अपना फिल्म सफ़र आरंभ किया था साधना ने। हिंदी फिल्मों से जो शोहरत पाई और जो मुकाम हासिल किया वो किसी से छिपा बिल्कुल नहीं है। साधना का पूरा नाम साधना शिवदासानी बाद में नैयर था। वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। अपने बालों की स्टाइल की वजह से भी साधना प्रसिद्ध रही और उनके बालों की कट स्टाइल साधना कट के नाम से जानी जाती है। तो आइए इनके बारे में अधिक जानकारी आपको सुनाऊंगा मैं डायरेक्टली। म्यूजिक, डांस, ड्रामा और डायलॉग्स के साथ मैं सुनाने वाला हूँ। आशा करूँगा कि आप सभी को ये चीज़ें सुनकर अच्छा लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए सीधे आपको जोड़ता हूँ साधना जी की जीवन कहानी से। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

बचपन से ही इस लड़की को एक्टिंग का शौक था। माथा जरा चौड़ा था तो ऐसा स्टाइल बनाया कि आगे जाकर इस लड़की के नाम से ही वो स्टाइल मशहूर हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साधना कटवाली, साधना जी की। साधना जी का जन्म 2 सितंबर सन 1941 में हुआ। इनके पिता ने इनका नाम साधना रखा अपनी पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर, जो कि एक बेहतरीन डांसर भी थी। अभी नन्ही साधना बड़ी ही हो रही थी कि हिंदुस्तान ने बंटवारा देखा और उसके बाद ये कराची से मुंबई आ गईं। क्योंकि साधना जी बचपन से ही एक्टिंग करना चाहती थीं, तो इनके पिता ने फिल्म इंडस्ट्री में जरा मेहनत की और 1955 की फिल्म श्री 420 में ये नजर आईं, गाना इचक दाना बीचक दाना में बतौर कोरस गर्ल। हालांकि ये रोल इतना छोटा था कि किसी की नजर साधना जी पे ज्यादा पड़ी नहीं। मात्र 15 साल की उम्र में इन्होंने कॉलेज के ड्रामास में भाग लेना शुरू किया। इनकी अभिनय क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि एक प्रोड्यूसर की नजर इन पे पड़ी और इन्हें 1 रुपए का टोकन अमाउंट दिया गया और एक सिंधी फिल्म अबाना के लिए साइन किया गया। अब यहाँ पर किस्मत ने एक अलग बाजी खेली। अबाना फिल्म की पब्लिसिटी के दौरान इनकी फोटो छपी एक मैगजीन में और तब उस जमाने के जबरदस्त प्रोड्यूसर सशादर मुखर्जी की नजर इस तस्वीर पर आई। सशादर मुखर्जी इन्हें ले गए फिल्मालय एक्टिंग स्कूल और अपने

0: ये किस्सा भी मशहूर रहा कि जब फिल्म मेरे महबूब इन्हें ऑफर की गई तब इन्होंने इनकार कर दिया और उस जमाने के मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से इन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि मैं फिल्म मेरे महबूब क्यों साइन करूं। ऋषिदा ने कहा कि इस फिल्म का हीरो कौन है, बताया गया राजेंद्र कुमार। और तब ऋषिकेश मुखर्जी ने यह हिदायत दी कि साधना तुम इस फिल्म को जरूर साइन करो क्योंकि राजेंद्र कुमार हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट ही चुनता है और ये फिल्म भी बड़ी कामयाब होगी। ठीक वैसा ही हुआ। इन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में भी कमाल काम किया था पर फिर भी कोई अवार्ड इनके हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच इन्हें थायराइड की प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ये अमेरिका गई अपना इलाज करवाने। दुनिया को लगा कि अब साधना कभी लौट कर नहीं आएगी और फिल्म इंडस्ट्री को इसने टाटा बाय बाय कह दिया है, लेकिन ये वापस आई और वापस आकर इन्होंने इंतकाम लिया, बल्कि फिल्म इंतकाम हमारे सामने रखी। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके साथ ही आई फिल्म एक फूल दो माली और गीता मेरा नाम, इन दोनों ही फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब बिजनेस किया और उसके बाद साधना जी धीरे धीरे फिल्मों से दूर हो गईं। इनका यह मानना था कि मैं सिर्फ बतौर हीरोइन ही काम करूंगी, किसी भी हालात में मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट बनके नजर नहीं आऊंगी।
1: जिसने मेरी जान बचाई अगर वो चाहता तो हमारे रिवाज के मुताबिक उसी दिन मेरा हाथ शादी के लिए मांग सकता था, मगर वो एक बहादुर और शरीफ इंसान है जिसने हमारे रिवाज का फायदा उठाना अपनी शान और शराफत के खिलाफ समझा।
0: ये किस्सा भी मशहूर है कि साधना जी को साधना कट कैसे मिला। बात दरअसल यूं रही कि इनका माथा जरा चौड़ा था और फिल्म के डायरेक्टर आर के नैयर को लगा कि अगर माथे पे थोड़ी जुल्फें बिखेर दी जाएं तो चेहरा और भी आकर्षक लगेगा, इसलिए अपनी पसंदीदा अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न के हेयर स्टाइल से प्रेरित होकर आर के नैयर ने साधना जी को वो फ्रिंज कट दिया जिसे आगे जाकर साधना कट के नाम से मकबूलियत हासिल हुई। स्कूल और कॉलेज में लड़कियां अक्सर साधना कट में ही नजर आती थीं। हर हीरो के साथ इनकी जोड़ी खूब हिट रही, चाहे वो शम्मी कपूर रहे कि संजय खान, देव आनंद रहे कि राजेंद्र कुमार या फिर सुनील दत्त।
1: नहीं रखोगे?
2: नहीं।
1: जानते हो मैं यहाँ की रानी हूँ, मैं तुम्हें हुक्म भी दे सकती हूँ।
2: मैं भी राजकुमार, दिल की सल्तनत का, किसी का हुक्म मानने का आदि नहीं।
0: गौर करने वाली बात यह है कि एक्ट्रेस बबीता इनके रिश्ते में लगती हैं। करीना कपूर और करिश्मा कपूर भी इनके रिश्तेदार ही हैं और इनके निजी जीवन की तरफ थोड़ा सा और करें तो पता चलता है इनका विवाह हुआ लव इन शिमला के डायरेक्टर आर के नैयर के साथ। हालांकि इनके कोई बच्चे नहीं हुए पर यह शादी अंत तक चली जब तक नैयर साहब जीवित रहे। रिटायरमेंट के बाद साधना जी फिल्मों में नहीं आई, हालांकि इनकी इच्छा थी बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये फिल्मों से जुड़ी रहें। ये बात भी गौर करने लायक है कि इन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया पर सन 2002 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। यकीनन साधना जी का अभिनय, इनकी मुस्कुराहट, इनकी जज्बाती सीन्स, इनका डांस, सब कुछ अद्वितीय रहा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये कोर्ट केसेस से जुड़ी रहीं, बहुत बीमार हो गई थीं और इन्हें ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। बाद में पता चला साधना जी कैंसर से पीड़ित थीं। 25 दिसंबर सन 2015 वो दिन बना जब मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में साधना जी ने दम तोड़ दिया। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में साधना जी जैसी ना कोई थी और ना ही कोई होगी।

0: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए साधना जी की जीवन कहानी सुनकर संगीत, गीत और संवाद का आनंद आपने लिया है, तो आइए मैं एक और शख्सियत के बारे में बात करना चाहूँगा आपके लिए। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। और जीवन में कई बार हम लोग जो हैं, कुछ लोगों की जीवन कहानी सुनकर हमें बेहद जो है खुशी होती है, और निश्चित तौर पे वो खुशी आप किसी और से ज़्यादा अपने आप को मोटिवेशन देने के लिए सुनते हैं। तो मैं अभी आपको ले चलता हूं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करते हैं, केरल के बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक, एक पत्रकार, और उन्होंने बहुत सी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, आंदोलन किया। इनका नाम है टीके माधवन। जी हां, आइए इनके बारे में बात करते हैं। टीके माधवन का जन्म मध्य त्रावणकोर कार्तिकपल्ली जिला आलापुज केरल में आज ही के दिन 1885 में हुआ था, 2 सितम्बर को। उनके पिता केशव कंचन्नार थे। उनकी औपचारिक शिक्षा आदि नहीं हो पाई थी, पर अपने अज्ञातवास से उन्होंने मलयालम के साथ साथ अंग्रेजी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वो केरल के बहुत ही पॉपुलर समाज सुधारक और हरिजन नेता थे। उनके ऊपर दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी आदि के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव था, और श्रीमद् भागवत गीता का भी। वाइकोम सत्याग्रह केरल के पिछड़े वर्ग के लोगों का संघर्ष था, जो दक्षिण केरल के एक शहर वाइकोम के मंदिर की सड़कों पर चलने का अपना अधिकार स्थापित करने के लिए था। अनुसूचित जाति के लोगों के साथ उन दिनों जिस प्रकार का भेदभाव किया जाता था, इसका अनुभव माधवन को बचपन से ही अपनी पाठशाला से ही हो गया था। इस भेदभाव को वो देख कर ही उन्होंने इसे मिटाने का प्रयत्न में अपना जीवन लगाने का निश्चय किया। 1924 के वाइकोम मंदिर सत्याग्रह के नेता के रूप में माधव को प्रसिद्धि मिली। हरिजनों के मंदिर प्रवेश को लेकर यह सत्याग्रह 20 महीनों तक चला। इसमें माधवन गिरफ्तार भी किए गए, और लेकिन बाद में कहते हैं, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी पन डूबेगी नहीं। टी के माधवन के जीवन में भी इसी तरह गांधी जी से हुई उनकी मुलाकात और वाइकोम की यात्रा करने के लिए उन्हें, तो इस तरह गांधी जी के विचारों से ये प्रभावित हुआ, और गांधी जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मनाया, और फिर इस मुद्दे को उनके साथ जोड़ने का मन बनाया और शामिल करने के लिए सहमत हुए गांधी जी। और मार्च 1925 में गांधी जी वाइकोम पहुँचे और वे माधवन के साथ ठहरे, और सत्याग्रह आंदोलन सफलता से साथ सम्पन्न हुआ। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है मिला जुला के उन्होंने काम तो कर ही लिया। और प्रभावशाली वक्ता माधवन पत्रकार भी थे। उन्होंने मलयालम के 2 पत्रों का संपादन किया और उनके पुस्तकों की रचना भी की। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में, माधवन का निधन 27 अप्रैल 1930 को उनके निवास स्थान पर हुआ। उनके सम्मान में चेती कुलारंगा में एक स्मारक बनाया गया, और 1964 में नंगीर कोलारंगा में उनके नाम पर टी के माधवन मेमोरियल कॉलेज की स्थापना भी की गई। कई बार लोग जो है काम कर जाते हैं और बाद में उनकी याद में वो चीज़ें बनाई जाती हैं, जिससे लोगों को हमेशा उनकी याद आती रहे और उनसे प्रेरणा मिलती रहे। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर सफ़र, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबेरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए, टी माधवन जी के बारे में सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। आइए, इसके साथ ही मैं एक और शख्सियत के बारे में ज़रूर आपसे रूबरू कराना चाहूँगा। ये नाम है शांता कुमार। जी हाँ, भारतीय राजनीतिक हैं। हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने का खिताब शांता कुमार के नाम है। इस सूबे में वो भारतीय जनता पार्टी के खासे नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उन्होंने सियासत को भले ही अलविदा कह दिया हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अभी भी उनका दबदबा कायम है। उन्हें सूबे की जनता को बेहतरीन तरीके से समझने वाले नेता के रूप में माना जाता है और उन्हें दो बार प्रदेश मुख्यमंत्री पद को संभाला है और सियासत के इतिहास में अपने खुद के वोट से ही सीएम बनने वाले नेता के तौर पर उनकी अनोखी पहचान हमेशा कायम रहेगी। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 2017 में हुए चुनाव के दौरान शांता कुमार का विशेष रूप से चयन अप्रत्यक्ष रूप में अहम हाथ रहा था और शांता कुमार प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व लोगों की नब्ज को समझते थे और इस तरह से 2 सितंबर 1934 को जन्मे शांता कुमार ने 1963 में गर्जा मूला पंचायत से पंच निर्वाचित होकर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। फिर 77-80 तक पहली बार विशेष मुख्यमंत्री बने। फिर 80 में दोबारा वो मुख्यमंत्री ये प्रदेश की कमान संभाली और फिर उसके बाद 1989 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और उसके बाद तीसरी बार और चौथी बार लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए और 2019 के बाद शांता कुमार ने सक्रिय राजनीति से संन्यास भी ले लिया। पानी वाले मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। शांता कुमार भाजपा में एक ऐसा नाम है जो सक्रिय राजनीति में थोड़ा दूर होने के बावजूद भी संगठन व पार्टी में मजबूत पकड़ रखते हैं। शांता कुमार एक राजनीतिक ही नहीं बल्कि एक लेखक व साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं और हिमाचल प्रदेश में उन्हें पानी वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। पेयजल को लेकर जो लोगों की दिक्कत थी उन्हें इन्होंने बखूबी समझा और उसका निवारण के लिए कदम उठाया और हर घर को शुद्ध पेयजल पहुंचाने का प्रयास किया। आपातकाल के बाद का चुनाव में विशेष रूप से इनका अहम भूमिका रहा और 21 महीने तक इस आपातकाल को 21 मार्च 1977 को ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद हिमाचल में विधानसभा का चौथा चुनाव हुआ। कई मायने में साल 1977 का ये विधानसभा चुनाव खास बन गया। इस चुनाव में सूबे में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी और शांता कुमार मुख्यमंत्री बने थे और बीजेपी ने दिग्गज नेता शांता कुमार के सीएम पद तक पहुंचने का वाक्य काफ़ी रोचक भी रहा। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की। और तो ये थी कुछ खास बातें शांता कुमार के बारे में आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र। इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ बड़ा ही अच्छी अच्छी बातें आपने सुने, विशेष लोगों की कहानी आपने सुनी, और मैं चाहूँगा कि जाते जाते आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कार्यक्रम को पूरा करते हैं। और छोटी कहानियाँ हमें हमेशा बेहद लोकप्रियता और नए पुराने लोगों को भी अच्छा लगता है सुनने में। और कहानियाँ सुनकर जो है, भले ही एक बार आपने सुनी हो, दो बार कहानी सुनी हो या 10 बार सुनी हो, लेकिन जब भी सुनते हो आपको वो मैसेज ज़रूर मिल जाता है ना। इसलिए मैं आपको वो कहानियाँ रिपीट कर रहा हूँ जो आप बचपन में सुने थे। तो आइए, कभी कभी आपको भी हंसी आती है कि ये क्या हो रहा है ना। तो हंसने के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को जो है ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। देखना तो होता नहीं रेडियो पे, है ना। तो आइए बात करते हैं एक छोटी सी कहानी आपके लिए। जैसे पिछली बार मैंने एक कहानी सुनाई थी जिसका नाम था सुई देने वाली पेड़ की कहानी, अब लक्कड़हारा और सुनहरी खुल्लड़ी की कहानी। अब ये कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी। एक समय की बात है, जंगल के पास एक लक्कड़हारा रहता था जो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता और उन्हें पास के बाजार में बेचता था। कुछ पैसे मिल जाते उसी से उसका जीवन चलता। एक दिन की बात है, वो एक पेड़ काट रहा था, तभी हुआ कि गलती से उसकी कुल्हड़ी पास की एक नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और वास्तव में तेजी से बह भी रही थी। उसने बहुत प्रयास किया अपने कुल्हड़ी को खोजने के, लेकिन उसे वो नहीं मिली। अब उसे लगा कि उसने कुल्हड़ी खो दी है। वही दुखी होकर वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर नदी के भगवान उठे और उस लक्कड़हारा से पूछा कि क्या हुआ लक्कड़हारा, ने आप रो क्यों रहे। लक्कड़हारा ने उन्हें अपनी दुखद कहानी बताई। नदी के भगवान को उस पर तरस आया, लक्कड़हारा के ऊपर बहुत दया आई और वो उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर उसकी मदद करने की बात कही। वो नदी में गायब हो गया और एक सुनहरी कुल्हड़ी वापस लाया। लक्कड़हारे ने कहा कि ये उसका नहीं है। वो फिर से गायब हो गया और एक बहुत ही सुंदर चांदी की कुल्हड़ी लेकर आया, लेकिन इस बार भी लक्कड़हारे ने कहा कि ये कुल्हड़ी उसका भी नहीं है। अब नदी के भगवान पानी में फिर से गायब हो गए और अब की बार वो लोहे की कुल्हड़ी के साथ वापस आ गए। लकड़ी का कुल्हड़ी देख कर लोहे का कुल्हड़ी देखकर लक्कड़हारा मुस्कुराया और कहा कि ये मेरी कुल्हड़ी है। नदी के भगवान ने लक्कड़हारा की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी दोनों कुल्हड़ियाँ जो है भेंट कर दी। तो कहानी से सीख यही मिलता है कि हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर और एक सुंदर विचार के साथ। मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। सफल बनने के लिए खुद में इतना वक्त लगा दो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही न मिले। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: अभी बजे हैं शाम के 5।

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच। दोस्तों, युवाओं का मंच है तो फिर कुछ करियर्स के बारे में भी बीच बीच में बात होती है जो कि युवाओं को आकर्षित करते हैं, या कई चीजें जो जानकारियां हमारे लिए उपस्थित नहीं होती। हालांकि दोस्तों, इंटरनेट का जमाना है, बहुत कुछ आपको मिल सकता है जो भी आप करियर अपनाना चाहें। लेकिन वो करियर है कैसा, उसको जाने किसी ऐसे व्यक्ति की नजर से जो ऑलरेडी उस करियर में हो, तो फिर कहीं ना कहीं मोटिवेशन के साथ साथ सही जानकारी भी मिल जाती है। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे इसी श्रृंखला में। आज हमारे साथ हैं श्री कृष्ण प्रकाश तौले जी। एक्चुअली मैं उनका नाम पूरा जरूर लिया, लेकिन उनकी पोस्ट तो भूली गई। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सीए श्री कृष्ण प्रकाश तौले जी। जी हाँ, वो एक युवा साथी है और सीए हैं, तो आज इसी फील्ड के बारे में, इसी करियर के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके बारे में भी कुछ जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: अच्छा, सबसे पहले तो बहुत अच्छा करियर है, आई नो बहुत कंपटीशन होता है, तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप इतना अच्छे करियर में आगे बढ़ रहे हैं, एंड हम आपसे आज बहुत कुछ जानेंगे। आप अपने बारे में कुछ अपने शब्दों में बताइए।
1: थैंक यू सो मच फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आप सीए के बारे में करेंगे तो सीए एक बहुत अच्छा, मतलब इंडिया में रिप्यूटेड कोर्स है जिसकी शुरुआत इसका, मतलब मैंने एक्चुअली इन द 9th स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीए परस्यू करना है।
0: अच्छा।
1: मुझे एक्चुअली एक स्कूल टीचर से पता चला था, बिकॉज तब इतना अवेयरनेस नहीं होता है सीए कोर्स के बारे में लोगों को, इसलिए वो इशू जाता है। तो मुझे एक स्कूल टीचर से पता चला था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होता है और इसमें ऐसा ऐसा कुछ फ्यूचर वगैरह होता है, तो फिर मैंने वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट
0: किया। तो आपको इंटरेस्टिंग कैसे लगा, मतलब आप 9वीं कक्षा में थे, 9th क्लास में थे, तो उस टाइम आपको कैसे लगा कि नहीं सीए अच्छा है, मतलब क्या बताया सर टीचर ने जो आपको बहुत अच्छा लगा?
1: एक्चुअली वो नई चीज सुनी थी, क्योंकि पहले तो डॉक्टर, इंजीनियर और अदर फील्ड जो ऑप्शंस जो यूजुअली अपने को पता होते हैं, वही चीजें पता थी, बट ये नई चीज सुनी थी। और ये सुना था कि रेपुटेशन अच्छा होता है, इसका जॉब पैकेज अच्छा होता है, ये सब चीजें सुन के मैंने और इंटरेस्ट लिया। और एक पावर होता है सीए के सिग्नेचर में, तो वो चीज सुन के फिर मैंने उसको आगे सोचना स्टार्ट किया।
0: आपको लगा ये अच्छा है? ओके। तो आपके टीचर्स ने आपको ये बातें बताई?
1: टीचर को इतना नहीं पता था एक्चुअली, उन्होंने ब्रीफ में बताया था। एक्चुअली वो टाइम पे एक मुंबई की एक बहन थी, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने टॉप किया था क्लास में, लेकिन वो उनके पापा रिक्शा चलाते थे, तो उन्होंने टॉप किया था, तो उनका एक मोटिवेशन एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने हमको बताया था, तो उससे फिर उन्होंने सीए के बारे में बता दिया, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट वो फील्ड, मतलब उसके बारे में बढ़ गया
0: और बढ़ गया।
1: राइट।
0: ओके। तो उसके बाद आपने क्या किया, मतलब आपको पता चला था सब की सीए बनने के लिए क्या करना होता है?
1: कुछ भी पता नहीं था, बस ब्लाइंडली लोगों से पूछता था, लोग कुछ अपने हिसाब से जवाब देते रहते थे, उतना कुछ आइडिया नहीं था। आफ्टर 11th मुझे वो सब चीजें फिर क्लियरली, बट सोचा था मैंने कि करना है, बट जो प्रैक्टिकल चीजें है, जो एक्चुअल क्या है, जैसे सुनते तो अपन काफी चीजें टफ होता है, टफेस्ट इन द, मतलब इंडिया में टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, नहीं कर पाते आप, क्लियर नहीं हो पाओगे, अगर आप बीच में रुक गए तो आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो लोग से सुनते थे, बट फिर बाद में जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया तो फिर चीजें थोड़ी अलग थी।
0: ओके। तो जो 9th में आपको जानकारी मिली थी वो बहुत थोड़ी थी, 11वीं में जब आप थे तो ऐसी क्या जानकारी मिली जो आपको क्लैरिटी आई?
1: ओके। फिर उस हिसाब से मैंने कॉमर्स चूज किया 11th 12th, कॉमर्स से मतलब रिलेटेड ही होता है, तो मैंने 11th 12th कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया, जिसमें फिर मेरे जो कल मतलब जो फ्रेंड्स थे स्कूल वाले, सब मैक्सिमम दोस्त भी सीए ही कर रहे थे, तो उनसे मुझे पता चला। और फिर प्रैक्टिकली मुझे जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनसे डायरेक्ट मिलने का मौका।
0: अच्छा।
1: हाँ, जो टीचर हमारे थे, मतलब एग्जाम जो प्रिपरेशन कराते, वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उनसे मुझे अच्छा गाइडेंस मिला, तब मुझे पता चला कि हाँ, मतलब यहाँ कर सकते हैं या फिर।
0: अच्छा। तो क्योंकि आपने जैसा बताया 11वीं में पता चला, तो 11वीं के बच्चे को आप क्या बताएंगे, बहुत डिटेल में आप बताएंगे या उसके अनुसार बताएंगे? तो अगर एक 11वीं का बच्चा आपको सुन रहा है आज और जो आपने सुना था उस वक्त, तो आप उसे क्या बताएंगे सीए क्या होता है?
1: ओके। अगर सीए के बारे में बात करेंगे तो एक इंडिया में बहुत अच्छा रिप्यूटेड कोर्स है, इसका एक्चुअली इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉरेन में भी अच्छी डिमांड है. फॉरेन कंपनीज में भी इंडियन सीए रिक्रूट होते. आज कनाडा में देखिए, दुबई में देखिए, दुबई में बहुत अच्छा मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम चलता है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का. तो अगर सीए के बारे में बात करें तो एक 4.5 साल का ब्रीफली कोर्स होता है, मतलब 4.5-5 साल अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हैं आप. 12 आप 10वीं के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है और फिर 12वीं से आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. मतलब आप 12th अपीयर चाहिए, आप 12th अपीयर होते हुए भी आप एग्जाम दे सकते हैं. आप 12th अपीयर होके एग्जाम दीजिए. सबसे पहले एग्जाम होते हैं सीए फाउंडेशन, मतलब इसमें 3 एग्जाम आपको क्लियर करना है और 3 साल की सीए के अंडर आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है. मतलब इट्स लाइक प्रैक्टिस, आपको सीए के अंडर ट्रेनिंग करना है, उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं. तो आपको पहली एग्जाम 12th अपीयर होते हुए, जैसे आपके 12th की एग्जाम हो जाती है, वो 12th के आई कार्ड के बेसिस पे आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं. फिर वो एग्जाम का फॉर्म दे के आप एग्जाम दो.
0: कहाँ भर सकते हैं ये फॉर्म?
1: ये ऑनलाइन ही भरना है. मतलब पहले तो आपको 10वीं के बाद रजिस्ट्रेशन लेना है. 11वीं में आप 11वीं में 12वीं में कभी भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो. पहले एक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करना होता है सब. एक ICAI.org वेबसाइट होती है इंस्टीट्यूट की, जिसमें आप वो रजिस्ट्रेशन करा लो.
0: कौन सी वेबसाइट बताएं?
1: ICAI.org. www.icai.org ये साइट पे चाहिए तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. तो आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए. फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप 12th के बाद एग्जाम दिए सीए फाउंडेशन. वो 4 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं. 4 सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना है. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए, पासिंग क्राइटेरिया. एक्चुअली यहाँ पे 2-वे पासिंग क्राइटेरिया होता है. आपको 50% टोटल एग्रीगेट में लाना है और 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट. लाइक अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए. और अगर टोटल ओवरऑल जो स्कोर है आपका, जैसे आपको 4 पेपर है 400 मार्क्स के, तो आपको 200 मिनिमम लाना, दैट्स 50%. तो एग्रीगेट आपको 50% लाना है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होना चाहिए. अगर आप एक सब्जेक्ट फेल हो जाते तो फिर आप दूसरा, मतलब आप पूरे सब्जेक्ट को वापस से आपको देना,
0: मतलब आपको 4 सब्जेक्ट का दोबारा देना पड़ेगा,
1: पूरा देना पड़ेगा.
0: ओके. और ये कौन कर सकता है? मतलब कोई भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं या कोई सब्जेक्ट जरूरी है इसमें अपीयर करने के लिए?
1: कोई भी स्ट्रीम के कर सकते हैं. 11th में अगर वो कॉमर्स है, आर्ट है, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से, कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे.
0: तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स होना जरूरी है?
1: ऐसा कुछ नहीं, बस ये होता है कि आपको थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन होना चाहिए. बट ऐसे जरूरी नहीं कि हमको एडवांस लेवल का मैथ चाहिए. बट आप नॉर्मल मैथ से भी चला सकते हैं. और चीजें तो सीखने के लिए होते हैं, अपन तो कुछ भी सीख सकते हैं.
0: सीख सकते हैं. ये बहुत अच्छी बात कही आपने. ओके. तो मतलब हमने अभी तक ये समझा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए की हम बात कर रहे हैं, तो 11वीं या 12वीं के साथ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो वेबसाइट पे. और एक सीए का पहला जो पेपर होता है फाउंडेशन, उसमें 4 सब्जेक्ट आपको पास होने जरूरी हैं. मिनिमम 40% और टोटल 50%.
1: हाँ, टोटल 50%.
0: अच्छा, तो अगर नहीं पास हो पाए तो दोबारा कर सकते हैं. तो 12वीं के बाद, मतलब जब आप आगे की पढ़ाई कर रहे हो तब भी आप कर सकते हैं.
1: विद इन 6 मंथ्स एग्जाम होती रहती है.
0: अच्छा,
1: साल में 2 बार, मई और नवम्बर.
0: ओके. तो कब आता है इसका फॉर्म, कौन से समय आता है ऑलमोस्ट?
1: ये आप कभी भी कर सकते हैं. मतलब अभी चाहो तो अभी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं.
0: अच्छा.
1: इसका कोई ये नहीं, बस ये क्राइटेरिया होता है कि आपको अगर एग्जाम देना है तो 6 मंथ्स बिफोर आप रजिस्टर्ड होना चाहिए. दैट इज अ बेसिक क्राइटेरिया. कि अगर सपोज आपको 12th के बाद, जैसे आपके 12th में मार्च में एग्जाम कंप्लीट हो रही है और आपको मई में एग्जाम देना है, तो आप मई के एग्जाम के 6 मंथ्स बिफोर आप रजिस्टर होना चाहिए.
0: अच्छा, 6 महीने पहले.
1: 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन तो भी एटलीस्ट होना चाहिए.
0: ओके, ठीक है.
1: और फिर उसका एग्जाम फॉर्म आएगा आपका. एग्जाम वो इंस्टीट्यूट के साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे. एग्जाम फॉर्म जनरली एग्जाम के 2 महीने पहले आ जाता है, तो वो आपको फिल करना है. उसका 10-15 दिन का टाइम होता है, तो फिर आप ये कर सकते हैं. फिर
0: तो जो सेम वेबसाइट आपने बताई, वहीं पे आता है एग्जाम फॉर्म?
1: हाँ, वहाँ पे फिर नोटिफिकेशन आते रहता. वहाँ पे फिर सब वेबसाइट्स वगैरह है उसमें, जो अलग अलग चीज़ें, जैसे ICAI.exam एक अलग वेबसाइट होती है जिसमें एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना है. बट ये कोर वेबसाइट जो मैंने बोला है, मेन वेबसाइट जो www.icai.org,
0: मतलब उसके थ्रू आपको सारी जानकारी
1: मिल जाएगी मोस्टली.
0: ठीक है. तो अगर पहला जो क्राइटेरिया है, यानी पहला जो एग्जाम है फाउंडेशन का, वो क्लियर किया, तो उसके बाद क्या?
1: हाँ, अगर आप सपोज मई में एग्जाम क्लियर कर ले तो कोई भी साल में, तो उसके बाद फिर आपको 9 मंथ स्टडी पीरियड होता है सेकेंड एग्जाम का.
0: अच्छा.
1: सेकेंड एग्जाम का नाम होता है सीए इंटरमीडिएट. जो आपको, जैसे आप एग्जाम क्लियर होते हो उसके 9 मंथ्स आपको पढ़ाई करनी है उसकी, आपको बुक्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा. हाँ, पूरी आपको कुरियर के द्वारा अपने घर आ जाएंगे पूरी बुक्स, पूरा मटेरियल, साथ में आईसीआई की चैनल्स भी चलते जिसमें वो लेक्चर्स वगैरह रहता, शॉर्ट मतलब स्टडी मटेरियल रिलेटेड ऑल चीज़ें आप इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, और आप कोचिंग भी ले सकते हो. हाँ, तो वो 9 मंथ्स में जब आप क्लियर हो जाते हो तो वो 9 मंथ्स के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी पूरी इंटरमीडिएट के लिए, फिर आप इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकते हो.
0: अच्छा, तो मतलब आपने 9 महीने तैयारी किया, उसके बाद फिर से वो एग्जाम फॉर्म भरना है.
1: हाँ,
0: जो
1: सेकेंड एग्जाम
0: है, उसमें क्या होता है?
1: हाँ, उसमें एक्चुअली 8 सब्जेक्ट्स होते हैं.
0: अच्छा, 8 होते हैं.
1: 8 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे पहले अपन ने सुना है कि 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तो उसमें कभी ऐसा हो जाता है कि आपको 40-40 तो आ जाता है. एक्चुअली एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसलिए 40 लाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. काफी बच्चे नहीं ला पाते हैं, मतलब रिजल्ट आपको पता होगा, रिजल्ट काफी टफ आता है इंस्टीट्यूट का. तो वो 40 लाना अगर आपको ये हो जाता है, तो इसलिए वो फिर इंटरमीडिएट पे 2 ग्रुप बनाया आईसीए ने एग्रीगेशन पर्पज के लिए. मतलब 4 सब्जेक्ट का एक ग्रुप, 4 सब्जेक्ट का दूसरा ग्रुप, ऐसे ग्रुप 1 ग्रुप 2, ऐसे 2 ग्रुप होंगे 8 सब्जेक्ट के. लेकिन आपको इंटरमीडिएट पूरे एग्जाम क्लियर करना है तो दोनों ग्रुप क्लियर कर लें, 4 सब्जेक्ट के 8 सब्जेक्ट के.
0: वो क्या सब्जेक्ट होते हैं अगर बता सकते हैं आइडिया?
1: हाँ, ग्रुप 1 में अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट पेपर होता है अकाउंट्स का, होता है अकाउंट्स, होता है कॉस्टिंग, होता है ऑडिट, होता है इसमें इंटरमीडिएट का 3 साल होता है ना फिर. इंटरमीडिएट के
0: टाइम में जाता है, सही बात है.
1: ये फाउंडेशन की भी एग्जाम, ये इंटरमीडिएट के जो सब्जेक्ट्स है, पहला पेपर होता है अकाउंटिंग का, सेकंड पेपर होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जिसमें आपको लॉज को पढ़ना है, बिजनेस लॉज रिलेटेड. थर्ड पेपर होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, जिसमें कॉस्टिंग्स के बारे में बात होंगी. फोर्थ पेपर होता है टैक्सेशन, जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना. डायरेक्ट टैक्स इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स इज GST मोस्टली, और उसमें कस्टम्स और बाकी अदर इनडायरेक्ट टैक्स भी आते हैं. फिफ्थ पेपर होता, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, 4 पेपर का टैक्सेशन तक. फिर सेकेंड ग्रुप में होते हैं एडवांस अकाउंटिंग, लेकिन थोड़ा उसका स्कोप ये हो जाता है, बड़ा हो जाता है. और सिक्स पेपर होता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जिसमें ऑडिटिंग रिलेटेड आपको लॉज पढ़ने हैं. सेवेंथ पेपर होता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट्स लाइक ये होता है मैनेजमेंट रिलेटेड, ये होता है और IT रिलेटेड सब्जेक्ट होता है. एथ पेपर होता है जो लास्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, इसमें आपको फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज मिलेगा और इकोनॉमिक्स जो जिसके बेसिस पे वर्ल्ड में वर्ल्ड इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में आपको सब्जेक्ट रहेगा.
0: तो 8 सब्जेक्ट 9 महीने हमारे पास है. तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शेड्यूल क्या होता था आपका एक दिन का जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे?
1: उसमें तो एक्चुअली ऑप्शन होता है कि आप एक ग्रुप का भी प्रिपरेशन कर सकते, मतलब 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो, फिर बाद में आप 4 सब्जेक्ट देना, एक ग्रुप पहले दे दो एक ग्रुप. लेकिन मैंने जब सोचा था कि मुझे बोथ ग्रुप एट अ टाइम कंप्लीट करना है, ऐसा मैंने टारगेट रखा था, तो मेरी वैसे क्लासेस भी मैंने पूरी फिर कंप्लीट की. क्लासेस में एक्चुअली शेड्यूल हमारा काफी फिक्स होता था, मतलब सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी, रात के 9 बजे तक तो मिनिमम क्लास चलती थी बोथ ग्रुप, जब 8 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो
0: सुबह 7 से रात 9 बजे
1: तक. दोपहर में 1-2 घंटे का ब्रेक लेके, तो ऐसा पूरा दिन भर क्लासेस चलती थी, तो पूरा एग्जॉस्ट तो हो ही जाता था, उतनी पढ़ाई नहीं होती पाती थी क्लासेस के ड्यूरिंग. लेकिन थोड़ा रिवाइज करना होता था कि आप जो क्लास में पढ़े उसको थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लो और नेक्स्ट डे आप क्लास में चले जाओ, ताकि वो होता रहे, नहीं तो आप भूल जाओगे पूरी चीज़ें. तो वो तो क्लासेस के ड्यूरिंग तो ऐसे टाइट शेड्यूल था, सो आप 6 बजे उठ के ये करके 7 बजे से जाओ, फिर रात को 9 बजे तक आओ. फिर उसके बाद जब क्लासेस हो गए, आई थिंक क्लासेस का ड्यूरेशन मोस्टली 5 to 6 months था. फिर लास्ट के 3 months हमारे सेल्फ स्टडी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि क्लासेस में आप चीज़ें भूल जाते हो, लेकिन आपको लास्ट एग्जाम के पहले जो पढ़ना होता है 3 महीने मिलते हैं, तो उसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है. तो वो टाइम मिनिमम मैं 10 घंटे तो पढ़ता ही था, कभी कभी 12-13 घंटे हो जाते थे, कभी थोड़े कम भी होते थे, क्योंकि वो थोड़ा अप एंड डाउन चलते रहता स्टडी में.
0: लेकिन ज्यादातर आपने इतनी पढ़ाई की?
1: यस, मिनिमम 10 आवर्स तो वी हैव टू स्टडी, वो तो जरूरी हो ही
0: दिन भर में मिनिमम 10 घंटे
1: पढ़ने. और आपको बस वो एग्जाम के पहले 3 जो महीने हैं, 2-3 महीने वो पढ़ लो, आप क्लियर हो जाओगे.
0: ओके, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने जैसे बताया कि पढ़ाई इतनी जरूरी है और उसी पढ़ाई से जो हम आगे, मतलब आपने जैसे शुरू में बताया था कि सीए करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, तो जो मेहनत का नतीजा है वो आगे मिलता है, लेकिन मेहनत जरूरी है उसके लिए,
1: बहुत ज्यादा
0: जरूरी है। तो कैसा लगता था उस समय आपको, मतलब क्या डर लगता था या बस पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं आता था दिमाग में, या कभी क्या लगता था?
1: कभी कभी तो ऐसा लगता था कि गलत फील्ड में आ गए, नहीं आना था।
0: अच्छा, ओके।
1: कि गलती हो गई, हमारे दोस्त जो इंजीनियरिंग जो अदर फील्ड में गए वो एंजॉय करते थे, वो अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे और हम क्लासेस कर रहे दिन भर, समय ही कहाँ है, अदर एक्टिविटीज के लिए समय नहीं है, ना तुम स्कूल जा रहे हो ना कॉलेज जा नहीं पा, नहीं जा रहे हो कॉलेज, और दिन भर क्लासेस और पढ़ाई, तो वो थोड़ा लगता था कि थोड़ा ये हो गया, बट हाँ फिर सोचना पड़ता था कि हाँ फ्यूचर में जब बन जाएंगे तो अलग ही ये रहेगा, और टीचर्स को देखते थे, उनकी लाइफ को देखते थे, तो थोड़ा मोटिवेशन आ जाता था।
0: ओके,
1: हाँ, और मैं मेडिटेशन वगैरह करता था तो थोड़ा माइंड काम रहता था, तो वो हो जाता था।
0: बिल्कुल, मतलब इतना ज्यादा अगर पढ़ाई करनी हो तो मेडिटेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट
1: जरूरी है।
0: आप मेडिटेशन करते थे, क्या करते थे पर्टिकुलरली, क्या कैसे करते थे, अगर आप थोड़ा सा बताएं हमें क्या करते थे, किस समय करते थे, समय तो आपको मिलता नहीं था।
1: इतना ही आप आगे
0: एक बार आप समय भी बता दो ताकि पता चले कितने बिजी शेड्यूल में से करते
1: कैसे, 5-10 मिनट करने हैं स्टार्ट करने के पहले।
0: हाँ, ये भी अच्छी बात है क्योंकि आप 5 मिनट भी खुद के लिए दे रहे हैं, खुद के माइंड के लिए दे रहे हैं, उसको तैयार करें एक तरीके से, तो अच्छी बात है। क्योंकि कई बार हमें मेडिटेशन को सोच के लगता है कि इतना समय देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लेकिन आप करते करते बीच में ही कर सकते हैं, ये सुन के अच्छा लगा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा
1: कर सकते हैं। बीच में आप मतलब न्यू सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो तो बीच में ब्रेक लेके 10-15 मिनट का पे कर लो, म्यूजिक सुन लो, थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है, क्योंकि आप कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते ना,
0: बहुत जरूरी है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आपका जब आपने 8 सब्जेक्ट ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों दिए तो क्या हुआ फिर?
1: शॉकिंगली मैं फेल हो गया था।
0: ओके,
1: मैं फेल हो गया था शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने क्लासेस की थी शेड्यूल बिजी होता था इसलिए मैं उतना पढ़ नहीं पाता था, तो जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा तो काफी चीजें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूल गया। क्योंकि वो ब्रेन अपना एट द एंड आप ह्यूमन माइंड है तो उसका प्रॉपर ये रहता है प्रोसीजर, आपको माइंड के अंदर कुछ चीजों को अगर इनपुट डालना है और उसको स्टोर रखना है तो उसके प्रोसीजर, उसको आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा और उसको आपको प्रैक्टिकली मतलब सोच के उसको ये करना पड़ेगा, तभी जाके हो रहा था। लेकिन मेरे क्लासेस का शेड्यूल इतना टाइट था इसलिए वो नहीं हो रहा था मेरा।
0: Okay,
1: मतलब नहीं हो पाया मेरा क्लियर, मैं फेल हो गया था। रिजल्ट आया कुछ नहीं, फिर एक दिन थोड़ा आंसू बहा लो, लोगों की सांत्वना ले लो।
0: Okay,
1: उसके बाद तो फिर नॉर्मल जिंदगी तो अपनी कोई जीना होता है, उसको अपनी कोई ट्रूथ को एक्चुअली अपने साथ रख के उसको आगे बढ़ना पड़ता है।
0: बिल्कुल, लेकिन डेफिनेटली आपने 9 महीने मेहनत की हो इतनी कड़ी, और बुरा तो लगता है, लेकिन आपने फिर कैसे खुद को मोटिवेट किया और क्या प्लान किया आगे के लिए उस समय?
1: हाँ, एक दो दिन तो मेरा वैसे ही ये हो गया, फिर मैंने टीचर्स से वगैरह कंसल्ट किया जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, जो प्रोफेसर्स ने, तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं। इट्स और ऐसा भी बोला जाता है कभी, अगर सीए कर रहे हो और अगर आप फेल नहीं हो रहे तो सीए ही क्या बने।
0: Okay,
1: तो वो थोड़ा एक मोटिवेट करता है। और अभी तो वो सीए का लॉन्ग फॉर्म लोग कम अगेन बोल, सीए का लॉन्ग फॉर्म होता है कम अगेन, आप और वापिस
0: आओ
1: एग्जाम देने के लिए आओ। तो वो थोड़ा था कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है, होता है। तो फिर मैंने फिर 2-3 दिन ब्रेक लेके फिर माइंड को उसका कमांड दे दे कि इस बार कुछ भी हो जाए अच्छे से पढ़ना है। वो कैसा होता है ना कि जब आपके एग्जाम देते हो तो आपको 2.5 महीना तो भी रिजल्ट आने को लगता है। सपोज अगर मैं मई में एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा इंटरमीडिएट का, तो फिर जैसे आप अगस्त का रिजल्ट आ रहा है तो आप अगस्त से फिर आपको नवंबर में नेक्स्ट एग्जाम है।
0: ओके,
1: हाँ, तो फिर अगस्त से आपको नवंबर तक का टाइम मिल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर और 3 महीने का, बस 3 महीने।
0: तो आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा?
1: नहीं नहीं नहीं, आप रजिस्ट्रेशन हमारा मोस्टली 3 साल तक वैलिड रहता है, अगर 3 साल तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करते तो फिर वापस से आपको रिन्यू करना पड़ेगा, बट वो चलते रहता है। एग्जाम आप कितने भी बार दे सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, आप अनलिमिटेड एग्जाम दो। तो जो नेक्स्ट एग्जाम देने उसमें 3 महीने का टाइम है, वापस से आपको 3 महीने प्रिपेयर करना है और एग्जाम फॉर्म भरना है और आपको एग्जाम देना है।
0: ओके,
1: ये साइकिल चलता रहता, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं जाता है ये कर इसमें कि आपको एक एक साल रुकना है या फिर काफी टाइम रुकना है, तो वो प्रॉब्लम नहीं जाता, आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप एग्जाम दे के ये कर लो।
0: ठीक है,
1: तो वापस से फिर मैंने 3 महीने पढ़ाई की, फिर नेक्स्ट टाइम मेरा हो गया क्लियर।
0: ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों?
1: ग्रुप वन क्लियर हो गया।
0: ग्रुप वन क्लियर हो गया, क्या बात है। ओके, ठीक है, ये तो बड़ी मतलब आपको बहुत खुशी हुई होगी डेफिनेटली।
1: एग्जैक्टली,
0: कितना रिलीफ भी मिला होगा।
1: एग्जैक्टली, कि वापस से वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना अभी।
0: सही बात है। और उसके बाद फिर आपने ग्रुप टू की तैयारी?
1: हाँ, तो उसमें ऐसा होता है कि ग्रुप वन क्लियर होने के बाद या फिर कोई भी एक वन ऑफ द ग्रुप क्लियर होने के बाद आप आर्टिकलशिप जो 3 साल मैंने बोला था जो सीए के अंडर अपने को करना है वो कर सकते स्टार्ट।
0: अच्छा,
1: लेकिन मैंने नहीं किया था।
0: Okay.
1: क्योंकि मैंने सीनियर्स से वगैरह सुना था कि सेकेंड ग्रुप को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसको क्लियर कर लो तो फिर आर्टिकलशिप अच्छे से कर सकते, और आर्टिकलशिप में आपको प्रॉपर ऑफिस जाना होता है, मतलब 10 बजे जाओ फिर आपको आने का टाइम डिसाइडेड नहीं, क्योंकि आपको काम है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना है ऑफिस में जाके प्रैक्टिकली पूरी चीज़ जो तुमने पढ़ा था वो सब अप्लाई करना है, तो ऑफिस के टाइम में ऑफिस में टाइम जाता है तो फिर आप पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं कर पाते, तो इसलिए आप पहले एक ग्रुप सेकेंड ग्रुप बचा है वो क्लियर कर लो, तो मैंने वो सोचा था, बट शॉकिंगली वो नहीं ये हुआ, मैं वापस से फेल हो गया था।
0: ओहो, ओके।
1: हाँ, तो फिर मैंने एट द एंड सोचा कि नहीं इसको, क्योंकि मेरा टाइम डिले हो जाता है, क्योंकि अगर आपका वो समय चले जाता तो फिर आपका जो कंप्लीशन होता है एक कोर्स का वो लेट हो जाता है, तो फिर मैंने फिर बाद में रजिस्टर कर लिया आर्टिकलशिप के लिए।
0: अच्छा, ठीक है।
1: हाँ, तो फिर मैंने आर्टिकलशिप,
0: आपने अपने ऑप्शंस खुले रखे, सोचा कि अब ये कर सकता हूँ तो आप आगे बढ़े।
1: एग्जैक्टली, हाँ, फिर मैंने सोचा कि हाँ अभी फाइनली आगे बढ़ जाते, क्योंकि इसमें अगर वापस से फेल हो गए तो वापस समय चले जाएगा, 6 महीने का समय आपका जा रहा है तो उधर आगे एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि आपका सीए फाइनल भी जो लास्ट एग्जाम वो क्लियर करना है तभी आप डिग्री ले सकते हो, तो उसको डिले हो जाएगा आपको, वो जो फाइनल काटे वो डिले हो जाएगा, तो इसलिए अभी से रजिस्ट्रेशन करा लो तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं।
0: ओके, तो आपने आर्टिकलशिप फिर शुरू कर दी। वो एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है और ज्यादा को, जैसा आपने बताया अभी कि जॉब भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है, तो कैसा था अनुभव शुरुआत में कैसा था?
1: शुरुआत में तो अब आदत पड़ गई थी कि आपको पढ़ना ही है, और ऐसी जिंदगी की आदत पड़ गई थी कि आपको जहाँ इतनी मौज वाली जिंदगी नहीं, आपको पढ़ना है और ये करना है, तो ऐसे एटीट्यूड ही बन गया था।
0: ओके,
1: कि आपको बस यही आपकी जिंदगी यही लिमिट है, क्योंकि आप फंस गए हो ना वहाँ पे, क्योंकि अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे तो फैमिलीज के ताने या फिर अपने को खुद को लगता है कि हम कुछ आउटपुट नहीं दे पा रहे, तो इसलिए थोड़ा वो पढ़ना ही तो ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने हैं और साथ में ऑफिस तो बहुत ज़रूरी, तो वो बहुत हेक्टिक होता था एक्चुअली, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब आपको ऑफिस में जाना है 10 बजे, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ऑफिस में अपने हाथ से गलती हो रही तो फिर सीनियर्स की डांट खा लो, बॉसेस की डांट खा लो, क्योंकि वो बिजी रहते थे सर, मतलब जो हमारे चार्टर्ड अकाउंट जो इनकी प्रैक्टिस है, तो उनके काफ़ी जो काम से रहते थे क्लाइंट से मिलना वो सब चीज़ें, तो वो उसकी वजह से, हाँ, तो हम और हम नए थे, छोटे,
0: उम्र भी उतनी नहीं थी।
1: हाँ, उम्र भी उतनी नहीं थी। आई गेस मुझे याद है कि मैं 1920 का होऊंगा जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट किया, वो टाइम में तो बच्चे मजे कर रहे होते, मतलब कॉलेज लाइफ में, और आप प्रॉपर ऑफिस में जा रहे हो फॉर्मल्स पहन के,
0: 19-20 साल
1: की उम्र में, तो वो अलग ये रहता है, आपका अलग फील रहता है कि आप वो कर रहे हो
0: जी।
1: तो फिर मैंने मैनेज कर लिया, फिर मेरा सक्सेसफुली उसके बाद हो गया क्लियर एग्जाम।
0: ओके,
1: सेकेंड ग्रुप मेरा कंप्लीट हो गया।
0: तो आपने ऑफिस को और पढ़ाई को दोनों को मैनेज
1: किया।
0: क्या बात, बाप रे। तो लेकिन एक बात मुझे और यहाँ पे आपको पूछनी है कि जैसे आपको कभी कभी लगता था कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं या बहुत हेक्टिक है, तो कोई चीज थी जो आपको उसमें मदद करती थी? क्या मदद करता था?
1: जैसे मैंने पहले बोला कि मैं एग्जाम, मतलब पढ़ाई के टाइम में मेडिटेशन करता था, तो एक चीज मुझे हेल्प करती है, क्योंकि आपको तो चीजें पूरे माइंड से करने, बॉडी एग्जर्शन तो नहीं हो रहा है आपका, बस माइंड ब्रेन प्रॉपर होना चाहिए, वही से चीज़ें विचार आपके बनने चाहिए, एटीट्यूड बनना चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करेगा। आप सुबह उठते ही सबसे पहले 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लो, या फिर बीच बीच में भी आप थोड़ा एक जगह बैठ के रिलैक्स होके आंखें बंद कर लो, आप एक कुछ म्यूजिक सुन सकते हो, मोस्टली आप वो मेडिटेशन वाला म्यूजिक सुनो जिसमें लिरिक्स ना हो, क्योंकि वो आपको याद रहेगी लिरिक्स वाले अगर आप सुनोगे तो
0: लिरिक्स याद आएंगे
1: तो वो विदाउट लिरिक्स वाला जो मेडिटेशन सॉन्ग है वो सुनो, तो थोड़ा काम रहेगा, स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज करने के लिए हेल्प होगा। कभी कभी तो आपका स्ट्रेस बहुत ओवर हो जाता है, बट ठीक है वो चीज़ें भी निकल जाती है, बिकॉज वो सस्टेन नहीं होता है, वो स्ट्रेस आपका थोड़ा रहता है थोड़ा, क्योंकि आपको कलीग्स वगैरह होते हैं उनके साथ थोड़ा बाहर चले जाओ, घूम लो थोड़ा, कहीं और चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लो, यस थोड़ा, तो वो फिर ये हो जाता है, रूटीन में आ जाता है।
0: ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर स्ट्रेस है प्रेशर है तो वो अपने तक रखे, लेकिन उसको कैसे हमको डील करना है वो भी समझना जरूरी है।
1: Exactly.
0: क्योंकि नहीं तो जैसा आप बता रहे हैं सीए का एग्जाम इतना टफ है, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, फिर आप एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए तो आपको पूरा रीअपेयर करना पड़ता है, तो बहुत ऐसे सर्कमस्टेंस में खुद पे डाउट होने लगे, इससे ज्यादा इससे जरूरी है कि हम खुद को मोटिवेटेड रखें।
1: एग्जैक्टली,
0: बहुत जरूरी है।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि एट द एंड आपको ही करना है, कोई कुछ भी बोले या फिर कोई कुछ भी करे, आपको खुद को ही मैनेज करना है सब चीजें।
0: बिल्कुल,
1: तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खाली बैठ के मतलब आप स्ट्रेस लेके क्या आउटपुट क्या निकल रहा है आपका, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप खुद को तकलीफ दे रहे हो,
0: राइट
1: है ना, तो आपको एट द एंड वो स्ट्रेस से मूव ऑन होके आपको को खुश रखने के बहाने ढूंढ के आपको ये करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा।
0: ओके, तो जब आपने आपका जॉब भी किया, साथ में आपने ग्रुप टू भी क्लियर किया, तो उसके बाद क्या?
1: हाँ ओके, फिर आर्टिकलशिप जब आपकी स्टार्ट होती है उसके 2.5 साल के बाद आपको आप फाइनल का एग्जाम,
0: अच्छा
1: हाँ, पहले तो आपको 2.5 साल में आर्टिकलशिप करना है, ऑफिस में रोज जाना है, ये कर ऑफिस के पूरे काम करने, कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू डेट्स होते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स का अगर पता करो तो इनकम टैक्स एक ड्यू डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न्स की, फॉर्म्स की, तो वो आपको अगर ड्यू डेट पे पूरा काम होना चाहिए तो फिर पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह क्लाइंट को लगता है, अगर आपको क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस देना है तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तो फिर आप आर्टिकलशिप में तो आपको तो करना ही पड़ता है, तो कभी कभी काफ़ी लेट तक आपको ऑफिस रह के काम करने हैं, तो वो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आपको ऑफिस प्रॉपरली करना है, साथ में आपको सीए फाइनल की पढ़ाई भी करनी,
0: राइट बिल्कुल।
1: वो ग्रुप टू तो अलग ये था, हाँ। उसको आपको क्लियर करने के बाद फिर आप फाइनल में फोकस करना है।
0: इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं?
1: इसमें भी 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट उनका लेवल जो होता है वो थोड़ा एडवांस होता है, इट्स लाइक हाई लेवल नॉलेज होता है वो, तो वो आपको ये करना होता है, उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, जैसे इंटरमीडिएट में भी वास्ट होता है, वो एज के हिसाब से लगता है, क्योंकि आप फाइनल में गए हो तो आर्टिकलशिप के तो आपको नॉलेज भी आ गया, तो उस हिसाब से वो ठीक है, बट सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है।
0: तो वो 8 सब्जेक्ट के पेपर एक समय देने होते हैं या यहाँ भी?
1: उसमें भी 2 ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, आप दोनों भी दे सकते हो।
0: ओके,
1: कभी मतलब एक दे दो पहले फिर बाद में दो, तो मोस्टली मैंने सुन मेरे मतलब जो दोस्त है एक ग्रुप देते हैं, क्योंकि आप आर्टिकलशिप कर रहे हो उसमें टाइम जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिर लास्ट में 2.5 साल के बाद मतलब आपको 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली लीव्स का ऐसे समझ लो कि आपको 6 महीने कोई भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो बॉसेस आपको 6 महीने की छुट्टी दे देंगे पढ़ाई के लिए, मतलब डिपेंड ऑन फॉर्म्स 4 to 6 मंथ्स की वो लीव होती है जिसमें आपको फाइनल की पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो सफिशिएंट टाइम नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप भी आपको पढ़ना है।
0: ओके ठीक है, तो आपने फिर 2.5 साल मतलब मेहनत किया, और क्या सीखने को मिला है, प्रैक्टिकल आपको क्या सीखने को मिला जब आप आर्टिकलशिप कर रहे थे?
1: एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही होती है, क्योंकि आप उसमें देखोगे एग्जाम अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूँ तो ये 2 साल में कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन आर्टिकलशिप आपको 3 साल करना है, तो ये अच्छी ब्यूटी इसलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिकल चीजें पता चल रही है, आप बुक में पढ़ रहे हो जरूरी नहीं कि वो हमेशा हर चीजें एज इट इज अप्लीकेबल हो जाएंगे, वैसे नॉलेज प्रैक्टिकल है बट जब आप प्रैक्टिकली ऑफिस में जाते हो क्लाइंट से बात करते हो और प्रैक्टिकली काम करते हो जो तुम्हें सीए बनने के बाद करना है तो वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप गलती कर सकते हो, मेन चीज है कि आप ड्यूरिंग आर्टिकलशिप गलती करते, लेकिन एक बार आप प्रोफेशनल बन जाते हो आफ्टर क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आप गलती करने का जो स्कोप है आपका कम हो जाता है, बिकॉज आपको क्लाइंट को सर्विस देना है,
0: right.
1: या फिर आप जॉब में हो तो वहां पे भी आप गलती नहीं कर सकते हो, या प्रैक्टिस में वहां गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ऐसा हो सकता है कि आप क्लाइंट को पेनल्टी बैठ सकती है, क्लाइंट ना खुश हो जाए और आपका बिजनेस चले जाए, तो वो जो गलती करने का जो समय होता है ये 2.5 साल होता है
0: okay.
1: जो आप

0: आर्टिकल शिफ्ट के ड्यूरिंग काफी वर्क प्रेशर होता है और आपको करना ही पड़ता है. लाइक समवेयर बॉसेस को ऐसा रहता है कि आप तेको इतना काम दिया तो तेको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ऐसा ये रहता है. थोड़ा कभी कभी बॉसेस स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी रूड हो जाते हैं, फिर अपने को सुनना, बिकॉज अपन जूनियर है, अपन सीख रहे, तो थोड़ा वो करना ही भी पड़ता है. हाँ, वो टाइम पे थोड़ा बुरा लगता है क्या सुनना पड़ रहा है वो सब चीजें.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: बट वो अच्छे प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप डांट खा के ही और गलती करके ही इंसान आगे बढ़ता है. वो तो आप भरपूर गलती करो, मतलब ऐसे नहीं जानबूझ के गलती नहीं मत करो, बट नई नई चीजें करो, तो उससे फिर आपका उतना एक्सपीरियंस भी उसमें पड़ेगा.
1: ओके. एंड अगर डांट सुनते भी हैं तो जैसा आपने कहा कि शुरुआत में होता है और उससे थोड़ा और स्ट्रांग होता है.
0: एग्जैक्टली. जितना ऐसे बोलते ना, जितना हीरे को आप तराशोगे उतना वो चमकता है. इट्स लाइक अपन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हीरा बनने वाला है, जो अभी कोयले के खदान में है, जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उसको वो तरस रहा है और उसको फाइनल मतलब क्लियर करके बाहर निकलना है, तो आपको जितना मतलब आप पिसोगे, जितना ज्यादा आप रगड़े जाओगे उतना ज्यादा आप चमकोगे बाहर आके. तो वो चमकने के लिए आपको जितना ज्यादा हो सके मतलब आप प्रेशर को हैंडल करो. हाँ, थोड़ा वो होता है, बट आप दोस्तों के साथ रहते हो, कलीग्स रहते हो ऑफिस में, तो थोड़ा मैनेज हो जाता है. ठीक है, कभी डांट सुन लो फिर भूल जाओ, बट अपना काम कंटिन्यू करो, आप नई नई चीजें सीखते जाओ, वो जरूरी. और थोड़ा
1: मतलब दिल से नहीं लगाए डांट को.
0: एग्जैक्टली.
1: और वो ये ध्यान रखें कि हमें ये बेहतर बनाएगा.
0: बेहतर बनाएगा. कभी मतलब बॉसेस को खुद से वो नहीं करते, वो तो उनको मतलब और ज्यादा ये बढ़ाने के लिए, वो
1: हमें आगे बढ़ाने के लिए.
0: हाँ, आगे बढ़ाने के लिए.
1: ओके. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, जैसा कि कम्युनिकेशन आजकल कहते हैं बहुत जरूरी है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं जब हम जाते हैं जॉब्स के लिए, तो क्या आपको लगता है कि कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, या कम्युनिकेशन क्या मदद करता है हमें?
0: ओके, कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप प्रैक्टिस में जाओ या फिर जॉब में जाओ, तो आपको वहाँ पे, जैसे अगर प्रैक्टिस में जा रहे हो तो आपको क्लाइंट को एक्वायर करना है, नए क्लाइंट्स को की सर्विस देना है, तो उनको आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना जरूरी है. तभी जाके आप वो न्यू क्लाइंट को एक्वायर कर सकते हो और उनको कंटिन्यू रख सकते हो. प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी है. आप ऑफिस में जा रहे हो और आजकल आप देखोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आर हायरिंग फॉर द गुड पोजिशन इन द फॉर्म. कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप कोई कोई तो सीईओ सीएफओ लेवल पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आज पोजीशन में है, तो वो पोजीशन में आप बैठे हो तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल तो बेसिक चीज है, वो होना ही चाहिए.
1: तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है जब आप फील्ड में उतरते हो.
0: यस यस. हाँ, जब आप फील्ड में उतर रहे हो, मतलब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, बॉसेस से कम्युनिकेट करना है, कलीग से कम्युनिकेट करना है, कभी कभी इंटर ऑफिस होते हैं उससे कलीग कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे आप वो चीजें सीख जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स.
1: कि आपको भाषा कॉन्फिडेंस होना.
0: Exactly.
1: आपकी भाषा अच्छी होना और सम्मान देना,
0: रिस्पेक्ट देना.
1: Right? ये बहुत ज्यादा जरूरी
0: है. बहुत ज्यादा जरूरी होता है
1: जी. तो दोस्तों, बिल्कुल, आप इस मामले में अगर आप जानकारी रखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें हमारे व्यवहार में सम्मान सभी के प्रति जरूर हो. भाषा हम जितना हो सके पढ़ें सुनें, और साथ साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आप कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है अपने. Yes. जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो, और धीरे धीरे होता है, ये ना सोचें अभी नहीं है तो अरे क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं. जैसा आपने बताया कि आर्टिकलशिप हुई आपकी, अब फाइनल फिर कैसे?
0: हाँ, मैंने तो शुरुआत में फिर आर्टिकलशिप के एक साल तो मजे में ही चले गया, ये नहीं मतलब ऑफिस में जा रहे, बस ऑफिस में जा रहे और ये कर रहे, मतलब मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया था फाइनल का. बट फिर बाद में मैंने क्लासेस वगैरह लेना स्टार्ट कर दी और ऑनलाइन क्लासेस करता था मैं. पेन ड्राइव लेक्चर्स आते हैं अच्छे अच्छे बेस्ट फैकल्टीज के, आप गूगल करके आपको अच्छे अच्छे फैकल्टीज के हर सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे.
1: ठीक है,
0: वो मैंने ऑर्डर करके फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया आफ्टर वन ईयर. वैसे आप भी वैसे कर सकते हो, मतलब
1: मैगजीन कहाँ से ऑर्डर करते हैं
0: exactly? हमने तो गूगल उनके वेबसाइट पे जाके, क्योंकि अभी काफी सीएज है जो पढ़ाते हैं.
1: अच्छा.
0: तो उनसे आप लेक्चर्स ले सकते हो.
1: ठीक है,
0: मतलब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट के 8 लेक्चर्स लेके आप वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो. आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप में आप वो पेन ड्राइव क्लासेस आते हैं, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाता है क्लासेस से, और आप फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो.
1: ओके.
0: प्रत्येक हर सब्जेक्ट को 8 सब्जेक्ट के क्लासेस कंप्लीट कर लो. तो मैंने फिर वो क्लासेस करना स्टार्ट कर दिया. फिर आर्टिकलशिप, मतलब सुबह मैं एक क्लास कर लेता था, शाम को एक क्लास कर लेता था, ऐसे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे का, ऐसे 3-4 घंटे अप्रोक्सीमेट.

0: मंथली क्लास कर लो, फिर दिन भर ऑफिस कर लो, तो वैसे मैनेज करना पड़ेगा आपको,
1: ठीक है।
0: फिर क्योंकि आपको फिर लास्ट में जब आपकी एग्जाम है उसके 4 या 5-6 महीने 4 to 6 months का मोस्टली ऑफिस में लीव मिलती, बस वही समय मिलेगा जिसमें आपको बस सेल्फ स्टडी करने,
1: जिसमें आपको पूरा समय सिर्फ पढ़ाई के लिए,
0: पढ़ाई के लिए करने, मतलब लेक्चर नहीं कर सकते, आपको लेक्चर ऑफिस मतलब कर रहे हो तो उसी ड्यूरिंग आप लेक्चर कर लो, फिर बाद में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो।
1: ओके तो जैसा क्योंकि आपने बताया ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 का जब आपने क्लियर किया तो कैसा था, मतलब क्या लगा था आपको, क्या था आपके मन में उस वक्त? ग्रुप 2 जब आपका क्लियर हुआ, मतलब एकदम फाइनल एग्जाम जब क्लियर हुआ आपका,
0: ओके,
1: तो कैसा लगा जब रिजल्ट आने वाला था, या जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा?
0: वो तो शब्दों में तो नहीं बोल सकता क्योंकि बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, बिकॉज द थिंग्स फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 4 to 6 years वी फाइनली अचीव इट।
1: 6 साल से आप एक ही चीज के लिए लगे मेहनत कर रहे हैं,
0: मेहनत कर, जो संकल्प मैंने 9th-10th standard में लिया था कि आई हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशन में आना है, तो इतनी मेहनत की है, इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, फंक्शन सैक्रिफाइस, इवन आई विल से कि फाइनल का जब मेरा एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा था तो मैंने तो मेरा फोन तो मेरा 4-5 months आया फोन स्विच ऑफ था मेरा, नो कनेक्शन विद नो फेसबुक नो सोशल मीडिया नथिंग, जस्ट ओनली पढ़ाई, बस बस पढ़ाई चल रही, सुबह उठ के बस वो जो सब्जेक्ट से वो पढ़ो, शाम को सोते वक्त भी वही पढ़ो,
1: बस वही,
0: कोई शेड्यूल नहीं, बिकॉज आपको फोकस रहना होता है, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया, फिर कैसे हुआ था शुरुआत में भी मैं थोड़ा इसमें मिस गाइड हो गया था कि मैं मोबाइल पे सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ या फिर फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि आपको फुल फोकस माइंड होना चाहिए, मतलब आपके माइंड को कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए सोचने के लिए, देखने के लिए, तो आप देखो ही मत सोचो ही, तो आप के पास कोई बुद्धि को सोचने के लिए, मन को सोचने के लिए कुछ होगा ही नहीं पढ़ाई के अलावा,
1: पढ़ाई बस पढ़ाई
0: बस पढ़ाई।
1: ओके
0: तो वो आपको 45 मिनट्स मैंने पढ़ाई की थी, तो वो मुझे कभी कभी रोना भी आता था कि यार इतने दिन हो गए और कितना पढ़ना है, रिजल्ट पास आएगा फेल आएगा कैसे होगा क्या होगा, एग्जाम देने के बाद तो लग रहा था कि हाँ इस बार हो जाना चाहिए, बट शुरुआत में तो मेरा ये हो गया था, बट वही कि आपको कि मेहनत का रंग आ गया वापस, मतलब आप
1: बिल्कुल ऐसे मोमेंट को शब्दों में नहीं मैं नहीं कह सकते, आपके माता पिता और घर में भी सब लोग बहुत खुश हुए होंगे।
0: फर्स्ट टाइम मैंने पापा को रोते हुए देखा था, नहीं तो उनका कभी मैंने रोना नहीं सुना था, बट वो रो रहे थे, सभी लोग रो रहे थे, तो वो खुशी के आंसू थे,
1: बहुत प्राउड महसूस कर रहे।
0: एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा।
1: Okay. तो ये आपने कब क्लियर किया फाइनल एग्जाम सीए का, कौन से वर्ष में?
0: ये December 21 में मेरी एग्जाम हुई थी, अभी ये कोविड के ड्यूरिंग, फिर मेरा रिजल्ट 10th of February आया था, वो डेट को तो मैं कभी नहीं भूल सकता लाइफ में, ड्यूरिंग माय होल लाइफ 10th February 2022
1: क्या बात,
0: तो रिजल्ट आया था और 1 बजे का समय था जब डिक्लेयर हुआ रिजल्ट, और मैंने लैपटॉप पे ओपन किया तो पास था, तो मेरे को तो आधे घंटे तक कुछ सूची, आई वॉज टोटल ब्लैंक, क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो ऐसे शांत पड़ा था
1: बिलीव नहीं हो रहा था
0: एग्जैक्टली
1: बिल्कुल आपने कड़ी मेहनत की है और आप डिजर्व करते थे तभी आपको ये मिला है। और जैसा आपने बताया कई बार हमें लग सकता है कि दूसरे लोग कुछ तो आराम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फल भी आपको मिलेगा।
0: एग्जैक्टली,
1: और दूसरे हो सकते हैं आज मस्ती कर रहे हैं तो उनको कल उनका कुछ और उन्हें करना हो, सबका जर्नी अलग अलग है, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको ही मिलता है। और डेफिनेटली बहुत कुछ आपने सैक्रिफाइस किया, डेडिकेशन से आपने एफर्ट किए, तब जाके आपने आप सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने।
0: एग्जैक्टली, और उस दिन मुझे याद है कि उस दिन मैंने 400 से ज्यादा लोगों को रिप्लाईज किए कांग्रेचुलेशंस का, जो लोग मुझे जानते नहीं थे, जो बस मतलब ठीक है कोई नहीं ऐसे ही नॉर्मल है, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है, उन सब लोगों का मैसेज आया कि कांग्रेचुलेशन, तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन होता कि सब लोग याद कर रहे खुशी में।
1: राइट,
0: जब आप फेल होते तो कोई आपके साथ नहीं होता, 2-4 लोग होते बस, 2-4 friends और फैमिली होती, बट आप पास हो जाते हो तो लोग क्राउड होते हैं आपके पास।
1: राइट, और यही ध्यान रखना होता है कि वो जो लोग साथ रहे हैं जब हमने नहीं कुछ अचीव किया था वो उनका ध्यान जरूर रखना होता है।
0: Exactly,
1: हमेशा
0: हमेशा।
1: बहुत अच्छी बात है आपने कही, एंड मुझे लगता है हम अपने शो के अंतिम मोड़ पे भी आ गए। मैं आपको पूछना चाहूंगी कि इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं, और अगर आप सीए बन जाते हैं तो क्या होता है आगे?
0: ओके, सीए बनने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. तो मैं अगर आपको बताऊं तो हम फाइनल में जो 8 सब्जेक्ट पढ़ते तो हर एक सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन को ये करके आप उसमें और आगे पढ़ सकते हो या फिर और आगे आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो. वो एक ऑप्शन होता है कि आप कोई और डिग्री ले लो, जैसे MBA वगैरह कर सकते हो या फिर अदर फॉरेन कोर्सेज भी वो भी कर सकते हो. मतलब आपको और कई और ऊंचे लेवल पे जाना है उसके लिए. लेकिन आपको करियर ऑप्शन बहुत अच्छे है, आप प्रैक्टिस में जा सकते हो. मतलब खुद का ऑफिस सेटअप कर दीजिए और आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, वो एक अच्छा ऑप्शन होता है. सेकंड ऑप्शन है जॉब कर सकते हो. जॉब की वैकेंसी काफी है इंडिया में या फॉरेन में भी. आज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया जाता तो ऑल ओवर इंडिया काफी वैकेंसीज है कंपनीज के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए. तो वहाँ आप जॉब कर सकते हो. मेरे केस में मैंने जॉब का ऑप्शन लिया कि शुरुआत में मैं जॉब कर दो, फिर बाद में और समय है सोचने के लिए. जॉब्स काफी है, जॉब कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते या फिर आप अदर फील्ड भी ये कर सकते हो,
1: चूज कर सकते. मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज
0: है.
1: लेकिन हाँ, बस यही है कि आपको मेहनत करनी है, एग्जाम देने हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस
0: ऑप्शन. यस, मतलब आपको पढ़ते रहना है. एक्चुअली कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ, जहाँ पे आप पढ़ना बंद करते हो तो आप नहीं बढ़ सकते हो. आपको पढ़ना ही पड़ेगा,
1: सीखना जरूरी है.
0: सीखेगा तो ही बढ़ेगा.
1: बिल्कुल. और यहाँ दोस्तों मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इससे ज्यादा जो आपको नहीं मिल पा रही है ऑनलाइन, तो आप रेडियो मधुबन पर हमें मैसेज कीजिए. हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो जानकारी उपलब्ध कराने की. रेडियो मधुबन का नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415. इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं. अच्छा, जाते जाते मैं ये आपसे बोलना चाहूंगी, जो भी युवा साथी आपको सुन रहे हैं, वो स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, ये जो अपना यूथ पीरियड होता है, जो आई थिंक मुझे बोलना चाहिए 18 से स्टार्ट हो सकता, 16-18 से 10वीं 12वीं 11वीं के बाद अपना स्टार्ट होता है, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है ऐसा मुझे लगता है. और आप 25 तक जो आपका पीरियड है ये बहुत ही क्रूशियल है. मतलब आपके लाइफ का, आपको अगर बेहतरीन जिंदगी जीना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है नेशन को या फिर खुद के फैमिली को कंट्रीब्यूट करना है, खुद के लिए कंट्रीब्यूट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है जिसमें आपको जो आपका हर एक कदम इंपॉर्टेंट है. आपको एक प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए. आपका एक गलत कदम आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर उसको एक, क्योंकि आफ्टर 25-30 आप नहीं कर सकते चीजों को जो चीजें आप तब कर सकते थे जो 18-25-24 वाले पीरियड में. इसलिए ये समय में जो आप चीजें कर रहे हो तो आप एक बस खुद को पूछियो कि इज इट मेकिंग एनी वैल्यू एडिशन टू अस. मतलब कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या
1: या हमारे जीवन में
0: वैल्यू एडिशन, या मतलब अपन कौन से रास्ते की तरफ जा रहे हैं. एक अच्छाई वाला रास्ता जहाँ पे फ्यूचर ब्राइट है, अच्छा फ्यूचर है, वहां जा रहे, या फिर अपन खुद को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे कि फ्यूचर में अपनी लाइफ कैसे. आप वो सोचिए कि आप 30-40 के बाद कैसे होंगे. आप सपने देखिए कि आपको 30-40 के बाद क्या होना चाहिए, आपको कुछ दिनों के बाद कैसे होना चाहिए. तो वो चीजों विजन रख के आप काम कीजिए, क्योंकि आपको फिर जिंदगी बहुत बड़ी है अगर अच्छे से जीना. और एक हर एक को एक वैल्यूएबल लाइफ मिली है, इसलिए वो पूरे जिंदगी को पूरा जीना ही सबसे बेस्ट होता है. आप कोई कुछ भी करो, जरूरी नहीं कि आप सीए ही करो या फिर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप कुछ भी करो, जो भी प्रोफेशन में आप हो, आप उसको फुल फ्लेज हो और प्रॉपर स्टेप लो, वो इम्पोर्टेंट है कि आप,
1: मतलब कल को ये ना लगे कि अरे ये कर लेते हैं,
0: exactly.
1: थोड़ी और मेहनत कर लेते
0: हैं. एग्जैक्टली. वो हमें भी कभी कभी लगता है कि कोई चीज हमने नई चीज या मिस आउट हो गई, तो अभी लगता है कि वो चीज कर लेना था, वो समय तो चलेगा, अभी तो कुछ नहीं है. क्योंकि आप जब फिर वो मेहनत करने के बाद जो हासिल करते हो उसका जो फ्रूट होता है, वो उसका एक्सपीरियंस जो होता है, मतलब आप मरते दम तक नहीं भूल पाओगे. और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने का तो अलग ही महत्व होता है. वो चीजों को ध्यान रख के आप बस लाइफ को जो बाकी करना ही
1: नहीं, बहुत आपने बहुत सरल तरीके से अपनी ये सभी बातें कही और आपने साथ साथ मोटिवेट भी किया और प्रैक्टिकल बातें भी बताई कि हाँ ऐसा नहीं है कि आराम से हो रहा है, लेकिन हाँ आप मोटिवेटेड हो तो आप कर सकते हो.
0: लाइफ को जियो भी, मस्ती करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, वो भी जरूरी है. क्योंकि वो उम्र तो वापस नहीं आने वाली, क्योंकि 25-30 के बाद आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाओगे लेकिन उतना आपकी हेल्थ साथ नहीं देंगी. वो सब करते हुए आप करियर को भी एक फोकस रख के आगे बढ़ो, तो वो बहुत जरूरी है.
1: बहुत जरूरी है. युवा काल में बहुत जरूरी है. दोस्तों अपना रास्ता खुद चुने और कई तरीके के रास्ते आपके सामने आएंगे, हो सकता है आपके दोस्त भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको चुनना है आपका भविष्य. और इसीलिए जरूरी है क्योंकि कई युवा साथी हैं दोस्तों बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत उनके पास हुनर है, लेकिन कई बार नशे की आदत, कई बार इस तरह की आदतें पड़ जाती हैं युवा काल में, जो जीवन के ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पल हैं वो ऐसे ही गुजर जाते हैं। और दोस्तों वैसे तो कहते हैं कभी भी देर नहीं होती बदलाव के लिए, तो इसीलिए अगर आपको आज भी ये महसूस हुआ है तो आज ही ये बदलाव लेकर आइए अपने जीवन में, एक करियर, एक विजन, खुद से प्रश्न कीजिए। जैसा आपने कहा, कृष्णा हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा खुद से प्रश्न कीजिए कि आप अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, तो जवाब मिल जाएगा कि क्या जॉब किस तरह का आप करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं।
0: एग्जैक्टली।
1: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड यूथ को गाइड करने के लिए, बहुत सरल तरीके से हमसे आपकी जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू रेडियो मधुबन, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यूथ से कनेक्ट होने की।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: ओ जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है।
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: गुड इवनिंग नमस्ते, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आज तीन कहानियों का ये खूबसूरत सफर आपके साथ शेयर करने वाली हूं और साथ ही साथ इस बीच आपसे पूछने वाली हूं सवाल, जिसका जवाब देंगे आप 9414151415 पर। तो कहानी है समोसे की। जी हाँ, ऑपरेशन समोसा। वहीं पर बिधु मास्टर भी कुछ कहना चाहेंगे और एक और अनोखी कहानी आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए थोड़ी देर में शुरू करते हैं ऑपरेशन समोसे से, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक ब्रेक। ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आएंगे, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

वही बने, माटी का एक नाग बना, पूजे लोग लगाए। ऑपरेशन समोसे की बारी आ गई। चलिए दोस्तों, ऑपरेशन समोसा। रविवार की सुबह बच्चे नगर के आनंद पार्क में पिकनिक मना रहे थे। किसी के टिफिन में पराठे थे तो किसी के पास केक। वहीं गोलू मम्मी के हाथों से बने गर्मा गर्म समोसे लेकर आया था। देखो पूरे 12 समोसे लाया हूं, लेकिन कोई हाथ नहीं लगाएगा, पहले खेले फिर समोसे, तभी खाएंगे। तभी पेड़ पर बैठे बंदरों की टोली की नजर डिब्बे पर पड़ी। सबसे बड़ा बंदर अपने साथियों से बोला, मिशन ऑपरेशन समोसा शुरू किया जाए। एक छोटा बंदर नीचे उतरा, उनके सामने बैठ गया। उसे देखकर पिंकी बोली, अरे कितना प्यारा है। उसी समय दूसरा बंदर पीछे से आया और डिब्बा उठाकर भाग गया। अरे अरे अरे अरे समोसे! पूरा पार्क बंदरों के पीछे दौड़ पड़ा। एक बंदर पेड़ पर चढ़ा, दूसरा झूले पे बैठ गया और तीसरा स्लाइड करता हुआ नीचे आ गया। बच्चों को समझ में नहीं आया कि समोसा आखिर है किसके पास। और समोसा मोंटू के हाथ से उछलकर सीधे दूसरे बंदर के सर पर जा गिरा। तभी मोंटू बंदर ने डिब्बा खोला, उसने एक समोसा उठाया, लेकिन वो इतना गर्म था, ऊ करके उसने जोर से चिल्लाया। दूसरे बंदर ने घबराकर समोसा तीसरे बंदर की ओर फेंका। तीसरे ने बचने की कोशिश की, लेकिन समोसा उड़कर बैठे कुत्ते के सामने जा गिरा। कुत्ता समोसा लेकर ऐसे भागा जैसे कोई क्रिकेट खिलाड़ी चौका मारकर दौड़ रहा हो। बस और क्या था, अब बंदर कुत्ते के पीछे, बच्चे बंदर के पीछे, पूरा पार्क गोल गोल गोल गोल दौड़ने लगा। तभी गार्ड ने जोर से सीटी बजाई, सभी बंदर एक पल स्तब्ध रुक गए। उसी समय सबसे छोटा बंदर डिब्बा उठाकर फिर भागा, लेकिन इस बार उसकी पूंछ झूले की रस्सी में फंस गई। उफो! और 12 समोसे आसमान में ऐसे उड़े जैसे छोटे छोटे पैराशूट उसमें लगे हो। नीचे खड़े बच्चे हाथ फैलाकर उन्हें पकड़ने में लोपने में लग गए। अरे ये रहा मेरा, अरे मेरे पास भी आ गया, एक और मिला, ये तो मेरी टोपी में आकर गिरा। बस बच्चों के तो मजे हो गए। खैर कुछ ही सेकंड में सारे समोसे बच्चों के पास आ गए। एक बंदर दूसरे का मुंह देखने लगा। इतने में गोलू हंसते हुए उसके पास गया। उसने एक समोसा दो टुकड़ों में तोड़कर एक टुकड़ा बंदरों को दिया, दूसरी ओर बढ़ के बोला, चोरी करके नहीं मांग कर खा सकते हो तो मज़ा ही ज़्यादा आएगा। बंदर ने धीरे से एक टुकड़ा लिया, सिर खुजलाया और जैसे शर्मिंदा होकर खिखी खिखी करने लगा। पूरे पार्क में हंसी गूंज उठी। शरारत बच्चे और शरारती बंदर मज़ेदार एक साथ मिल बांट कर समोसा खाने लगे। बच्चों ने उस टोली का नाम रख दिया समोसा प्रिय बंदर गैंग। और जब भी वे पार्क में पिकनिक मनाने आते, पहले समोसा गिनते, फिर ऊपर पेड़ों की तरफ देखते और तब जाकर आगे कुछ खाते। सीख इस बात की है कि शरारत मज़ेदार हो सकती है, लेकिन ईमानदारी और मिल बांट कर खाने में मज़ा अलग ही आता है। लेकिन जय गणेशा जय गजानन, आगे ये गीत आप तक पहुंचाएंगे, पर उससे पहले आज का सवाल आपके लिए लेकर आएंगे। सवाल हमने आपके लिए रखा है, इनमें से कौन सा स्थान 12 साल के कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा तीर्थ स्थान 12 साल के कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है? ए उज्जैनी, बी रामेश्वरम, सी बद्रीनाथ। उज्जैनी रामेश्वरम बद्रीनाथ, सही जवाब झटपट देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आपका कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: गुड इवनिंग ओम शांति दीदी,
0: गुड इवनिंग,
1: कैसे हो?
0: बहुत अच्छे, थैंक यू कॉल करने के लिए, बताइए।
1: आपका भी स्वागत है। और ऑपरेशन मिशन समोसा, मिशन ऑपरेशन समोसा बहुत अच्छा लगा। पार्की पिकनिक बहुत अच्छी है, मिलजुल कर सही में खाना चाहिए, बहुत मजा आता है मिलजुल कर खाने में।
0: जी जी जी जी।
1: और दीदी, सवाल का जवाब तो उज्जैन है, उज्जैन
0: उज्जैन।
1: और सभी को नमस्कार।
0: नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।

0: हे गजानन श्री महागणेश, ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे बीच एक श्रोता भी आ चुके हैं। नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: सहारनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति
0: जी, कैसे हैं फिरोज जी? आज का सवाल एक बार दोहरा देते हैं आपके लिए भी। सवाल हमने आपके लिए रखा था कि इन तीनों में से जगह में से कौन सी जगह महाकुंभ मेला कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, उज्जैनी, रामेश्वरम या फिर बद्रीनाथ?
1: ऑप्शन है उज्जैन।
0: उज्जैन, अच्छा, ओके, थैंक यू। नमस्कार हमारे
1: साथ जी। पिकनिक का आप जो बोले थे
0: जी, समोसा,
1: तो उसमें तो उसमें हम लोग जाते थे, पिकनिक में जाते थे
0: जी,
1: तो इसमें अंताक्षरी खेलते थे, अंताक्षरी के अंदर में गीत बोलते थे
0: जी जी जी।
1: ये मैं दोहराता हूँ आपको।
0: जी जी जी, दोहराइए।
1: मनिहारी का बेस बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का बेस बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी

0: वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, थैंक यू हमसे शेयर करने के लिए। रेडियो मधुबन में हमारे बीच फिरोज जी थे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपके लिए लेकर आते हैं।
1: ये तंबाकू क्या होता है?
2: अरे तिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुए में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
3: हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया।
1: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
2: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
4: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने

0: से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की।
1: नमस्कार, हमारे बीच रेडियो मधुबन में एक श्रोता गण भी आए हैं, बात कर लेते हैं। कौन बोल रहे हैं सर? जी जी जी, कैसे हैं सर आप?
2: बढ़िया हैं, आप तो बढ़िया हैं।
1: हाँ जी, हम भी बहुत अच्छे हैं और आज का सवाल का जवाब भी आपसे उम्मीद करते हैं। बताइए
2: जी। उज्जैन,
1: उज्जैन, आप भी उज्जैन बोल रहे हैं, लेकिन तीर्थ स्थान तो बहुत फेमस बद्रीनाथ है और
2: कुंभ के लिए तो सिर्फ उज्जैन है।
1: उज्जैन है, ओके, चलिए आपका भी जवाब लॉक करते, थैंक यू, नमस्कार। और अब एक कहानी आप तक पहुंचाते दोस्तों।
3: नर नरा नारंग नरेना नरभयम नरे नरे नरभयम नरे।
4: हरण बाबू घर पे हो? हरण बाबू
5: कौन चाहिए?
4: यहाँ पे कोई हरण नाम के व्यक्ति रहते हैं क्या?
5: हाँ रहते हैं, वो मेरे चाचा जी हैं।
4: अच्छा, उनको थोड़ा बुला दोगे क्या?
5: क्यों बुलाऊं?
4: उनको क्या एक ट्यूटर चाहिए?
5: सच में मध्यम चाचा ने हम लोगों के लिए एक ट्यूटर चाहिए ऐसा करके न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया था। ये बात तो मेरे दिमाग से निकल गई थी। आप क्या यहाँ पे वो विज्ञापन देख के ही आए हैं?
4: हाँ।
5: अच्छा, अंदर आकर बैठिए, अब मैं मध्यम चाचा को बुला देता हूँ। अरे आप बैठिए।
6: उन्होंने डरते हुए एक बार पिंटू की तरफ देखा और फिर बेंच पर बैठ गए। इस आदमी को देखकर पिंटू के मन में मास्टर जी का जो डर था वो निकल गया। उसने कहा,
5: अरे आप उस चेयर पे बैठिए ना।
4: अच्छा ठीक है।
6: ये बात बोलने के बाद वो एक चेयर पर जाकर बैठ गए। पिंटू फैन चलाकर धीरे धीरे ऊपर चला गया अपने चाचा को बुलाने। उसके चाचा नीचे आए, पिंटू भी उनके पीछे आया। साथ में जंपू, मिंटू, चालू और रेवा भी आए। चाचा जब वहाँ आए तो मास्टर जी चेयर से उठकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। तब चाचा ने कहा,
4: आप तो आज सुबह के न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखकर आए हैं, है ना? हाँ जी, इन 5 बच्चों को पढ़ाना होगा, समझे आप? रात को 3 घंटे, वेतन तो लिख ही दिया है, 7 रुपए, छुट्टी बिल्कुल नहीं लेनी है।
7: नहीं नहीं, छुट्टी मैं क्यों लूंगा?
4: वैसे आप रहते कहाँ पे हैं? मैं रहता हूँ श्रीनाथ दास लेन में। आपका नाम?
7: मेरा नाम श्री विधुभाषण चट्टोपाध्याय है।
4: अच्छा, वैसे आपने पढ़ाई कहाँ तक की है?
7: जी मैंने मैट्रिक पास किया है।
6: ये बात सुनकर चाचा सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने कहा,
4: आप 4थी कक्षा के बच्चों को पढ़ा पाएंगे ना?
7: हाँ क्यों नहीं।
4: ठीक है, सोमवार से काम चालू कर दीजिए, शाम को ठीक 6 बजे आ जाना आप, ठीक है? ये तुम्हारे नए मास्टर जी हैं, मन लगाकर पढ़ाई करना तुम सब लोग, समझे?
6: इसके बाद सोमवार को ठीक शाम 6 बजे मास्टर जी पढ़ाने आए। उन्होंने सबके नाम पूछे, सारे किताबों को उलट पलट कर देखा, थोड़ी देर तक पिंटू के अंग्रेजी किताब को देखकर।
4: बहुत ही सख्त चीजें पढ़ाते हैं तुम्हें।
5: हम लोगों को अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ाई जाती है।
4: ऐसा है क्या? तो पढ़ाई खत्म हुई?
5: वो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर और बैरोमीटर।
6: पिंटू की बातों को सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गए। ये देखकर पिंटू को बड़ा मजा आया। फिर मास्टर जी ने रेवा से पूछा,
4: तुम्हारा नाम क्या है बेटी?
5: अरे बोलना, तेरा नाम क्या है?
8: रेवा।
4: वाह, बहुत ही अच्छा नाम है, सुंदर नाम है तुम्हारा।
6: इसके बाद दिन बीतने लगे और रेवा भी शर्माना छोड़ चुकी थी और विधु मास्टर जी भी रेवा से बहुत स्नेह करते थे। सिर्फ रेवा से ही नहीं, वो सारे बच्चों से स्नेह करते थे। वो जब पढ़ाने आते उसी समय एक फेरी वाला आवाज देता हुआ जाता,
8: ले लो अबाग जलपान, स्वाधीन भाजी, मटर दाना।
6: मास्टर जी भी उन्हें वो सब खरीद कर खिलाते थे। वेतन मिलते ही उन्होंने सबको 12 पैसे की कुल्फी खिलाई। सभी अपने मास्टर जी से बहुत प्यार करते थे, बस पिंटू ही उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पर क्यों, ये वो खुद भी नहीं जानता था। वो चाचा के डर से मास्टर जी के पास पढ़ता था, इसलिए वो हर वक्त मास्टर जी की गलतियां ढूंढने लगा ताकि उसे मास्टर जी से छुटकारा मिल सके। एक दिन पिंटू ने मास्टर जी से पूछा,
5: पहाड़ की ऊंचाई के माप के लिए क्या बेरोमीटर का इस्तेमाल होता है?
4: इस्तेमाल होता है क्या? किसने कहा?
5: स्कूल के मास्टर जी ने।
4: हो भी सकता है। अच्छा, ये कहाँ पे लिखा है मुझे बताओ जरा।
5: वो साइंस की किताब में लिखा है।
4: दिखाओ जरा साइंस की किताब, थोड़ी दिखाओ मुझे।
5: मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मास्टर जी।
4: ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ।
6: लेकिन पिंटू को समझाना तो दूर की बात, उन्हें खुद भी वो अंग्रेजी वाली जगह ठीक से समझ नहीं आई।
1: अरे विधु मास्टर तो पढ़ाने लगे हैं, लेकिन हमारे बीच एक और साथी आ चुके हैं, चलिए उनसे बात कर लेते। नमस्कार, कौन है हमारे बीच?
9: और मैं एक देशभक्ति का गीत गा रही हूँ।
1: क्या नाम है आपका, पहले ये बताओ सबके सामने।
9: मेरा नाम बिहारी साजिया खुरम खान है।
1: ओके, कहाँ से बात कर रही हो?
9: खसा से।
1: अच्छा, थैंक यू हमसे कॉल करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है आगे भी आप हमारे साथ जुड़ी रहोगी। तो चलिए, आप एक गाना पेश करने वाली हो ना, फटाफट करो।
9: सलवार दिए अंगारों में जिसमें जलाया है, तब जाके कही हमने सर पे

मुरीद सोए, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। हे मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, ठिकाना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मोह से निकल के खून।

0: वाह बहुत अच्छा। और आज के सवाल का आपने सुना होगा, क्या उसका जवाब देंगे आप? हेलो।
1: हाँ, उनका जवाब है ए उज्जैन।
0: ए उज्जैन, थैंक यू। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो?
1: मैं कक्षा 8 में
0: पढ़ती हूँ। वाह बहुत अच्छा, जुड़े रहना हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ रूहानी भी है जो कक्षा 8वीं की छात्रा है। तो उम्मीद है दो साथी बहुत अच्छी तरह बात करते रहेंगे, जरूर हम आपसे भी जुड़ते रहेंगे। रेडियो मधुबन में हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।
2: आखिर में बहुत देर उन्होंने पिंटू को समझाने की कोशिश की, फिर उन्होंने पूछा,
3: समझ में आया कुछ? कुछ भी नहीं। अब ठीक है, मैं तुम्हारी इस किताब को घर ले जाता हूँ, मैं थोड़ी पढ़ के तुम्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा।
2: वो सच में उस किताब को ले गए, फिर उसे लौटा भी दिया, लेकिन पिंटू के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाए वो। ये बात जब पिंटू ने चाचा को बताया, उसके बाद वो बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई देखने लगे। मास्टर जी की पढ़ाई में वो ज्यादातर वक्त गलती निकालते थे। एक दिन
3: लूसी ग्रे के आखिर के दोनों स्टेंजा और भी विस्तार से थोड़ा समझा दीजिए मास्टर जी। अरे वही, और ए रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलोंग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड एंड सिंग्स ए सॉलिटरी सॉन्ग दैट विसल्स इन द वाइंड। इसका सारांश भी अच्छे से बता देना चाहिए, समझे ना आप? अच्छा, मैं फिर से अभी समझा देता हूँ।
2: ऐसे समय में मास्टर जी कुछ नहीं बोल पाते थे, वो चाचा से थोड़ा सा डरते थे। मास्टर जी दिमाग लगाने वाले गणित हल नहीं कर पाते थे। एक दिन चाचा के साथ

0: देते, किसी को भी इस बारे में कहने से मना करते। वो चोरी चुपके ये सब करते थे। रेवा को जन्मदिन में उन्होंने 3 रुपए की एक इंग्लिश रेलगाड़ी खरीद कर दी थी। विश्वकर्मा पूजा के 3-4 दिन बाद श्रीनाथ दास लेन में मास्टर जी ने पिंटू को देखा।
1: अरे पिंटू, कहाँ जा रहे हो?
2: अरे आप कहाँ रहते हैं मास्टर जी?
1: अरे यहीं पे ही।
2: चलिए ना, आपके घर चलते हैं।
0: मास्टर जी थोड़ी दुविधा में भी पिंटू को साथ घर ले गए। टीन की छत वाली एक पुरानी 2 मंजिल घर में एक छोटे से कमरे में वो रहते थे। छोटी सी टूटी फूटी पतली सीढ़ियों से जाने में डर लगता था। बालकनी में इंसान खड़ा हो तो कपड़े लगते थे। पिंटू धीरे धीरे उनके पीछे पीछे उनके कमरे में गया। छोटा सा महल नुमा एक कमरा, दीवार पर कुछ कैलेंडर टंगे थे। एक तरफ विवेकानंद जी की एक तस्वीर, फर्श के ऊपर एक खटिया और उस पर एक पुराना काला मैला तकिया। मास्टर जी ने पिंटू को वहाँ बैठाया और कहीं चले गए। पिंटू उनके कमरे के चारों तरफ देखने लगा। उनकी ऐसी करीबी देखकर पिंटू को दुख हुआ। कमरे में एक भी कपड़े नहीं है। अगर हैं भी तो उनमें इतने छेद हैं और वो मैले हैं। एक ही कमीज और एक ही धोती से उनको चलाना पड़ता है। ये सब देखकर उनके ऊपर पिंटू को दया आने लगी। उनसे वो जितनी नफरत करता था वो सब चला गया। अचानक पिंटू बहुत बदल गया। ठीक उसी समय मास्टर जी एक कागज की थैली में खाना लेकर आए। पिंटू ने नरम आवाज में कहा,
2: अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी मास्टर जी?
1: नहीं नहीं, कोई बात नहीं है।
2: हम लोग तो मास्टर जी की खून पसीने की मेहनत को ऐसे बर्बाद करके उनका बुरी तरह से खून चूसते हैं। नहीं, ये अभी कभी नहीं होगा।
0: उसमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो वहाँ से निकल गया। घर लौटते समय उस दिन पिंटू ने कसम खाई कि वो मास्टर जी को अपने वेतन से उन लोगों पर खर्च करने से मना करके रहेगा। इतने से पैसे कमाकर मास्टर जी कोलकाता जैसी जगह पर रह रहे हैं। लेकिन उसकी कसम पूरी होने से पहले ही एक बहुत बुरी घटना घट गई। चाचा ने ट्रांसलेशन की अभ्यास की किताब देखकर कहा,
1: ये आप क्या पढ़ा रहे हैं मास्टर जी? आपको तो अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है। I live in a boarding. इस सेंटेंस में इनने क्या क्या अपराध किया है उसको निकाल कर आपने 8 को बैठा दिया है। असल में उसकी गलती क्या है ये आपको दिखाई नहीं दिया? और every bush and every tree was in bud. इस सेंटेंस में was को काट के वर कौन से ग्रामर के मुताबिक किया आपने? आप 4th class के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हाँ, इसीलिए सोचता हूँ लड़के ऐसे खराब क्यों हो रहे हैं। ए पिंटू, तेरी वो हाफ ईयरली वाली प्रोग्रेस रिपोर्ट को अभी लेके आता। हाँ इसे देखिए, देखिए कितना खराब रिजल्ट है। अंग्रेजी में तो फेल हो गया और बाकियों में जैसे तैसे करके पास हुआ है। इसके बाद आपको रखने की हिम्मत और नहीं करता मैं, नहीं तो इन लोगों के साथ ज्यादती होगी। हम दूसरे मास्टर जी को देख लेंगे। आपके बाकी महीने का वेतन 2 तारीख को आप ले जाना।
0: चाचा की बातों पर मास्टर जी ने कोई सवाल नहीं किया। वो चुपचाप धीरे धीरे वहाँ से चले गए। पिंटू उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं पाया। इन सब का जिम्मेदार वो ही था। उसी ने मास्टर जी की गलतियाँ चाचा को बोलकर उनके मन में गुस्सा दिलाया था। इसके लिए वो खुद को दोषी मानकर मुंह लटकाकर बैठा रहा।
3: किसी को दुख देना, किसी के साथ बुरा बर्ताव करना अच्छी बात नहीं, और इसीलिए हमें अपने शिक्षकों का सम्मान तो अवश्य करना चाहिए। तो गंगा की मौज, ये खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी जी की मीठी आवाज़ और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपके लिए लेकर आ रहे हैं उड़ान में।

वेल खूबसूरती इस गीत के साथ पुनः आज का सवाल एक बार और, इन तीनों में से कौन सी जगह कुंभ मेला लगता है हर 12 वर्ष के बाद? ए उज्जैनी, बी रामेश्वरम, सी बद्रीनाथ। सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर। भारत की बेटी, ये गाना अब आपके लिए उड़ान में।

जीती रहो जीतती रहो। जी हाँ, भारत की हर बेटी जीतती रहे जीतती रहे और साथ ही साथ आज के सवाल का जवाब भी देती रहे। सिर्फ भारत की बेटियां ही क्यों, हमारे साथ जुड़े हर साथी हमें कॉल करके ज़रूर जवाब दे सकते हैं। कुंभ मेला हर 12 साल में इन तीनों में से कौन से स्थान पर लगता है, उज्जैनी, रामेश्वरम या बद्रीनाथ? सही जवाब थोड़ी देर में ज़रूर दूंगी, लेकिन उससे पहले एक और गीत वंदे मातरम आप तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

सौभाग्य का सूरज तमकेगा और आज का सवाल भी आपके सामने उत्तर उड़ान के टीम के सामने के जो लोग या फिर मैं मोना आपके सामने अब उत्तर लेकर भी आ रही हूँ। कुंभ मेला हर 12 साल में इन तीनों स्थानों में से कौन सी जगह पर होता है? दोस्तों बद्रीनाथ बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कुंभ मेला नहीं होता है, लेकिन भारत का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। हिमालय की गोद में बसा ये खूबसूरत स्थान विष्णु जी को अर्पित है। वहीं पर रामेश्वरम भी अपने आप में कहते हैं ना 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और ये रामेश्वरम में राम ने शिव जी की आराधना की थी। वहीं पर उज्जैनी वो स्थान है जहाँ पर हर 12 साल में सिंहस्थ का मेला लगता है। तो सही जवाब उज्जैन है। तो चलिए दोस्तों, कुंभ मेला हर 12 साल में उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार और नासिक में लगता है। ये 4 स्थान है जो कुंभ का स्थान माना जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहूँगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस 1 मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। और यहाँ का जो आदिवासी लोग सुनते हैं हमारे इस कार्यक्रम को, उस कार्यक्रम का नाम है म्हारो गाँव म्हारो अंचल। सही में जब नाम सुनते प्रोग्राम का कितना खुशबू मिलता है। जिस गांव और जिस अंचल में हम रहते हैं, पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, वो गांव को कभी नहीं भूल पाते। गांव तो स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि गांव को लेकर ही शहर, शहर को लेकर ही हमारा राज्य, और राज्य को लेकर ही हमारा देश विदेश बनता है, विश्व बनता है। तो गाँव का आवाज को गाँव तक सीमित नहीं रखे और सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन आज अबरोड तहसील से दूरस्थ जगह मंडार देवघर ब्लॉक में पहुंचे, क्योंकि हर का आवाज को एक मौका मिलना चाहिए। जो आवश्यकता था, जो मंच आवश्यकता था, वो आज मंच ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन शाखा प्रदान करने के लिए पहुंचा है। और खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंदवाड़ा में पहुंचे, एक राजकीय विद्यालय है और हमारा ईश्वरीय विद्यालय, दोनों विद्यालय के मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास में, बच्चों का जो हुनर है, बच्चों का जो टैलेंट है, टैलेंट हंट में आज बच्चों को सिलेक्ट करके यहाँ का संस्था प्रधान सभी स्टाफ उमंग उत्साह भरा है। और जिसका चलते बच्चे आज भाग ले, 500 से 500 बच्चे, लेकिन 10 बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं ओपन राउंड में। इस 10 बच्चों से भी एक दो बच्चे फिर उनको हम सिलेक्शन करेंगे ओपन राउंड के बाद, जब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होगा। अपना रायदर बा मंडार जो जितने विद्यालय, सभी विद्यालय के इंटर स्कूल कंपटीशन होगा, तो बच्चों को मैं जरूर याद करूंगा। और बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मैम भी उपस्थित है। मैम बच्चों को थोड़ा वार्म अप कराएंगे, क्योंकि बच्चे को मैं जितना जानता हूँ, मेरे से ज्यादा जानता है हमारा सांस्कृतिक के प्रभारी, क्योंकि वार्म अप कराएंगे बच्चों को और एक बूस्ट जैसे काम करेंगे, उससे शक्ति देंगे। अपना परिचय देंगे मैम, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं और आपका परिचय दीजिए।
1: मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंदवाड़ा से साइंस पढ़ाती हूँ।
0: अरे वाह।
1: और बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे वार्षिक उत्सव में मदद करती हूँ, और बच्चे अच्छा सा तैयार भी करते हैं और
0: जी मैम
1: बहुत उत्साह से भाग लेते हैं।
0: मैम अचानक आपका स्कूल में पहुंचे और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसे कार्यक्रम, तो आप जानते होंगे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में जानते
1: जी,
0: हैं।
1: जी मैं माउंट आबू आई हुई हूँ।
0: अच्छा, माउंट आबू में आए हैं और इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय देखे। और हमारा आज यहाँ मंडल सेवा केंद्र से भी एक हमारा सेल दीदी भी आए हैं, और आज बच्चों को एक मंच मिलेगा उनका आवाज को।
1: जी जी हमारे बच्चे बहुत उत्सुक हैं प्रस्तुत करने के लिए,
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं। बच्चों का आवाज को सुनेंगे, पहले पहला प्रस्तुति में रेडी है हमारा गुड़िया परी उपस्थित है, तो वो अपना परिचय देंगे। मुझे बहुत खुशी लगता है, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय का जो सहयोग आज सही में देखने को मिलता है। और यहाँ ये लोग तो कहीं से कहाँ पहुंच गए, पहला स्टेप एक कदम एक स्टेप हमारा, तो हमारा छात्र उपस्थित है, अपना परिचय देंगे। यस वेलकम प्लीज।
2: मेरा नाम है मीरा कुमारी, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंदवाड़ा और मेरे गांव का नाम गुंदवाड़ा है।
0: क्या बात, आवाज में दम है और कोई झिझक करने को डर नहीं। और मीरा तो पूरा मीरा भाई, हम तो मीरा का जब सुनते हैं राजस्थान का याद आता है, भक्ति भक्ति में इतना भावना थे। तो मीरा आज क्या प्रस्तुति करेगी सुनाएगी, लेकिन लेकिन हम सभी की तरफ से ईश्वरीय विश्वविद्यालय और रेडियो मधुबन परिवार की ओर से आपको स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम जैसे आज तो पूरा चमकाएगी, अपना इस विद्यालय के नाम रोशन करेंगे, और जब उनका परिवार वाले सुनेंगे, माता पिता सुनेंगे, भाई लोग सुनेंगे, तो बोला रही मीरा का आवाज है। पूरा आपका नामांकन भी स्कूल का भी वृद्धि होगा, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इस तरह आगे आते। तो देर किस बात की, शुरू करिए एक प्रस्तुति।
2: गुरु ज्ञान की बात सभी है दिल में उतारी तेरी, जब जब भी मैं उलझा हूँ तूने राह दिखाई सही,

0: क्या खूब क्या खूब, कितने सुंदर प्रस्तुति, और मेरा नाम का तो सार्थक किया। मेरा आपका नाम कौन रखा है, क्योंकि आपका नाम से सब जानते हैं।
1: मेरे पापा ने रखा है।
0: पापा को सलाम करते, क्योंकि बाप जो होते हैं, फादर जो होता है, भगवान तुल्य माता पिता, इसलिए माता पिता का ऋण कभी भी नहीं चुका सकते। जितना भी हम जन्म ले, इस जन्म में कितना भी काम करें, उनका रिटर्न हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। और मीरा जैसे आवाज, मीरा बहन, आप ये आवाज को बिना डरे बिना रुके और स्माइलिंग फेस में अपना आवाज दिए, हमारा श्रोता मित्र लिसनर सुन रहे आपको ध्यान से। और वंस मोर, और एक गीत के लिए हम लास्ट में लेंगे आपसे, रेडी रहेंगे? हाँ, एकला काफी है। आकाश में रात में बहुत सारा तारे होते हैं, लेकिन एक चांद सबको रोशनी देती है। तो हमारा विद्यालय में भी सभी तरह के चांद हो मिल नहीं सकते, तारे भी बहुत मिलेंगे, लेकिन तारा तो तारा है और हमारा चांद भी चांद, क्योंकि सब सूरज से रोशनी लेते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सिंगल के लिए। आप सब सुन पा रहे रेडियो कार्यक्रम, खासकर मेरा गांव मेरा अंचल, जो मेरा गांव अंचल में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, सिर्फ सीमित क्यों रहे मंडार में चाहे गुंदवाड़ा में, पूरा जहां तक हमारा इस कार्यक्रम को सुन पा रहे, जो जो प्लेटफॉर्म का माध्यम से, एफएम का माध्यम से, इंटरनेट का माध्यम से और एप्लीकेशन का माध्यम से सुन पा रहे, तो उन तक पहुंच रहे, बहुत खुशी लग रहा होगा सभी को। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे वंस मोर, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रस्तुति के लिए इंतजार करना पड़ा, इसका पहले का सुंदर गीत भजन सुन रहे थे रेडियो मधुबन की ओर से, और मेरा को तो सुन लिया, मेरा तो सब में आगे हो गया और भक्ति में भी मेरा को हम सुनते थे। तो चलिए और एक प्रस्तुति कौन आने वाला है तो अपना खुद परिचय देंगे, प्लीज स्टार्ट योर नेम।
1: मेरा नाम निर्मा कुमारी, मैं 12 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंदवाड़ा है।
0: ओके, और आज क्या प्रस्तुत करना जा रहे हैं? आपको डर, कोई डर लग रहा है? देखो मेरा तो आपको उमंग उत्साह करा दिया और मैम भी आपको उमंग उत्साह दिलाए, वो पहले गीत गाए, उनका आवाज सुनकर आपका आवाज को भी आप खुद नहीं रोक पा रहे है ना। चलिए शुरू करिए।
1: कटे गड़ायो गजरो भाई, कटे गड़ायो बाजो, कटड़ गड़ाई रे रोम थारी मोर लड़ी, भाई कटड़ गड़ाई रे रोम थारी मोर लड़ी, बन में गड़ाई रे रोम थारी मोर लड़ी, कतरा ला खरो गजरो भाई, कतरा ला खरो बाजो, हे कतरा ला खरी रे रोम थारी मोर लड़ी, भाई कतरा ला खरी रे रोम थारी मोर लड़ी, हे सवा ला खरो गजरो भाई, बारे ला खरो बाजो, हे कतरा ला खरी रे रोम थारी मोर लड़ी, हे सवा ला खरी रे रोम थारी मोर लड़ी, कटे पेरू गजरो भाई, कटे पेरू बाजो, हे हाथे पेरू गजरो भाई, बौड़े पेरू बाजो, हे कटे रमाड़ो रे रोम थारी मोर लड़ी, हे कटे रमाड़ो रे रोम थारी मोर लड़ी, हे कानो ने लादो गजरो भाई, कानो ने लादो बाजो, हे राधा ने मलियो गजरो, हे लुखमणे मलियो बाजो, हे कानो ने मारी रे रोम थारी मोर लड़ी।
0: एक का बाद एक प्रश्न, किसको हम सिलेक्शन जो जज होगा ना उसको तो कंफ्यूज होगा, बोले किसको कितना मार्क दो, मेरा को और उनको दोनों का आवाज पूरा सही में, मैंने बोला था भाई एक एक चांद है, सही में एक चांद नहीं एक एक चांद है। इस गीत का भावार्थ क्या है? यहाँ का राजस्थानी लोग तो उनको समझ में आता होगा, लेकिन जो बाहर बंगाल ओडिशा सभी लोग सुन रहे इस कार्यक्रम को, तो इसका अर्थ किस संदर्भ में गाए उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, और सर अपना परिचय पहले देंगे, सर इंट्रोडक्शन प्लीज।
2: सर मेरा नाम मनोहर लाल बिश्नोई, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंदवाड़ा ब्लॉक रेवदर जिला सिरोही में पदस्थापित हूँ, और इस बच्ची ने जो हमारे राजस्थान की संस्कृति रीति रिवाज के बारे में इन्होंने पूरा विश्लेषण गाने के माध्यम से किया है कि राजस्थान में जो महिलाएं हैं किस प्रकार से अपने आभूषण के मार्फत अपने शरीर की सजावट करते हैं, उनके बारे में इस बच्ची ने अपना पूरा विवेचना की है।
0: ये मारवाड़ी,
2: मारवाड़ी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में,
0: और राजस्थान आए तो राजस्थान का जो मारवाड़ी खुशबू, सही में मिठास और जो प्यार और स्नेह, पूरा राजस्थान नाम ही कितना सुंदर है, और जो आभूषण जो अपना शरीर को श्रृंगार करते हैं उसमें राजा महाराजा का जो परंपरा है
2: जी, उसको, जी।
0: और सत्यजुग का कहानी, सत्यजुग देवी देवता का उनका अलंकार श्रृंगार, और ये भजन का माध्यम से गीत का माध्यम से राजस्थान को प्रेजेंट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सर को भी धन्यवाद उसको विश्लेषण किया तो हमें भी समझ में आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए। सर आप बताइए बच्चे इतना जो टैलेंट गीत में, बहुत सारा बच्चे है लेकिन दो तारा दो स्टार दोनों
2: जी,
0: आप जानते हैं उन दोनों को?
2: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपके स्कूल के,
2: हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स है, तो जो हमारे परिवेश और इन गुरुजनों के मार्फत और इनके परिवार की जो संस्कृति है, परिवार का वातावरण है बहुत ही अच्छा वातावरण है, और गुरुजनों द्वारा उनको बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेट किया जाता है, शिक्षा दी जाती है, उसी का परिणाम आपके समक्ष इन बच्चियों ने प्रस्तुत किया है।
0: सुने आप भी बहुत गाते हैं तो आपका आवाज को तो आप नहीं रोक पा रहे होंगे, आप रेडी तो आप सुनाइए। सर
2: सर मैं गाने से ज्यादा मैं नृत्य का शौकीन हूँ, मुझे मतलब गाने के साथ में नृत्य करने का होता है, लेकिन उसके साथ में मैं आज कुछ एक मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ
0: जी सर,
2: और उसके बाद में एक हमारे जो विष्णु संप्रदाय का एक जाम्बे जी का भजन है वो भी मैं आपके समक्ष एक प्रस्तुत करूंगा, उनसे पहले मैं एक मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ
0: जी सर,
2: कि विद्यार्थियों को और अपने जो समाज में स्वयं को अपने पैरों पे कैसे खड़े होना है और आगे किस प्रकार प्रगति के पथ पर चलना है उसके बारे में मैं आप समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जीवन में सफलता किसी किस्मत का खेल नहीं बल्कि मेहनत अनुशासन और निरंतर प्रयास का एक परिणाम होती है, जो व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम भी बढ़ाता है वे एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त करता है। याद रखिए कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं, यदि रास्ता कठिन है तो तो समझ लीजिए कि मंजिल भी उतनी ही शानदार होगी। असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का पहला कदम है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसके बाद एक स्वामी जी ने एक कोटेशन दिया था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। यानी इसलिए अपने सपनों पर विश्वास रखिए, समय का सम्मान कीजिए, सकारात्मक सोच रखिए और पूरे समर्पण के साथ मेहनत कीजिए। दुनिया में कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं जो संकल्प, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से प्राप्त न किया जाए। तो मैं इन चैनल के मार्फत जो आप आए हैं, मैं जो भी हमारे जो दर्शक बंधु होंगे उनको भी मैं ये कहता हूं कि हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। अभी कभी जिंदगी में असफलता आती है तो असफलता के पीछे सफलता भी जरूर मिलेगी। धन्यवाद।
0: फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। जो फेलियर नहीं होगा तो सक्सेस कैसे होंगे, उसका स्वाद भी चखना चाहिए। इसलिए ऑब्स्टेकल आए, बाधा विघ्न आए तो उसको मुकाबला करना हमारा साहस होता है और हम सीखते हैं। जितना भी हमें जैसे बल्ब बनाने के लिए कितना हम प्रयास करते तब जाकर बल्ब 100 बार कोशिश किए जाकर बल्ब आज रोशनी हमें उससे ले रहे हैं।
2: जी हाँ,
0: एक कदम शुरुआत में एक कदम हमारा है, मेरा है
2: जी जी,
0: और 1000 कदम हमारा साथी सहयोगी और बड़े और परमात्मा का भगवान का भी सहयोग मिलता है। लेकिन हिम्मत और उमंग उत्साह चाहिए। सर ने बहुत अच्छा से बच्चों को उमंग उत्साह दिलाए और खुद को भी अपना एक मोटिवेशनल एक सार गर्भित जो आवश्यकता है मनुष्य को वो चीज रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक अब और दो परिया दो गुड़िया हमारा इस कार्यक्रम को सजाएंगे तो वो भी आए हैं, उनका प्रस्तुत सुनेंगे। हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे हैं और आप सब सुन पा रहे, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार का पास एक विद्यालय है जो गांव है, उसका नाम है गुंदवाड़ा। तो आज गुंदवाड़ा का आवाज बारी बारी सुनने को मिला और जब उनका मम्मी पापा के दोस्त लोग सब भी सुनेंगे ये तो वाह क्या क्या बात क्या बात क्या बात ऐसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वंस मोर और हमारा फरमाइश भी जैसे आ रहा है भाई, हमें और एक गीत सुनना चाहिए। तो रेडियो मधुबन आज कार्यक्रम को सुंदर रूप में बखूबी में और अपना दिल का साथ हृदय का साथ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। चाहे अपने पास जो है, ना ज्यादा ना कम, जितना है उतना प्रस्तुत दे रहे। तो अगला प्रस्तुति के लिए हमारा दो छात्रा उपस्थित है, तो उनको भी हालो करते हैं। तो शुरू करेंगे दो छात्रा अपना परिचय का साथ।
1: मैं भावना कुमारी।
0: भावना ओके, बहुत अच्छा नाम है।
2: कुमारी
1: मंजू कक्षा 10 में पढ़ती है।
0: और आज खुशी लग रहा है कि सभी आपका दोस्त लोग का सहेली लोग को सुने आवाज, मीरा का आवाज है ना, तो आपका आवाज उससे ज्यादा होना चाहिए, होगा। चलिए शुरू करें मंजू। ओके शुरू।
2: श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरन रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल विद्या बुद्धि देव मोहे हरेउ कलेश विकारी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र वंशुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी, कच्छन बरान विराज स्वेसा, कानन कुंडल कुंच कुंचित के साहात ब्रज ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंधन, विद्यावान गुनीति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु श्री तुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सुख समरूप दृश्य ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे, लाए संजीवना लखन जियाए, श्री रघुबीर हरसिउ लाए, रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरति संभाए, सहस बदन तुम रो यस गावे, अस के श्रीपति कंठ लगावे, संकारी ब्रह्मादि मनीषा नारद सार सही दहीसा, जम कुबेर दिक्पाल कहाँ थे, कवि गोविंद कह सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीवन कीना, राम मिलाए राजब दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र भोजन पर बानो, लीलियो ताहे मधुर भजानो, प्रभु मदिका मेले मुख माए, जल्दी लागे के शरद नाये, दुर्गम काज कितके जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे दे दे, राम दुआरे तुम रखवारे, उतना अज्ञान बैसारे, सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक आओ को डरना, आपन ते स्मारो आपे, तीनों लोक हाकते गावे, भूत विषाण से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग गरे से पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सब परे राम तपस्वी राजा, तीन के गा सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निगंध राम द्वारे, अष्ट सिंधिनो नीति के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे बदन राम को पावे, जन्म जन्म गरु बिसरावे, अंतकार रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरिभक्त का, और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्वे सुकरे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलवीरा, जय जय जय हनुमान कशय, घर पे आकर गुरुदेव की ना, जो सतबार पाठ कर कोई सुटे बंदी, माँ सु कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, वही सिद्ध साखी गुरी सा, तुलसीदास सदार से रखिन जे नाथ दे, महाडेरा पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता माता सहित हरते सुरभु।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर, एक पूरा एक कोई स्टॉप नहीं, पूरा ब्रेक नहीं, पूरा आराम से ऐसे प्रैक्टिस कहाँ से किए, हमें तो कल सुनते रह गए, हमारा श्रोता भी कब इसका मैंने ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक हमको देना ही पड़ रहा है। मंजू एक गीत जैसे हनुमान चालीसा आपने बताया, हनुमान का प्रभु श्री राम है ना, और श्री राम का पूरा वंशज उनका पूरा परिवार का नाम ले लिए, जानकी का नाम आया है कि नहीं, हनुमान सीता राम और उनका प्रजा सबका नाम उसमें, और ऐसे कहाँ से सीखा तुम?
2: हनुमान चालीसा किताब
0: पढ़ते आप
2: जी,
0: पूजा पाठ भी करते
2: हैं,
0: किसका पूजा करते हैं?
2: हनुमान जी के, राम जी के,
0: हनुमान और राम को, और हनुमान राम को पूजा करते है ना, हनुमान का प्रभु कौन है? श्री राम, और श्री राम का प्रभु कौन है जानते हैं? श्री राम किसको पूजा करते हैं?
2: शिव जी के।
0: रामेश्वरम में श्री राम भी रावण को मारने के लिए शिव को पूजा, शिव को जानते हैं? अच्छा शिवलिंग देखे कि नहीं, रामेश्वरम जब जाते हैं ना, आपका गाँव में तो शिव मंदिर होगा, है शिव मंदिर आपका गाँव में? हाँ, कभी शिव मंदिर गए? हाँ, शिव मंदिर जब जाते हैं, क्योंकि आप हनुमान को मानते हैं, हनुमान राम जी को मानते हैं प्रभु उनका, और हम हनुमान को मानते हैं, भक्त लोग हनुमान को मानते हैं मनुष्य, और हमारा हनुमान किसको मानते हैं? राम को, और राम किसको मानते हैं? सब पूरा चेन है, हमारा परिवार है, लेकिन इसलिए एक को मिलेगा तो सबको मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी जानकारी होना चाहिए। हनुमान का बारे में हमारा सर कुछ बताएंगे, सर हनुमान जी का बारे में थोड़ा बताइए। उनका आवाज तो हो गया, आप अपना परिचय दीजिए पहले।
3: मेरा नाम है गजेंद्र पाल सिंह।
0: जी सर,
3: मैं यहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुनवाड़ा में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ।
0: अरे बच्चे जैसे गीत गा रहे थे हनुमान का चालीसा, भाई लोग गाते लेकिन बहन भी कम नहीं है, हनुमान को पूरा अपना प्रभु मानकर चल रही है। और हम तो भाई लोग भी हनुमान को मानते हैं, क्योंकि हनुमान तो शक्तिशाली है, राम भक्त है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमारा कार्यक्रम को जो देख रहे थे, क्या आपको महसूस हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है?
3: मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आज जो आप आए, इसके कारण इन बच्चों को एक नया मंच मिल रहा है और ये अपनी कला का, अपनी प्रतिभा का आगे तक एक प्रदर्शन कर पा रहे हैं
0: जी।
3: और रही बात हनुमान

ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहो कि शर्म से है लब सिले हुए। हाँ देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में। कल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के हजार दीप है जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है खुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, तेरी पनाह में।

0: क्या खूब
1: पूरा हमारा श्रोता मित्र तो अपना वॉल्यूम को और तेज कर दिए और आपका आवाज में इतना दम है सर, इसका राज क्या है आप बताइए।
2: इसका कोई राज नहीं है
1: राजनीति भी नहीं, राज भी नहीं, नहीं। तो राज को जानेंगे वो तो राजयोगी बन जाएंगे।
2: कोई राज नहीं है, मेरे एक गुरु जी थे
1: जी,
2: उनका नाम है गमनाराम जी कोड़ी। उन्होंने बचपन से मुझे गाना सिखाने की हमेशा प्रेरणा दी है।
1: स्कूल टाइम में
2: हमेशा वो गाना सिखाते थे मेरे को।
1: विद्यालय में भी आप कार्यक्रम करते
2: हैं? विद्यालय में,
1: जैसे आज बच्चों को मिल रहा चांस रेडियो मधुबन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या कहना चाहेंगे रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम?
2: मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: अच्छा तो लगना चाहिए, आपका अच्छा गीत सुने तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारा 3 छात्रा भी उपस्थित है तो उनको भी सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: वांच मोर बोल के सभी बच्चों को चांस मिल रहे हैं। आज चांस का फायदा ले रहे हैं, सब चांसलर बन रहे, चांस मिल रहा है इसलिए चांसलर बन जाता है। आज मौका मिला तो बच्चों का साथ बच्चे बन गए, याद किए हमारा सर और सभी स्टाफ भी अपना उमंग साथ दिखाए। तो हमारा दो छात्रा है तो उनको भी लेते हैं। हेलो, नाम बताइए प्लीज।
1: मेरा नाम नर्मदा कुमारी, मैं कक्षा 10 से हूँ।
0: वाह, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, पहला बार मौका मिला फिर भी बच्चे कितने उमंग उत्साह, इसका श्रेय तो भाई ये तो मीरा जैसे और ये मिट्टी का राज है, क्योंकि राजस्थान वीरों का भूमि है। राणा प्रताप से लेकर हमारा बहन भी कम नहीं है, भाई से भी टक्कर देंगे। अच्छा, आपको इतना आवाज बुलंद में बोल, कोई डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं, क्यों?
1: बचपन से मैं बोलने में वैसी माहिर
0: हूं। माहिर हूं, वाह, इसका श्रेय तो मैम को जाता है। तो आप नाम बताइए।
2: मेरा नाम आशा कुमारी है, मैं कक्षा 10 से हूँ।
0: और आप कौन से क्लास में?
2: 10।
0: ठीक, शुरू करिए।

0: लिखोगे कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है।
1: वहाँ प्रोग्राम भी चल रहा है, वहाँ का आवाज हमारे पास आता है, हमारा प्रोग्राम भी तो वहाँ जाना चाहिए ना, क्या हो रहा है क्योंकि एक ही साथ बच्चों का एक प्रोग्राम रिकॉर्डिंग ऑडिशन हो रहा है ओपन राउंड में, और दूसरा तरफ कार्यक्रम भी चल रहा है नशा मुक्ति का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए हमारा, और एक प्रस्तुति छोटा सा गुड्डा आया, वो अपना परिचय देंगे, अपना नाम बताएंगे, रेडियो कार्यक्रम में आज सजाएंगे, एक गुलदस्ता बन रहा है सभी का, आवाज का गुलदस्ता, जैसे गुलदस्ता में वेराइटी फूल होता है, गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होता है ना, ये आवाज का गुलदस्ता। और एक आवाज, आवाज का दुनिया में हम जा रहे हैं और आवाज में ही दम है, तो एक प्रस्तुति सुनाएगा, अपना परिचय देंगे प्लीज।
2: मैं कमलेश कुमार सदस्य।
1: हाँ, क्या प्रस्तुत करेंगे, सुनाओ एक गीत।
2: मन ने थाम थाम रखे तेरे जंजे रखे जोड़े, तेरी गैल रो रुए बिछोरी बावली सी हो रे, मने आए जावे ख्याल तेरे खाए जावे ख्याल तेरे, चिणी कोणी देती हाय बेरी तन्ने आई मन्ने, गीता में गाई कदे छाती गेल गाई मन्ने, तेरी याद गणी पाई मन्ने, साम साम की गोद छाती गेल गाई मन्ने, चित भी गया रे तेरी याद गणी पाई।
1: याद याद करते हमें, जो हमें प्यारा लगते हैं, जो स्नेही है उनको कभी भूल नहीं पाते, चाहे कोई भी हो अपने जीवन में, जो एक बार ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास होता है, चाहे माँ बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे भगवान हो, जो भी है विश्वास होना चाहिए। और इस गीत में देशभक्ति का साथ साथ एक गीत सुनाए दिए, तो सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, लेकिन मीरा को कौन भूलेगा, डिमांड आया पीछे से, डिमांड हमारा बच्चे भी कम नहीं है, सर मैं नहीं पहले आप, उन्हें दूसरे को आगे देते हैं, मीरा इशारा कर रही सर मैं तो दे दिया, मेरा सर को आगे दीजिए, यही होता है विशेषता, खुद नहीं खाकर दूसरे को जो खिलाते हैं वो महान बनते हैं। आज मेरा देखा दिया भाई मैं तो क्या गाऊ, किन्तु मेरा सार को दीजिए, मेरा अपना आवाज को रोक दिया और आपको चांस दिया, सुना है सर।
3: सर मैं तो थोड़ा विशेष तो नृत्य में शौकीन हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ गाने की, क्योंकि हमारे विष्णु संप्रदाय के गुरु जम्बेश्वर भगवान के हाँ। का एक भजन में प्रस्तुत करता हूँ।
1: जी सर शुरू करिए सर।
2: गुरु जी धोरे ऊपर धोरो धोरे पे मंदिर जोर, गुरु जी धोरे ऊपर धोरो धोरे पे मंदिर जोर, गुरु जी मोर पपैया बोले जट कोयलड़ी रासोर, गुरु जी मोर पपैया बोले जट कोयलड़ी रासोर, गुरु जी पीपा सर्री नगरी जट आप अवतार, गुरु जी पीपा सर्री नगरी जट आप लियो अवतार, अरे हंसा माता को दिखलाया सकिया गाया मंगलाचार, गुरु जी धोरे ऊपर धोरो धोरे पे मंदिर जोर, गुरु जी मोर पपा बोले जट कोयलड़ी रासोर, गुरु जी समरा तलरो धोरो लागे शिव जी रो के लास, गुरु जी समरो धोरो लागे शिव जी रो के लास, तार तपरी महिमा भारी जाने सूरज रो प्रकाश, गुरु जी धोरे ऊपर धोरो धोरे पे मंदिर जोर, गुरु जी मोर पपैया बोले जट कोयलड़ी रासोर, गुरु जी थारी निज मंदिर में समाधि मुक्ति रो धाम मुकाम, मैं तो साखी गावा ताने निज निज करा प्रणाम, गुरु जी धोरे ऊपर धोरो धोरे पे मंदिर जोर, गुरु जी मोर पपैया बोले जट कोयलड़ी रासोर। थैंक्स
1: सर, इतना ताली तो हमारा बच्चे को नहीं मिला था, लेकिन आपको मिला, मीन्स इसमें दम है, और गुरु का बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए विद्यालय में गुरुकुल में जब गुरुकुल था तब भी शिष्य आते थे, अभी तो विद्यार्थी और मास्टर साहब हो जाते हैं, लेकिन गुरु का दर्जा गुरु ही होता है, और सभी गुरु का गुरु सदगुरु होता है, जितना गुरु है संसार में बहुत सारे गुरु है सर।
3: जी सर,
1: आप भी एक गुरु, मैं भी एक गुरु, सभी गुरु होते हैं, लेकिन गुरु हम सबका गुरु सदगुरु एक है,
3: सदगुरु एक है, जो हमें किसी को मोटिवेट करे, जो प्रेरणा दे, वो हम सभी
1: सीखते हैं, वो हमारा शिक्षक बन जाते हैं
3: जी,
1: चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। तो अच्छा से जो प्रस्तुति दी है, भाव का साथ, भावना का साथ, और सदगुरु को भी सलाम करते हैं। गुरु को तो है ही है, क्योंकि गुरु को बिना सदगत तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो बहुत अच्छा प्रस्तुति दिए। मीरा को भी याद करते हैं, मीरा आज आओ, मीरा इस बीच में मीरा को भी साथ रखेंगे, कहीं मीरा का बिना हमारा भक्ति अधूरा हो जाएगा। मीरा एक दो अंतरा जो आपका पसंदीदा गीत सुनाएगी।

कटकरा रहो मैं बाबा पार लगाओ ना, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, किसको रिश्ते गिनवाओ किस जात बताओ मैं, क्या क्या जग मदिए जग ने किस गात बताओ मैं, बिन कुछ पूछे शाम हमारा, बिन कुछ पूछे शाम हमारा कष्ट मिटाओ ना, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे हमने सुना।

0: मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना।
1: हमारे पास शब्द ही नहीं जैसे मीरा को, हम क्या शब्द दू मीरा। और ये प्रस्तुति आज तो मौका दिया रेडियो मधुबन वाले, और इस तरह प्रस्तुतियां कहाँ का प्रस्तुत किए बताओ, कब चांस मिलता है?
0: मैंने अभी तक कहीं पर भी प्रस्तुति नहीं की, या हमारे विद्यालय में एक बार गाया था बस केवल।
1: फिर भी इतना बुलंद और इतना कॉन्फिडेंस जो अनुभवी जैसे है ना, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, कुछ इशारा कर रहे हैं अभी हमारा इस आवाज में, और एक गुलदस्ता रुक गया तो अपना परिचय भी देंगे, सभी का तो आवाज लिया है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, अभी तो देख रहे सभी को, लेकिन आपको क्या लगा, और इस तरह प्रोग्राम होना कितना बार चाहिए, साल में एक बार ना बार बार?
2: मेरे को ये लगा मीरा, नर्मदा, निर्मा, इनका कॉन्फिडेंस बुलंद, इनको मैं मीरा को प्रथम स्थान दूंगा।
1: अरे वाह, प्रथम स्थान तो, प्रथम स्थान तो सभी था, सभी सहमत है। हमारा रेडियो कार्यक्रम में जो श्रोता सुन रहे लिस्नर, वो भी निर्मा को भी मिलेगा सेकंड प्राइज। आप क्या बोल, आपका नाम बताइए।
3: मेरा नाम पंकज शर्मा है। हाँ, मैं फिजिकल टीचर हूँ।
1: फिजिकल टीचर, इसलिए सभी बच्चों को पूरा अनुशासन में रखते, क्योंकि फिजिकल टीचर में शरीर ठीक रहेगा तो मन मस्तिष्क भी ठीक रहेगा।
3: बिल्कुल सर,
1: बिल्कुल सर। और आप कहाँ से प्रॉपर?
3: मैं श्री गंगानगर से।
1: श्री गंगानगर, और श्री तो मैंने श्रेष्ठ होते, श्री जो होते श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ जगह से आए और श्रेष्ठ काम, पुनीत काम कर रहे हैं ना, बच्चों को अनुशासन कर।
3: बिल्कुल सर,
1: सावधान बोले, सावधान बच्चों है ना, कहते ना आपका वर्ड सावधान, सब अटेंशन है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, और किस बात को लेकर खासकर हमें बहुत खुशी लगा, क्योंकि इतना दूर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंदवाड़ा और रेडियो मधुबन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का दोनों का सहयोग से बच्चों का टैलेंट हंट प्रतिभा खोज में आज ओपन राउंड में बच्चे के साथ साथ शिक्षकगण भी बच्चे बन गए है ना सर।
4: बहुत अच्छा लगा यहाँ पाए,
1: खुशी मिला।
4: हमारे साथी मनोज जी का गाना सुनने
1: सर, गाना तो सुनने सुना है, लेकिन उनका पैर रुक नहीं रहा था, वो बीच बीच में पूरा डांस में कंपटीशन में, क्योंकि हमें तो ये रेडियो कार्यक्रम है, उनको पिक्चर नहीं देखा सकते, लेकिन उनका भाव और भावना का हम सलाम करते हैं, उनका जो शरीर को भी रोक नहीं पाता है, हम तो आवाज को रोक नहीं पाए, ये तो शरीर को भी रोक नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ, आज के लिए हम आप सबसे लेते हैं इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, और किसी स्कूल के विद्यार्थियों को सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शेकटकर. मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी. मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं. माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम. एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा. और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है.

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हू वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया, तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदि देव ब्रह्मा। हिंदी में ये अवेलेबल है और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना होगी।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मामा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती व्हाट? लाइक यस। तो मामा को बिल देता है तो मामा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मामा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप 9 रुपीज बिल। मामा आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा अनदर 5 रुपीज। मामा आपने वो छोटी बहन को संभालने के लिए कहा वेरी टेरिफिक जॉब 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट 60 रुपीज बिल। तो मामा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देख कर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट भोजन डिनर बनाकर

ಇನ್ನಾಯ ಅದು

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और यह कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों को अगर हम सही समय पर समझ लें और उसके अनुसार अगर हम अपने जीवन शैली में वो परिवर्तन ले आए तो स्वस्थ रहना संभव है। कई बार हम ये समझ लेते हैं कि स्वस्थ रहना तो असंभव सी बात है, कोई ना कोई प्रकार की व्याधि या बीमारी आती ही रहेगी, ऐसा कई लोग मानते हैं। मगर कुछ चीजें जो हम खुद अपनी गलतियों की वजह से अपने स्वास्थ्य में तब्दीलियां ले आते हैं या अस्वस्थता या रोग को निमंत्रण दे देते हैं, उससे तो कम से कम हम अपने प्रयासों से बच ही सकते हैं। सहज स्वास्थ्य के हर एक कड़ी में हमारा प्रयास यही होता है कि हम स्वास्थ्य को अपने करीब बनाए रखें और रोगों को दूर रखने के लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं वो प्रयास हर कोई करने में सक्षम हो, और सही जानकारी से यह संभव भी है। आज इन्हीं विषयों पर हमें सही जानकारियां देने के लिए स्वास्थ्य जगत के ही विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के जाने माने एक्सपर्ट हैं और भारत के सुप्रसिद्ध ऑस्टियोपैथ्स में से एक हैं। भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पे उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और अभी भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात समझने वाली है कि अगर हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सही जानकारियां हमारे पास रखते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र का काम करते हैं रोगों से लड़ने के लिए और रोगों को दूर रखने के लिए। सही जानकारी के अभाव में लोग गलत चीजें कर लेते हैं और फिर उसके खामियाजा रोग के रूप में या व्याधि के रूप में भुगतना पड़ता है। आज एक ऐसा ही बड़ा रोग या ये कहें एक ऐसी बीमारी जिससे लोग ग्रस्त हैं वो है डायबिटीज। डायबिटीज को जब हम नाम सुनते ही हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो ऐसी बीमारी है, इसके साथ जीवन भर रहना है। अब जीवन भर रहने के बारे में सोचें न सोचें तो भी कम से कम डायबिटीज के मरीजों को क्या करना चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये चीज समझने वाली बात है। प्रायः ये चीज सुनाया जाता है कि भाई अभी आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत होगी, आपका जो फूड सिस्टम है उसे चेंज करना है, ये चीज बताया जाता है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जब डायबिटीज के मरीजों को अपने आहार पद्धति में बदलाव लाने की बात कही जाती है तो क्या बदलाव है, किस चीज को बदलने की जरूरत?
1: डायबिटीज का मरीज जब पहली बार उस बीमारी से ग्रसित होता है या उसे मालूम चलता है कि वो ग्रसित है और उसके परिवार में किसी को भी ये समस्या नहीं है या उसकी हम उम्र जो मित्र हैं उनमें से किसी को ये समस्या नहीं है, तो उसको एक बहुत बुरा झटका लगता है। उसको ऐसा लगता है कि वाय मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और वो अपने आप को कोसता है और तुरंत एक प्रण करता है कि मैं अपने आप को अब सुधार के रखूंगा, मैं अपने आप को ठीक से रखूंगा। और अमूमन लोगों में, भैया मुझे कहना नहीं चाहिए, वो इस मोटिवेशन को हार्डली 15 दिन 20 दिन एक महीना रख पाते हैं। और वो जैसे ही उनको डायबिटीज होती वो तुरंत भोजन पे कंट्रोल करना शुरू करते हैं और उनको उससे अच्छा लगने लगता है। फिर वो जब बाहर समाज में निकलते हैं या वो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं या घर पे भी देखते हैं कि सब लोग तो खा रहे हैं यार, मैं क्यों नहीं खा पा रहा, तो वो अपना संयम जो है उसको छोड़ देते हैं और फिर से खाने लगते हैं। और एक बहुत गलत सोच वो अपने दिमाग में विकसित करते हैं कि अरे मैं दवा तो खा रहा हूं, भोजन को कंट्रोल क्यों करूं। एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, मेरे एक बहुत अच्छे पेशेंट हैं, उनको मैं बहुत रेगुलरली देखता हूं। वो डायबिटीज से ग्रसित हैं, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, वो इंजेक्शन लगाने के बाद चॉकलेट खाते हैं कि मेरी इंसुलिन गिर रही है। मैंने एक दो बार उनको धीरे से समझाने की कोशिश करी कि आप इंसुलिन की यूनिट कम कर दीजिए, आपको चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर वो कहते नहीं नहीं मेरी शुगर गिर रही है। उनका मन जो है वो कंट्रोल में ही नहीं है, वो बिना चॉकलेट खाए रह नहीं पा रहे हैं और उस स्वाद के लिए वो अपने शरीर को नुकसान दिए चले जा रहे हैं। सो सबसे पहली बात, अगर आपको ये बीमारी हुई है तो ये आपको संयम से इसका जो अपना भोजन है, आपका दिनचर्या है, आपके रहन सहन को संयम से रखना पड़ेगा। कल मैंने अपने लेक्चर के दौरान, बातचीत के दौरान आपसे बोला था कि डायबिटीज एक अपॉर्चुनिटी की तरह है अपने आप को फिट रखने के लिए। आपने जो भी गलत करना था कर लिया, जिस उम्र तक आप बेछूट खा रहे थे, बिना एक्सरसाइज के रह रहे थे, जब मन चाह रहा था तब खा रहे थे, जितनी बार मन कर रहा था खा रहे थे, जो आपको अच्छा लग रहा था वो खा रहे थे, जो आपको दिख रहा था वो खा रहे। डायबिटीज एक अपॉर्चुनिटी है आपको फिट रखने के लिए। आप पहले जो भी खा रहे थे, जितना भी खा रहे थे, जैसे भी खा रहे थे, उसको अब छोड़ दीजिए, संयम से खाना शुरू करिए। आप अच्छा खा, कभी कभार मन कुछ, हमको अब ये ध्यान देना है कि पहले हम जो खाते थे, जितना खाते थे, जितनी बार खाते थे, जो हमारा मन करता था वो हम खाते थे, उस पे अब हमको संयम रखना है। हमको बहुत कुछ अपने शरीर के लिए अब खाना है, न कि मन के लिए। कभी कभार महीने दो महीने में एक बार थोड़ा बहुत मन का जरूर खा लीजिए, मगर प्लीज अपने शरीर की अब सुनना शुरू करिए। आपके शरीर ने आपको बताया है कि उसको एक समस्या हो रही है, और उस समस्या का निवारण सिर्फ अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करना है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि वाणी से व्यवहार, वाणी से व्यापार। मतलब अगर आपकी जिह्वा ठीक है तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा और आपका व्यवहार भी बढ़ेगा। और मैं एक डॉक्टर होकर उसमें सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आपकी जिह्वा से अब स्वास्थ्य भी है। अगर आप अपनी जिह्वा पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आप डायबिटीज रिवर्सल भी अपने साथ कर सकते हैं।
0: ये बात प्रायः पूछी जाती है कि भाई ठीक है, हम पहले जैसे तो चीजें नहीं खाएंगे, या हम पहले जितनी मात्रा में खा रहे थे या जितने बार खा रहे थे उन चीजों को बदलने पर तो लोग प्रयासरत होते हैं। अक्सर लोग फ्रूट्स के बारे में ये बात करते हैं कि भाई पहले बड़े चाव से हम फ्रूट खाते थे। अब प्रश्न उठता है कि भाई अब क्या मेरे को फ्रूट्स खाना छोड़ देना पड़ेगा? चीनी तो लोग समझ लेते हैं कि चलिए चीनी के बिना चाय पीना शुरू करते हैं, या मीठे चीजों से परहेज करना शुरू करते हैं। फ्रूट्स के बारे में क्या ख्याल है? फ्रूट्स को तो हम बहुत ही हेल्दी चीजें समझते हैं।
1: सबसे पहली बात पे कहना चाहूंगा कि आपको जो चीज हमेशा के लिए छोड़नी चाहिए वो है चीनी। आपने खुद ही बोला भैया, चीनी के साथ साथ कॉर्न, शुगर सिरप और चीनी के जो भी डेरिवेटिव्स हैं, जैसे शहद या हनी हुआ, गुड़ हुआ, इन सब चीजों को आपको छोड़ देना चाहिए। आप फल जो हैं, वो कोई भी फल जो आप खा रहे थे, उसमें भी आपको कुछ फलों के लिए थोड़ा सा संयम करना पड़ेगा। और इसमें भी जो दो सबसे जरूरी फल हैं, जिसको हम रोकने को कहते हैं, वो है केला और आम। ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कभी केला मत खाइए या कभी आम मत खाइए, मगर एक भाग आम और आधा केला आप खा सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छी बात ये हुई कि आप सेब हुआ, नाशपाती हुआ, वाटरमेलन हुआ, खरबूजा हुआ, पपीता हुआ और जामुन हुआ, ये सारी चीजें आप बहुत आराम से खा सकते हैं। सुबेरे आप सेब खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, आप चेरीज खा सकते हैं, ब्लूबेरीज खा सकते हैं। आपके एरिया में जो आपको फल मिलता है वो आप जरूर खा सकते हैं। ये चीज का ध्यान बस देने लायक है कि हमें फल खाना है, हमें फल का रस जो है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा चीनी होती है और उसमें फाइबर जो है वो जीरो होता है। इसीलिए जब हम फ्रूट खाते हैं तो हमें फ्रूट के साथ फ्रूट शुगर, उसके न्यूट्रिएंट और उसके सारे के सारे जो खुज्जा या फाइबर है वो भी हमें मिलता है, और ये हमको बहुत आराम देता है। एक चीज का हमको पहले फल खाने से भी या भोजन करने से भी पहले हमको सबसे जो चीज ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि हम रिफाइंड ग्रेन्स जो है, जो ज्यादा पिसे हुए अनाज हैं, खासकर मैदा, उससे बनी हुई चीजें उसको अवॉइड करें। हम जितनी भी उससे बनी हुई चीजें, जैसे क्या, केक, पेस्ट्री, डोनट, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें जो प्रोसेस्ड फूड है उसको छोड़ें। जितने भी फ्राइड फूड्स हैं, मतलब जो तल के ही बन रहे, जैसे बर्गर हुआ, फ्रेंच फ्राई हुआ, उसको बंद करें। जो बहुत ज्यादा हाई फैट कंटेंट है जिनमें, या हाई शुगर कंटेंट है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इसको हम प्लीज बंद करें। और इसको हम रिप्लेस किस चीज से करें, चेंज किस से करें, होल ग्रेन से, मतलब जो भी मोटे अनाज है और जो पूरे अनाज है उससे इसको रिप्लेस करें। सिंगल ग्रेन, एक बार में एक ही अनाज का हम सेवन करें। जो सब्जी हमें पसंद है हम हर सब्जी खा सकते हैं, हम जो फल हमें पसंद है संयम में हम सारे फल खा सकते हैं। और हमको कोशिश करना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा ऑयल, बहुत ज्यादा सॉल्ट, बहुत ज्यादा फ्राइड, ये सारी चीजें छोड़। और आप अगर इसे छोड़ देंगे तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। डायबिटीज की जो सबसे खराब बात ये है कि वो मालूम चलने के बाद भी शरीर में कुछ बहुत परिवर्तन या चेंजेस नहीं आते हैं, तो आदमी ये मानने को तैयार नहीं रहता कि उसके साथ कुछ हो गया है। वो थोड़ा सा थक रहा है तो वो कहता, अरे ज्यादा काम कर लिए थक गए हैं। आपको थकान लग रही है, आप उसका बहाना बनाने लगते हैं। आपके शरीर में स्फूर्ति नहीं है, आप बोलते हैं हमने आज ज्यादा काम कर लिया, या आज मैं ज्यादा चल दिया हूं। आपको झटका कब लगता है, या तो उसकी वजह से आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, या आपकी कोई फोड़ा या फुंसी आपके शरीर में, या कोई कट लगा है या चोट लगी है वो ठीक नहीं हो रही हो, हील नहीं हो रही हो, या आपकी आंख पे चश्मा का नंबर बार बार बदल रहा हो, आपको पेशाब पे कंट्रोल छूट गया हो, आपको बाथरूम पे कंट्रोल छूट गया हो, आप एकदम परेशान होने लगे, तब आप फ्रोजन शोल्डर हो जाए, आपको पता चला अपना दांत निकलवाने गए, वहां डॉक्टर ने टेस्ट किया और मालूम चला अरे आपको तो डायबिटीज है, तब आपको झटका लगा कि अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो जो आपके शरीर में कोई जब बदलाव नहीं आ रहा होता है तो आप फिर से बेछूट खाने लगते हैं। तो प्लीज, ये एक शांति से अंदर चल रहा हुआ एक बीमारी है, इसको शांत ही रहने दें, अपने भोजन को कंट्रोल करके रखें। इवन भैया ये तक कहा जाता है अगर आप बीमार होंगे, वायरल इन्फेक्शन होगा, आप बहुत स्ट्रेस में होंगे, तब भी आपका शुगर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज करिए, संयम से भोजन करिए और आप एकदम ठीक रहेंगे।
0: एक अवधारणा जो डायबिटीज के बारे में अक्सर पूछी जाती है या कई लोग अपने मन में पाल के रखते हैं, डॉक्टर साहब जैसे आप ये कह रहे हैं कि एक साइलेंट बीमारी है, ये एक पता नहीं चलता, यकायक पता चल गया कि कोई दांत के दर्द के लिए गया, वहां दांत निकालवाना था तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करने को बोला तो शुगर निकल आया, और इत्यादि अनेक चीजों में लोगों को ये चीजें पता चलती है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हमारे परिवार में तो किसी को डायबिटीज है नहीं, तो हमें भी आएगा नहीं, हमें होगा नहीं, वैसे भी हमारी उम्र तो अभी है, हम अभी जवान है, हम 30-40 साल के हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा, हमारे घर में भी किसी को डायबिटीज नहीं है और ना मुझे हो सकता है क्योंकि मैं जवान हूं, ये भी लोग कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए कि हमें क्या इन चीजों के बारे में सजग होने की जरूरत है।
1: ये एक ऐसी बीमारी है जो माँ के पेट में भी आपको मिल सकती है, जेस्ट्रेशनल डायबिटीज उसे कहते हैं, और ये आपके जीवन के अंतिम पड़ाव में भी आपको मिल सकती है। और मैं सबसे कहता हूं इससे मिलना भी नहीं है, और अगर बाई चांस ये आपको मिल गई है तो भोजन में संयम करके इसको अपने एकदम कंट्रोल में रखना है। आपको इसको अपने कंट्रोल में रखना है, न कि इसके कंट्रोल में आप चले जाइए। और ये जो बीमारी है वो आपकी जिह्वा से ही आपको परेशान करती है, जितना आप उसको संभाल लेंगे उतना आप इससे बचे रहेंगे। एक एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहूंगा। मेरे चिकित्सालय में आज ही एक डॉक्टर आए हैं, उनको डायबिटीज हो गया है, ही इज ओनली 32, 32 साल के हैं मात्र, और ये मालूम चला कि वो अल्कोहल के सेवन की वजह से उनको डायबिटीज है, और उनके घर वाले बहुत परेशान है। वो एक मतलब 32 साल के यंग डायनेमिक और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, और घर वाले तो ये बोल रहे हैं कि इनको 6 महीने से ये आदत पड़ी और जिसकी वजह से वो डाउनहिल चले गए, उनको डायबिटीज हो गया। ये किसी को भी हो सकती है, और आपको अपने पैंक्रियास को बचा के रखना है। मैंने बोला वायर, आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से आपका पैंक्रियास गड़बड़ हो सकता है, आपको हो सकती है, आप बेछूट खाए चले जा रहे हैं। आप देखिए ना, आप एक बड़ी सीधी बात समझिए कि आप सोचिए, चौकीदार है आपके पास कोई, आप उसको रात में ड्यूटी करने के लिए उठा के रखे हैं, वो रात में ड्यूटी कर रहा है, पर जब उसके सोने का समय आ गया तब भी आप उसको हर 15 मिनट पे उठा दे रहे हैं, वो कैसे काम करेगा? हम और आप ही हैं, हम लोग अगर 4 घंटा या 6 घंटा सोते हैं और हर 15 मिनट में कोई उठा रहा है हमको या 20 मिनट पे हिला रहा है, तो हम कैसे सो पाएंगे? ये और आप ये समझिए, हिलाना या उठाने का मतलब है हम कुछ भी मुंह में भोजन डालते हैं, पैंक्रियास को उठ उसके लिए काम करना पड़ता है। और आप जितना ज्यादा मीठा, जितना ज्यादा रिफाइंड, जितना ज्यादा प्रोसेस खाएंगे उतना ज्यादा उसको इंसुलिन निकालना पड़ेगा। तो आपको ये कभी भी मिल सकती है, ये एकदम भेदभाव नहीं करती है, न पुरुष में, न महिला में, न अमीर में, न गरीब में, न उम्र में, न लिंग में, ये किसी चीज में कोई भेदभाव नहीं करती है, किसी को भी मिल सकता है। आपके माता पिता को नहीं है तो आपको इसके मिलने के चांसेस बहुत बहुत कम है। मैंने अपने अपने ही एक क्लिनिक में ही देखा कि माता पिता को नहीं है, बच्चे को हो गया, वो बड़े परेशान है क्यों हो गया, पर वो उनके खान पान, उनकी बहुत सारे अननोन कॉजेस भी हैं। तो अगर हम अपने भोजन को कंट्रोल कर लें तो हम इससे बच सकते हैं, और अगर हमें हो भी गई है डायबिटीज तब भी हम अपने भोजन को कंट्रोल कर लें तो हम इससे बचे रह सकते हैं। आप मेरी बात मान लीजिए, अगर आप 80-85 किलो के हैं और आपको डायबिटीज हो गई है, आप अपना 7 से 8 किलो वजन कम कर लेंगे, आप नॉर्मल हो जाएंगे, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा, आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: यानी ये बात स्पष्ट होती है कि अगर मैं बार बार खा रहा, बीच बीच में खा रहा हूँ, भले मैं छोटी मात्रा में खाऊं, अगर मैं सतत ये कार्य कर रहा हूँ तो मैं अपने पैनक्रियास को आराम करने का मौका ही नहीं दे रहा, और उसकी वजह से ये मुझे हाई रिस्क पर डालती है, डायबिटीज के मार्ग पर मुझे अग्रसर करती है। साथ ही साथ अगर मैं अपने जीवन शैली के बारे में जागरूक नहीं हूँ, अपने वजन के बारे में जागरूक नहीं हूँ, अगर हमारे घर में डायबिटीज की हिस्ट्री हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को ये चीज हो सकता है, ये बात समझ में आ रहा है, और इससे ये पता चलता है कि हम सबको जागरूक रहने की जरूरत है। एक और चीज मैं आखिर में पूछना चाहूंगा, वो ये है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो डायबिटीज के मरीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या उसे बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं होनी चाहिए?
1: नंबर वन, जो सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं वो है कोल्ड ड्रिंक। नंबर दो, मिठाई और आइसक्रीम। नंबर तीन, मैदे से बनी हुई सारी प्रोसेस चीजें। और इन सब जो भी चीज आप देख रहे हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट कॉमन है, वो है केन शुगर। केन शुगर, कॉर्न सिरप शुगर और किसी भी तरह का स्वीटनर जो आप जो नेचुरल है वो आपके लिए जहर है, इसको छोड़ देना चाहिए। और ये सब छोड़ने के साथ साथ भोजन की क्वांटिटी भी कंट्रोल में खानी चाहिए। इतना आप कर लीजिए, आप इस समस्या से पूरा बाहर निकल आएंगे।
0: बहुत ही ज्ञानवर्धक और फायदेमंद बातचीत आज हमारी हुई है दोस्तों। डॉक्टर राहुल मोदी जी ने बड़ी स्पष्टता से हमें डायबिटीज से बचाव के लिए, अगर आप डायबिटीज के शिकार नहीं है तो कैसे उसके रास्ते पे शिकार बनना नहीं है, उसके लिए कौन सा मार्ग चुनना है ये भी बताया। साथ ही साथ अगर आप डायबिटीज के मरीज हो चुके हैं तो भी आप इससे बचकर बाहर कैसे निकल सकते हैं और क्या हमें करने की जरूरत है, ये चीज हमें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आज की बातचीत से हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, अपने परिवार में स्वजनों का, मित्रों का, संबंधियों का, साथ में काम करने वाले सहकर्मियों का, सभी का ख्याल रख सकते हैं। सिर्फ भोजन पर ध्यान देना है, हम चीनी को, मैदा को, प्रोसेस्ड फूड को, अगर इन चीजों को रोक लें तो फिर हम अपने स्वास्थ्य की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आज जो चर्चा हुई है वो मेरे लिए तो फायदेमंद रही ही है, मगर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी श्रोता मित्रों के लिए ये जानकारी लाभप्रद होगी और आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगी। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हम सबके मन के अंदर जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर दिया, और हमें सहज स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करने के लिए, डायबिटीज से बचने के लिए मार्गदर्शन दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज हमने डायबिटीज और उससे संबंधित विषयों पर जानकारी हासिल की है। ये सिर्फ जानकारी जानकारी ना होकर हमारे जीवन की धारणा बने, हम एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ विश्व, एक स्वस्थ राष्ट्र को बना सकें, इसकी ओर हम सभी अग्रसर हों। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हेलो बच्चों, आ जाओ बैठो रेडियो के पास जल्दी जल्दी, क्योंकि परी और मनी दीदी आ गए आपका फेवरेट शो लेकर के।
2: हाँ, और आपके फेवरेट शो का नाम है सपनों की सैर, जिसमें हम बच्चों को सपनों की उड़ान भरना सिखाते हैं। और अभी हम सपनों की सैर कार्यक्रम में बातें कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में।
1: हाँ बच्चों, जो कल मनाई जाएगी सारे भारतवर्ष में।
2: हाँ, तो वैसे बच्चों, क्या आप जानते हैं जन्माष्टमी मनाई कैसे जाती है?
1: बच्चों पता है, मंदिरों को घरों को सजाया जाता है, श्री कृष्ण की बाल रूप की झांकियां सजाई जाती है।
2: हाँ, भजन और कीर्तन किए जाते हैं, कृष्ण की लीलाओं पर नाटक और नृत्य होते हैं।
1: और बच्चों कई स्थानों पर तो दही हंडी का आयोजन भी किया जाता है।
2: हाँ, और आधी रात को श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है, तो रात भर भजन भी चलते रहते हैं।
1: तो बच्चों, श्री कृष्ण की कहानियाँ तो हमें सिखाती है कि हमें सच्चाई, प्रेम, मित्रता, साहस और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
2: सही कहा परी, उनका जीवन बहुत प्रेरणादायक है। तो बच्चों, मुस्कान हो कृष्ण जैसी, मन में हो सच्चा प्यार,
1: सच्चाई की राह पर चले, यही है कृष्ण का उपहार।
2: हाँ बच्चों, तो ऐसे ही हमें भी सच्चाई प्रेम के मार्ग पर चलना है। और अभी तो हमें लेना है छोटा सा ब्रेक, क्योंकि उसके आगे परी से कहानी भी तो सुननी है ना। तो चलो फिर मिलते हैं प्यारे से गाने के बाद।
1: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
1: सब

बच्चों चलो बैठो रेडियो के पास, कहानी शुरू होने वाली है। आज भी हम श्री कृष्ण की कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, गोकुल के पास यमुना नदी बहती थी। नदी का पानी बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें कालिया नाम का एक जहरीला नाग रहता था। उसके विष के कारण यमुना का पानी दूषित हो गया था। पशु पक्षी उसको पीने से बीमार पड़ जाते थे। गोकुल के सभी लोग चिंतित थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने देखा सब लोग यमुना से डरते हैं। कृष्ण ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं यमुना को फिर से स्वच्छ बनाऊंगा।

जी, मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, अब तुम यमुना को छोड़कर दूर कहीं चले जाओ और किसी को कष्ट मत देना। कालिया ने कृष्ण की बात मान ली और वो वहां से चला गया। यमुना का पानी फिर से स्वच्छ हो गया और गोकुल के लोग भी बहुत खुश हुए। कृष्ण की तो जय जयकार करने लगे। तो देखा बच्चों, ये कहानी कितनी मजेदार थी। हमें सीख देती है कि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और प्रेम से कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सच्ची शक्ति तो वही है जो दूसरों की रक्षा करे और क्षमा करना जाने, है ना बच्चों? तो इसीलिए सबको माफ कर देना चाहिए, तो हमें भी कोई माफ कर देगा। चलो तो सुनते हैं प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। तेनाली राम की किताब लेकर आ गई है मनी दीदी, और इसमें हम पढ़ रहे हैं मृदुभाषिता के शीर्षक वाली कहानी, जिसमें महाराज कृष्णदेव राय अपने दामाद के तीखे वचनों की वजह से परेशान है और तेनाली राम से उन्होंने युक्ति रचने को कही है। फिर आगे क्या हुआ ये मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। महाराज ने देखा उनकी पुत्री सिसकते हुए अपनी हथेली से कांटा निकालने का प्रयास कर रही है और उनका दामाद अपने स्थान पर बैठा एक पुस्तक पढ़ रहा है। उन्होंने उन दोनों के बीच हुए संवादों को भी सुना था। उनकी चिंता का कारण भी यही था। महाराज को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने दामाद को लोक व्यवहार का ज्ञान कैसे दे। बातें उसने ठीक कही थी, उसकी नसीहत भी समयानुकूल थी, मगर उसका व्यवहार स्थिति के अनुरूप नहीं था। अपने सिंहासन पर बैठे महाराज के मन में ऐसे ही बादल मंडरा रहे थे। महाराज अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उसके पति को सीधे कुछ कहे बिना ही लोक व्यवहार की शिक्षा दी जाए, मगर कैसे, यही बात महाराज की समझ में नहीं आ रही थी। महाराज को बार बार तेनाली राम का स्मरण हो रहा था। मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थी। एक शंका यह भी थी कि कहीं तेनाली राम उनकी समस्या ही ना विस्मृत कर बैठा हो। जब मन में शंका उठती है तो श्रद्धा के पात्र भी अश्रद्धा का भाव उत्पन्न कर देते हैं, तो महाराज के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने तत्काल प्रहरियों को निर्देश दिया कि तेनाली राम जहाँ कहीं भी हो उन्हें अविलंब महल में मेरे समक्ष उपस्थित होने की सूचना दो। तो अब महाराज को भी संदेह हो गया तेनाली राम पर कि आखिर तेनाली राम कर क्या रहा है, उसने समस्या का समाधान ही नहीं किया है। और अब आगे क्या होगा बच्चों वो तो हम जानेंगे अगली कड़ी में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बच्चों चलो फिर से बैठो रेडियो के पास। अब परी और मनी दीदी विदाई लेने आई है, लेकिन पहले आपको हम पिछली कड़ी में जो टंग ट्विस्टर पूछा था उसका रिकॉर्डिंग सुनाते हैं।
3: हाँ परी, ये आवाज है हमारी शिल्पा की।
4: राम ने रानी को रोज रसगुल्ला खिलाया, रसगुल्ला खिलाया रोज राम ने रानी।
3: बहुत बढ़िया शिल्पा, और ये आवाज है किशन की। तो चलो भाई किशन की आवाज में भी सुन लेते हैं ये टंग ट्विस्टर।
5: राम ने रानी को रोज रसगुल्ला खिलाया, रसगुल्ला खिलाया रोज राम ने रानी।
2: वाह शिल्पा और किशन, बहुत सुंदर टंग ट्विस्टर रिकॉर्ड करके भेजा है, बधाई हो और तालियां। तो बच्चों कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, तो जल्दी जल्दी कोई अच्छे मैसेजेस आप किसी को भेजना चाहते हैं तो हमें जल्दी से वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दीजिए।
3: हाँ हमें आपके मैसेज का इंतजार रहेगा, और नंबर तो आपको याद ही है 94 14 15 और 14 15। तो जरूर से बहुत ही अच्छी अच्छी शुभकामनाओं भरे मैसेज जो आप अपने परिवार को मित्र संबंधियों को भेजना चाहते हैं तो वो जरूर भेजिएगा।
2: हाँ बच्चों, तो चलो अब हम करते हैं गुड नाइट,
3: स्लीप टाइट,
2: गुड बाय। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों की सैर।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। जैसे चांद के निकलने में देरी हो सकती है, वैसे ही जीवन में हमारी इच्छाओं के पूरे होने में भी समय लग सकता है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अलसी हमारी हेल्थ के लिए किस तरह फायदा करती है, कौन सी बीमारी ठीक करती है, जरूर आप जानेंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। आज हम हर छठ भी मनाएंगे तो उप छठ भी मनाएंगे। और आज की रेसिपी भी बहुत ही स्वादिष्ट सिखाने वाली हूँ। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, जैसे चांद के निकलने में देर हो सकती है, वैसे ही जीवन में हमारी इच्छाओं के पूरा होने में भी समय लग सकता है। जैसे चांद के निकलने में देर हो सकती है, वैसे ही जीवन में हमारी इच्छाओं के पूरा होने में भी समय लग सकता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार बहुत ही सुंदर दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। पहले तो ये बताना चाहूँगी कि राजस्थान की धरती अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जानी जाती है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, यहाँ हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई सुंदर भावना और जीवन संदेश छुपा होता है। ऐसा ही एक पर्व है जिसको कहते ऊब छठ, जो आज के दिन है। नाम से ही पता चलता है, ऊब यानी खड़े रहना। इस दिन महिलाएं श्रद्धा और संकल्प के साथ व्रत रखती है और चांद के दर्शन होने तक खड़े रहकर उसकी प्रतीक्षा करती है। चंद्रमा के दर्शन के बाद पूजा अर्चना करके व्रत पूरा किया जाता है। तो बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहता था। उसकी कई बहुएं थी। परिवार में सभी बहुएं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत पूजा करती थी। एक बार ऊबछठ का दिन आया, सभी बहुओं ने व्रत रखा और चंद्रमा के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगी। उनमें से एक बहू बहुत ही श्रद्धालु थी। उसने पूरे दिन निर्जल रह करके भगवान और चंद्रमा का स्मरण किया। शाम हुई, आसमान में चांद निकलने का इंतजार होने लगा। समय बीतता गया लेकिन चंद्रमा दिखाई नहीं दिया। वह बहू अपने संकल्प पर अड़िग रही। उसने मन में कहा, मेरी श्रद्धा सच्ची है तो प्रभु मुझे धैर्य और शक्ति प्रदान करे। आखिरकार चंद्रमा के दर्शन हुए। उसने विधि पूर्वक पूजा की और अपना व्रत पूरा किया। लोक मान्यता है कि उसकी सच्ची श्रद्धा, धैर्य और संकल्प से परिवार में सुख शांति बनी रही। तो इस कथा का संदेश यही है, ऊबछठ हमें केवल व्रत की परंपरा नहीं बताती बल्कि धैर्य और संकल्प का पाठ भी पढ़ाती है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे चांद के निकलने में देर हो सकती है, वैसे ही जीवन में हमारी इच्छाओं के पूरा होने में भी समय लग सकता है। लेकिन अगर हमारी भावना पवित्र हो और संकल्प मजबूत हो तो हमें परिस्थितियों के सामने हार नहीं माननी पड़ेगी। रात कितनी भी लंबी हो, चांद जरूर निकलता है। धैर्य कितना भी कठिन हो, सुख का सवेरा जरूर आता है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। और आइए फिर से सुन लेते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। अलसी कैसे फायदा करती है हमारे स्वास्थ्य में के लिए और कौन सी बीमारियां ठीक करती है अलसी, जिसको हम तीसी भी कहते हैं। तो देखिए, श्वास की तकलीफ है तो अलसी के दाने कूट छान कर जल में उबाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद पीसी हुई मिश्री 20 ग्राम। झाड़े की ऋतु में सर्दी का मौसम आता है ना, उस समय आप शहद मिला सकते हैं मिश्री की जगह, और इस तरह आप सेवन करिएगा तो श्वास कास में लाभ होगा। अगर श्वास कास की तकलीफ है तो अलसी के दाने कूट कर छान कर जल में उबाल लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अभी देखिए अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो आप मिश्री डाल सकते हैं। सर्दी के ऋतु में अगर ये तकलीफ है तो शहद मिला लीजिए और सेवन करिए, इससे श्वास कास में राहत मिलेगी। फिर अगला उपाय भी बहुत ही सुंदर है। अगर हैजा की तकलीफ है तो अलसी के दानों का चूर्ण 5-6 ग्राम लेकर के उसमें 50 ग्राम गर्म पानी ठंडा करके 3 बार पिलाइए। इस प्रकार बार बार पिलाने से हैजे में राहत मिलेगी। हैजा की शिकायत है तो अलसी के दानों का चूर्ण 5-6 ग्राम लीजिए, उसमें 50 ग्राम गर्म पानी ठंडा करके 3 बार पिलाइएगा। इस प्रकार बार बार पिलाने से हैजे में राहत मिलती है। अलसी के साबुत दाने 5 ग्राम, चांदी न होने पर कासा की कटोरी में 40 ग्राम जल में भिगोकर ढक करके 12 घंटे के लिए रख दीजिए। यह जल छान कर पीजिए। यह जल सुबह का शाम को और शाम का सुबह 12 घंटे के अंतर से लेने से श्वास ग्रस्त रोगी की पीड़ा शांत हो जाती है। हाँ, किंतु खान पान संबंधी परहेज आपको रखना पड़ेगा। तो जिनके भी श्वास ग्रस्त तकलीफ है, श्वास से ग्रस्त है जो भी, जिनके भी श्वास की तकलीफ है, अलसी के साबुत दाने 5 ग्राम आप क्या करेंगे, या तो चांदी या फिर कासा की कटोरी में, ठीक है, 40 ग्राम जल में भिगो करके रखिए, ढक करके 12 घंटे के लिए रख दीजिए। ये जल छान करके पीजिए। ये जल सुबह का शाम को छान सकते हैं, फिर शाम का भिगो कर सुबह पी सकते हैं। 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह लेने से श्वास ग्रस्त रोगी की पीड़ा शांत हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना है कि खाने पीने का परहेज जरूरी है। और जल के साथ अलसी पीसकर और जीरा गरम करके पुल्टिस बांधने से जो कच्चा घाव होता है ना, वो पक जाता है। जब तक पुल्टिस में घिलापन रहे तभी उसे आप बदल कर दूसरी बांध दीजिए। तो अगर कच्चा घाव है तो आप इस तरह अलसी की पुल्टिस बांध सकते हैं, इससे घाव पक जाएगा और फिर ठीक हो जाएगा। कफ और खांसी की तकलीफ है तो अलसी के दानों को धीमी धीमी आग के ऊपर तब तक आप सेके जब तक उसकी गंध नहीं आ जाए भुनने की। जब हम कोई भी चीज़ सेकते हैं भुनते हैं तो उसकी खुशबू आने लगती है, तब तक आपको सेकना है। फिर उतार लीजिए, फिर इसमें मिश्री मिला करके पीस दीजिए ठंडा होने पर, ठीक है। 10 से 20 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी में ये चूर्ण कुछ दिनों तक दोनों समय लीजिए। इससे कप परिपक्व होकर के सरलता से निकल जाएगा और जुकाम में भी आराम हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, अलसी के दानों को धीमी धीमी आंच पर आपको सेकना है, सेकने के बाद इसको पीसना है। मिश्री भी पीस लीजिए और दोनों को मिला करके 10 से 20 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ ये चूर्ण दोनों टाइम लेना है। इससे कप परिपक्व होकर के सरलता से बाहर निकल जाएगा और कफ और कासी में राहत मिल जाएगी। लास्ट उपाय भी बहुत ही सुंदर है। कफ वात है जन्म विकारों में, क्योंकि कितनी बार जन्म से ही कफ वात शुरू हो जाते हैं, तो काली मिर्च पीसी हुई और शहद आवश्यकता के अनुसार आप मिला दीजिए स्वाद के अनुसार, ठीक है। फिर इसकी गोली बना दीजिए। इन गोलियों को सुबह और शाम लीजिएगा। इसके सेवन से वायु का कफज समस्त विकारों में लाभ होता है। गोली खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है, 1 घंटे के बाद पानी पीना है, ठीक है। ये तो काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए और शहद दोनों मिला करके गोली बना दीजिए और चूसते रहिए। इससे जो कफ होगा वो ठीक हो जाएगा। 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। तो ये हुए घरेलू उपाय। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। देखिए, आज उपछठ का त्योहार है, तो महिलाएं आज के दिन किसके दर्शन का इंतजार करती है, यह आज का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: दासी पुत्र बनवीर, विक्रमादित्य रे खून सुरंगी जोड़ी, रंग लोही नागी तलवार ले, सिसोदिया वंश रा आखरी अंश, उदय सिंह ने मारण सारू दौड़ियो। उदय सिंह मेवाड़ी राजवंश रो एकमात्र कुल दीपक, पण पन्ना धायरे जीवता थका, किणरी मा इजमो खायो जको उदय सिंह ताई पूग सके। पन्ना धाय सिसोदिया राजवंश री धाय, महाराणा सांगा रे विश्वास और हाडी राणी रे आस ने पालन वाली एक नारी, मेवाड़ रा सूरज ने प्रकाशमान करण वाली एक शक्ति, एक समान दो टावरा ने एक ही आंचल सु दूध पावन वाली ममता मई मां, मां सु मोटो कोण।

जटे ताई पन्ना जीवती है किणरी माँ अजमो खायो जो उदय सिंह ताई पूग सके बेटा चंदन तू कैव तो होगी मने भी उदय जड़ा कपड़ा क्यों नहीं पहरावे ले बेटा आज तारी आ इच्छा भी पूरी कर दू।

बेटा वो वक्त आ गयो है जो थारा पिताजी राजवंश री रक्षा री खातिर खुद रो बलिदान दियो बियाही आज थने भी उस सौभाग्य मिलियो है

0: इन गौ समान बालक ने मत मारो, मत मारो।
1: थारे गया इन नागले जीव तो छोड़ दो, हट जा ढेर सू।

मेवाड़ महाराणा, आज तू मैं बनूंगा मेवाड़ महाराणा।

0: बन्ना धायरी आंखा रे सामी उनरे लाडे सरी लाश बिछोड़ी ही वा मन ही मन आपरे बलिदानी बेटे चंदन सु केवण दाकी हे लाडे सर थारो बलिदान एड़ो नी जावेला देख तू कितो सौभाग्यशाली है कि मेवाड़ री रक्षा खातर आज थारे जीवन रो सदुपयोग।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आइए सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
4: जय माता जी, जय श्री हरि।
3: हाँ जी, जय श्री हरि। स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। और कैसे हो?
4: बस अच्छे हैं। रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे प्यारे मित्रों को, भाई बहनों को आज के दिन की ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और गुजरात के भाई बहनों को आज यादन सर और कल शीतला सब सुनी है तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और पूरे देशवासियों को जन्माष्टमी और पालना नाम आ रही है तो उसकी भी शुभकामनाएं
3: जी।
4: क्योंकि राजन चट और शीतला सप्तमी हमारे गुजरात में अभी मनाते हैं ना।
3: हम आज की बात करेंगे, बिल्कुल आज उप छठ भी है, हर छठ भी है, तो रांधन छठ भी है।
4: सब कुछ छठ ही छठ है
3: जी।
4: छठ फिर दीपावली के बाद आएगी
3: जी। तो कैसे इन त्योहारों का आपको अगर नॉलेज हो तो बताइए।
4: कौन से
3: तीनों ही त्योहार आज है, रांधन छठ, उप छठ और हर छठ, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आप जानते हो तो बताइए।
4: उप छठ के बारे में मैं बताऊंगा कि मतलब बेटी और बहू मतलब और औरतें मतलब आज के दिन उपवास रखती है और शाम को 6 बजे के बाद में जब तक सूर्य चंद्रमा नहीं दिखता तब तक खड़ी रहती है, बैठती नहीं है। और भगवान के उधर उधर मंदिरों में जाती है, भजन कीर्तन करती है, दर्शन करती है। जब चंद्रमा दिखाई देता है दर्शनी चंद्र भगवान के दर्शन करके फिर अपना उपवास खोलती है
3: जी।
4: तो ये भी एक अपने अपने बहुत ही बढ़िया। और राधन चट है तो राधन चट हमारे तो राधन चट मतलब चित्र महीने में आती है
3: जी।
4: तो उस दिन मतलब ठंडा बनाया

0: हर दिन एक त्योहार बना दो ना, ताकि अपने अपन खुश रह पाए, अपने आने आजू बाजू वाले खुश रह पाए। हर दिन को एक त्योहार मानो
1: जी।
0: और अपना भारतवर्ष ऐसा है कि इसमें त्योहारों की कोई कमी नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: तो हर दिन को आप अगर त्योहार मना लोगे ना, तो फिर मतलब आपके जीवन में दुख की कोई किरण ही नहीं रहेगी, दुख का अंधेरा मिट जाएगा, सूर्य का प्रकाश ही रहेगा।
1: जी
0: सही है ना?
1: बिल्कुल सही है।
0: हर दिन मतलब हर एक दिन मतलब अपने जीवन में पर्व होना चाहिए।
1: जी
0: आप जब पर्व आते हैं तब खुशियां मनाते हो, तो पर्व चले जाते तो वही बात। तो मैं कहता हूँ हर दिन को पर्व मनाओ ना
1: जी।
0: क्यों क्यों दुखी होना, क्यों खुश होना, मतलब हर दिन को समानता की तरफ देखो ना। दीपावली आती है तो महीने भर पहले से आप तैयारियां चालू कर देते हैं, तो वो तैयारी हर दिन होनी चाहिए। हर दिन अपने घरों को साफ कीजिए और मतलब खुश रहना सीखिए, अपने जीवन में खुशियां लीजिए
1: जी।
0: तो कितने भी बड़ा दुख का पहाड़ होगा तो वो किनारा होगा।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि दुख से बीमारी आती है और दुख से शरीर स्वस्थ रहता, तन और मन। बस यही कहना चाहता हूँ सभी दोस्तों को, और मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की देव शुभकामना, मंगल कामना, जय माता दी
1: जी। जय श्री हरि। बहुत बहुत आभार। ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, आपने भी त्योहारों की जानकारी दी है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। भैया आप कौन से त्योहारों की नॉलेज रखते हैं? वैसे तो आज के दिन तीन त्योहार है, रांधन छठ भी है, ऊप छठ भी है और हर छठ भी है। हेलो।
2: हाँ दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
2: आपका भी स्वागत है दीदी, बहुत अच्छे है। हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी आज के दिन की शुभकामनाएं। रांधन छठ है
1: जी।
2: तो छठ के बारे में बताऊं तो दीदी, आज के दिन जो महिलाएं हैं तो ज्यादातर तो भोजन में ही व्यस्त रहेगी आज सुबह से शाम तक। सुबह में तो नहीं होगा लेकिन दोपहर से शाम तक वो रात तक बस भोजन भी करेगी, और जिसने जो बनाया वो कल खाएंगे ठंडा, क्योंकि कल गर्म तो खाते नहीं थे तक दो दिन
1: जी।
2: तो आज भोजन बनाएंगी और भगवान को प्रार्थना भी करेगी कि भाई ऐसा सबको अच्छा रखे और सबको ये भोजन करने वाला मिल सके
1: जी।
2: तो ये भी एक होती है। छठ की पूजा भी करती है दीदी, कई महिलाएं हमारे यहाँ मंदिर में आती है और भगवान के साथ छठ की पूजा भी करती है, पीपल के पीछे भी, पीपल के पास भी बैठ के भी पूजा करती है
1: जी।
2: तो कई सारे आज महिलाओं बस यही व्यस्त में रहेगी, ज्यादातर तो भोजन को ही बनाना है।
1: अच्छा, भोजन में क्या बनता है गुजरात में?
2: भोजन में दीदी बनता है तो जो सुखड़ी बनती है, तो गेहूँ के लोटकी आती है
1: जी,
2: गोल की, और दूसरा थेपला बनता है यानी कि मेथी का बनाए
1: जी,
2: या कोई और बनाए, और जो कोई गेहूँ का लोटकी भाकरी बनाती है, कोई करेला का साग होता है, कोई पात्रा बनाता है, कोई अलग अलग सभी लोग बनाते हैं दीदी
1: जी। जी
2: पात्रा भी बना के कोई तैयार भी ला देते हैं, क्योंकि अब तो सभी चीजें बाजार में तैयार मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: थेपला भी मिलता है, वो सब कुछ पात्रा भी मिलता है, जो मिठाइयाँ भी सभी मिल जाती है, लेकिन पात्रा बनाया हुआ तो सही है दीदी, क्योंकि हम तो कभी बाजार से कुछ चीज लाते नहीं, घर पे बनाते हैं, जो बनाते हैं कल खाते हैं
1: जी। जी जी
2: बस वही बनाएगी सभी अपने अपने हिसाब से जो बनाते हैं, और कल ठंडा खा लेते हैं।
1: तो कल पूरे दिन ठंडा खाएंगे?
2: कल पूरा दिन ठंडा खाना, और ठंडा पानी से ही नहाना, गर्म पानी से नहाना भी नहीं।
1: जी जी जी बिल्कुल सही कहा आपने,
2: क्योंकि छठ माता का जो दिन होता है दीदी, तो गर्म कोई चीज का उपयोग करना ही नहीं
1: जी।
2: माता जी को ठंडा ही चाहिए, गर्म नहीं चाहिए।
1: जी जी जी जी।
2: तो कई सारी बातें हैं इसमें, आप जरूर कल बताओगे, क्योंकि ये तो छठला तातन की बात कल है, तो आप कल की बात जरूर बताना है।
1: जी जी जी बिल्कुल।
2: माता रानी क्यों ठंडा चाहती है, गर्म पीनी चाहती है, तो आपको बताते हैं हर साल से कल की।
1: बिल्कुल।
2: नमस्ते, हमारे कई सारे मित्र भी इंतजार कर रहे हैं।
1: जी चलिए, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने भी रांधन छठ की बहुत ही अच्छी बातें बताई है। राजस्थान में रांधन छठ और शीतला सप्तमी चैत्र महीने में मनाते हैं, और गुजरात में अभी भादरवा महीने में।

गुजरात में सावन चल रहा है, राजस्थान में भादरवा लग गया है, तो भादरवा चल रहा है तो अभी मनाते हैं। देखिए त्यौहार हम सभी मनाते हैं, क्योंकि त्यौहार भले हम थोड़ा सा कल्चर हमारा अलग अलग हो गया, लेकिन खुशी तो वही है ना। जैसे राजस्थान में रांधन छठ के दिन ओलिया की तैयारी की जाती है, दही चावल बनाए जाते हैं, सब्जी पूरी, उस समय केरी नई नई आती है तो केरी की लौंजी है, इस तरह की सब्जियां बनाते हैं ताकि दूसरे दिन पूरे दिन टिकी रहे। और गुजरात में कभी देखे कोई हांडवा बनाता है, कोई थेपला बनाता है, तो कोई क्या, बस दूसरे दिन खराब ना हो ऐसी चीज़ ही बनाते हैं। राजस्थान में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हाँ इधर थोड़ा फिक्स है कि कुछ भी बनाओ लेकिन ओलिया तो बनाना ही है। ओलिया दही चावल को कहते हैं, जो रेसिपी आपको कितनी बार सिखा चुकी हूँ, तो ये तो ज़रूर बनाते हैं। और ये शाम के समय बनाती है महिलाएं ताकि दूसरे दिन पूरा दिन वो भोजन टिका रहे, इसलिए शाम को थोड़ा रात को लेट सोती है, लेकिन बनाती ठंडा मतलब गर्म भोजन आज बना के रख देती है, कल शीतला सप्तमी है तो कल पूरे दिन ठंडा खाया जाता है, ये गुजरात में। और अब तो देखिए गुजरात के लोग भी हर जगह है, हर स्टेट में है, राजस्थान में भी बहुत सारे हैं, तो जो गुजरात के रहने वाले हैं वो तो कहीं पर भी रहेंगे लेकिन अपना त्यौहार तो मनाएंगे, और साथ ही साथ हर छठ और उपछठ भी है। उपछठ भी देखिए राजस्थान में, अब दूसरे स्टेट का पता नहीं लेकिन राजस्थान में इस त्यौहार को अच्छी तरह मनाते हैं। वो कहते हैं कि महिलाएं अपने सुहाग के लिए और कन्याएं अपने अच्छे वर के लिए इस व्रत को रखती है और पूरे दिन उपवास रखते हैं, इसमें भोजन नहीं करते। ठीक है फराल खा लेते हैं, फराल जिसे नहीं रहा जाता है वो फराल बना करके खा लेते हैं, बाकी निराहार रहते हैं, ऐसे पूरे दिन उपवास करते हैं, फिर रात को खाना खाते हैं। और वो अभी मैं है ना प्रश्न का जवाब आ जाएगा, कब खाते वो मैं नहीं बताऊँगी, वो मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगी तभी बताऊंगी, नहीं तो प्रश्न का जवाब अभी आ जाएगा इसलिए मैं रात को कब खाते वो नहीं बताऊंगी। ठीक है तो प्रश्न चलिए मैं पूछ ही लेती हूँ साथ ही साथ कि महिलाएं आज के दिन विशेष करके किसके दर्शन का इंतजार करती है। ये आज का प्रश्न है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और हम उपछठ की बात कर रहे थे कि उपछठ पूरे दिन महिलाएं खड़ी नहीं रहती है, वो पूरे दिन अपने घर का काम जो भी है करती है, उपवास तो रखती है, फल फ्रूट जो भी है खा लेते हैं, नहीं खाने वाले नहीं भी खाते, लेकिन जो अपने घर का डेली रूटीन है वो कार्य करती है। फिर शाम के समय सूर्य अस्त होने के आधा घंटा पहले महिलाएं क्या या तो तालाब नदी अपने गांव में जो भी व्यवस्था है वहां नहाने के लिए जाती है, और नहीं होते हैं तो घर पर ही नहा लेते हैं। और सूर्य अस्त होने के बाद महिलाएं खड़ी रहती है, नहाने के बाद फिर बैठती नहीं है, फिर खड़ी रहती है, कन्याएं महिलाएं सब खड़ी रहती है। अब खड़े रहो और उसका इंतज़ार करो, तो किसका इंतज़ार है वो आपको बताना है, मैं अभी नाम नहीं ले रही हूँ। ठीक है इसके बीच 4-5 घंटे लग जाते हैं, 4-5 घंटे महिलाएं समझ लीजिए सूर्य अस्त होता है 6:30 के आसपास, तब से लेकर के उसके दर्शन तक खड़ी रहती है, तो आराम से 5-5.5 घंटा हो जाता है। अब एक जगह आप आधा घंटा भी खड़े रह के देखिए, खड़े नहीं रह पाएंगे, ऐसा लगेगा बैठ जाए, इसलिए महिलाएं घूमती रहती है, पहले ही सारा काम घर का कर लेती है, खाना भी बना देती है, उसके बाद महिलाएं मंदिरों में जाएगी, अपने गांव में जो भी मंदिर है थोड़ी थोड़ी देर सब मंदिरों में जाएगी, ताकि क्या है कि चलते रहो तो फिर भी आप चल सकते हो 5-6 घंटा, लेकिन एक जगह खड़े रहना मुश्किल है, इसलिए थोड़े से लोग भी आज के दिन कंपनी देते हैं कि चलो या चले वा चले, आजकल तो थोड़ा सा क्रेज चेंज होता जा रहा है तो रिश्तेदार के यहाँ भी मिलने चले जाते हैं, खड़े ही रहेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, फिर जितने भी मंदिर है थोड़ी थोड़ी देर सब मंदिरों में जाएंगे, भजन वजन बोलेंगे जितने टाइम पास हो जाएगा, तो इस तरह उपछठ मनाई जाती है। चलिए और भी बताएंगे लेकिन अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह.
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से.
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड.
1: मिट्टी से नहीं, जज्बातों से.
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: Ibadah
1: di
0: tanah ini. Jadi, umai bigaya satu lagi ayah.
1: Acha.
0: Jadi 500 yang satu minta.
1: 50 ke 500, bos sasté kan kuda apke udar.
0: Ah, ya tu, bisnya apa sahdi macam ini ya, tu lagi apa itu bisnya.
1: Acha.
0: Lebarna, city ni tu banyak bau.
1: 80 100 रुपए पाव ऐसे
0: हां
1: 80 रुपए पाव 100 रुपए पाव वो भी अभी इधर तो मिलना बंद हो गया कल ही कुछ बहने कह रही थी कंकड़ा तो मिल ही नहीं रहा है मार्केट में
0: यहां यहां भी शुरुआत में क्या है कि शुरुआत में जो कंकड़े आए ना
1: जी
0: तो 300 रुपए किलो यहां बिकते थे इधर के लोग यहां लेके आते थे अंबाजी तरफ हम तो हमने तो इस छोटी वस्तु नहीं लिया था
1: जी
0: अभी जो त्योहारों में थोड़ा हुआ है तो अभी और कल सुबह में हम शीतला माता के मंदिर है यहाँ तो जाएंगे सब सब तरफ के सभी जाते थे दिया उनका सुखड़ी वगैरह
1: जी
0: माता जी की पूजा अर्चन करने के लिए जाते थे और घर में घर पे आके कहानी है शीतला माता की जो वार्ता है
1: जी
0: वो सभी बैठ के हाथ में जब चोखा लेते बैठते थे और सभी सुनते
1: जी
0: और ये फिर ये जो कर भोजन करते ये भी बिल्कुल दूसरे दिन तो एक तो ये गैस वगैरह नहीं और ठंडे पानी से स्नान करना सुबह में करते हैं
1: जी
0: पानी भी गर्म नहीं और ठंडे पानी की नदी और जो नदी बन जाती
1: है जी जी जी
0: वहाँ जाके स्नान करके आते हैं
1: जी
0: ऐसा है हमारे यहाँ गाँव का तो
1: जी जी जी ज्यादातर इसी तरह मनाते हैं लगभग ऐसे ही मनाते हैं शीतला सप्तमी के दिन गर्म पानी से नहीं नहाते जी जी
0: कभी तो इसको काफी नमस्कार आज के दिन की और सवाल का जवाब तो मैं बात करूंगा
1: जी जी ठीक है चलिए बहुत बहुत आभार कंचन भाई आपका तो ये थे कंचन भाई मंडाली से और आपने भी रांधन छठ की अच्छी जानकारी दी है तो इस तरह देखिए उप छठ मतलब सूर्य अस्त से फिर उनके दर्शन तक महिलाएं खड़ी रहती है किनके दर्शन तक वो जवाब आपको देना है तब तक महिलाएं कन्याएं खड़ी रहती है भजन कीर्तन करती रहती है अपने शहर में घूमती रहती है और सभी साथ में इकट्ठी होकर के ताकि सभी का टाइम भी सफल हो जाए समय भी सफल हो जाए और थकान महसूस न हो क्योंकि एक तो पूरे दिन से उपवास है फिर रात को खड़े रहना है तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है ना लेकिन जब हम अच्छी भावना के साथ और लक्ष्य मजबूत करके हम कुछ भी करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है हमें और इजी वे में हो जाता है हेलो
2: हेलो जी नमस्कार
1: हाँ जी नमस्कार भूरीलाल जी कैसे हो आप
2: बहुत बढ़िया
1: हाँ जी
2: और खाना की
1: अच्छा
2: आप हेलो
1: अच्छा जी जी जी जी जी क्या बात है
2: जिसके घर में महिला होती है ना
1: जी
2: वो महिला का काम कर रही है मैं तो घर खुद बकर पाई हूँ
1: कोई बात नहीं आप भी तो इतना कर रहे हैं आप भी तो इतना कर रहे हैं एक महिला से कम है क्या आप
2: अरे महिला से तो ज्यादा है वो ज्यादा भी है इसलिए मैंने कहा बहन जी से बात तो कर लो कम से कम सीखो ना सब्जी बनाएगा मैंने कहा उनको मनवा कर दो अच्छा रहेगा
1: जी
2: आज जाओ तो किसी को मिलने मिलते हैं हमारे इधर तो बहुत सस्ते मिलते हैं
1: जी
2: हमारे पाले पाले में किसी को रख दें
1: अच्छा
2: इसलिए हमारे को फ्री में आ जाते हैं ले जाते हैं लोग किसाने के लिए आते रहते वो ला करके हमारे को दे जाते हम बना बना के खा लेते हैं
1: जी
2: कभी कभी आप हमारे खेत है तो हम भी लेके आए आपके लिए
1: जी जी जी केकोड़े तो ऐसा है कि ताजा ताजा तोड़ के बनाओ बहुत स्वादिष्ट लगते हैं सब्जी जी
2: जी
1: जी जी जी जी
2: कोली कोली रोटी गरम गरम रोटी और वो टिकोड़ा क्या बात करते मुंह में पानी
1: आपको तो मुंह में पानी नहीं लाना है आप प्रैक्टिकल बना रहे हैं हाँ बिल्कुल हम भी बनाते हैं अच्छा चलिए कोई बात
2: नहीं
1: जी जी जी हाँ जी बहुत बहुत आभार आपका तो ये थे भूरीलाल जी मानपुर से और आपने भी देखिए कंकोड़ा की सब्जी बनाई है तो बोल रहे कि कंकोड़ा की सब्जी है तो आज मैं आपको कंकोड़ा की सब्जी सिखा दूंगी रेसिपी में ठीक है बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये सब्जियाँ गाँवों में तो फिर भी देखिए जैसे भूरीलाल जी कह रहे हैं उनके यहाँ तो बेशुमार लगती है फिर कंचन भाई भी बता रहे हैं कि उनके यहाँ भी ये सब्जी 50 रुपये की 500 ग्राम इतनी सस्ती सब्जी है शहरों में 100-100 रुपये की पाव है ये सब्जी फिर भी बहुत कम मिलती है देखने को तो क्योंकि ये थोड़े से जंगल में और पेड़ पौधों के बीच में लगते हैं हल्के से कांटेदार होती है लेकिन सब्जी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है तो अगर मिलते हैं तो ज़रूर बना करके इसको खाइएगा और चलिए सारे त्योहारों की पूर्णाएँ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ और फिर से एक गीत सुन करके पुनः लौटेंगे तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM

0: अच्छा लड़का ही चाहिए।
1: तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
3: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है।
4: को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो चलिए आशियाना के किचन में आज मैं आपको कंकोड़ा की सब्जी सिखा देती हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और कहते हैं ना कि सिंपल सब्जी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो बहुत जने ग्रेवी वाली भी बनाते हैं लेकिन आप सिंपल बना करके खाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो कंकोड़ा ले लीजिएगा, सामग्री में हरी मिर्च लीजिएगा, राई जीरा लेना है, तेल लीजिएगा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बस हींग ये आपको लेना है, हरा धनिया ले ही सकते हैं। तो क्या क्या लेना है, कंकोड़ा लीजिएगा, फिर आप लीजिएगा तेल, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, राई, जीरा, हींग, हरा धनिया ले सकते हैं और धनिया पाउडर ले लीजिएगा। तो ये हो गई सामग्री। अब आप कंकोड़े की अच्छी तरह धुलाई कर लीजिए। धुलाई करने के बाद नीचे से वो जो डंठल निकला हुआ होता है उसको तो तोड़ दीजिए, निकाल दीजिए। ऊपर का कोना हल्का सा होता है उसको भी निकाल देते हैं और बाकी आप गोल गोल कटिंग कर लीजिए। कोई इसकी लंबी लंबी फाके भी करते हैं तो कोई गोल गोल कटिंग भी करता है, लेकिन गोल कटिंग वाला बता रही हूँ मैं आज आपको कि गोल कटिंग कर लीजिए। ठीक है, गोल गोल काट लीजिए और हरी मिर्च वगैरह सब काट के रख दीजिए। अब आप रखिए कढ़ाई गैस पर, तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो राई जीरे का तड़का लगाइए। अब इसमें आप हरी मिर्च डालिए, हींग पाउडर डालिए और मसाला थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए। ये जो फ्राई हो जाए तो फिर आप कंकोड़ा डाल दीजिए। ठीक है, कंकोड़ा डाल करके आप नमक और हल्दी पाउडर डाल दीजिए और अच्छी तरह हिलाकर धीमी आंच पर आप एक थाली ढक के रख दीजिए। थाली में आप पानी डाल सकते हैं, ठीक है, थाली के ऊपर भाप से इसको बॉईल होने दीजिएगा। और जब आपको लगे कि हाँ अब सब्जी थोड़ी सीजने को आई होगी तब आप थाली धीरे से हटाइए, पानी अंदर नहीं गिरे। और फिर आप लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल दीजिए, अच्छी तरह हिला करके एक दो मिनट पका करके फिर गैस बंद करके आप हरा धनिया डाल दीजिए। तो ये बन गई कंकोड़े की सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी। आप गेहूं की चपाती के साथ खाइए, आप मक्के की या बाजरे की रोटी के साथ खाइए, सबके साथ अच्छी लगेगी। तो फिर से बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। कंकोड़े की धुलाई करके इनको काट लीजिए, गोल गोल पीस कर दीजिए, इसके हरी मिर्च भी साफ करके काट करके रख दीजिए। अब आप कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो राई जीरे का तड़का लगा दीजिए, हींग पाउडर भी डाल देना है तो आपको हरी मिर्च भी डाल देनी है। ये मसाला पक जाए तो आप कंकोड़ा कटे हुए डाल दीजिए और हल्दी पाउडर और नमक डाल करके हिला करके धीमी आंच करके एक थाली ढक दीजिए, थाली में पानी डाल दीजिए, पानी से इसको भाप से इसको बॉईल होने दीजिए सब्जी को, ठीक है। और उसके बाद आप थाली हटा दीजिए, आपको लगे कि हाँ हमारी सब्जी अब सीजने को आई होगी तो आप हटा दीजिए थाली, फिर लाल मिर्च पाउडर, फिर भी आप चेक कर सकते हैं, हाथ से दबा के पट्ट दे के दब जाए तो सीज गई, और दबाने पर नहीं दबे तो थोड़ी सी कचास है तो फिर से सीजने दीजिए, ठीक है। फिर थाली हटाकर इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल करके हिलाकर एक दो मिनट फ्राई करिए, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और हरा धनिया डाल दीजिए। ये बन गई कंकोड़ा की सब्जी, और आप चपाती के साथ इसको खा सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही खाना है, ठीक है। तो आइए फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छा रहा है। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं अलसी पर। तो अलसी कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करती है वो आपने जाना है। फिर आज त्योहारों की बात हुई है, रांदन छठ, हर छठ और उब छठ का त्यौहार हमने धूमधाम से मनाया है। बहुत बहुत पुनः आप सभी को इन त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और कंकोड़ा की सब्जी जो बनाना सीखा ही है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि आज के दिन उप छठ के त्यौहार पर स्पेशल महिलाएं किसका इंतज़ार करती है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त होता है तब से खड़ी ही रहती है महिलाएं, चंद्र दर्शन तक खड़ी रहती है। तो आज का उत्तर है चंद्र दर्शन। तो सही जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और सुभाष भाई महाराष्ट्र से, शोभा जी आबूराज से, हेमलता सूरत से। तो आपका जवाब सही है। तो पहले तो आपके लिए ढेर सारी तालियां, जिन्होंने सही जवाब दिया उनके लिए ढेर सारी तालियां बजाना चाहेंगे। फिर देखिए विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई झोटाना से, जगदीश भाई इडर से। इन्होंने जवाब दिया पति, तो ये गलत है। सगुणा बहन झोटाना से, कंचन भाई मंडाली से और भूरीलाल जी मानपुर से। तो आप सभी विषय में जुड़े हैं, इसके लिए भी ढेर सारी तालियां। तो चंद्र दर्शन तक महिला खड़ी रहती है, उसके बाद वो भोजन करती है, ठीक है। और आज का मीठा मोती है, परमात्मा को सब याद करते हैं लेकिन सर्व प्राप्ति उन्हीं को होती है जो अपने को शरीर नहीं आत्मा समझते हैं। अब मैं आपको कृष्ण कन्हैया पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। थाने माल मलिदा भावे रे टूटी फूटी जो पड़ी में कैया आवे रे, थाने माल मलिदा भावे रे टूटी फूटी।

छप्पन भोग छत्तीसों मेवा खीर जलेबी न्यारी खाय, मीठो पान चबावे रे टूटी फूटी झोपड़ी में कहिया आवे रे। माखन मिश्री बिच बिच में जी भर करके खावे, माखन मिश्री बीच बीच में जी भर करके खावे। बनवारी दिन में जो खावे रात पसंद ना आवे। मासू कैया प्रेम बढ़ावे रे टूटी फूटी।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: कल राठौड़ परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर था, क्योंकि घर में दामाद पुराना बना है, घर जमाई नया। हमारे देश में दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है, जिसकी आदत सूरजमल को भी थी। लेकिन अब जो इन्हीं घर वालों के साथ रहने लगे हैं, तो क्या वैसी ही इज्जत मिलेगी? या चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आज राठौड़ परिवार में, जहां परिवार के बच्चे भी कैंप से लौट कर आ गए हैं और अब जमाई जी यानी सूरजमल जी लगे हुए हैं नई जॉब की तलाश में।
1: अरे सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में?
2: जाह्नवी क्या है ये? तुम लोग कल ही अपने कैंपस से वापस आए हो, इसका मतलब यह नहीं कि घर को ही कैंपस बना दो।
3: दादी लेकिन मैं ये गाना नहीं बजा रही हूँ, दिस सॉन्ग डज नॉट हैज रिज।
1: चीज? क्या चीज नहीं है? अब गाने में कौन सी चीज आ गई?
3: चीज नहीं दादी, रिज रिज।
4: अरे बेटा हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं, तुम लोग हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो या चलो अंग्रेजी ही बोलो, पर ये कौन सी एलियन भाषा बोलते रहते हो?
3: पापा प्लीज डोंट बी सो बेसिक।
1: अरे ये कैसी अंग्रेजी है, पटर पटर करती रहती है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता।
5: दादी जाह्नवी के कहने का मतलब है कि उसे ये गाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने ये गाना नहीं बजाया है।
1: तो कौन बजा रहा है ये गाना, जिसने मेरे सर में दर्द कर दिया है?
5: दादी चलिए चल के कमरे में देख लेते हैं।
6: चांदनी क्यों फंसा रही है वीरू को?
5: कुछ नहीं होगा, देखती जा।
4: ये लीजिए, ये तो वीर जी है। अरे सर गाना बंद करेंगे आप? वीर वीर।
7: अरे किसने मेरा गाना बंद किया?
4: मैंने किया, कोई आपत्ति है आपको?
7: अरे बड़े बड़े चाचू आप, अच्छा किया गाना बंद कर दिया। किसने चलाया था ये गाना?
3: तुमने।
7: हाँ वो बड़े चाचू वो रॉकिंग गाना है, तो मैं तो बस ग्रूव कर रहा था।
4: सुबह सुबह इतना जोर से गाना चलाया है, घर के बाकी लोगों के बारे में भी सोचा कर, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं।
1: हाँ तो इसमें क्या हो गया, गाना ही तो चलाया है। आजा मेरा पोता, मेरा लाडला बच्चा, सुन तू कर वो क्या कहते हैं, भूम भूम भूम, तू कर।
3: भूम नहीं दादी, ग्रू।
1: अरे वो ही तो कह रही हूँ मैं। अरे हाँ वही।

0: की शिक्षा को अहम नहीं समझा। हम सोचते हैं कि एक लड़की को स्कूल भेज तो रहे हैं, इससे ज्यादा बराबरी क्या होगी। लेकिन रोज किसी न किसी तरीके से बेटी को दिखा ही देते हैं कि बेटा ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं राठौड़ परिवार की सुबह और कौन से रंग दिखाती है।
1: राजकुमारी, ओ राजकुमारी, कहाँ मर गई?
2: जिंदा हूँ जेठानी जी, बस आई।
1: राजकुमारी, आज ना मेरे पैर में बड़ा दर्द है, आज नाश्ता तू ही बना लेना।
2: जेठानी जी, नाश्ता तो बन गया।
1: अच्छा, आज नाश्ता इतनी जल्दी बन गया?
2: जल्दी कहाँ जेठानी जी, 8 बज रहे हैं।
1: अरे 8 बज गए, ये बाकी के 7 और 6 कहाँ गए?
3: बड़ी भाभी, वो आए थे घर पे, राजकुमारी भाभी के हाथ का नाश्ता खाकर चले गए।
1: हे राम, मजाक मत कर किशन, मुझे तो डर लगता है, इस कम उम्र में ये मुझे क्या हो रहा है।
3: कम उम्र?
4: हाँ हाँ हाँ भाभी जी, आप तो बस हमसे थोड़ी सी बड़ी हैं, आपको क्या होगा।
1: हाँ वो तो है, वैसे इस घर के नए जमाई सा कहाँ हैं? अभी तक अपने कमरे में पड़े सो रहे हैं का?
5: बड़ी भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी और जीजू साथ में वॉक करने गए हैं, आते ही होंगे।
4: लो आ गए वो।
6: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो घर आ गया, चलो जमाई सा घर में। हाँ, चलो
7: हाँ, बढ़िया
6: चलो,
7: बढ़िया
6: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
7: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक।
6: वाह, आज तो मजा आ गया। सूरजमल बेटा बड़ा समझदार, आज तो पेड़ पौधों के बारे में बड़ी जानकारी दी इसने।
8: हाँ बस इन्हीं खेती बाड़ी के चक्कर में लगे रहते हैं ये, इनको बताइए पापा कि पेड़ पौधे पर पैसे नहीं लगते।
6: शांति, थोड़ा शांति से बात किया कर बेटा।
8: कैसे शांत रहूं पापा, एक हफ्ता निकलने को आया है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, ना नौकरी ढूंढते हैं ना कोई।
7: पापा आप शांति को कुछ मत कहिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
6: शांति चुप हो जा, जमाई साहब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही बैठिए।
8: क्यों पापा, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आपको पता है मैं सुबह ही एक पोस्ट देख रही थी, मेरी क्लास में जो सुषमा थी ना, वो अपने पति के साथ वेकेशन पे लंदन गई है और मैं यहाँ।
9: शांति तू ये क्या बोले जा रही है बहन, एक पोस्ट की वजह से तू जीजा जी को इतना सुना रही है।
8: रागिनी दीदी, आपकी शादी नहीं हुई है ना, अभी आप नहीं समझेंगी।
9: मैं इतना तो समझती हूँ शांति कि पैसे कमाना सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी नहीं होती है, जब रिश्ता बराबरी का है तो जिम्मेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन अब मुझे कहनी ही पड़ेगी, ये जो तू रोज पार्टी करती है, इधर उधर जाती है, इससे अच्छा है जाके कुछ काम कर, पैसे कमा।
8: हाँ जैसे आप कमा रही हैं अपने एनजीओ से, कितना कमाती हैं दीदी आप बताइए जरा।
6: तुम दोनों बस करो, घर के मुद्दों पर बैठ के सम्मान के साथ बात की जाती है, फैसले लिए जाते हैं, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी, गुस्से में एक दूसरे को जो भी कह रहे हो वह शब्द जैसे बाण से छूटे तीर है, वापस नहीं आएंगे। इसलिए जाओ सब हाथ धोकर आओ, पहले सब नाश्ता करेंगे, दिमाग ठंडा होगा तब फिर बात होगी।
4: राजकुमारी जाओ सबके लिए नाश्ता लगा दो।
2: हाँ जाती हूँ।
4: कहाँ जा रही हो, किचन उधर है?
2: वो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है।
4: इतना क्या स्पेशल बना दिया जो किचन के बाहर है?
2: अरे आप बस देखते जाइए, शौक ही हो जाएंगे आप।
4: इसी बात का तो डर है।
2: हा? कुछ कहा आपने?
4: नहीं, बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दी होगी तुमको।
2: तो फिर मैं आती हूँ, मैं कीड़े मकोड़े लेकर आऊँ आपके चूहों के लिए।
4: क्या?
2: अरे मजाक कर रही थी।
4: राजकुमारी घर में वैसे ही कितना टेंशन है और तुम।
10: भैया इस टेंशन में किसी को तो मजाक करने दीजिए, वरना हमारी बहनें तो नदी

0: तहस नहस कर देंगी।
1: चल ठीक है, अब नाश्ता करने चलें।
2: वैसे क्या लगता है आपको, राजकुमारी जी ने आज ऐसा क्या बनाया होगा जो किचन की दीवारों में नहीं समा पाया? और भगवत जी ने तो कह दिया कि जो बात होगी अब नाश्ते के बाद होगी, लेकिन नाश्ता करने के बाद ये सब लोग बोलने लायक बचेंगे भी या नहीं? वैसे जिस गुस्से में सब लोग गए हैं उससे तो लगता है कि नाश्ते की टेबल पर भी हंगामा होने वाला है, लेकिन ये राठौड़ परिवार है जी, यहाँ की हवाओं का किसे पता कब किस दिशा में बहने लगे। वैसे भगवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, गुस्से में कही बात का बाद में कितना भी दुख हो, पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे इस घर के शेर शायर किशन कल रात अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिख रहे थे, जाते जाते आप भी सुनते जाइए।
3: रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं, नीचे से सहारा भी देती हैं, ऊपर से उजाला भी देती हैं, अकेली हों तो बस ये धूल बनती हैं। रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं।
4: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
5: घर ऑन एयर पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि, ताऊजी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताईजी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी, अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित।
6: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। और यहां का जो आदिवासी लोग सुनते हैं हमारे इस कार्यक्रम को, उस कार्यक्रम का नाम है म्हारो गांव म्हारो अंचल। सही में जब नाम सुनते प्रोग्राम का कितना खुशबू मिलता है। जिस गांव और जिस अंचल में हम रहते हैं, पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, वो गांव को कभी नहीं भूल पाते। गांव तो स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि गांव को लेकर ही शहर, शहर को लेकर ही हमारा राज्य और राज्य को लेकर ही हमारा देश विदेश बनता है, विश्व बनता है। तो गाँव का आवाज को गाँव तक सीमित नहीं रखे और सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन आज अबरोड तहसील से दूरस्थ जगह मंडार देवघर ब्लॉक में पहुंचे, क्योंकि हर का आवाज को एक मौका मिलना चाहिए। जो आवश्यकता था, जो मंच आवश्यकता था, वो आज मंच ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन शाखा प्रदान करने के लिए पहुंचा है। और खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंडवाड़ा में पहुंचे, एक राजकीय विद्यालय है और हमारा ईश्वरीय विद्यालय, दोनों विद्यालय के मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास में, बच्चों का जो हुनर है, बच्चों का जो टैलेंट है, टैलेंट हंट में आज बच्चों को सिलेक्ट करके यहाँ का संस्था प्रथम सभी स्टाफ उमंग उत्साह भरा है। और जिसका चलते बच्चे आज भाग ले, 500 बच्चे, लेकिन 10 बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं ओपन राउंड में। इस 10 बच्चों से भी एक दो बच्चे फिर उनको हम सिलेक्शन करेंगे ओपन राउंड के बाद, जब इंटरेस्ट

0: स्कूल कॉम्पिटिशन होगा अपना रायदर मंडार जो जितने विद्यालय सभी विद्यालय के इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होगा तो बच्चों को मैं जरूर याद करूंगा और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मैम भी उपस्थित है। मैम बच्चों को थोड़ा वार्म अप कराएंगे क्योंकि बच्चे को मैं जितना जानता हूँ मेरे से ज्यादा जानता हमारा सांस्कृतिक प्रभारी, क्योंकि वार्म अप कराएंगे बच्चों को और एक बूस्ट जैसे काम करेंगे। अपना परिचय देंगे मैम, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं और आपका परिचय दीजिए।
1: मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंदवाड़ा से साइंस पढ़ाती हूँ।
0: अरे वाह।
1: और बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में 15 अगस्त पे 26 जनवरी वार्षिक उत्सव में मदद करती हूँ और बच्चे अच्छा सा तैयार भी करते हैं और
0: जी मैम
1: बहुत उत्साह से भाग लेते हैं।
0: मैम अचानक आपका स्कूल में पहुंचे और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसे कार्यक्रम तो आप जानते होंगे, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं?
1: जी मैं माउंट आबू आई हुई हूँ।
0: अच्छा माउंट आबू में आए हैं और इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय देखें। और हमारा आज यहाँ मंडल सेवा केंद्र से भी एक हमारा सेल दीदी भी आए हैं और आज बच्चों को एक मंच मिलेगा उनका आवाज को।
1: जी जी हमारे बच्चे बहुत उत्सुक हैं प्रस्तुत करने के लिए,
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं। बच्चों का आवाज को सुनेंगे, पहला प्रस्तुति में रेडी है हमारा गुड़िया परी उपस्थित है तो वो अपना परिचय देंगे। मुझे बहुत खुशी लगता है क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय का जो सहयोग आज सही में देखने को मिलता है और यहाँ ये लोग तो कहीं से कहाँ पहुंच गए। पहला स्टेप एक कदम एक स्टेप हमारा, तो हमारा छात्र उपस्थित है अपना परिचय देंगे। यस वेलकम प्लीज।
2: मेरा नाम है मीरा कुमारी, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंदवाड़ा और मेरे गांव का नाम गुंदवाड़ा है।
0: क्या बात, आवाज में दम है और कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। और मीरा तो पूरा मीरा भाई, हम तो मीरा का जब सुनते हैं राजस्थान का याद आता, भक्ति भक्ति में इतना भावना थे। तो मीरा आज क्या प्रस्तुति करेगी सुनाएगी, लेकिन लेकिन हम सभी की तरफ से ईश्वरीय विश्वविद्यालय और रेडियो मधुबन परिवार की ओर से आपको स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम जैसे आज तो पूरा चमकाएगी, अपना इस विद्यालय के नाम रोशन करेंगे और जब उनका परिवार वाले सुनेंगे, माता पिता सुनेंगे, भाई लोग सुनेंगे तो बोला रही मीरा का आवाज है, पूरा आपका नामांकन भी स्कूल का भी वृद्धि होगा, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आगे आते। तो देर किस बात की, शुरू करिए एक प्रस्तुति।
2: गुरु ज्ञान की बात सभी है दिल में उतारी तेरी, जब जब भी मैं उलझा हूँ तूने राह दिखाई सही,

0: क्या खूब क्या खूब, कितने सुंदर प्रस्तुति, और मेरा नाम का तो सार्थक किया। मेरा आपका नाम कौन रखा है, क्योंकि आपका नाम से सब जानते हैं।
1: मेरे पापा ने रखा है।
0: पापा को सलाम करते, क्योंकि बाप जो होते हैं, फादर जो होता है, भगवान तुल्य माता पिता, इसलिए माता पिता का ऋण कभी भी नहीं चुका सकते। जितना भी हम जन्म ले, इस जन्म में कितना भी काम करें, उनका रिटर्न हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। और मीरा जैसे आवाज, मीरा बहन आप ये आवाज को बिना डरे बिना रुके और स्माइलिंग फेस में अपना आवाज दिए, हमारा श्रोता मित्र लिसनर सुन रहे आपको ध्यान से। और वंस मोर और एक गीत के लिए हम लास्ट में लेंगे आपसे, रेडी रहेंगे? हाँ, एकला काफी है। आकाश में रात में बहुत सारा तारे होते हैं, लेकिन एक चांद सबको रोशनी देती है। तो हमारा विद्यालय में भी सभी तरह के चांद हो मिल नहीं सकते, तारे भी बहुत मिलेंगे, लेकिन तारा तो तारा है और हमारा चांद भी चांद, क्योंकि सब सूरज से रोशनी लेते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सिंगल के लिए। आप सब सुन पा रहे रेडियो कार्यक्रम, खासकर मेरा गांव मेरा अंचल। जो मेरा गांव अंचल में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, सिर्फ सीमित क्यों रहे मंडार में चाहे गुंदवाड़ा में, पूरा जहां तक हमारा इस कार्यक्रम को सुन पा रहे, जो जो प्लेटफॉर्म का माध्यम से, एफएम का माध्यम से, इंटरनेट का माध्यम से और एप्लीकेशन का माध्यम से सुन पा रहे, तो उन तक पहुंच रहे, बहुत खुशी लग रहा होगा सभी को। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे वंस मोर, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रस्तुति के लिए इंतजार करना पड़ा, इसका पहले का सुंदर गीत भजन सुन रहे थे रेडियो मधुबन की ओर से, और मेरा तो सुन लिया, मेरा तो सब में आगे हो गया और भक्ति में भी मेरा को हम सुनते थे। तो चलिए और एक प्रस्तुति कौन आने वाला है, तो अपना खुद परिचय देंगे, प्लीज स्टार्ट योर नेम।
1: मेरा नाम निर्मा कुमारी, मैं 12 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंदवाड़ा है।
0: ओके, और आज क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? आपको डर, कोई डर लग रहा है? देखो मेरा तो आपको उमंग उत्साह करा दिया और मैम भी आपको उमंग उत्साह दिलाए, वो पहले गीत गाए, उनका आवाज सुनकर आपका आवाज को भी आप खुद नहीं रोक पा रहे है ना। चलिए शुरू करिए।
1: कटे गड़ायो गजरो भाई, कटे गड़ायो बाजो, कटड़ गड़ाई रे रोम थारी मोर लड़ी, भाई कटड़ गड़ाई रे रोम थारी मोर लड़ी, वन में गड़ाई रे रोम थारी मोर लड़ी, कतरा ला खरो गजरो भाई, कतरा ला खरो बाजो, हे कतरा ला खरी रे रोम थारी मोर लड़ी, भाई कतरा ला खरी रे रोम थारी मोर लड़ी, हे सवा ला खरो गजरो भाई, 12 ला खरो बाजो, हे कतरा ला खरी रे रोम थारी मोर लड़ी, हे सवा ला खरी रे रोम थारी मोर लड़ी, कटे पेरू गजरो भाई, कटे पेरू बाजो, हे हाथे पेरू गजरो भाई, बौड़े पेरू बाजो, हे कटे रमाड़ो रे रोम थारी मोर लड़ी, हे कटे रमाड़ो रे रोम थारी मोर लड़ी, हे कानो ने लादो गजरो भाई, कानो ने लादो बाजो, हे राधा ने मलियो गजरो, हे लुखमणे मलियो बाजो, हे कणो ने मारी रे रोम थारी मोर लड़ी।
0: एक का बाद एक प्रस्तुत, किसको हम सिलेक्शन जो जज होगा ना उसको तो कंफ्यूज होगा, किसको कितना मार्क दो, मीरा को और उनको दोनों का आवाज पूरा सही में, मैंने बोला था भाई एक एक चांद है, सही में एक चांद नहीं एक एक चांद है। इस गीत का भावार्थ तो क्या है, यहाँ का राजस्थानी लोग तो उनको समझ में आता होगा, लेकिन जब बाहर बंगाल ओडिशा सभी लोग सुन रहे इस कार्यक्रम को, तो इसका अर्थ किस संदर्भ में गाए उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, और सर अपना परिचय पहले देंगे, सर इंट्रोडक्शन प्लीज।
2: सर मेरा नाम मनोहरलाल बिश्नोई, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंदवाड़ा ब्लॉक रेवदर जिला सिरोही में पदस्थापित हूँ, और इस बच्ची ने जो हमारे राजस्थान की संस्कृति रीति रिवाज के बारे में इन्होंने पूरा विश्लेषण गाने के माध्यम से किया है कि राजस्थान में जो महिलाएं हैं किस प्रकार से अपने आभूषण के मार्फत अपने शरीर की सजावट करते हैं, उनके बारे में इस बच्ची ने अपना पूरा विवेचना की है।
0: ये मारवाड़ी,
2: मारवाड़ी
0: भाषा में,
2: मारवाड़ी भाषा में,
0: और राजस्थान आए तो राजस्थान का जो मारवाड़ी खुशबू सही में मिठास और जो प्यार उसने पूरा राजस्थान नाम ही कितना सुंदर है, और जो आभूषण जो अपना शरीर को श्रृंगार करते हैं उसमें राजा महाराजा का जो परंपरा है
2: जी, जी।
0: और सत्यजुग का कहानी, सत्यजुग देवी देवता का उनका अलंकार श्रृंगार, और ये भजन का माध्यम से गीत का माध्यम से राजस्थान को प्रेजेंट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सर को भी धन्यवाद, उसको विश्लेषण किया तो हमें भी समझ में आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए। सर आप बताइए बच्चे इतना जो टैलेंट गीत में, बहुत सारा बच्चे है लेकिन दो तारा, दो स्टार दोनों
2: जी,
0: आप जानते हैं उन दोनों को?
2: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपके स्कूल के,
2: हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स है,
0: तो
2: जो हमारे परिवेश और इन गुरुजनों के मार्फत और इनके परिवार की जो संस्कृति है, परिवार का वातावरण है बहुत ही अच्छा वातावरण है, और गुरुजनों द्वारा उनको बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेट किया जाता है, शिक्षा दी जाती है, उसी का परिणाम आपके समक्ष इन बच्चियों ने प्रस्तुत किया है।
0: सुने आप भी बहुत गाते हैं, तो आपका आवाज को तो आप नहीं रोक पा रहे होंगे, आप रेडी है तो आप सुनाइए। सर
2: सर मैं गाने से ज्यादा मैं नृत्य का शौकीन हूँ, मुझे मतलब गाने के साथ में नृत्य करने का होता है, लेकिन उसके साथ में मैं आज कुछ एक मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ
0: जी सर,
2: और उसके बाद में एक हमारे जो विष्णु संप्रदाय का एक जाम्बे जी का भजन है वो भी मैं आपके समक्ष एक प्रस्तुत करूंगा, उनसे पहले मैं एक मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ
0: जी सर,
2: ये विद्यार्थियों को और अपने जो समाज में स्वयं को अपने पैरों पे कैसे खड़े होना है और आगे किस प्रकार प्रगति के पथ पर चलना है उसके बारे में मैं आप समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जीवन में सफलता किसी किस्मत का खेल नहीं बल्कि मेहनत अनुशासन और निरंतर प्रयास का एक परिणाम होती है, जो व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम भी बढ़ाता है वे एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त करता है। याद रखिए कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि रास्ता कठिन है तो समझ लीजिए कि मंजिल भी उतनी ही शानदार होगी। असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का पहला कदम है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसके बाद में स्वामी जी ने एक कोटेशन दिया था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। यानी इसलिए अपने सपनों पर विश्वास रखिए, समय का सम्मान कीजिए, सकारात्मक सोच रखिए और पूरे समर्पण के साथ मेहनत कीजिए। दुनिया में कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं जो संकल्प, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से प्राप्त न किया जाए। तो मैं इन चैनल के मार्फत जो आप आए हैं, मैं जो भी हमारे जो दर्शक बंधु होंगे उनको भी मैं ये कहता हूं कि हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। अभी कभी जिंदगी में असफलता आती है तो असफलता के पीछे सफलता भी जरूर मिलेगी। धन्यवाद।
0: फेलोर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। जो फेलोर नहीं होगा तो सक्सेस कैसे होंगे, उसका स्वाद भी चखना चाहिए। इसलिए ऑब्स्टेकल आए, बाधा विघ्न आए तो उसको मुकाबला करना हमारा साहस होता है और हम सीखते हैं। जितना भी हमें जैसे बल्ब बनाने के लिए कितना हम प्रयास करते हैं, तब जाकर बल्ब 100 बार कोशिश किए जाकर बल्ब आज रोशनी हमें उससे ले रहे हैं।
2: जी हाँ,
0: एक कदम शुरुआत में एक कदम हमारा है, मेरा है
2: जी जी,
0: और 1000 कदम हमारा साथी सहयोगी और बड़े और परमात्मा का भगवान का भी सहयोग मिलता है। लेकिन हिम्मत और उमंग उत्साह चाहिए। सर ने बहुत अच्छा से बच्चों को उमंग उत्साह दिलाया और खुद को भी अपना एक मोटिवेशनल एक सार गर्भित जो आवश्यकता है मनुष्य को वो चीज रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक पर और दो परिया दो गुड़िया हमारा इस कार्यक्रम को सजाएंगे तो वो भी आए हैं, उनका प्रस्तुत सुनेंगे। हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे हैं और आप सब सुन पा रहे हैं, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार का पास एक विद्यालय है जो गांव है, उसका नाम है गुंदवाड़ा। तो आज गुंदवाड़ा का आवाज बारी बारी सुनने को मिला और जब उनका मम्मी पापा के दोस्त लोग तो सब भी सुनेंगे, ये तो वाह क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ऐसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वंस मोर वंस मोर। और हमारा फरमाइश भी जैसे आ रहा है भाई, हमें और एक गीत सुनना चाहिए। तो रेडियो मधुबन आज कार्यक्रम को सुंदर रूप में बखूबी में और अपना दिल का साथ हृदय का साथ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। चाहे अपना पास जो है, ना ज्यादा ना कम, जितना है उतना प्रस्तुत दे रहे। तो अगला प्रस्तुति के लिए हमारा दो छात्र उपस्थित है, तो उनको भी हालो करते हैं। तो शुरू करेंगे दो छात्र अपना परिचय का साथ।
1: मैं भावना कुमारी।
0: भावना ओके, बहुत अच्छा नाम है।
2: कुमारी
0: मंजू
1: कक्षा 10 में पढ़ती है।
0: और आज खुशी लग रहा है कि सभी आपका दोस्त लोग का सहेली लोग को सुने आवाज, मेरा का आवाज है ना, तो आपका आवाज उससे ज्यादा होना चाहिए, होगा। चलिए शुरू करें मंजू। ओके शुरू।
2: श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरन रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल विद्या बुद्धि देव मोहे हरेउ कलेश विकारी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर, राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र वंशुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंति निवार सुमति के संगी, कच्छन बरान विराज स्वेसा, कानन कुंडल कुछ कुंचित के साहात ब्रज ध्वजा विराजे, कांधे मुज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुनीति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु श्री तनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सुख समरूप दृश यही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उलाए, रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरति संभाई, सहस बदन तुम रो यस गावे, अस के श्रीपति कंठ लगावे, संकारी ब्रह्मादि मुनीषा नारद सार सही दहीसा, जम कुबेर दिक्पाल कहाँ थे, कवि गोविंद कही सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीवन कीना, राम मिलाए राजपदीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र भोजन पर बानो, लीलियो ताहे मधुर पर जानो, प्रभु मधिका मेले मुख माए, जल्दी लागे के शरद नाये, दुर्गम काज कितके जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे दे दे, राम दुआरे तुम रखवारे, ओतना अज्ञान बसारे, सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक आओ को डरना, आपन तेस मारो आपे, तीनों लोक हाकते गावे, भूत विषाण से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग रे से पीरा, जप निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सब परे राम तपस्वी राजा, तीन के का सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम द्वारे, अष्ट सिंगिनो नीति के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे बदन राम को पावे, जन्म जन्म करू बिसराव, अंतकार रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरिभक्त का, और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्वे सुकरे, संकट कटे मिटे सब वीरा, जो सुमिर हनुमत बल वीरा, जय जय जय हनुमान कशय, घर पे आकर गुरुदेव की नाय, जो सतबार पाठ कर कोई सुटे बंदी मां सु कोई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, वही सिद्ध साखी गुरीसा, तुलसीदास सदार से राखी जे नाथ दे महाडेरा, पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता माता सहित देव सुसुर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर। एक पूरा एक कोई स्टॉप नहीं, पूरा ब्रेक नहीं, पूरा आराम से ऐसे प्रैक्टिस कहां से किए, हमें तो कल सुनते रह गए, हमारा श्रोता भी भाई कब इसका मैंने ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक हमको देना ही पड़ रहा है। मंजू एक गीत जैसे हनुमान चालीसा आपने बताया, हनुमान का प्रभु श्री राम है ना, और श्री राम का पूरा वंश उनका पूरा परिवार का नाम ले लिए, जानकी का नाम आया है कि नहीं, हनुमान सीता राम और उनका प्रजा सबका नाम उसमें, और ऐसे कहाँ से सीखा तुम?
2: हनुमान चालीसा किताब
0: पढ़ते आप
2: जी,
0: पूजा पाठ भी करते
2: हैं,
0: किसका पूजा करते हैं?
2: हनुमान जी की और राम जी की,
0: हनुमान और राम को, और हनुमान राम को पूजा करते है ना, हनुमान का प्रभु कौन है? श्री राम, और श्री राम का प्रभु कौन है जानते हैं? श्री राम किसको पूजा करते हैं?
2: शिव जी की।
0: रामेश्वरम में श्री राम भी रावण को मारने के लिए शिव को पूजा, शिव को जानते हैं? अच्छा शिवलिंग देखे कि नहीं रामेश्वरम जब जाते हैं ना, आपका गाँव में तो शिव मंदिर होगा, है शिव मंदिर आपका गाँव में? हाँ कभी शिव मंदिर गए? हाँ शिव मंदिर जब जाते हैं, क्योंकि आप हनुमान को मानते हैं, हनुमान राम जी को मानते हैं प्रभु उनका, और हम हनुमान को मानते हैं, भक्त लोग हनुमान को मानते हैं मनुष्य, और हमारा हनुमान किसको मानते हैं? राम को, और राम किसको मानते हैं? सब पूरा चेन है, हमारा परिवार है, लेकिन इसलिए एक को मिलेगा तो सबको मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी जानकारी होना चाहिए। हनुमान का बारे में हमारा सर कुछ बताएंगे, सर हनुमान जी का बारे में थोड़ा बताइए। उनका आवाज तो हो गया, आप अपना परिचय दीजिए पहले।
3: मेरा नाम है गजेंद्र पाल सिंह।
0: जी सर,
3: मैं यहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुनवाड़ा में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ।
0: अरे बच्चे जैसे गीत गा रहे थे हनुमान का चालीसा, भाई लोग गाते लेकिन बहन भी कम नहीं है, हनुमान को पूरा अपना प्रभु मानकर चल रही, और हम तो भाई लोग भी हनुमान को मानते है क्योंकि हनुमान तो शक्तिशाली है, राम भक्त है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमारा कार्यक्रम को जो देख रहे थे क्या आपको महसूस हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है?
3: मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आज जो आप आए इसके कारण इन बच्चों को एक नया मंच मिल रहा है और ये अपनी कला का, अपनी प्रतिभा का आगे तक एक प्रदर्शन कर पा रहे हैं।
0: जी,
3: और रही बात हनुमान जी की, तो हनुमान जी एक शक्ति का स्रोत है।
0: जी,
3: और जब भी हमारे हिंदू धर्म में जब भी हम पुराने युद्ध के लिए जाते थे तो हनुमान जी महादेव जी की ललकार लेके शत्रुओं के ऊपर टूट पड़ते थे, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, और ये हमारे राजस्थान की परंपरा रही है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ।
0: इतना में तो जो सार बताए ये कम नहीं, सागर को भी संभाल लिया है। तो सार में सार ने बताया भाई, सभी किसी ना किसी रूप में हमें याद करते हैं, तो इस कार्यक्रम को सजाए और कुछ गीत बरा रेडी किए सर गाने के लिए। कोशिश करूंगा, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है ना, कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होता। आप कोशिश करें, एक कदम तो आगे आपको होना चाहिए और हमारा श्रोता मित्र आपको आगे बढ़ाएगा, आपका आवाज को भी हम सुनेंगे। लेकिन लेकिन सर अपना इंट्रोडक्शन प्लीज।
3: मेरा नाम गजेंद्र पाल सिंह है, यहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ।
0: जी सर, शुरू करें।

ही हो दरमियां तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी, तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहो कि शर्म से है लब सिले हुए, हाँ देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में, कल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के हजार दीप है जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।

0: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, तेरी पनाह में आश्रय हुए। हे हे हे हे हे हे हे हे।
1: वाह क्या खूब क्या खूब। पूरा हमारा श्रोता मित्र तो अपना वॉल्यूम को और तेज कर दिए और आपका आवाज में इतना दम है सर, इसका राज क्या है आप बताइए।

0: वांच मोर बोल के सभी बच्चों को चांस मिल रहा है। आज चांस का फायदा ले रहे, सब चांसलर बन रहे, चांस मिल रहा है इसलिए चांसलर बन जाता है। आज मौका मिला तो बच्चों का साथ बच्चे बन गए, याद किए हमारा सर और सभी स्टाफ भी अपना उमंग साथ दिखाए। तो हमारा दो छात्रा है तो उनको भी लेते हैं। हेलो, नाम बताइए प्लीज।
1: मेरा नाम नर्मदा कुमारी, मैं कक्षा 10 से हूँ।
0: वाह, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, पहला बार मौका मिला फिर भी बच्चे कितने उमंग साथ, इसका श्रेय तो भाई ये तो मीरा जैसे और ये मिट्टी का राज है, क्योंकि राजस्थान वीरों का भूमि है। राणा प्रताप से लेकर हमारा बहन भी कम नहीं है, भाई से भी टक्कर देंगे। अच्छा, आपको इतना आवाज बुलंद में बोल कोई डर नहीं लग रहा है? कोई डर क्यों?
1: बचपन से मैं बोलने में ऐसी माहिर
0: हूं। माहिर हूं, वाह, इसका श्रेय तो मैम को जाता है। तो आप नाम बताइए।
2: मेरा नाम आशा कुमारी है, मैं कक्षा 10 से हूं।
0: और आप कौन से क्लास में?
2: 10।
0: ठीक, शुरू करिए।

0: कब आओगे कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है।
1: वहाँ प्रोग्राम भी चल रहा है, वहाँ का आवाज हमारे पास आता है, हमारा प्रोग्राम भी तो वहाँ जाना चाहिए ना, क्या हो रहा है क्योंकि एक ही साथ बच्चों का एक प्रोग्राम रिकॉर्डिंग ऑडिशन हो रहा है ओपन राउंड में, और दूसरा तरफ कार्यक्रम भी चल रहा है नशा मुक्ति का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए हमारा, और एक प्रस्तुति छोटा सा गुड्डा आया, वो अपना परिचय देंगे, अपना नाम बताएंगे, रेडियो कार्यक्रम में आज सजाएंगे। एक गुलदस्ता बन रहा है सभी का, आवाज का गुलदस्ता, जैसे गुलदस्ते में वेराइटी फूल होता है, गुलदस्ते में बहुत सारा फूल होता है ना, ये आवाज का गुलदस्ता। और एक आवाज, आवाज का दुनिया में हम जा रहे हैं और आवाज में ही दम है। तो एक प्रस्तुति सुनाएंगे, अपना परिचय देंगे प्लीज।
2: मैं कमलेश कुमार सदस्य।
1: हाँ, क्या प्रस्तुत करेगा, सुनाओ एक गीत।
2: मन ने थाम थाम रखे जेरे जंजे रखे जोड़े, तेरी गैल रो रुए बिछोरी बावली सी हो रे, मने आए जावे ख्याल तेरे खाए जावे ख्याल तेरे, चिणी कोणी देती है बेरी तन्ने आई मन्ने, गीता में गाई कदे छाती गेल गाई मन्ने, तेरी याद गणी पाई मन्ने, साम साम रखी गोद छाती गेल गाई मन्ने, चित भी गया रे तेरी याद गणी पाई।
1: याद याद करते हमें, जो हमें प्यारा लगते हैं, जो स्नेही है उनको कभी भूल नहीं पाते, चाहे कोई भी हो अपना जीवन में, जो एक बार ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास होता है, चाहे माँ बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे भगवान हो, जो भी है विश्वास होना चाहिए। और इस गीत में देशभक्ति का साथ साथ एक गीत सुनाए दिए, तो सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, लेकिन मीरा को कौन भूलेगा, डिमांड आया पीछे से, डिमांड हमारा बच्चे भी कम नहीं है, सर मैं नहीं पहले आप, उन्हें दूसरे को आगे देते हैं, मीरा इशारा कर रही सर मैं तो दे दिया, मेरा सर को आगे दीजिए, यही होता है विशेषता, खुद नहीं खाकर दूसरे को जो खिलाते हैं वो महान बनते हैं। आज मेरा दिखा दिया भाई मैं तो क्या गाऊ, किन्तु मेरा सर को दीजिए, मेरा अपना आवाज को रोक दिया और आपको चांस दिया, सुना है सर?
3: सर मैं तो थोड़ा विशेष तो नृत्य में शौकीन हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ गाने की, क्योंकि हमारे विष्णु संप्रदाय के गुरु जम्बेश्वर भगवान के हाँ। का एक भजन में प्रस्तुत करता हूँ।
1: जी सर शुरू करें सर।
2: गुरु जी धोरे ऊपर धोरो धोरे पे मंदिर जोर, गुरु जी धोरे ऊपर धोरो धोरे पे मंदिर जोर, गुरु जी मोर पपैया बोले जट कोयलड़ी रासोर, गुरु जी मोर पपैया बोले जट कोयलड़ी रासोर, गुरु जी पीपा सर्री नगरी जट आप अवतार, गुरु जी पीपा सर्री नगरी जट आप लियो अवतार, अरे हंसा माता को दिखलाया सकिया गाया मंगलाचार, गुरु जी धोरे ऊपर धोरो धोरे पे मंदिर जोर, गुरु जी मोर पपा बोले जट कोयलड़ी रासोर, गुरु जी समरा तलरो धोरो लागे शिव जी रो के लास, गुरु जी सम तलरो धोरो लागे शिव जी रो के लास, तार तपरी महिमा भारी जाने सूरज रो प्रकाश, गुरु जी धोरे ऊपर धोरो धोरे पे मंदिर जोर, गुरु जी मोर पपैया बोले जट कोयलड़ी रासोर, गुरु जी थारी निज मंदिर में समाधि मुक्ति रो धाम मुकाम, मैं तो साखी गावा ताने निज निज करा प्रणाम, गुरु जी धोरे ऊपर धोरो धोरे पे मंदिर जोर, गुरु जी मोर पपैया बोले जट कोयलड़ी रासोर। थैंक्स
1: सर, इतना ताली तो हमारा बच्चे को नहीं मिला था, लेकिन आपको मिला, मीन्स इसमें दम है, और गुरु का बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए विद्यालय में गुरुकुल में जब गुरुकुल था तब भी शिष्य आते थे, अभी तो विद्यार्थी और मास्टर साहब हो जाते हैं, लेकिन गुरु का दर्जा गुरु ही होता है, और सभी गुरु का गुरु सदगुरु होता है, जितना गुरु है संसार में बहुत सारे गुरु है सर।
3: जी सर,
1: आप भी एक गुरु, मैं भी एक गुरु, सभी गुरु होते हैं, लेकिन गुरु हम सबका गुरु सदगुरु एक है,
3: सदगुरु एक है, जो हमें किसी को मोटिवेट करे, जो प्रेरणा दे, वो हम सभी
1: सीखते हैं, वो हमारा शिक्षक बन जाते हैं
3: जी,
1: चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। तो अच्छा से जो प्रस्तुति दी है, भाव का साथ, भावना का साथ, और सदगुरु को भी सलाम करते हैं। गुरु को तो है ही है, क्योंकि गुरु को बिना सदगत तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो आप बहुत अच्छा प्रस्तुति दिए, मीरा को भी याद करते हैं। मीरा आज आओ, मीरा इस बीच में मीरा को भी साथ रखेंगे, कहीं मीरा का बिना हमारा भक्ति अधूरा हो जाएगा। मीरा एक दो अंतरा जो आपका पसंदीदा गीत सुनाएगी।

मुश्किल महदास तेरा अब जल्दी आओ ना, किसको रिश्ते गिनवाऊं किस जात बताऊं मैं, क्या क्या जगम दिए जगने किस गात बताऊं मैं, बिन कुछ पूछे शाम हमारा, बिन कुछ पूछे शाम हमारा कष्ट मिटाओ ना, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल महदास तेरा अब जल्दी आओ ना, कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे हम

0: भक्तों की विपदा को बाबा आग लगाओ ना, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना।
1: हमारे पास शब्द ही नहीं, जैसे मीरा को हम क्या शब्द दू मीरा। और ये प्रस्तुति आज तो मौका दिया रेडियो मधुबन वाले, और इस तरह प्रस्तुतियां कहाँ कहाँ प्रस्तुत किए बताओ, कब चांस मिलता है?
2: मैंने अभी तक कहीं पर भी प्रस्तुति नहीं की, या हमारे विद्यालय में एक बार गया था बस केवल।
1: फिर भी इतना बुलंद और इतना कॉन्फिडेंस जो अनुभवी जैसे है ना, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, कुछ इशारा कर रहे हैं अभी हमारा इस आवाज में, और एक गुलदस्ता रुक गया तो अपना परिचय भी देंगे, सभी का तो आवाज लिया है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, अभी तो देख रहे सभी को, लेकिन आपको क्या लगा और इस तरह प्रोग्राम होना कितना बार चाहिए, साल में एक बार ना बार बार?
3: मेरे को ये लगा मीरा नर्मदा निर्मा इनका कॉन्फिडेंस बुलंद है, इनको मैं मीरा को प्रथम स्थान दूंगा।
1: अरे वाह, प्रथम स्थान तो सभी सहमत है। हमारा रेडियो कार्यक्रम में जो श्रोता सुन रहे लिस्नर वो भी निर्मा को भी मिलेगा सेकंड प्राइज। आप क्या बोल, आपका नाम बताइए।
4: मेरा नाम पंकज शर्मा है। हाँ, मैं फिजिकल टीचर हूँ।
1: फिजिकल टीचर, इसलिए सभी बच्चों को प्राय अनुशासन में रखते, क्योंकि फिजिकल टीचर में शरीर ठीक रहेगा तो मन मस्तिष्क भी ठीक रहेगा।
4: बिल्कुल सर।
1: और आप कहाँ से प्रॉपर?
4: मैं श्री गंगानगर से।
1: श्री गंगानगर, और श्री तो मैंने श्रेष्ठ होते, श्री जो होते श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ जगह से आए और श्रेष्ठ काम पुनित काम कर रहे हैं ना, बच्चों को अनुशासन कर।
4: बिल्कुल सर।
1: सावधान बोले, सावधान बच्चों रहते है ना, कहते ना आपका वर्ड सावधान, सब अटेंशन है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किस बात को लेकर। खासकर हमें बहुत खुशी लगा क्योंकि इतना दूर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंडवाड़ा और रेडियो मधुबन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का दोनों का सहयोग से बच्चों का टैलेंट हंट प्रतिभा खोज में आज ओपन राउंड में बच्चे के साथ साथ शिक्षकगण भी बच्चे बन गए है ना सर।
5: बहुत अच्छा लगा यहाँ पाए,
1: खुशी मिला।
5: हमारे साथी मनोज जी का गाना सुनने
1: सर, गाना तो सुनने सुना है लेकिन उनका पैर रुक नहीं रहा था, वो बीच बीच में पूरा बेंच में कंपटीशन में, क्योंकि हम तो ये रेडियो कार्यक्रम है, उनको पिक्चर नहीं देखा सकते लेकिन उनका भाव और भावना का हम सलाम करते हैं, उनका जो शरीर को भी रोक नहीं पाता है, हम तो आवाज को रोक नहीं पाए ये तो शरीर को भी रोक नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ, आज के लिए हम आप सबसे लेते हैं इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी स्कूल के विद्यार्थियों को। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: Just chat with ourselves once in a while, like we chat with other people if they're not feeling too well internally.
1: Wonderful chatting with you, sister. And this was a stamp and a final lesson for me on anger and going beyond anger, why it is necessary and how important it is for my health and my health of my family and surrounding and society. And last time I used the lines which I had read, that when angry, you lose more than your temper. Om Shanti.
0: Thank you.
2: Our negative emotions have an impact on the mind, body and relationships. Physical disease is easier to heal, but emotional hurt and relationship conflict is a deeper impact. Sanskars of this birth are easier to change. Sanskars being carried for many births need more attention. Assertiveness is stability inside and focus on the act, not on the person who has made the mistake. Assertiveness retains the respect for the person and corrects the task. Anger is an attack on the person and also brings up the past. A silent mind silences other noisy minds. If parents and teachers have silent minds, they will help children to concentrate. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 0999974455.
3: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और ये जो प्रोग्राम है जिसका इंतजार आप पूरे सातों दिन करते हैं, तो यकीनन जिस तरह आपको इंतजार रहता है वैसे ही हमें भी इंतजार रहता है। लेकिन इंतजार के साथ साथ हमारा एक और काम रहता है, वो ये कि बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो समाज को प्रेरित कर सकें, कुछ सिखा सकें, कुछ बता सकें, इस तरह की कहानियाँ आप सबके सामने हम लेकर के आए। हमारा भी पूरा सप्ताह बस इसी जद्दोजहद में निकल जाता है। तो चलिए आज देखते हैं आज की कहानी, यकीनन आपको प्रभावित जरूर करेगी। और आज हम चल रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर से हमारे साथ हमारे आज के विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, श्रीमान गोकुल प्रसाद पारिक सर और उनकी श्रीमती जी निर्मला पारिक मैम। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पारिक सर जो है वो राजस्थान के पहले ऐसे दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं जो 10वीं कक्षा में वरीयता सूची में जिन्होंने अपना स्थान बनाया था, और उसके अलावा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी, यानी जिसको RAS के नाम से राजस्थान में जाना जाता है, उसमें भी चयनित होने वाले वो पहले दृष्टिबाधित व्यक्ति रहे हैं। और अभी कुछ ही सालों पहले वे सीनियर RAS ऑफिसर के पद से रिटायर भी हो चुके हैं। तो चलिए इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज उनकी कहानी में क्या संघर्ष रहा या उनकी कहानी किस तरह से आगे बढ़ी, खासकर उनको ये अपने हमराही की, ये जानना समझना बहुत दिलचस्प होगा। तो पारिक सर और मैम, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सभी को।
3: जी सर, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप, हमने तो जो कुछ बता सकते थे वो अपने तरीके से बताया, लेकिन आप स्वयं अपने बारे में हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा बताएं, अपने जीवन परिचय के बारे में, ये दृष्टि बाधित आप किस तरह से हुए, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड प्लीज सर।
4: ऐसा कुछ बहुत कुछ तो बताने जैसा है नहीं, लेकिन ये है कि मैं बहुत छोटा, छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था, और लगभग 1.5 साल की एज में स्मॉल पॉक्स, जो माता की जिसको कहते थे चेतक, उससे मेरी दोनों आंखों की जो दृष्टि है वो खराब हो गई, खत्म हो गई थी। लेकिन 1.5 साल की एज में, उस जमाने में 1950 में, जैसे आईसाइट चली जाती है तो ये समझा जाता है कि भाई, समझा जाता था उस समय, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल नहीं थी, तो यूँ समझा जाता था कि जीवन नष्ट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन बाद में मेरा सौभाग्य था और ये पता चला कि भाई जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए भी स्पेशल स्कूल होते हैं, पर्टिकुलरली अजमेर में स्कूल जो है उसके बारे में हमको मेरे दादाजी को, एक्चुअली मेरे दादाजी को पता था, उन्होंने मुझे स्कूल में ले जाकर भर्ती करा दिया और मैं वहाँ पढ़ने लगा। ऐसे तो खट्टे मीठे कई अनुभव होते ही हैं, लेकिन मैं बस सबसे अच्छी बात ये थी कि पढ़ाई चलती रही और पढ़ाई में मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर्स रहते थे तो बढ़िया रहा। कुल मिला के जब टेंथ में आए, टेंथ का रिजल्ट आया, तब शायद उसका वो एक ऐसा परिणाम मिला जिससे भाई हमारा स्कूल अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा और गांव भी करने लगा, परिवार भी करने लगा। मैं तो इतना कुछ समझता नहीं था ज़्यादा, तो खुश तो मैं भी था बहुत कि अखबार वाले, रेडियो वाले, उसमें टीवी तो था नहीं, तो इंटरव्यू लेते थे, खुश होते थे, वही क्या बात है, अखबारों फोटो सप्ताह, तो ये सब हुआ। आठवीं पोजीशन मेरी आई थी उस टेंथ में, उसके बाद में मैंने पढ़ाई करी, लेकिन इस बीच मैंने एसटीसी ट्रेनिंग करी।
3: अच्छा,
4: समय तक ब्लाइंड को अलाउ नहीं था एसटीसी ट्रेनिंग में जाना
3: जी,
4: उनको सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था और माउंट आबू में एसटीसी स्कूल को उन्होंने उसके लिए चुना था कि भाई वहाँ पर हम हमारे विजुअली इम्पेयर्ड ट्रेनिंग होंगे वहाँ पर सिखाएंगे। तो हम लोगों ने वहाँ ट्रेनिंग की, मैं भी था, मेरे साथ चार साथी और थे
3: जी,
4: ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करने के बाद में बड़ी मुश्किल से, अब उन डिटेल्स में तो मैं क्या जाऊँ कि उस समय पोस्टिंग कराना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, इस तरह से सिस्टमेटिक तो नहीं था पोस्टिंग होना और फिर किसी ब्लाइंड के लिए पोस्टिंग पा लेना और वो भी एक सामान्य स्कूल में, जो तो बहुत बड़ी बात, उसमें या तो म्यूजिक टीचर बन जाते थे या तो फिर तो ज़्यादा पढ़ जाते और एमए वगैरह करने के बाद या पीएचडी वगैरह कोई कर लेते, वो लेक्चरर बने थे उस समय तक, ये सुना था हमने
3: जी,
4: या म्यूजिक टीचर बने थे। बाकी एक कॉमन स्कूल में जो उसमें टीचर बनना बहुत मुश्किल था, खैर जैसे तैसे काफी संघर्ष के बाद में मैं टीचर बना, लेकिन मुझे संतोष नहीं था क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना काफी चैलेंजिंग तो था, लेकिन चैलेंजिंग से तो कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत इस बात से थी कि सोसाइटी में जो मैसेज आता था ना वो मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए कम था।
3: अच्छा जी,
4: वो ये समझा जाता था कि प्राइमरी स्कूल के टीचर तो बहुत साधारण टीचर होते हैं
3: जी।
4: तो मैंने आरपीएससी का एग्जाम दिया, आरएएस आरटीएस का जो एग्जाम होता है, एग्जाम मैंने तो दिया केवल उस समय तो ये सोच के दिया था कि भाई मुझे सिद्ध करना है कि मैं प्राइमरी स्कूल टीचर के लेवल से थोड़ा ज़्यादा योग्य हूँ या ऊपर हूँ, ये सिद्ध करना था मुझे। उस समय तक ये नहीं लगता था कि मैं ज्वाइन कर पाऊँगा
3: जी,
4: लेकिन हुआ ये कि मैं सिलेक्ट हुआ पहले चांस की और मैंने ज्वाइन भी किया। अब क्या है कि ये प्रोग्राम इतना भी इतनी भी आजादी नहीं देता कि उन सब बातों की चर्चा करें कि कितनी कितनी समस्याएं आई थी
3: जी जी जी जी जी,
4: क्योंकि समस्या तो जिस दिन आपने आंखों की ज्योति खो दी ना उस दिन ही समस्याएं शुरू हो गई
3: जी जी जी, ठीक कह रहे
4: हैं। चर्चा का विषय तो ये होता है कि कब समस्या नहीं आई,
3: बिल्कुल सर, लेकिन
4: फिर ये समझो कि ये होता है कि आपने उस समस्याओं पर किस तरह से पार पा लिया।
3: निश्चित रूप से सर, लेकिन होता क्या है ना सर, जब कोई काम पहली बार होता है तो उस समय की जो परिस्थितियां बनती हैं या उस समय की जो एक तरह से जो संघर्ष होता है वो आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाने का कार्य करता है।
4: एक्चुअली ये कहना बिल्कुल सही है क्या है कि शुरू शुरू में जब आप किसी भी, जब रास्ता नहीं होता है उस पर आप चल के जाते हो, कठिनाइयां भी आती हैं और उसमें, लेकिन उसके साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है कि हम बहुत से अन्य लोगों के लिए एक राह तैयार कर रहे होते हैं। मतलब मैं तो यूँ कहता हूँ कि जो भी ब्लाइंड व्यक्ति कहीं पर पोस्टिंग लेके काम करता है किसी जगह पर, चाहे वो कोई स्कूल टीचर हो, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कुक का काम भी करते हैं, मुझे उनसे बड़ी खुशी होती है। देखो हमारे पास तो कई सारी सुविधाएं हैं, ये फिर भी काम कर रहे हैं जिन जो सुविधाएं दूसरों के लिए जुटा रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि हम ब्रांड एम्बेसडर होते हैं ब्लाइंड कम्युनिटी के
3: जी,
4: और हमको ये दिखाना होता है कि और क्योंकि जो जो भी बाद में किसी को देखेगा ना, किसी भी ब्लाइंड को, तो वो

0: तो फिर समस्याएं थोड़ी बहुत कम ही हुई है, बड़ी नहीं, तो
1: तब
0: बढ़ती थी,
1: तो सर
0: लेकिन
1: आपका
0: सुविधाएं भी
1: समस्या
0: बढ़ती थी।
1: समाधान का काम शुरू हो गया फिर। जी
0: एक्चुअली वैसे तो मैं नहीं मानता ये बात, क्योंकि मेरे लिए दिक्कत ही होती थी कि मैं अगर मैं किसी ऑफिस में पोस्टेड हूँ, उस ऑफिस में अगर मैं नया हूँ तो मुझे सब लोग ही को अपने बारे में बताने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते। इस बीच अगर बाय द वे मेरे बॉस का ट्रांसफर हो गया तो उनको फिर से जीरो से उनको सिखाना पड़ता था, क्योंकि वो ये सोचते थे कि सब ब्लाइंड है। ब्लाइंड के बारे में लोगों की धारणा ये होती है कि वो काम करने के लिए थोड़े आए हैं, ठीक है उनको सरकार सुविधा दे रही है तो ठीक है उनको लगा दिया, बैठे रहो। लेकिन ये भावना खत्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप काम करते हो, काम किए बिना बैठे रहोगे ना, तो वो और भी मुश्किल काम होगा। तो मैं ये देखता था कि जब भी हमारे बॉस का ट्रांसफर हो गया या मेरे असिस्टेंट का ट्रांसफर हो गया, तो मुझे जीरो से शुरू करके उनको एक बार फिर से ये समझाना पड़ता था कि भाई मैं खाली बैठे रहने के लिए या कोई शोपीस नहीं हूँ, मैं मुझे काम करना है। और जितना अच्छा काम करके आपका आउटकम होगा ना, जितने अच्छे रिजल्ट्स आप दोगे ना, वो आपके आपके मैं तो मेरे लिए तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे बाद में आने वाले जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड उस जगह पर आते हैं ना, उन सब के लिए वो काम आते, वो सब।
1: बहुत खूब सर। निश्चित रूप से ये एक जो ऐसा मतलब संघर्ष है जिस पर जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। और सर कहीं कहीं जो बातें आप कह रहे हैं ना वो आज भी देखने में आती हैं। तो उस जमाने में यानी आज के लगभग मुझे लगता है 40-50 साल पहले तो और ज्यादा रही होंगी।
0: हाँ देखो ऐसा है, आज तो टेक्नोलॉजी ने काफी हमारी सुविधाएं बढ़ा दी हैं। सबसे
1: जी
0: बड़ी सुविधा तो यूँ समझो कि जैसे आईटी सेक्टर ने जो प्रोग्रेस कर दिया ना, कम लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, इन्होंने हमारी जिंदगी को बहुत इजी बना दिया। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जो बहुत उपयोगी हो गए। लेकिन जब हम लोग काम करते थे, मेरी जब पोस्टिंग हुई उसके बाद मैंने जब तक काम किया, तब तक भी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप और पर्टिकुलरली एक्सेसिबिलिटी के मामले में तो बहुत मुश्किल, तो हमको तो मैनुअली सारे काम करने पड़ते। एक बात ये थी कि सबसे बड़ा जो होता है कि आपको पग पग पर खतरा रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं कितने रिस्की रिस्की डिसीजंस लेने होते हैं, उन सब पर साइन होते हैं, सरकारी मामलों में आप जानते हैं एक
1: बड़ी
0: पैसे
1: महत्वपूर्ण
0: का घर
1: बात है
0: हो।
1: सर। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको, लेकिन कभी मन में ये ख्याल आया सर कि यार बहुत हो गया बस प्रशासनिक पद छोड़ दिया जाए, ऐसा कभी लगा आपको सर?
0: नहीं, ऐसा मुझे तो अभी भी नहीं लगता। मैं तो अगर मुझे तो मेरी हेल्थ वगैरह के हिसाब से और उसके हिसाब से तो मुझे अभी भी नहीं लगता, मेरे दिमाग के हिसाब से भी नहीं लगता। मैं मुझे ये कभी नहीं लगा कि बस बहुत हो चुका, काम करने में मजा आता था। मेरे कॉलिग्स और मेरे जो सबोर्डिनेट्स थे ना, वो मुझे शाम को 5 बजे भी कहते, सर आप ऐसे लगता है जैसे आप अभी अभी ऑफिस आए हैं। मतलब मैं, क्योंकि मैं कभी इस तरह का टेंशन नहीं लेता था, मैं अपने किसी काम को टेंशन के रूप में नहीं लेता था। मुझे टेंशन इस बात की होती थी खाली कि काम हुआ नहीं, और हमेशा मैं अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट के भी फेवर में नहीं रहता था। मैं नहीं चाहता था कि कभी कोई मुझे ऐसे समझा जाए कि आप कोई स्पेशल व्यक्ति हैं, तो आपको मुझे कभी कोई स्पेशल सुविधा वैसे इस तरह की नहीं दी गई कि अगर मेरी पोस्ट के लिए गाड़ी अवेलेबल है तो गाड़ी दीजिए मुझे, लेकिन नहीं है अवेलेबल तो ऐसा नहीं है कि भाई मुझे स्पेशली उन्होंने कोई गाड़ी दे दी हो, मुझे कोई स्पेशल असिस्टेंट दे दिया हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। ऑल्दो दिया जाना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, तो कुछ ऐसी सरकार को कोई कमेटी बना के कुछ सोचा जाना चाहिए और कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए, ताकि उनका उनकी जो कैपेबिलिटी है ऐसे अधिकारियों की, ऐसे कर्मचारियों की, उसका हम अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अब वो तो अलग प्रश्न है, उस पर ज्यादा
1: जी,
0: अभी
1: निश्चित
0: चर्चा
1: रूप से
0: किया जाना नहीं,
1: वो तो थोड़ा सा एक अलग लेवल की बात हो गई
0: हाँ
1: निश्चित रूप से।
0: विषयांतर हो जाएगा।
1: तो यहाँ पर सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा कि मैम का भी परिचय लिया जाए और हमारे श्रोता उनको भी सुन सकें। तो मैम जरा आप भी प्लीज अपने बारे में बताएं।
2: मेरा नाम निर्मला पारी, मैं
1: जी मैम।
2: इनकी धर्मपत्नी हूँ
1: जी मैम।
2: और क्या परिचय हमारी शादी 9 में हुई थी।
1: जी मैम। तो आप थोड़ा सा मैम बताएं कि आप भी राजस्थान से हैं या आप कहीं और से हैं?
2: नहीं एक्चुअल हम कभी राजस्थान से थे, लेकिन हमारे दादाजी चले गए थे यहाँ से,
1: अच्छा।
2: तो हमारे जन्म मेरा जन्म है जो उड़ीसा में हुआ था।
1: अच्छा

0: अच्छा अच्छा ओ
1: तो
0: क्या बात।
1: एक्चुअल में हम ऐसे तो उड़ीसा के ही हो गए। हाँ
0: बिल्कुल मैम, अब आप राजस्थान के हो गए।
1: गए।
0: तो पारिक सर, ये सब जब चल रहा था, प्रशासनिक सेवा, फिर टीचिंग की जॉब, उसके बाद में सरकार के साथ काम करना, तो विवाह के बारे में कब सोचना शुरू किया आपने? किस तरह वो कहानी आगे बढ़ी?
1: एक्चुअली क्या है कि विवाह तो विवाह के बारे में मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स सोचा करते थे।
0: जी
1: मेरे पास कई ऐसे कुछ प्रपोजल्स आए थे जिनकी वैसे अलग अलग चर्चा करना कोई बात हो जाएगी,
0: जी
1: लेकिन वो प्रपोजल आए लेकिन मैं उन पर गौर करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि विवाह जो होता है ना वो एक लड़के एक लड़की का नहीं होता है।
0: जी
1: तो इसलिए मैं अपने पेरेंट्स की खुशी के हिसाब से ही विवाह करना चाहता था।
0: अच्छा
1: कुछ ऐसे हमारे जो यहाँ के लोकल भी ऐसे ऐसे रिलेशन ऐसे भी मतलब रिलेशंस के मामले के जरिए भी कुछ रिश्ते आए थे, लेकिन
0: जी
1: वो बैठे नहीं, कुछ न कुछ रीजन हो जाते थे। बात तो कई दिनों से चलती थी और काफी कुछ लोग निराश भी होते थे, कुछ लोग सत्याय भी करते थे। अल्टीमेटली हमारे बुआजी फूफा जी हैं वो वहीं रहते हैं जहाँ वो घर है, मेरी धर्मपत्नी के पिताजी का घर समझो,
0: जी जी
1: वो घर जहाँ है वहीं हमारे बुआ जी और फूफा जी के आसपास ही रहते थे। उड़ीसा में अनुगुल नाम की जगह है, डिस्ट्रिक्ट
0: जी
1: है वैसे तो वो लोग मिलते जुलते रहते थे, तो परिवारों की आपस में परिचय होता ही था। तो उन्होंने एक दिन पिताजी से चर्चा की,
0: जी
1: लड़की है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को लगेगी या नहीं पता नहीं, अगर मेरे पिताजी से उन्होंने कहा कि अगर आप सहमति दो तो मैं उनसे चर्चा करूं, तो बात चली,
0: जी
1: यस हो गया और शादी हो गई। मतलब पूरी तरह से फैमिली द्वारा निर्धारित तो और उनके द्वारा ही उसका एग्जीक्यूशन और सब ऐसे ही हुआ।
0: जी सर
1: ये बात तो हमारी लाइफ में मतलब ठीक है, जैसे नॉर्मल जिंदगी
0: जी
1: चल रही है चलती रही, अच्छी खासी मतलब
0: आपने कहा सर कई प्रस्ताव आए, तो वो मतलब प्रस्ताव मतलब पिताजी के पास ही आए या डायरेक्टली आपके पास आते थे? और अगर वो
1: मेरे पास
0: समाज
1: तो आए थे, मेरे पास जो जो आए थे वो तो ऐसे आए थे जो कि ऐसे कहना चाहिए ना अपने सामाजिक आधार पे नहीं आए,
0: जी,
1: जो मेरे पास डायरेक्ट आए ना वो तो ऐसे आए थे दोस्तों
0: वो आपके दोस्तों की मदद से या किसी जान पहचान से? जी
1: के या जो मेरे साथ पढ़ने वालों के या
0: जी
1: ऐसे
0: मतलब
1: ऐसे
0: मैं
1: आए
0: सीधा
1: थे।
0: सीधा पूछना ये चाह रहा हूँ सर कि जब आप RAS ऑफिसर बन गए और वो उस जमाने में नई बात थी, सही, तो समाज
1: हाँ
0: में परिवार में ये चर्चाएं नहीं हुई आगे होकर के कि भाई देखिए अब ये व्यक्ति बहुत काबिल हैं और इनको जो है हमें अपनी मतलब बेटी देनी चाहिए या यहाँ रिलेशन करना चाहिए, इस तरह की बातें?
1: ऐसे मतलब मेरे से तो किसी ने ऐसी चर्चा की नहीं, पिताजी
0: नहीं, पिताजी से आपने सुना हो बाय द वे?
1: से भी कोई मतलब उस जमाने में शायद एक्सेप्टेंस आज के जैसा नहीं था,
0: नहीं था निश्चित रूप से सर।
1: इसलिए लेकिन क्या था कि एक्चुअली कुछ ऐसे भी रिश्ते आए थे जिनको हम लोगों ने आउटराइट ये रिजेक्ट इसलिए कर दिया,
0: जी
1: जैसे कोई विकलांग जैसे मतलब कोई ब्लाइंड लड़की हो, ब्लाइंड का तो आया नहीं वैसे,
0: हाँ, अदर है, अदर डिसेबिलिटी में हो बाय द
1: लड़की
0: वे।
1: का आता जैसे वो सुन नहीं सकती थी बोल नहीं सकती थी, तो
0: अच्छा
1: मैंने उसके लिए मैंने तो उस समय यद्यपि मैं शादी के मामले में बीच में बोलता नहीं था लेकिन ऐसे रिश्ते के लिए मैंने खुद भी मना कर दिया, मैं माता श्री को पिता श्री को कहा नहीं मैं ऐसी शादी नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कि मैं विकलांग व्यक्तियों को मैं नजरअंदाज करना चाहता, लेकिन
0: जी
1: मैंने कहा इससे मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में बुरी लाइफ जिंदगी में कठिनाई आ जाएगी,
0: निश्चित रूप से।
1: जो लड़की बोल नहीं सके और उसके इशारे मैं नहीं समझ सकूं,
0: बिल्कुल
1: मैं
0: सर
1: कुछ बोलूं उसको वो समझ नहीं सके क्योंकि उसको
0: जी
1: सुनता नहीं है, तो ये तो ऐसा सोना किस काम का जो कान कान तोड़े,
0: जी
1: ऐसे रिश्ते के लिए तो मैंने खुद ही डायरेक्टली मना कर दिया।
0: जी सर
1: तो मैं मतलब मेरे परिवार वालों ने भी आगे बढ़ के ये स्वीकार किया था कि भाई हम कोई और जैसे आंशिक
0: कुल
1: जैसे
0: मिलाकर के समाज में वही सब था कि भाई ये किसी तरीके से इनको डिसेबिलिटी है तो रिलेशन भी इनका ऐसे ही किसी व्यक्ति से होगा,
1: हाँ लोगों की धारणा तो यही होती है, अभी भी मुझे लगता है यही होती होगी,
0: निश्चित रूप से सर यही कारण है
1: मैं
0: कि इस तरह
1: ज्यादा
0: के। जी
1: तो ज्यादा कांटेक्ट में इस तरह के मैं आया नहीं मैं इन दिनों में,
0: जी जी जी
1: क्योंकि मैं मेंटलिटी तो कभी चेंज होती नहीं है, खाली वो क्या कहना चाहिए कि एक्टर बदल जाते हैं बाकी किरदार तो वो ही रहते हैं।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल।
1: तो वो चल रहा है वो अभी भी, बाकी उस समय भी ऐसा ही था, बल्कि उस समय कुछ ज्यादा था। आज एजुकेशन के कारण क्या, आज लड़कियां थोड़ी इंडिपेंडेंट खुद होने लग गई, खुद उनकी सोच डेवलप होने लग गई
0: जी।
1: वो बहरहाल जो भी हुआ देर से मतलब जैसे भी हुआ, लेकिन शादी जो हुई वो कम्प्लीटली एक्सपेक्टेशंस या जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल अच्छी हो गई। और
0: तो निर्मला मैडम के यहाँ जब प्रस्ताव गया सर, तो वो तो फिर मतलब तुरंत ही स्वीकार हो गया होगा क्योंकि वो परिचित के माध्यम से गया था। तो
1: तुरंत तो कैसे होता है, वो भी वहां भी विचार विमर्श चला इनके परिवार में।
0: अच्छा
1: आप ही बताएं ज्यादा बेटर है।
0: जी मैम बताएं प्लीज निर्मला मैम। कि
2: मतलब क्या है कि मैं इतनी बड़ी तो थी नहीं।
0: जी जी जी मैम।
2: तो 20 इयर्स 20 साल की थी मैं।
0: जी मैम।
2: तो हमारे पापा जी तो जो है ना अब तो है नहीं
0: जी,
2: वो थोड़े अलग किस्म के इंसान थे
0: जी मैम।
2: उनको की योग्यता की पहचान थी देखो।
0: क्या बात जी।
2: उन्होंने फिर भी उन्होंने विचार विमर्श किया घर पे, मम्मी है दादी और उनसे विचार विमर्श किया और उनके उनके जो जान पहचान थे उनसे विचार विमर्श किया
0: जी।
2: और फिर उनको सलाह दी कि आप एक बार देख कर ऐसे मना मत करो
0: जी,
2: मत करो
0: जी।
2: तो वो उड़ीसा से उनके जो फूफा जी है
0: जी,
2: हमारे फूफा जी मतलब उनके साथ यहाँ पे आए।
0: अच्छा।
2: फिर यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से उन्होंने देख के फिर घर गए। घर जाने के बाद मेरे से पूछा उन्होंने, उस जमाने से भी आज अब भी कई लोग ऐसे हैं कि बेटियों को पूछते नहीं
0: जी,
2: लेकिन उन्होंने मेरे से पूछा अगर तू हाँ करेगी तभी कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर।
0: जी मैम।
2: तो मैंने भी सोच समझ के, अब जितनी मेरी क्षमता थी उस टाइम सोचने की,
0: बिल्कुल मैम,
2: मैंने सोच के फिर हाँ भरी, फिर ये सब रिश्ता हो गया, हो गई।
0: वाह क्या बात। लेकिन कोई ऐसा रहा मैम आपके परिवार में जिसने विरोध किया हो?
2: उनका तो कोई सामने तो देखो कोई आया नहीं
0: जी,
2: क्योंकि मेरे पापा ऐसे आदमी थे वो थोड़े अलग ही तो थे, मैंने बताया आपको
0: जी जी जी।
2: तो लोग सामने बोलने से भी थोड़ी डरते थे
0: जी जी जी,
2: पता नहीं ये क्या कह देंगे। और वो मेरे पिताजी जो थे वो मानते नहीं थे कि हम यहाँ उड़ीसा में रहते हैं, वो राजस्थान में रहते हैं
0: जी मैम,
2: ऐसी चीजें वो मानते।
0: अच्छा।
2: उनको बस उनको क्या है कि उनको योग्यता वो पहचानते थे और वो ये नहीं देखते थे कि भाई आदमी जो वो ये चाहते थे कि भाई लड़की की शादी करनी है, मान लो वो बाद में हो जाए तो ऐसे भी हो सकता है
0: जी।
2: और ऐसे भी सोचते थे वो कि मान लो मैं किसी से शादी कराऊं और वो योग्य नहीं हो, खाली मतलब सुंदर हो तो उसका क्या करना है।
0: क्या बात है जी जी जी।
2: कम से कम योग्यता तो होनी चाहिए।
0: बिल्कुल मैम।
2: पापा जी ये सोचते थे और कुछ कुछ मेरी सोच भी मेरे पापा जी की तरह।
0: बहुत अच्छी बात है मैम जी। तो आपने मैम मतलब सर से मिलने से पहले कोई परिचय थोड़ी रहा होगा आपका ये कि ब्लाइंड व्यक्ति कैसे होते हैं कैसे जी?
2: ऐसे तो मैंने बता दिया था।
0: अच्छा।
2: ब्लाइंड है। और क्या कि उससे पहले हम जहाँ पे रहते थे हमारे पड़ोस में एक लड़का कॉलेज में एडमिशन लिया था।
0: अच्छा।
2: वो ब्लाइंड था।
0: अच्छा।
2: उसको मैंने देखा था वो कैसे क्या करता था, उसको मैं देखती थी तो उसको उसका ध्यान था मुझे ब्लाइंड लोग। हमारे भुवनेश्वर में स्कूल था और एक ढेंकनाल करके स्ट्रीट है वहाँ स्कूल था और मुझे कुछ पढ़ने का शौक था, कुछ पढ़ते थे और करते थे तो ऐसे इन चीजों का ध्यान था मुझे, ऐसे ब्लाइंड होते हैं ऐसे पढ़ते हैं उनके ऐसे लिखी होती है, ये सब चीजों का काफी ध्यान था। उससे वो मतलब वो जो लड़का था ना पड़ोस
0: जी मैम,
2: उससे मिलने के बाद थोड़ा सा ज्यादा जानने लगी।
0: तो सर को फिर जानना मिल सर को जानने को मिला या नहीं, शादी से पहले कुछ बात बात करने का मौका मिला था?
2: नहीं बात करने का मौका
0: नहीं मिला। अच्छा पूरा मतलब एक वो जो अरेंज मैरिज की तरह जो होता है वैसे ही सब कुछ हुआ आपके मामले में? फिर भी कभी मन में
1: तरफ नहीं मिलती है ना, मैरिज ही थी वो
0: ही थी पूरी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा मैम ने बताया भी कि भी एज भी थोड़ी सी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए भी मैम मैम को कुछ ज्यादा मतलब विकल्प थे नहीं कि वो जाने बात करें, क्यों सर?
1: ऐसा तो नहीं था,
2: ऐसा तो नहीं था,
1: क्योंकि जो हमारे ससुर जी ना वो इस तरह के मॉडर्न विचारधारा के थे।
0: अच्छा अच्छा।
1: वो ये कभी पसंद नहीं करते थे कि भाई मैं किसी किसी भी तरह से अपनी बेटी पर कोई दबाव डालूं या उसको किसी भी तरह का प्रेशर या कुछ, चाहे वो डराने का हो, समझाने का भी नहीं करते थे। वो कहते कि नहीं, अगर योग्य है तो मुझे योग्य लगता है लड़का, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अकेला नहीं, मेरी बेटी को भी पसंद आना चाहिए। उस जमाने में लड़कियों को इतना भी ज्यादा दिखाने का रिवाज नहीं था, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, आजकल के जैसे कई कई बार मिल लेते हैं वैसे नहीं था, लेकिन फिर भी दिखाने का रिवाज तो उस समय भी चल पड़ा था।
0: जी जी जी।
1: हम तो दूर थे ना थोड़े
0: जी,
1: पर्सनली हमारे लिए तो देखना थोड़ा मुश्किल था
0: बिल्कुल
1: पहले मिलना
0: जी,
1: बल्कि हम तो शादी के बाद भी कहना चाहिए फेरे वगैरह होने के बाद ही मिले थे पहली
0: बार। जी, लेकिन सर प्रशासनिक सेवा में रहते हुए कभी आपको काम करने का या सोचने का अवसर मिला कि भाई वाकई में ये जो विवाह का मामला है इस क्षेत्र में भी जो है दिव्यांगों के लिए काम किया जाना चाहिए, ऐसा कभी अवसर मिला आपको? सर
1: अवसर तो क्या मतलब, ऐसा कुछ करने का अवसर मुझे नहीं मिला, लेकिन सोचते तो हम हमेशा थे, जब भी कोई ऐसा कोई भी उचित मंच होता उस पर भी हम चर्चा ये किया करते। मैं ये समझता भी हूँ क्या है कि पर्टिकुलरली ब्लाइंड व्यक्ति के लिए तो उसके स्पाउस से ज्यादा विश्वसनीय कोई और हो नहीं सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, निश्चित रूप से।
1: और किसी भी मामले में कुछ भी हो सकता है, आपकी कितनी कोई मदद करे, आर्थिक मदद करे, कुछ करे वो करे, लेकिन आप विश्वास तो स्पाउस पर जितना कर सकते हो उतना किसी और पर नहीं कर सकते। अगर मैं तो कभी कभी मजाक में ये भी कहता हूँ कि अगर मेरी पत्नी मुझे कहे कि इस कागज पर साइन कर दो और टीवी का उसमें आप, अगर वो मेरी पत्नी अगर ये चाहे कि भाई मैं इसमें फंस जाऊं, फंस जाने तो फिर क्या है। तो यहाँ पर समझता हूँ विचारधारा तो ये है
0: बिल्कुल।
1: अगर ऐसा नहीं है तो आपकी शादी कायम ही नहीं रह पाएगी। वैसे रोजाना तो पहले पता चल जाता है, रोजाना दबरे होते हैं या कुछ भी होता है, कुछ भी होता है
0: जी।
1: और खुद खुद को क्रिएट करना होता है और अपने आप को समझना होता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि ये वैसे देखा जाए ना, मैं भी इस बात को समझता हूँ। अगर आपने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है ना, ये मामले में देखा जाए तो मैं बधाई भी देना चाहूंगा
0: जी, धन्यवाद।
1: इस तरह के कार्यक्रम कम से कम इससे जागृति तो आएगी आएगी
0: निश्चित रूप से।
1: जागृति के अलावा एक और चीज होगी कि समझ भी डेवलप होगी।
0: बिल्कुल,
1: समझ बहुत जरूरी चीज है,
0: बहुत जरूरी है सर।
1: मैं मतलब जब हम छोटे थे तो भी मैंने ये सुना था कि हमारे मेरे सीनियर पढ़ने वालों में सीनियर थे कोई
0: जी,
1: उनसे ही कोई लड़की प्यार करती थी, लेकिन मैंने बाद में सुना था, मैं तो मिला नहीं देखो जी
0: जी,
1: लेकिन मैंने ये सुना था कि वो प्यार तो करती थी लेकिन शादी करने के लिए तैयार नहीं।
0: बताइए, वही बात है सर, समझ वाली जो बात कही ना आपने, समझ विकसित होना बहुत जरूरी है जी सर।
1: तो समझ विकसित होनी चाहिए, और समझ विकसित होने के लिए एक और चीज है
0: जी,
1: अगर उनके सामने ऐसे एग्जांपल सेट हों,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उनके सामने, तो शायद उससे थोड़ी मदद मिल सकती है। इसलिए कुछ इस तरह के केसेस को अगर आप प्रकाश में लाते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, जैसे कि आपका ये प्रोग्राम है, ये अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जा सकते हैं, जैसे हमारे जो संगठन चलते हैं
0: जी,
1: वेलफेयर के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाते हैं
0: जी,
1: ऐसे फंक्शंस भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम कई बार ये देखते हैं ना कि ऐसे कपल्स का एक कॉम्पिटिशन कराते हैं
0: जी,
1: बेस्ट कपल ऑफ द ईयर
0: बिल्कुल
1: सिलेक्ट करके उनको आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि उनको आप कोई बहुत महंगे कीमती अवार्ड्स दो, प्राइस दो, ऐसा नहीं, उनको खाली सर्टिफिकेट दे सकते हैं हम, या केवल उनका अनाउंसमेंट भी करेंगे ना, उससे भी बहुत कुछ मिल सकता है
0: जी।
1: जो कपल्स अभी सक्सेसफुल हैं उनको अगर हम अन्य जो हमारे लोग हैं और जो हमारी संस्थाओं से जुड़े हुए अन्य लोग हैं उनसे परिचित कराएं उनको कभी प्रकाश में लाए
0: जी।
1: सबसे बड़ी बात है कि ऐसी जो लड़कियां होती हैं जो ब्लाइंड से शादी करने के लिए तैयार होती है, इसका मतलब पहला जो आपको पहला उनसे जो मैसेज मिलता है वो ये है कि वो कितनी बड़ी कितनी पॉजिटिव सोच उनकी है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो उन्होंने एक एक डिसेबिलिटी के कारण उसको पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया
0: जी।
1: तो मैं ये भी नहीं कहता कि ब्लाइंड है इसलिए उसको सिलेक्ट कर लो, ये तो और भी गलत हो जाएगा
0: जी जी।
1: लेकिन विचारार्थ उसको स्वीकार करो
0: जी जी
1: और करो।
0: और इस मामले में भी सर कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि मतलब जो डिसेबल्ड जो पुरुष हैं उनकी स्थिति थोड़ी ज्यादा बेहतर है, लेकिन लड़कियों की स्थिति आज भी चुनौतीपूर्ण है, चिंताजनक है, खासकर विवाह के मामले में।
1: स्थिति इसलिए ज्यादा चिंताजनक है
0: जी
1: क्योंकि जो लड़की है उससे एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा है
0: जी जी।
1: क्या होता है कि आम लड़की भी है जब शादी करके अपने ससुराल जाती है ना, उससे इतनी अधिक एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है
0: जी,
1: वो बेचारी खुद अपना जीवन तो भूल जाए और ये मेरी सासू है, ये मेरी ननद है, ये मेरा जेठ है, ये मेरा पति है, ये मेरा ससुर है, और बाद में बड़ी हो जाए तो ये मेरे बच्चे हैं
0: जी।
1: तो वो मतलब महिलाओं की स्थिति इस मामले में वास्तव में परेशानी पैदा करने वाली है। मैं कई बार इस बात को बहुत सोचता हूँ। तो इसलिए क्या है कि कोई डिसेबल लड़की होती है उसको आमतौर पर महत्व तो नहीं दिया जाता, क्योंकि ये सोचते हैं लोग कि जब हमारे घर के एक्सपेक्टेशंस जो है ना उनको ये शायद फुलफिल नहीं कर पाए
0: जी।
1: हो सकता है कि मतलब इसकी जो डिसेबिलिटी है वो हमारे दैनिक जीवन में और हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें बाधा से बाधक, क्योंकि अभी तक अपन ये देखते आए हैं कि कोई भी डिसेबल लड़का है तो उसकी अगर पोस्टिंग हो जाती है कहीं पर
0: जी,
1: किसी भी पोस्ट पर, टीचर बन गया, ऑफिसर बन गया, ऑफिसर नहीं बना, टीचर बना, टीचर से और भी छोटी पोस्ट भी मिली, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बना, लेकिन जब वो बन जाता है तो यूं मान लेते हैं कि ये तो सक्सेसफुल हो गया अपनी लाइफ। लेकिन लड़कियों के लिए केवल कुछ जॉब प्राप्त कर लेना गारंटी नहीं है सफलता
0: जी,
1: इसलिए लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए कुछ ऐसा सोचा जाना चाहिए, ये कम से कम हमारे ग्रुप के लेवल पे विचार किया जाए तो ज्यादा बेटर है, शायद इसका सॉल्यूशन और भी मुश्किल है, तो इसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न करने की जरूरत है
0: जी जी।
1: मैं आशा करता हूँ कि आज अगली जो जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग अभी जो विचारार्थ जो लोग हैं वो लोग इस पर गौर करें, कुछ सोचें, समझें, क्रियान्वयन करने की कोशिश करें।
0: जी जी। तो सब कुछ होते हुए सर, इतनी सारी सुविधाएं होते हुए भी, और कहीं ना कहीं मतलब आपको लगा कभी किसी मोड़ पर कि आपके जीवन में भी कोई चुनौती है विवाह के बाद, कहीं पर अपने आप को कमजोर महसूस किया आपने सर?
1: देखो वैसे जहां तक दो तीन चीजें होती हैं, एक तो आप कार्यस्थल पर
0: जी,
1: कार्यस्थल पर तो मुझे वैसे ये तो भावना कभी नहीं आई
0: जी,
1: लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि कैसे कैसे लोगों से मुझे डील करना पड़ रहा है, और क्योंकि और ऐसे लोग हैं जो मेरे से बहुत ही कम बहुत ही लो लेवल की परफॉर्मेंस है, फिर भी उनको सम्मान ज्यादा मिल रहा है, या उनको सम्मान के अलावा भी उनको काम भी कुछ अधिक अलग तरह से दिया जाता है
0: जी।
1: और उनकी लेकिन इस मामले में तो प्रॉब्लम होती थी, रोजाना ही होते थे, लोग मिलते थे, कई बार ऐसे होता था कि हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते थे जो एक इक्वल रैंक के अगर दो ऑफिसर हैं तो वो मुझे कम महत्व दे रहे हैं, मुझे कई बार फील होता था। और लेकिन मैंने ये देखा कि जो मीडियम लेवल के जो लोग हैं ना उनमें ज्यादा सपोर्ट।
0: अच्छा।
1: जो लोग बिल्कुल तो कम पढ़े लिखे या बहुत छोटे लेवल के कर्मचारियों में भी जो बहुत ही छोटे पद पर जो थे उन लोगों में कभी दिक्कत होती थी, या फिर बहुत बड़े जो लोग थे जो हमारे आउट ऑफ टच रहते थे कभी। बाय द वे एक दिन हमारे चेयरमैन साहब मुझे कहते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन
0: जी,
1: अच्छा आप तो वो हो ना जो सरकार से कोर्ट में लड़के आए थे।
0: अच्छा।
1: मैंने कहा सॉरी सर, मैं तो कभी मेरे किसी भी मामले के लिए कोर्ट में गया नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी
0: जी।
1: चेयरमैन इतने बड़े ऑफिसर होते हैं कि उनको जवाब देना थोड़ा और लगता है, लेकिन मुझे देना पड़ा।
0: बिल्कुल सर।
1: पता नहीं था कि
0: जी
1: देना पड़ा। सर सॉरी, लेकिन आपको कोई गलत फहमी हुई।

0: मैं कोई कभी मेरे किसी भी मेरे मामले के लिए कोर्ट में कभी गया नहीं है, केवल सरकारी मामलों के लिए कोर्ट में गया हूँ सरकार की तरफ से।
1: जी
0: तो ऐसे कभी कभी ऐसे देखा है मैंने कि भाई घंटी बजा रहे हैं तो 2 घंटी बज गई, मान लो दोनों बराबर के अफसरों में, तो हो सकता है कि कई बार दूसरा जो है उसके पास लोग वो पहले जा रहे हैं सबकासी, ऐसा कभी कभी देखा है। लेकिन जितने दिन मुझे ज्यादा हो जाते थे जिस ऑफिस में, मुझे ये फील हुआ हमेशा, ये शुरू शुरू में होती थी ये प्रॉब्लम, जिस ऑफिस में शुरू में ज्वाइन करता मैं तो होती थी, लेकिन जैसे जैसे मुझे वहाँ टाइम बीतता था तो मैंने ये देखा कि सभी लोग मेरे से ज्यादा फ्रेंडली हो जाते थे और इतना उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग जाता।
1: ये सर अक्सर कई लोगों की शिकायत सुनने को मिलती है, अभी भी मिलती है, जो आजकल जो प्रशासनिक सेवाओं में जो लोग जा रहे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं दिया जाता है, उनको जो सबॉर्डिनेट और जो जूनियर हैं वो रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, इग्नोर करते हैं। तो अभी अगर इस कार्यक्रम को आपके इस तरह के जो युवा साथी सुनते सुने हैं मान लीजिए, तो उनको उनको अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए और अपना कहीं ना कहीं एक मुकाम स्थापित करने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर?
0: तो पहली सलाह तो मैं यही दूंगा, आप चूंकि हम में एक कमी है तो उस कमी को, जैसे आपके पास अगर कम पैसे हैं और आपको खाना खाना है तो हो सकता है कि आप खाने का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का तैयार करें कि आपके लिमिटेशंस में वो तैयार हो जाए, तो कुछ कुछ कट किया जा सकता है, सलाद वगैरह कट कर दिया या दूसरा। तो लेकिन उसके लिए मेरा सजेशन तो ये होगा कि एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए दूसरे जो बराबर के अधिकारी कर्मचारी जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत में आपको उनके बराबर सफलता मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं।
1: जी
0: आपको कुछ जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहली शर्त।
1: जी
0: दूसरी बात यह है कि आप अपने मन में ये मान लीजिए कि आप में कुछ तो कमी है ना, आपको
1: जी
0: उसको स्वीकार करते हुए उसका सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि आप कभी उन लोगों से अनावश्यक रूप से शत्रुता नहीं लें, किसी से अनावश्यक रूप से किसी पर अत्यधिक विश्वास नहीं करें, हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें और अपने लेवल पे ऐसे ऐसे तरीके इजाद करें कि आप जो काम कर रहे हैं
1: जी
0: उसमें जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर भरोसा हो कि आपने जो किया है वो आप किसी के कहने से नहीं कर रहे हो। एक मैं बहुत छोटा सा सजेशन ये देना चाहूंगा, कभी किसी को ये मैसेज नहीं पहुंचना चाहिए कि नहीं वो फला फला जो एक्स एक्स कर्मचारी है उसके कहने से तो साफ साइन कर ही देंगे। अगर
1: ओ जी जी जी जी
0: किसी के मन में भावना जमा हो गई, किसी के मतलब दूसरे के व्यक्ति व्यक्ति के मन में भी, क्या
1: जी
0: इस तरह का प्रचार भी आपके ऑफिस में हो गया, आपके कॉलिग्स में अगर इस तरह की बात चलने भी लग गई ना, तो वो बहुत नुकसानदायक हो सकता है।
1: जी
0: ये कभी भी इस तरह का अपनी तरफ से कभी भी किसी को ऐसा सोचने का अवसर नहीं, बल्कि सबको ये होना चाहिए कि नहीं यार ये तो मतलब खुद अपने लेवल पे इनको खुद को भरोसा हो तभी ये तो साइन करेंगे या फिर कोई काम करेंगे या कोई बात करेंगे। और आप अनावश्यक रूप से झगड़ा करने की या इस तरह की अगर आपकी प्रवृत्ति होगी तो आपको जरूरत से ज्यादा नुकसान होगा।
1: बिल्कुल
0: एक
1: सर
0: सामान्य आदमी झगड़ा कर सकता है लेकिन आप झगड़ा करोगे तो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप अपने आप को सुपर ईगो रख के या इस तरह का कोई काम करो ना, तो वो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, एक मतलब मेरे एक टीचर कहा करते थे कि तो चर्चा कर रहे थे कि आप में कुछ विजुअल, मतलब एक दिन चलते चलते किसी के सामने एक गाड़ी खड़ी थी वो रुक गया,
1: जी
0: एक कई साथी का, उसने
1: जी
0: किसी ने पूछा कि आप में कुछ विजुअल सेंस है कि आप कैसे रुक गए, गाड़ी गाड़ी खड़ी है सामने तो उससे टकराए कैसे नहीं, तो ये विजुअल सेंस तो नहीं है लेकिन इंडिविजुअल सेंस है। तो आपको इंडिविजुअली इतना, मैं आपको बहुत छोटा सा एक मेरा उदाहरण बताना चाहता हूँ, वैसे तो बहुत उदाहरण है लेकिन मैं एक छोटा सा
1: जी
0: बताऊं कि मेरी पोस्टिंग एक प्राइमरी स्कूल में हुई,
1: जी
0: हम दो टीचर थे, जब मैंने ज्वाइन किया उसके दिन शाम को ही लोगों ने बच्चों ने जाके अपने घर पे बताया कि हमारे स्कूल में एक ऐसे टीचर आए हैं जिनको दिखता नहीं है बिल्कुल। दूसरे
1: जी
0: दिन उनके सारे पेरेंट्स ने उनको स्कूल भेजने से इनकार कर दिया,
1: तो बताइए जी
0: कहने लगे कि जब टीचर को दिखता ही नहीं है, खुद को ही नहीं दिखता है तो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे।
1: क्या पढ़ाएंगे? बिल्कुल जी
0: तो आप अचंभा करेंगे कि वो सारे गांव के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे, लेकिन उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स पर भरोसा नहीं करके उन्होंने ये कहा कि हो सकता है बाबा आपकी बात सही हो, लेकिन हमको एक दो दिन जाने तो दो, अगर वो नहीं पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे तो हमको छोड़ा देना स्कूल
1: जी।
0: बच्चों की ये बात सुन के आप एनकरेज हो सकते हैं, जो बच्चे ना समझते प्राइमरी स्कूल के बच्चे, उन्होंने इतना अच्छा जवाब अपने पेरेंट्स को दिया
1: बिल्कुल,
0: पेरेंट्स ने हमको बताया
1: जी।
0: और उसके बाद जब बच्चे आने लगे, एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन, तो उसके बाद जब मेरा ट्रांसफर होने लगा वहां से, तो वो सारे बच्चे बोले कि जिसने ट्रांसफर किया है वो कहाँ है हमको बताओ, हम उनका सिर फोड़ देंगे। और सारे पेरेंट्स है वो रोने लगे कि गुरुजी आप तो ना ट्रांसफर कैंसिल कराओ। भाई कोई मंत्री संतरी मेरा दोस्त नहीं है, ना मेरा रिश्तेदार है, मैं तो एक्चुअली चाहता था ट्रांसफर कराना, क्यों गांव थोड़ा दूर था हमारे गांव से, तो मैंने उनको इसी तरह से मनाया, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह से मेरा ट्रांसफर कोटा से जयपुर हुआ था एक बार, तो हमारे जो डिविजनल कमिश्नर थे वहां पर मोहंती जी थे
1: जी,
0: उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैं तो रिलीव नहीं करूंगा, वो उस समय कलेक्टर हुआ करते थे, अभी तो बाद में डिविजनल कमिश्नर जयपुर में रहे
1: जी जी जी,
0: तो वो कलेक्टर थे, वो बोले नहीं मैं तो रिलीव नहीं करूंगा आपको। मैंने बड़ी मेहनत से उनको रिक्वेस्ट करके मैंने कहा सर जयपुर ट्रांसफर हुआ है, और कहीं हो रहा हो तो मैं आप बात मान लेता, लेकिन अब कोटा की जगह अगर मैं जयपुर जा रहा हूँ तो आप रिलीव कर दो, आप मेरा भला ही तो करोगे। तो बोले ठीक है, अब जब आप ये कह रहे हो कि भाई मेरा ही भला हो रहा है तो कर देता हूँ, उन्हीं बात मेरी इच्छा तो नहीं है।
1: तो ये
0: आपके ऊपर निर्भर करता है
1: जी, जी।
0: ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है, आपकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है
1: बिल्कुल।
0: कि मुझे ये मैं जरूर कहूंगा कि आपको कल आपको जरूर गड़बड़ होगी, मतलब जब आप किसी ऑफिस में पहली पहली बार जाओगे ना, शुरू शुरू में आपको दिक्कत ही होगी, क्योंकि शुरू में ना तो आपका ऑफिसर आपको काम देना चाहेगा, वो सोचेगा कि अगर उसको काम कराए बिना मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट करके भी हो जाए तो ठीक है, इनको तो बैठे रहने दो, ये सोचेगा। आपके सबोर्डिनेट ये सोचेंगे कि ये नहीं हो और इनकी जगह दूसरे सर से हम मिल लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये समझेंगे थोड़ी हमारी बात। लेकिन जैसे जैसे आपका व्यवहार, आप इनके साथ इंटरेक्ट करोगे और अगर आप अच्छे से करोगे, एक मैं बहुत जरूरी चीज होती है वो है आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना
1: बिल्कुल सर,
0: और अगर आप अपने नॉलेज से लोगों को परास्त कर दोगे ना तो लोग आपसे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
1: क्या बात, बहुत सही कहा सर।
0: नॉलेज अगर नहीं हुआ, अगर आपको नॉलेज नहीं हुआ ना, तो आप कभी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते
1: बिल्कुल।
0: तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं
1: जी।
0: और बाकी मैंने अभी तो पूरा तो सोचा नहीं है, इसलिए मैं जो अभी अभी जो क्या कहना चाहिए तत्काल मुझे जो समझ में आई वो मैंने आपको कुछ बताई है।
1: निश्चित रूप से ये कई लोगों को,
0: जब मेरे से कोई ऐसे आरएएस जो नए बनते हैं आकाश अरोड़ा वगैरह बात करते हैं कोई, तो मैं उनको सजेशन ऐसे देता हूँ, वो कितना इम्प्लीमेंट करते हैं या कर पाते हैं ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने फीडबैक तो लिया नहीं
1: जी जी जी।
0: मैं तैयार भी हूँ, अगर बाय द वे आपके प्रोग्राम के माध्यम से किसी को अगर कोई फीलिंग आए और वो मेरे से अगर कभी भी कांटेक्ट करना चाहे ना, मैं रेडी हूँ
1: जी जी जी। क्या तो बात,
0: कभी भी किसी भी तरह का मोटिवेशनल गाइडेंस या टेक्निकल गाइडेंस या कुछ भी अगर ऐसा चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस जितने भी है मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ, मैं करता हूँ
1: जी।
0: लेकिन फिर भी अगर कोई और व्यक्ति भी ऐसा हो जो नए बच्चे बनना चाहते हैं, वो भी अगर मेरे से शेयर करते हैं या मेरे से विचार विमर्श करते हैं, कुछ लोग आके घर आके भी बात करते जाते हैं
1: जी,
0: तो मेरा इंटरव्यू है मैं क्या करूँ क्या कहूँ या इस तरह की बातें करते हैं, फोन पर भी कई लोग मेरे से राय लेते हैं
1: जी जी जी।
0: लेकिन फिर भी मैं और ऑफर ये दे सकता हूँ, मेरी तरफ से इतना कर सकता हूँ
1: जी,
0: अगर कभी भी जो मुझे नहीं भी जानते हैं
1: जी,
0: बाय द वे अगर वो मेरा सोर्स कोई ढूंढ के किसी आप लोगों के माध्यम से या किसी भी तरह से मेरा फोन नंबर लेके कैसे भी आए कांटेक्ट करें,
1: निश्चित रूप से जो भी संपर्क करेंगे उन्हें आपका नंबर दे दिया जाएगा सर, ताकि जी जी जी लोग सीधे आपसे बात कर सके। मैं चाहूंगा थोड़ा सा मैम से बात करते हैं, काफी लंबी चर्चा हो गई और ये बहुत जरूरी भी है सर, कुछ चीजें क्लियर भी होना, लेकिन एक घंटे में सब कुछ समाहित भी नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के आपका संघर्ष प्रशासनिक सेवा में ज्यादा रहा, पारिवारिक और घरेलू संघर्ष तो कुछ इस तरह का नहीं रहा आपके साथ, ये बहुत अच्छी बात।
0: घरेलू संघर्ष नहीं रहा, घरेलू संघर्ष शुरू में कोई मतलब, फिर हर हर फील्ड में घरेलू सामाजिक में भी ऐसा होता है
1: जी,
0: कि आप जिन लोगों से परिचित नहीं है ना
1: जी,
0: उन लोगों में एस्टेब्लिश होने में आपको थोड़ा समय लगेगा।
1: जी जी जी,
0: मतलब ऐसा हो चुका है कि मुझे बस में ट्रेवल करते टाइम भी कुछ लोगों से मतलब अनकंफर्टेबल फील हुआ
1: जी,
0: लेकिन क्योंकि वो लोग मुझे जानते नहीं है इसलिए हुआ है। तो लेकिन मैंने फिर ये देखा कि अगर वो आधे घंटे एक घंटे मेरे साथ रहा वो मान लो उसी बस, फिर उससे मैं अनकंफर्टेबल फील ना तो मैं कर रहा था ना वो कर रहा
1: जी।
0: तो ये मैं सभी को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप अच्छे से पूरी मेहनत से पूरी अपनी शक्ति लगा के मेहनत कीजिए। ये कभी मत सोचो कि कुछ कर नहीं पाएंगे, ये भी मत सोचो कि हमको इस सुपरमैन है सब कुछ कर पाएंगे, इसलिए ऐसा करो कि जो जरूरत है वो सब करो।
1: जी जी मैम, तो थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताएं निर्मला मैम हमारे सुनने वालों को। जी कितने बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं आजकल?
2: दो बच्चे हैं।
1: जी मैम।
2: एक की तो गुड़िया की तो हो गई शादी।
1: अच्छा मैम।
2: जी वो अपने ससुराल में है।
1: जी तो वो जॉब करती हैं गुड़िया?
2: वो नहीं करती है अभी तो फिलहाल, पहले करती थी।
1: जी
2: अब शादी होने के बाद वो थोड़े दिन तो नहीं करी।
1: जी
2: फिर अब सोच रही है करने की, तो जो उसका हस्बैंड है उनका गुड़गांव में पोस्टिंग हो गई।
1: जी
2: तो अब कोरोना के चक्कर में गए नहीं, तो वहाँ जाने के बाद वापस।
1: वाह बहुत। और कौन है उनके अलावा?
2: है।
1: जी
2: इंजीनियर है।
1: अच्छा वेरी गुड। जी मैम
2: है वो
1: जी,
2: अमेरिकन कंपनी है ऑटोमेटिक करके।
1: जी जी तो मैडम सर तो प्रशासनिक सेवाओं में रहे का समय सारा, बल्कि एक्स्ट्रा समय भी सर का तो वहीं लग जाता होगा सारा, और घर की परिवार की और बच्चों की परवरिश की सारी जिम्मेदारी ज्यादातर आप पर ही रही होगी। कभी कोई मुश्किल आई आपको?
2: नहीं कोई खास मुश्किल, अब बच्चे छोटे होते हैं तो सभी लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किल आती ही है।
1: जी
2: तो खास नहीं है, हम दोनों ने मिल के
1: कभी आपको ऐसा हुआ कि कोई शिकायत रही सर से? मैं जानता हूँ कार्यक्रम में वैसे आप मना ही करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं किसी मोड़ पर आपको लगा हो?
2: कोई शिकायत तो नहीं रही।
1: जी जी जी, जी।
2: शुरू में आई थी तो मुझे हिंदी कम आती।
1: जी मैम। जी मैम।
2: तो उसमें मुझे घर में सेट होने की, सबके साथ बोलने की थोड़ी सी परेशानी तो हुई।
1: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये तो
0: एक्चुअली वही हुआ जो अभी मैं कह रहा था ना कि शुरू में प्रॉब्लम आती है।
1: जी सर जी सर।
0: और जैसे जैसे समय बीतता है
1: जी,
0: ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कभी हम लोगों में विरोधाभास नहीं हो, लेकिन हमें इतनी क्षमता है कि हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं या रिजेक्ट करते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत अच्छी बात है सर। और
2: ऐसे ऐसे जैसे दिक्कतें हुई
1: जी मैम,
2: ट्रेवल करने में इसमें कुछ दिक्कतें हैं, जैसे सर ने बताया कि कुछ ऐसे होती थी बसों में और ऐसे लोगों का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दूसरी तरह का होता था, इग्नोर करते थे कभी किसी से, थोड़ा जोर से बोल भी दिया, इस तरह की कुछ हुई धीरे धीरे हो गया।
1: जी
2: तो आपको पता है कि होती है।
1: हाँ ये तो सब जगह की परिस्थितियां हैं। जी जी जी, वाह बहुत खूब मैम। तो अब लगभग कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है मैम, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों से?
2: अब ये है से लड़कियों को अपने सोच समझ के विचार करके और अपने क्षमता से जो भी करें, जैसे शादी करने का मामला तो
1: जी जी, बहुत धन्यवाद मैम। तो सर अब कार्यक्रम के ठीक अंत में मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे सभी सुनने वालों को अपनी तरफ से कुछ संदेश दीजिए प्लीज।
0: बस मैं तो मुझे लगता है कि मैं पूरे प्रोग्राम में संदेश ही देता रहा हूँ।
1: जी जी जी जी,
0: संदेश से भी ज्यादा उपदेश हो गया है।
1: जी
0: बाकी
1: जी जी
0: बाकी थोड़ा क्या है कि ये तो रिटायरमेंट की लाइफ में शायद हो ही जाता है कुछ ऐसा
1: जी जी
0: वो उपदेश बन जाते हैं। बाकी एक्चुअली मैं ये क्या है कि मैं बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हूँ
1: जी,
0: तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि केवल आरएएस बहुत अच्छी सर्विस है, इस आधार पे आरएएस में जाने के लिए मत ट्राई कीजिए
1: जी।
0: केवल ये सोचिए कि आपकी रुचि क्या है, आप किस फील्ड में जाना पसंद करते हैं। आप अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं ब्लाइंड हूँ इसलिए मुझे इसमें जाना चाहिए, ब्लाइंड हूँ इसलिए इसमें नहीं जाना चाहिए, ये मत सोचिए।
1: वाह,
0: ये सोचिए कि आप किसमें, मतलब आपका मन किसमें है, दिल किसमें है। खाली दिमाग से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से विचार विमर्श करके और फैसला करो। और अगर कोई, वैसे जहाँ तक इस प्रोग्राम का की थीम है हमराई के हिसाब से, उस हिसाब से अगर शादी के बारे में अगर किसी को भी डिसीजन लेना है ना, तो ओवरऑल एक पैकेज के रूप में चर्चा करके विचार विमर्श करें, न कि केवल एक किसी चीज पर कि भाई ये इसकी आंखें खराब है, इसकी टांग खराब है, इसका दिमाग खराब है, इसका इनकम नहीं है, या इसकी एजुकेशन कम है, मतलब तो एक किसी चीज को फोकस नहीं करें, बल्कि ओवरऑल पैकेज के रूप में उसको देख के और अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह से खुले दिमाग से सोच कर तो डिसाइड करें तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। और हमेशा डेमोक्रेटिक बने रहिए, कभी ये मत सोचिए कि मैं हूँ तो मेरी बात हमेशा सही है, ऐसा हो सकता है कि आपकी बात गलत हो। और गलत जैसी कोई बात नहीं है, तो ओपिनियन होते ना गलत और सही नहीं होते बल्कि डिफरेंट होते
1: जी।
0: इस बात को हमेशा स्वीकार करें
1: जी,
0: तो आपस में ओपिनियन होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, गलत और सही नहीं होते।
1: बिल्कुल सही है सर,
0: एक दूसरे को सोच के समझ के विचार विमर्श करें, उस हिसाब से एक्शन प्लान बनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सर, हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें श्रोताओं से करने के लिए। तो जी उम्मीद है श्रोताओं आपका ये, आपको आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए डायल करें 94-14-15-14-15। रेडियो मधुबन का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से, रेडियो मधुबन के ही नाम से है। अगर आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in पर कर सकते हैं। तो इंतजार रहेगा आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का। और इजाजत दीजिए आज, तो मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

ओम शांति। आज है 3 सितंबर 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बाबा कहते हैं वो दूर देश कौन सा है, जिसको कहते ब्रह्म महतत्व, तो वहां से परमपिता परमात्मा इस संसार में आते हैं, आत्माओं को पतित से पावन गति सदगति देने के लिए। वो आकर के एक साधारण तन में प्रवेश करते हैं और अपना पाठ बजाते हैं। बाबा कहते फिर ये तो नहीं कह सकते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहा दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो नाम रूप तो जरूर होगा। फिर कह देते नाम रूप से न्यारा तो कैसे हो सकता है। बाबा कहते आकाश जो पोलार है उसको भी नाम और रूप अवश्य है, तो नाम रूप से तो परे कोई चीज है ही नहीं। परमात्मा को भी अपना नाम और स्वरूप है, तो आत्माओं को भी अपना स्वरूप है। अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो शरीर में प्रवेश करती है, अपना पाठ बजाती है। तो इसीलिए बाबा कहते ये बात तुम्हें सबको स्पष्ट करके समझानी है कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती है। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पाठ भरा हुआ है, नूंदा हुआ है। आज की मुरली से प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा है? उत्तर है, क्योंकि बाप ही अहिल्याएं गणिकाएं कुब्जाओं का उद्धार करते हैं, उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता, परंतु बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूं, मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना और रूहों ने शरीर के कान रूपी कर्मेंद्रिय द्वारा गीत सुना। दूर देश से मुसाफिर आया है, तुम सब मुसाफिर हो ना। बाबा कहते तुम भी वहां से आते हो तो तुम सब मुसाफिर हो ना। जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं वह सभी मुसाफिर है। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है, आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर। देश व लोक, निराकारी आत्माओं का घर देश व लोक, और इसको इस दुनिया को जीव आत्माओं का देश कहा जाता है, वह है आत्माओं का देश। फिर जब आत्माएं यहां आकर शरीर में प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप ही नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है इस शरीर द्वारा, हरेक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, उसमें 84 जन्म का सारा पाठ भरा हुआ है।
जैसे आत्मा निराकार है वैसे बाप भी निराकार है। कहां कहां शास्त्रों में लिख दिया है कि वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं है। आकाश भी पोलार है, नाम रूप तो है ना, बिगर नाम के कोई भी चीज होती नहीं। मनुष्य समझते हैं परमपिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, अगर नाम नहीं तो रूप भी नहीं, देश भी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। नाम रूप देश काल कुछ भी नहीं हो सकता है। बुलाते भी है दूर देश का रहने वाला परमपिता परमात्मा। अब दूर देश में आत्माएं रहती है, ये साकार देश है, इसमें दो का राज्य चलता है। किन दो का राज्य चलता है? राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ये बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग से ईश्वरीय राज्य शुरू होता है। राम राज्य स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है। वह कभी रावण राज्य स्थापन कर न सके। बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़ी बनाएगा। कहते हैं ईश्वरीय दुख सुख देते हैं, बाप कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं, मेरा तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह तो मनुष्य की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे, इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुखधाम में कभी दुख होता नहीं। बाप स्वर्ग का रचयिता है, अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग। वही फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई चीज जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विकारों को ही सुख समझते हैं, इस विष को ही बाबा कहते सुख समझते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर है असंख्य चोर। बाप की महिमा गाते हैं, आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। बाप ही आकर मोत पलिती कपड़ धोते हैं, ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है। सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं, अब यह तो कोई सिख धर्म वाले है नहीं। सिंधी लोग कोई सिख धर्म वाले है नहीं, ये तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के। सिखों का है गुरु नानक, उनको दाढ़ी बाल थे, तो सब सिखों को दाढ़ी बाल होने चाहिए। आजकल तो दाढ़ी रखते नहीं, बहुत फैशनेबल बन गए हैं, नहीं तो फॉलो करना चाहिए ना। हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं, तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए ना। यह तो बच्चों को अभी पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे। तो फॉलोअर्स माना चरित्र में फॉलो करना चाहिए, कर्म में फॉलो करना चाहिए। खाली पहरवाइश में फॉलो कर लेना उसको फॉलोअर तो नहीं कहेंगे, लेकिन मनुष्य की सोच वैसी होनी चाहिए, उसके कर्म वैसा होना चाहिए, उसका चरित्र वैसा होना चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ फॉलोअर्स है। तुम झट बताएंगे, कोई से भी पूछो यह तो बताओ कि गुरु नानक कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष के बाद गुरु नानक फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है। बुद्ध क्राइस्ट आदि सबके लिए कहेंगे इस समय तमो प्रधान है, कब्र दाखिल है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति जैसे बुझी हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने।
बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाकर साथ ले जाएंगे। बाबा कहते हैं जो काम चिता पर बैठकर भस्म हो गए हैं, उनके ऊपर बाबा ये ज्ञान अमृत की वर्षा करके उन्हें जगाकर सुरजित करके साथ में ले जाएंगे। माया ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है, सो गए हैं। अब बाप अमृत छकाते यानी पिलाते हैं, अमृत सर नाम इसीलिए रखा है। बाप आकर अमृत छकाते हैं, अब कहां ज्ञान अमृत कहां पानी की बात। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। अब गुरु नानक साहब तो कोई ज्ञान सागर है नहीं, बाबा कहते अब गुरु नानक साहब तो कोई ज्ञान सागर है नहीं, उसने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वह सदैव सच बोलने वाला है, सत्य नारायण की कथा है ना। सिंधु वर्ती लोग बाहर जाते हैं तो सत्य नारायण की कथा कराते हैं, समझते हैं सत्य नारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे। अमर कथा तिजरी की कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते आए हैं। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वह फिर कथा कौन सी सुनाई, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में मैं ले जाने आया। बाबा कहते तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में मैं ले जाने आया, मृत्यु लोक से अमर लोक में मैं ले जाता। एक बाबा ही ले जाते हैं, बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो आकर उनको कथा सुनाएंगे। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्य नारायण की कथा, तिजरी की कथा। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूजे थे, फिर 84 जन्म के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है आपे ही पूजे आपे ही पुजारी। बाप कहते मैं तो सदैव पूज्य हूं, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूं। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भगत पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है ना, हे पतित पावन। अभी तुम समझते हो कि गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई है, पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, एक ही राम। तो बाप समझाते हैं कि ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान शिव है न कि श्री कृष्ण। पहले तो पूछो भगवान किसको कहा जाता है, निराकार को या साकार को। श्री कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेता है, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। पहले नंबर गर्भ में आने वाली श्री कृष्ण की आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी है, शिव को शरीर नहीं है, यहां इस लोक में स्थूल शरीर है। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा सुख कहाँ हो सकता है, बाबा कहते दुख हरता सुख करता है तो सुख कहाँ हो सकता है। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी।
अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? लिबरेट यानी मुक्त किससे करते हैं? रावण के दुखों से। यह तो दुखधाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहां ही खत्म हो जाता है, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। मनुष्य जब शादी कर आते हैं तो पहले होता है पति, पीछे होती है ब्राइड, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी ही है। ऊपर में है शिव बाबा फूल, पहले फूल को नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बच्चे हैं। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हैं। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर शूद्र से ब्राह्मण बन, ये नॉलेज लेकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह माला उन्हों की बनी हुई है। किनकी बनी है? 108 विजय रत्नों की। ये ब्रह्मा सरस्वती ही राजा रानी बनेंगे। उन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता ही नहीं कि माला क्या चीज है। माला को नमन करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन पता ही नहीं किस चीज की ये माला है। ऐसे ही माला फेरते रहते हैं, सोचते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए ये साधन बना हुआ, लेकिन 108 ही क्यों? 100 बनाते थे ना, 100 मणके रखते थे तो याद रखना भी मुश्किल नहीं होता था। तो बाबा कहते ऐसे ही माला फिरते रहते। 16108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है। फिर कोई कहां से खींचेगा, कोई कहां से। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे। ब्रह्मा बाबा जाकर के ये माला फेरते थे, राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं, फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते रहते हैं, क्राइस्ट को याद करते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते रहते हो, कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उन्हों के बड़े पोप पादरी होते हैं तो वह फिर पोपों की माला होगी। बाबा कहते हैं उन्हों के बड़े पोप पादरी होते हैं तो वह फिर पोपों की माला होगी। उन सब के चित्र है, पोपों का कितना मान है। उनको खुद पता नहीं है कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो कि क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बेगर रूप में है। तुम भी अभी बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। भारत ही प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है कौन? एक रूहानी बाप। बनाने वाला है एक रूहानी बाप। बेकर से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज भी है जहां जाकर वो पढ़ते हैं। तुम यहां पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी तुम समझते हो जो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, 184 जन्म के बाद बेगर बना है। 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने मशहूर थे, अभी वही कंगाल बेगर बने हैं। ये बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। भगवान वाच, वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल यह कर दी है जो शिव भगवान वाच के बदले से कृष्ण भगवान वाच नाम डाल दिया है। इसलिए गाया जाता है झूठी दुनिया। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है,
बाप आकर इन कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं अर्थात काम कटारी चलाते हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है, वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं फिर कांटों से फूल बनते हैं। सतयुग में कभी रावण को नहीं जलाते हैं, सतयुग में उनको जलाने की कोई बात ही नहीं। रावण पुराना दुश्मन है, किसका? भारत का। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, जिसने आधा कल्प दुख दिया है। आखिरन बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत पहनकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए उनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। सारे विश्व का राज्य भाग्य देते इसलिए उनको भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाए अहिल्याए कुब्जाए सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना भोला है। आते हुए पति दुनिया में पतित शरीर में है, बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विकारों को छोड़ नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे अभी यह अंतिम जन्म तुम पावन बनो, कितना प्रेम से बाबा रिक्वेस्ट करते हैं, बच्चे अभी यह अंतिम जन्म तुम पावन बनो। यह विकार पॉइजन है जो तुमको आदि मध्यांत दुखी बनाते हैं, क्या तुम यह एक अंतिम जन्म इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं? मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूं फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकारों बिगर, सिगरेट बिगर, शराब बिगर रह नहीं सकते हैं। मैं बेहद का बाप कहता हूं तुम एक जन्म पवित्र बनो तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो बाप आया ही है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुखधाम शांति धाम में ले चलने। अभी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूरत कहते हैं, बाप है महाकाल, भगवान को ही कहा गया है महाकाल। वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसीलिए महाकाल कहते हैं। शिव बाबा महाकाल है जो सब आत्माओं को साथ में ले जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है, स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम सब बच्चों के प्रति है, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे।
एक शब्द में हजार शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। आज का व्यक्ति इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। इसके अंतर्गत बाबा कहते, दाता के बच्चे सर्व को देने की भावना से भरपूर बनो। कभी यह संकल्प नहीं करो कि यह हो तो मैं भी यह करूं। ऐसी परिस्थिति हो, वायुमंडल हो, तब मैं यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सब तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। इसलिए मास्टर दाता दूसरों से लेने की भावना नहीं रख सकते। मास्टर दाता दूसरों से लेने की भावना नहीं रख सकते। अच्छा,